ओम शांति। हम सभी को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। हमारा अगर उनसे सच्चा प्यार है तो हमें उन्हें फॉलो करना है, जैसे उन्होंने शिव बाबा से बहुत प्यार लिया और सबको बहुत प्यार दिया, वैसे ही हमें भी शिव बाबा से बहुत प्यार लेना है और संसार की आत्माओं को बहुत देना है। प्यार लेने के लिए हमें देह से न्यारा होना होगा। जो देह से न्यारे अशरीरी आत्मा बन जाते हैं, उन पर ही प्रभु प्यार बरसता है। वही परमात्मा के प्यारे होते हैं, वही उसे बहुत प्रिय लगते हैं और वही संसार को भी बहुत प्रिय लगते हैं। हमें सबको प्यार भी बांटना है। इस संसार में प्रत्येक आत्मा प्यार की बहुत प्यासी है, क्योंकि कहीं भी सच्चा प्यार नहीं रहा है। प्यार में वासनाएं समा गई हैं, प्यार में स्वार्थ समा गया है, प्यार में लोगों को धोखा मिल रहा है, विश्वास समाप्त होता जाता है। इसलिए वासनात्मक प्यार में फंसकर कई युवक अब डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। हमें सबका ध्यान परमात्मा प्यार की ओर खिंचवाना है कि अगर तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए तो वो केवल एक जगह से ही मिलेगा और वो है तुम्हारे परमपिता। उनको पहचानो, उनसे अपना नाता जोड़ो, कोई संबंध उनसे जोड़ लो, उन्हें अपना प्रियतम बना लो या उन्हें अपना खुदा दोस्त बना लो और उनके प्यार में मग्न हो जाओ, तो उनसे सच्चा प्यार तुम्हें मिलेगा। जितना प्यार तुम देहधारियों को करते हो, जितनी प्यार की कामना तुम देहधारियों से करते हो, उतना प्यार अगर अपने परमपिता को करो तो संसार में और किसी के प्यार की कामना ही नहीं रहेगी। प्यार का सागर तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम संसार को बांट सको। तुम्हारे प्रेम के खजाने सदा सदा के लिए भरपूर हो जाएंगे। तो हमें फॉलो फादर करना है। सोचो, हम ही तो बाबा को जानते हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हम ब्रह्मा बाबा की पालना में भी पल रहे हैं और शिव बाबा की पालना में भी पल रहे हैं, और दोनों के ही हम कितने समीप आ गए हैं। क्या कभी हमने सोचा था कि भगवान इस तरह हमें प्यार करेगा, हमारी पालना करेगा, हमें बैठकर पढ़ाएगा, हमारी निरंतर मदद करेगा, हमारे सिर पर प्यार भरा हाथ घुमाएगा, भगवान का प्यार मिलेगा हमें, वो हमारा सच्चा मात पिता बन जाएगा और प्यार से हमें बहुत पालना देगा। हमने तो कभी कल्पनाएं भी नहीं की थी। हम तो केवल ये चाहते थे क्षण भर के लिए उनके दर्शन हो जाएं, पर हो क्या गया, वो तो हमारा हो गया। हम उसके परिवार के बहुत समीप सदस्य बन गए। तो आज सारा दिन हम स्वयं को इस देह से न्यारा करने का अभ्यास करेंगे। गुड फीलिंग देंगे बार बार, ये देह अलग और मैं आत्मा अलग। अपने स्वरूप को देखेंगे, कभी अभ्यास करेंगे, मैंने इस तन में प्रवेश किया है, मैं अवतार हूँ, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरित होते थे, जैसे बाप दादा गुलजार दादी के तन में अवतरित होते हैं, मैं इस तन में अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण के लिए। तो देह से न्यारापन, डिटैचमेंट फील करना है। ये डिटैचमेंट हमारे चित्त को बहुत शांत करेगी, हमारे ब्रेन को भी बहुत डिवाइन कर देगी, और साथ साथ हम सूक्ष्म लोक में जाकर ये भी अनुभव करेंगे
बाबा का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर है। वो सिर पर प्यार से हाथ घुमा रहे हैं, अपना प्यार मुझ पे बरसा रहे हैं, प्यार भरी दृष्टि भी दे रहे हैं। ये दोनों अभ्यास आज सारा दिन करते रहेंगे और परमात्मा प्यार में मगन रहेंगे। ओम शांति।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रेम है। प्रेम ही हर संकट में आपकी सहायता करता है। यदि आपको जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करना है तो इसके लिए प्रेम भावना को ही अपना सहयोगी बनाइए। अमेरिका के सुप्रसिद्ध नगर न्यूयॉर्क में कभी एक प्रदर्शनी लगी थी। उसमें अनेक आश्चर्यजनक करतब दिखाए गए थे। वहां एक घोड़े के भी आश्चर्यजनक कार्य थे। पूछने पर उस घोड़े के मालिक ने बताया कि 5 वर्ष पहले वह घोड़ा बहुत जिद्दी और खतरनाक था। कुछ भी काम न करने देता था और न करता था, परंतु अब वही घोड़ा बिल्कुल नम्र हो चुका था। यही तक नहीं, यह मालिक के शब्दों को समझता था और उसका अर्थ भी बता देता था। एक पशु पर भी प्रेम का कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। उसका मालिक उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार कर विभिन्न प्रकार के कार्य ले सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके मालिक ने पिछले 5 वर्षों में उसे कभी चाबुक नहीं दिखाया। उसने केवल अपनी प्रेमपूर्ण बातों और व्यवहार से ही यह आश्चर्यजनक परिवर्तन किया। इस प्रकार एक माता भी अपने बच्चों को कभी न धमकाती थी और न कभी मारती पीटती थी। लोग उससे प्रायः कहा करते थे कि लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाएंगे, परंतु उस स्त्री ने प्यार में एक दिन भी कमी न की। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों के स्वभाव का बहुत ही विचित्र विकास हुआ। बच्चे बहुत ही विनम्र और सच्चरित्र बने। दंड में विश्वास रखने वाले पड़ोसियों ने जब बच्चों के इस व्यक्तित्व को देखा तो उन्होंने अपने विचार बदलने पड़े। उन्हें यह मानना पड़ा कि प्रेमपूर्ण व्यवहार ही बच्चों के पालन पोषण में उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। प्रेमपूर्ण व्यवहार ही किसी के चरित्र को कुंदन बना सकता है। माता अपने बालक का पालन ही नहीं करती, उसके निर्माण में भी सबसे बड़ी सहायक होती है। बिलख बिलख कर रोता हुआ बालक माता के जरा से प्यार को पाकर चुप हो जाता है। उसके प्रेमपूर्ण 2-4 शब्द बच्चे के हृदय पर विचित्र प्रभाव डालते हैं। बच्चों से सदैव प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और सदैव ऐसी चेष्टा करें कि वे किन्हीं दुष्ट विचारों और भयपूर्ण कल्पनाओं की ओर आकृष्ट न हों।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रेम में अद्भुत शक्ति है, प्रेम में शांति है, प्रेम में सुख का आनंद है। प्रभु से मेल भी प्रेम के मार्ग पर चलकर ही होता है। प्रेम से आपको अपना प्रत्येक वांछित पदार्थ प्राप्त होता है। आपको भली भांति यह समझ लेना चाहिए कि आप प्रेम के सहारे ही प्रत्येक कष्टों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार दया से दुष्टता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्रेम के अभाव से आपके मन में उठने वाले दुष्ट विचार भी नष्ट हो जाते हैं। आप बच्चों के सामने विजय, उत्साह, सफलता और उन्नति की बातें ही करें। इससे उनकी आत्मा को बल मिलेगा और उनका मन सदा हर्ष और उल्लास से पूर्ण रहेगा। बच्चों की उन्नति और उनके सुखद भविष्य के लिए इस प्रकार के विचार आवश्यक हैं। ऐसे विचारों से युक्त बालक जीवन में कभी भी असफल और दुखी नहीं हो सकेंगे। इसके विपरीत आचरण करने वाले बच्चों का मन कुटिल और मलिन हो जाता है, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जिन बच्चों के मन आरंभ से ही ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की भावना ग्रहण कर लेते हैं, उनका जीवन कैसे उच्च हो सकेगा? वे किस प्रकार महान बन सकेंगे? उज्जवल भविष्य तो उन्हीं बच्चों का होगा जो सदा सत्य, कल्याणकारी और सुंदर विचारों से प्रभावित रहेंगे और जिनके मन में हीन विचार उत्पन्न न होंगे। बच्चों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि आप उनके सामने कोई भी कमजोरी अथवा दुर्गुणों से युक्त बात का जिक्र न करें, वरन इस प्रकार की बातचीत के बजाय उन्हें सत्यम, शिवम और सुंदरम भावना से युक्त विचारों की याद दिलाएं और उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, तो निश्चय मानिए कि गलत राह पर चलने वाला बालक भी ठीक राह पर आ जाएगा और उसके मन में एक विशेष प्रकार का दिव्य प्रकाश पैदा होगा जो आयु भर उसके मार्ग को आलोकित करता रहेगा। बच्चे को कभी हतोत्साहित मत कीजिए, उसे सदा प्रोत्साहित कीजिए। इससे उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा और संशय और संदेह वृत्ति वाला डरपोक बालक भी आशातीत उन्नति कर सकेगा। बालक पर प्रेम पूर्ण व्यवहार और प्रोत्साहन देने वाले विचारों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के विचारों से उसमें अद्भुत प्रेरणा उत्पन्न होती है और अपने आप को प्रभु के विशाल भंडार का अधिकारी समझने लगता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह जो भी चाहेगा अवश्य प्राप्त होगा। प्रशंसात्मक और प्रोत्साहित करने वाले विचार एक शक्ति देने वाली औषधि का काम करते हैं, जबकि उसके मन को गिराने वाले निराशाजनक विचार घातक प्रभाव डालकर बच्चे को उसका कुफल भोगने के लिए विवश कर देते हैं। कभी उन्हें कोसने, दुर्वचन कहने अथवा तुम बड़े ही भाग्यहीन या मूर्ख हो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसी अशुभ बातें कहने से उनका स्वभाव बिगड़ जाता है और कार्यों को संपादित करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार उनकी उन्नति के सारे मार्ग रुक जाया करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि अगर आप अपने बच्चे को उच्च संस्कारी और सफल देखना चाहते हैं, तो कभी भी उसके साथ नकारात्मक व्यवहार ना करें। सदा उन्हें प्यार से, प्रेम से समझाते हुए, अच्छी शिक्षाएं देते हुए आगे बढ़ाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बहुत से माता पिता अपने सुयोग्य पुत्र और तीक्ष्ण बुद्धि बालक को भी बार बार यह कहकर उसके स्वाभाविक विकास में बाधक बनते हैं कि तुम तो सुस्त हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते आदि आदि। वास्तव में बार बार कहने पर बालक यह समझ लेता है कि वह मूर्ख है, उसकी तरक्की नहीं हो पाएगी और वह स्वयं अपनी उन्नति के मार्ग से विचलित हो जाता है। परंतु प्रसन्नता की बात है कि अब माता पिता यह अनुभव करने लगे हैं कि बच्चे को मारने, धमकाने और पीटने के बजाय उसकी प्रशंसा करना और प्रोत्साहन देना अधिक लाभदायक है। परंतु इस प्रकार के विचारवान माता पिताओं की संख्या कम ही है। आपने प्रायः यह अनुभव किया और देखा होगा कि विद्यार्थी अपने उन अध्यापकों अथवा अभिभावकों का अधिक सम्मान करते हैं जिनका व्यवहार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण और प्रेम का होता है। बड़े से बड़ा बलिदान भी करने को तैयार हो जाते हैं। विद्यार्थियों और अध्यापकों में इसी प्रकार के संबंध होना आवश्यक है। बहुत से माता पिताओं के सामने यह समस्या होती है कि उनके बच्चे उनकी आज्ञा में नहीं चलते, परंतु इस दोष को भी आसानी से छुड़ाया जा सकता है। बात यह होती है कि जवानी के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति में जीवन शक्ति अपूर्व वेग में रहती है, जिसके कारण किशोर भांति भांति के उपद्रव करते हैं। ऐसे बालकों के माता पिता को चाहिए कि वे इस प्रकार की सावधानी रखें कि वे किसी दुष्ट कृत्य की ओर आकृष्ट न हो। ऐसे बालकों को कार्य करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। डर या डंडे के जोर से आप बच्चे को डरा धमका तो सकते हैं, किंतु इसे ईमानदारी से अपनी बात मानने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। परंतु यदि आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण है तो बच्चे सदैव आपका कहना मानेंगे। बच्चों से सदा प्रेम कीजिए, इस प्रकार उन्हें मनुष्य बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि उसमें कोई बुराई ना हो और उनका विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। खेलने कूदने के समय उनमें उत्साह जागृत कीजिए। यदि वे स्वास्थ्यप्रद खेल खेलते हैं तो उन्हें रोकना ठीक नहीं। ऐसे समय उन्हें रोकना उनके बचपन को नष्ट करना है। बहुत से माता पिता हर काम में अपने बच्चों को डांटते हैं और कठोरता का व्यवहार करते हैं, हर समय उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। इससे बालक का कोमल हृदय उदास हो जाता है और उनके मानसिक विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इस समय पैदा हुआ संकोच आयु भर उनका पीछा नहीं छोड़ता। जिस प्रकार आपके मानसिक भाव आपके विचारों द्वारा प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार आपकी प्रेरणा शक्ति से बालक भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। प्रारंभ से ही बालक में आनंदमय और आशाप्रद विचारों का संचार किया जाए और उसके मन पर उनका प्रभाव सुदृढ़ होता जाए तो वह चिंता और अनुत्साह से हमेशा दूर रह सकेगा।

0: रुक, वो सुनाई नहीं देती। वो ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। मधुबन

उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है।

माता पिता की शुभ प्रेरणा का प्रभाव उनके बालकों पर भी पड़ता है। माता लालन पालन द्वारा अपनी शक्ति का प्रभाव बच्चों पर डालती हैं। बच्चे के रोने पर माता जब उसे आश्वासन देती है तो बच्चे को तसल्ली मिलती है। माँ जब प्रेम भरा हाथ बच्चे के सिर पर फेरती है तो उसमें आनंद और उल्लास भर जाता है। आपने अनेक बार देखा होगा कि बच्चों की छोटी मोटी तकलीफें माता के आश्वासन देने मात्र से ही दूर हो जाती है। निश्चित है कि जिन लोगों का स्वास्थ्य प्रायः ठीक नहीं रहता, यह उनके बचपन में पड़े अस्वास्थ्यकर विचारों का ही प्रभाव है। यह बड़े दुख की बात है कि माता पिता, संबंधी अथवा पड़ोसी बालक के मन में यह विचार जमा देते हैं कि शरीर तो बीमार होता ही रहता है। जब बालक के मन में इस प्रकार के विचार घर कर जाते हैं तब कोई न कोई बीमारी उसे पकड़ लेती है और वह उसकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। इस प्रकार उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है और उसकी प्रतिभा का विकास वहीं रुक जाता है। माता पिता को चाहिए कि बालक की रुचि का भली प्रकार अध्ययन कर ही उसे किसी कार्य में लगाएं। माता पिता को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से बालक की प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। बहुत से मनुष्य किसी एक दबी दुर्बलता के कारण अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। यह इसीलिए हो सकता है कि बचपन में इस बात की और विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। बचपन में यदि इन कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता तो ये आसानी से दूर की जा सकती थी। केवल व्यक्ति के योग्य होने से ही काम नहीं चलता, योग्यता का उपयोग करने की सामर्थ्य होना भी बहुत जरूरी है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे अपनी शक्तियां विकसित कर सकें, उन्हें विकास कर सकते हैं। इस प्रकार बालक सुख शांति और सफलता के साथ उन्नति करता चला जाएगा। बहुत से विद्यार्थी कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी आत्मविश्वास जैसे गुणों से दूर ही रह जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी वे डरपोक और निरुत्साही रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेज में जाने से भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि यदि बालक विद्या में बृहस्पति के समान शिक्षित हो जाए तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ होगा। यदि उसमें उत्साह ही न हो और उसे सफलता भी प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में आप पढ़े लिखे बालक को भी अनपढ़ ही कहेंगे। अब समय बदल रहा है और हम समझते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब नव युवक अपनी शक्तियों को पहचान लेंगे और उनमें वह योग्यता उत्पन्न हो जाएगी जिससे वे अपने ज्ञान को कार्य में लगा सकें। उनमें आत्मविश्वास के भाव उत्पन्न होंगे तभी वे अपनी विद्या का सही उपयोग कर पाएंगे। यदि बालक अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता तो उसकी शिक्षा बेकार सिद्ध होती है। जो ज्ञान समय पर काम नहीं आ सके उस ज्ञान का क्या लाभ है। परंतु यदि बालक को यह सिखाया जाए कि उसे अपनी योग्यता पर भरोसा रखना चाहिए तब उसे यह विश्वास होने लगेगा कि वह प्रत्येक कार्य कर सकता है, तब उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक नव युवक को यह सिखाना चाहिए कि वह कोई भी महान पद प्राप्त कर सकता है जिसे अन्य महान पुरुषों ने प्राप्त किया। वह भी प्रभु का ही एक अंश है, उसमें भी उसी प्रकार की दैवी शक्तियां विद्यमान हैं। आत्मा में भी वह दिव्य प्रकाश विद्यमान है जिससे वह सारे संसार को आलोकित करने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार की उत्साहपूर्ण सीख से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होगा और उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होगी। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आरजे श्री और हम स्वास्थ्य को सहज बनाने की इस मुहिम में आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहे हैं जहां पर स्वस्थ रहना आसान है ये समझ में आ रहा है। प्रायः व्यक्ति यही समझता आया है कि स्वास्थ्य एक कठिन चीज है। इसके उलट जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं, प्रकृति के साथ अपने साथ को बनाए रखते हैं, तो कैसे स्वस्थ रहना आसान हो जाता है और बीमार पड़ना मुश्किल हो जाता है। आइए स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसे ही विषयों पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जानवे आने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, आज वहीं से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब सर्वप्रथम तो जब हम प्रकृति चिकित्सा के अनेक आयामों के बारे में बातचीत कर रहे थे तो ये बात समझ में आई कि प्रकृति के तत्वों के साथ अगर व्यक्ति सामंजस्य बना के चलता है तो उसके जीवन में स्वास्थ्य आसानी से लौट आता है या स्वस्थ रहना संभव है। हमने ये बात तो समझी है कि मिट्टी का कितना योगदान है, पानी का कितना योगदान है। अब जब हम इन चीजों के साथ अलग अलग तत्वों की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में या सृष्टि पर जो भी प्राणी है उसके जीवन में सूर्य की एक बहुत ही बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। दिन होता है, रात होती है, तो हम सबकी दिनचर्या सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या सूर्य के साथ हमारे ये जो संबंध हैं इसको हम कैसे समझें? क्या सूर्य भी हमारे प्रकृति चिकित्सा और जो जीवन शैली बताती है उसके अंतर्गत कोई भूमिका अदा करता है, इस चीज को समझा जाए?
1: प्रकृति चिकित्सा का एक मूल सिद्धांत है कि सब रोगों की एक दवा मिट्टी, पानी, धूप, हवा। तो हम लोग ने मिट्टी के बारे में बात, पानी के बारे में बात, आज हम धूप के बारे में बात करेंगे। और जब भी हम धूप के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग सूर्य के बारे में बात करते हैं, सनलाइट के बारे में बात करते हैं। सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है और इसलिए जैसे मिट्टी को, धरा को, धरती को माँ का दर्जा दिया गया है तो सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये सृष्टि जो चल रही है वो सूर्य के प्रकाश की वजह से चल रही है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भोजन नहीं बन सकता। तो वो जो सूर्य ऊपर है, हजारों किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी किरणें हमारी जब धरा पे पड़ती हैं तो वो मिट्टी पानी के साथ मिलके नया अंकुर, नए पेड़ पौधे पैदा करती हैं जिससे हमें भोजन मिलता है। आजकल की परेशानी क्या हो गई है कि हम लोग इंडोर जनरेशन हो गए हैं, मतलब हम लोग अंदर घुस चुके हैं। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि सबसे पहले अपने आप को ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, और अगर आप अपने अंदर में सब कुछ ढूंढ लेंगे तो आपको बाहरी दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिजिकली हमको अंदर नहीं ढूंढना है, हमको बाहर जाना है, क्योंकि हम एक बंद कमरे में सो रहे हैं जहां एक एसी या कूलर या पंखा चल रहा है। फिर हम एक उठते हैं सुबेरे, नहाते धोते हैं और फिर एक बंद गाड़ी में बैठते हैं। उस बंद गाड़ी में बैठ के हम एक ऑफिस में या दुकान पे पहुंचते हैं जो फिर बंद है, या हम दिन भर उस बंद कमरे में काम करते हैं जहां एसी हमको हवा देता रह रहा है, ट्यूबलाइट बल्ब हम लोग को लाइट देते रहते हैं, पंखा हमको हवा देता रहता है। शाम को या रात में हम अपने ऑफिस से या दुकान से या घर से या काम की जगह से वापस उस बंद गाड़ी में बैठकर घर चले आते हैं। अगर बाहर गए तो फिर किसी बंद जगह में बैठकर हम भोजन करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी दुकान में, और फिर हम एक बंद कमरे में वापस सो जाते हैं। तो हमने अपने आप को पूरी तरीके से बंद करके रखा है, और अगर हम अपने आप को खोल लें या अपने आप को थोड़ा सा बाहर ले जाएं तो हम बहुत सी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। और अभी तो हम बंद कमरे, बंद गाड़ी, बंद ऑफिस की बात कर रहे हैं, हमने तो अपने शरीर को भी बंद कर रखा है, पूरा सर पे टोपी, बड़ा सा चश्मा, बहुत विभिन्न तरह के क्रीम, विभिन्न तरह के लेप अपने शरीर पे लगाकर पूरा अपने आप को ढक करके जितना हम अपने आप को बंद कर सकते हैं हमने अपने आप को बंद कर रखा है। तो अगर आपको अपने जीवन को निरोगी बनाना है तो अपने आप को खोलना पड़ेगा। हम सारे लोग दिन में अपने आप को पूरा ढक के चल रहे हैं और शाम के समय हम थोड़े खुले कपड़े पहन के चल रहे हैं, जबकि हमको दिन में भी खुले कपड़े पहनने चाहिए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे शरीर के ऊपर पड़ पाए। हमको सूर्य की गर्मी बहुत कम चाहिए, हमको सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य का प्रकाश मुफ्त में मिलता है। अभी यही कोई कह दे कि सन पार्क बना है वहां जाइएगा लेटिएगा बड़ा फायदा होगा, तो देखिएगा लाइन लग जाएगी। और यही आप किसी को कह दीजिए कि प्लीज बिना बाह की शर्ट पहन लीजिए या घुटने तक के कपड़े पहन लीजिए, आपकी पीठ थोड़ी सी खुली हो कि इसमें धूप लग जाए, लोग ये नहीं मानेंगे। तो सूर्य का प्रकाश हमारे सृष्टि में हमें भोजन देता है और हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से लड़ने लायक बनाता है।
0: डॉक्टर साहब, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो स्कूल में भी जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, वो सभी इस बात को समझते हैं कि भोजन के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। हम फोटोसिंथेसिस की चीजों को सुनते आए हैं कि कैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से भोजन को बनाते हैं, इसका साइंस तो समझ में आता है कि हाँ सूर्य की रोशनी पत्तों पर गिरती है और उसके अंदर से कैसे भोजन बनता है, ये तो सब हम विज्ञान के क्षेत्र में समझ चुके हैं। मगर मनुष्य के शरीर पर सूर्य की रोशनी का गिरना, जब आप कहते हैं कि सिर्फ गर्मी की आवश्यकता नहीं है, उसके प्रकाश की आवश्यकता है, तो ये अपने आप में एक नई बात लग सकती है बहुत सारों को। इस पर थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ये क्या करता है।
1: भैया, आपने अगर फोटोसिंथेसिस की बात की है तो हम फिर क्लोरोफिल की बात करेंगे
0: जी।
1: और देखिए, क्लोरोफिल भी सूर्य के प्रकाश को खींच कर उससे भोजन बनाता है। वहां भी सूर्य के प्रकाश की बात हुई, न कि सूर्य की गर्मी की बात हुई। तो एक उत्तर देखिए भाई, आपको खुद मिल गया कि प्रकाश की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप देखिए, मैं पूरा श्लोक नहीं बोल रहा हूं, बस एक लाइन बोलूंगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि अंधेरे से उजाले की तरफ चलिए। और इस उजाले का मतलब है सूर्य का प्रकाश, न कि डार्क लाइट से कमरे में लाइट जला लिए तो वो हो गया। तो प्लीज आप किसी भी तरीके से आप सूर्य के प्रकाश में अपने शरीर को नहलाने की कोशिश करें। सूर्य, अब हम लोग मतलब नॉर्मल बातें अगर करें कि किसी भी चीज में अगर कीड़ा लग जाता है या किसी अनाज में फफूंदी लग गई या किसी चीज में कीड़ा लग गया, तो घर की दादी नानी और या माताएं ये कहती हैं, अरे जरा इसको थोड़ी देर धूप में रख दो, ठीक हो जाएगा। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश से बैक्टीरिया, कीड़े, सब उस भोजन, उस अनाज को, उस ड्राई फ्रूट को, उस दाल को, उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो अगर वो हमारे शरीर पे पड़ेगा तो हमारे शरीर पे जो भी फंगस, बैक्टीरिया या जो भी चीजें ग्रो कर रही होंगी वो तुरंत मर जाएंगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस समय डिस्कस होती है वो विटामिन डी की कमी, और वो हमको मिलता है सूर्य के प्रकाश से। ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में विटामिन डी पैदा कर देता है, बट सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर में पड़ता है तो जो कोलीकैल्सिफेरॉल है वो ब्रेक डाउन होके हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब होने लगता है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। पहले आप किसी के बारे में ये नहीं सुनते थे कि उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। ये जो चीज 80 साल के लोगों में थी वो अब 28 साल के लोगों में मिल रही। मेरे MBBS के समय हमको सिर्फ ये पढ़ाया गया था कि छोटे बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उनको रिकेट्स हो जाएगा या उनको कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और पहला इलाज जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कहता था कि बच्चों को कपड़ा हटा के थोड़ी देर धूप में लिटा दीजिए, और अब जो बच्चों के लिए कहा जा रहा था अब वही चीज बड़ों के, यंग, नॉट सो यंग, वेरी यंग, आप जिस भी तरह से बोल लीजिए, उन सब में अब सूर्य के प्रकाश की कमी हो रही है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। सूर्य हड्डियों को भी मजबूत करता है और एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर हम रोज सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के ऊपर डाल लेंगे तो हमारा जीवन बहुत स्वस्थ हो जाएगा।
0: ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ, सूर्य के प्रकाश को हम ऐसे अनेक कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, अनाज को साफ करने के लिए, उन चीजों से बचाए रखने के लिए हम ये करते आए हैं, मगर इसका इतना सिंपल इस्तेमाल हमारे शारीरिक प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक हो सकता है। इस चीज को काफी समय से लोग भूल सा गए हैं, और जब आप इसको इस तरीके से समझाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, ये करने की जरूरत है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आज जैसे आप कह रहे हैं कि हम सभी बंद कमरों में रह रहे हैं और ये सब कुछ ऐसा होने लगा है, तो क्या हमें पहले से इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हम एक दिन ये नौबत आ जाएगी कि भाई हड्डियां कमजोर होने लगेंगी और ये सब कुछ, या आज जब हमें ये चीजें समस्या के रूप में आ रही हैं तो क्या अभी हमें वापस वहां लौटना होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज हम इंडोर तो हो गए, हम बाहर कैसे जा सकते हैं, आज तो हमारा कल्चर ही ऐसा हो गया, ऐसे भी कई सारे लोग कहते हैं।
1: इसमें भैया कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिम में दौड़ने की जगह कोई पार्क, कोई मैदान, कहीं दौड़ लीजिए। आप नहीं दौड़ सकते, पैदल चल लीजिए। हमको भैया कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबको सिखाया गया सुबेरे सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। हम लोग बेसिक बातें करें, हम लोग रॉकेट साइंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं भैया। मैं इंग्लैंड में रहा 3 साल और मैं सितंबर में वहां पहुंचा था, तो हर आदमी मुझसे बात किया, ओ यू हैव कम एट द रॉन्ग टाइम। हमने कहा यार, जिस समय मेरा एडमिशन हुआ वही मेरे लिए सही समय था। और फिर धीरे धीरे लोगों ने बात, ओ इट इज सो डार्क, इट इज सो डिप्रेसिंग। मेरा भारतीय दिमाग ये समझ में नहीं पा रहा था कि यार डार्क से डिप्रेशन कैसे हो सकता है। तो सितंबर अक्टूबर के बाद जब और दिन छोटे होते चले गए, और स्पेशली नवंबर दिसंबर में तो 2:30 बजे ही अंधेरा हो जा रहा था, तब पहली बार मेरे दिमाग ने भी फील किया कि ये गड़बड़ है। प्रकाश जब रहता तो कितना अच्छा लगता है, कितनी, आप सोचिए ना, शाम को जब चिड़िया चहचहाने लग रही है इसका मतलब सूर्य अस्त हो रहा है। तो ये सारी चीजें तब हमने फेस करना शुरू किया कि हाँ यार, जल्दी अंधेरा होना भी डिप्रेसिंग है, और इसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप जब ऑफिस जा रहे हो तो कृपया अपनी गाड़ी थोड़ा दूर खड़ा कर लीजिए कि आप चल कर जाए तो थोड़ी सी धूप आपको मिल जाए। आप जब लंच ब्रेक ले रहे हो या आप कोई भी ब्रेक ले रहे हो 10 मिनट के लिए जाकर, तो बहुत धूप का समय हो तब नहीं, बट 2 से 3 मिनट जरा धूप में खड़े हो जाएं। शाम के समय आप करीब 2-4-5 मिनट जरूर खड़े हो जाएं। सैटरडे संडे जिस दिन आप, या किसी दिन आपकी छुट्टी हो, उस दिन 15 मिनट धूप में खड़े हो जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप ही ने जैसा बोला कि धीरे धीरे आदमी अपने आप को बंद करता चला गया, तो अब धीरे धीरे ही अपने आप को खोलना पड़ेगा। कुछ कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको सूर्य का प्रकाश मिले। सूर्य का प्रकाश किसी गोली में नहीं मिल सकता, किसी पैकेट में नहीं मिल सकता, किसी झोले में नहीं मिल सकता, ये आपको खुद जाके लेना पड़ेगा। और सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पे भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश शरीर के साथ साथ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। ये सूर्य का प्रकाश ऐसी चीज है कि ये जो हेल्थ की परिभाषा है, सोशल मेंटल फिजिकल, तो इसमें ये मेंटल और फिजिकल दोनों पे सनलाइट का वो है। और इसमें इंडियन अगर भारतीय आयाम जोड़े तो स्पिरिचुअल भी सनलाइट से है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: ये बात स्पष्ट होता है कि हाँ, जैसे आपने वो उदाहरण दिया कि जहाँ ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर सूरज की रोशनी साल में 6 महीने कम मिलती है, तो वहां पर सूर्य की रोशनी कम होने से लोगों के मनोस्वास्थ्य पर भी क्या असर होता है, लोग कैसे फील करने लगते हैं, ये बात स्पष्ट होती है। आज तो वैज्ञानिक रूप से अनेक ऐसी स्टडीज हुई हैं जहां पर लोग इसके उदाहरण देते हैं कि जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत सारे लोग सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण उनके मन पर उसका क्या असर होता है वो चीज देखने को मिलता है। अब ये बात समझी जाए कि जब ये बात थियोरी में समझ में आ जाती है कि हाँ ये स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है, और आपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात की, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की, भारतीय परिवेश में तो जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे सूर्य को अर्घ देना, ये एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, लोग सदियों से ये चीज करते आए हैं। आजकल हालांकि लोग प्रकृति से काफी दूर हो गए, शहरों में रहते हुए लोग बालकनी में खड़े होकर अर्घ देते हुए भी नजर

0: आसन का है वो एक ग्रुप ऑफ आसन है जिसको सूर्य नमस्कार कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस सूर्य नमस्कार में हर एक स्टेप या हर एक आसन के साथ एक सूर्य के लिए एक श्लोक जोड़ा गया।
1: बिल्कुल।
0: और वो शुरू हुआ ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रानवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्ण नमः, ओम मारिचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सर्वत्रय नमः। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ स्पिरिचुअल स्वास्थ्य की भी बात की गई इसके साथ। अच्छा, अब हम एक बार अच्छाई छोड़कर पहले सूर्य जो हमें नहीं मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश, उससे हमको क्या क्या परेशानी हो सकती है?
1: आपने बड़ी खूबसूरत बात ये बताई डॉक्टर साहब कि कैसे सूर्य नमस्कार में भी हम सूर्य के इन 12 नामों को लेते हैं और हर एक नाम के साथ हम सूर्य नमस्कार करते हैं। वैसे तो ये सूर्य नमस्कार बिना ये मंत्र कहे भी मतलब लोग ऑटोमेटिक भी कर सकते थे, मगर सूर्य के साथ जोड़कर सूर्य की रोशनी में इसे करने की अहमियत को बताया गया और कहां सूर्य के महत्व को लोगों के जीवन में बनाए रखने के लिए से जोड़ा गया है और उसके महत्व को आज व्यक्ति भूल जाता है तो कितने उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। समय कहता है कि यहाँ पे रुकना होगा दोस्तों, बातचीत में और भी प्रश्न है मगर मैं अगली कड़ी में इन प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज आप सबके प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया तो आप सभी श्रोताओं की तरफ से मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों आप सुन रहे कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य रेडियो मधुबन 107.8 FM पर और आज ये बातचीत में स्पष्ट हुई है कि सूर्य यानी सूर्य की रोशनी धूप का स्वस्थ रहना

के लिए कितना बहुमूल्य योगदान है। आजकल हम सभी बंद कमरों में, बंद गाड़ियों में रह रहे हैं, मगर अगर हम सूर्य की रोशनी में वापस लौटते हैं, अगर दिन में थोड़ी देर भी हम सूरज की रोशनी लेते हैं, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सुधार को पाता है, ये विज्ञान कहता आया है। आशा करते हैं कि आज से आप भी ये आदत बनाएंगे कि कम से कम सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठने का, टहलने का अभ्यास आप शुरू करें। फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात, हमारा जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएं कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहाँ देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएँ बीच बीच में, यू नो इट इज़ अ लिटल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं, सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना,
0: व्यूअर,
1: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल। तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ।
0: That's what I'm saying, as an audience also, I was becoming a part of the whole thing.
1: No, as a detached observer, साक्षी होकर हर एक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हर एक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? It will become still. उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? You know, then I will be a creative actor. कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
0: कुछ भी नहीं,
1: उसमें कुछ भी नहीं थी। Did I have the power to say to myself कि irrespective of उन्होंने जो बोला है I can remain stable? No. I said, नहीं, ये तो natural है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था
0: उनके कहने,
1: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल? तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
0: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे वो जज यू नो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
1: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते आज एक दिन? एक दिन नहीं करते,
0: अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
1: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
0: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
1: हाँ, तो एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में. एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील. आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल. यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस. आई कुड बी सेइंग दिस बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग आई एम थिंकिंग लाइक दिस. यू नो, बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे.
0: एक्चुअली
1: सोच तो सारा
0: मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ.
1: बात सोचने की हो रही है. जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में. तो एक घंटा अगर ट्राई करें कि जो है जैसा है everyone is okay, एक घंटा I am not going to judge, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे suck, you know, everyone is, we would say that everyone is sucking my energy like this. So it's not everyone sucking, I am giving my energy
0: out
1: to everyone.
0: Unnecessarily,
1: yeah, I'm giving
0: yes.
1: it out. And after giving it out, I feel empty. यहाँ खाली हो जाते हैं. और जब judgmental हो रहे हैं तो quality of thoughts positive भी नहीं है ज़्यादा. It's more of हर एक की कमियाँ कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा हम देखते. तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी. एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे. तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर, तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है. फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ. मैं यहाँ आई इवैल्यूएट के यहाँ क्या हो रहा है. आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स. व्हाई कैन नॉट आई सी माय थॉट्स?
0: सो मच आउट.
1: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है, तो एक सेकेंड अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती. तो जब बहुत ज़्यादा और चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता. थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू करें.
0: एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से शिवानी
1: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा. एक घंटा सोचेंगे,
0: क्या फिर हम ना सिचुएशन रहे ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा.
1: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
0: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता.
1: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा. सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी
0: ध्यान नहीं
1: देखा नहीं है. तो जब देखना शुरू करेंगे ना, तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन. राइट नाउ वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन. सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग. See, no one should do it unnaturally. Yes, yes. Oh, मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना. आप अपना नॉर्मल चलो, जैसे आप चल रहे हो. सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो. और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके. For one hour, I am not going to create.
0: Yeah, ऐसा सोचें कि वो प्लीज ऐसा करे, because we have to be very, very clear. कि हमें क्या नहीं सोचना है.
1: एब्सोल्युटली. और हमें क्या सोचना है कि वो जो है जैसे हैं
0: अच्छे.
1: इट्स ओके. एक्सेप्ट. एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आई अग्री विद यू.
0: वही मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटैलिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में. मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे. सो अगेन, क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता ये है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूँगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं.
1: यू नो, इट्स नॉट, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स ओनली दैट वी आर डिफरेंट.
0: Yeah, because there's nothing like negative.
1: We are different. मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती, आई पुट देम इन द नेगेटिव. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है?
0: गलत हो गया.
1: नेगेटिव है. लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से. दे आर जस्ट कम्फर्टेबल विद द वे दे आर.
0: फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं शिवानी जो कहा जाता है कि जो सही ही है, यू नो, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए, ये टाइम पे आना, तो इट्स अ
1: सी मर्यादाएं भी कौन बना रहा है. इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहां पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है. हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, वो गाड़ी रुक गई एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या, वो गाड़ी क्यों रुक गई. तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ. नाउ दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट डजंट हैपन हियर. सो एवरीवन हैज क्रिएटेड देयर ओन कल्चर, देयर ओन वे ऑफ लिविंग. तो हम कहेंगे वहां ऐसा नहीं होता. नाउ इट्स नॉट अबाउट वो राइट है या इंडिया में जो होता है वो, दे जस्ट बोथ राइट फॉर देम. बट हम तुरंत जजमेंटल हो जाएंगे,
0: देखा
1: ये राइट है वो वाला रॉन्ग है या ये वाला राइट है. नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट इट्स डिफरेंट. जैसे हम राइट और रॉन्ग उसको लेबल कर देते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है. सी इफ आई से यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी. बट इफ आई से यू आर रॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. So when I create this thought about anyone कि ये different है, it may be कि मेरे से match नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार, लेकिन when I create a thought ये different है, I may not like it, but if I say this is wrong, this is bad, then what energy I send out to you? This is negative energy. This is lack of respect. This is lack of love, and this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree, aap different hai, main different hu, I accept the difference. I don't resist the difference. I accept. Jab hum resist karte hain difference ko, to hum dusre ko apni tarah banane ki koshish karte rehte hain, kyunki humne judgment ye pass ki hai ki main sahi hu, aap galat hain. In between a parent and a child, ye bahut critical hai.
0: Even husband wife, you know.
1: Yeah. Yes. Parent and child, why I said, because parents बहुत ज़्यादा ये authority के साथ हर time हम चलते कि हम सही हैं, बच्चे गलत हैं. See, again, intention बहुत अच्छी है. कई बार intention बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मतलब उनको empower करना है ना, लेकिन जगह हम ये energy भेजते हैं कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको empower नहीं कर रहे, हम उसको actually disempower कर रहे हैं.
0: अगर कोई ड्रग्स ले रहा है या स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, हाउ डू वी टेक इट, यू नो, दिस इज अगेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फर्स्ट थॉट व्हिच विल कम इज दैट ही नीड्स टू चेंज, ही नीड्स टू स्टॉप.
1: ही नीड्स टू चेंज इज अ डिफरेंट एनर्जी एंड ही इज बैड इज अ डिफरेंट एनर्जी.
0: Actually, I consciously tried to be, not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, this is wrong.
1: Yeah, this, अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये, you know, this kind of energy.
0: और हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, you know, it's like, forget about, वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था.
1: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिम्युलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो, समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, एंड ये स्टिम्युलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माई पेन, सबसे मुझे क्या मिला, आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
0: rejection,
1: हो, रिजेक्शन मिला. मैंने एक्चुअली वो लेना इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी. अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीज़ों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीज़न जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज़्यादा बुरा है. ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है. तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड. जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करें, एक स्टेप पीछे जाएं. ये स्टिम्युलेंस छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम. एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है. तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजें कि आप गलत हो, इफ़ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट. हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है. ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है. आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए. आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर. अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा. और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको
0: और
1: छोड़ दो.
0: उससे भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है. एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप. यस,
1: सो वन नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
0: तो आई एम नॉट बैड,
1: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट. आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
0: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग.
1: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस. तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं. आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग. आई क्रिएट दैट

0: थॉट. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं. आप क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
1: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
0: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना. जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ. एंड ये स्थिति में जब आप पहुँचते तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस. तो साइलेंस है, एक तो यहाँ से साइलेंस और एक है यहाँ साइलेंस. तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे. कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट से नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल. लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस. ये एक्सपीरियंस करना है. क्या होता है नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट. दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड. ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है उस पर ये वेव्स आते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. द 25 टू 30 थॉट्स
1: पर मिनट
0: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में. इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड के, नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में. और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माई प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी
1: It's all waste, actually. maximum times, you know.
0: तो उसमें कई thoughts बहुत powerful, positive होते, कई negative होते हैं, गुस्सा, resentment, चिंता, कई necessary होते हैं कि ये करना है, आज ये जान, और बहुत सारे waste होते हैं. Waste मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कंफर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हैं, कंटेंटेड हैं. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, तो कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज यू नो गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ तो वो ठीक हो गया. से आई एम वेरी हैप्पी, यू नो माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन हम इन सारी चीज़ों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाती है.
1: तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम से वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
0: या दैट्स व्हाई. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं एक्चुअली. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ यू नो इट्स लाइक अ ग्लास. आई एम गोइंग थ्रू लाइफ टूडे विद द फोकस कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज इसको भरो. कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. जस्ट चेंज द फोकस वन डे कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना,
1: इसको बाहर नहीं जाने देना,
0: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए. क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
1: दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
0: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया
1: तो जब वो नहीं होगी तो आप.
0: हाँ, और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है और फिर हम दोनों
1: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट यू नो
0: इट गिव्स अ वेरी
1: पिट ऑफ माय स्टमक ऐसे कुछ फील होता है चाहे डर लग रहा है चाहे बहुत खुशी हो रही हो
0: इन दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई दे
1: शरीर पर
0: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल आपकी पल्स रेट एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है. Physiology पर तो दिखाई दे रहा है ना. तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा? Situation specific नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी stability को नहीं खोना है इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूं मैं कुछ नहीं कहूं किसी को बच्चे ने कुछ गलत किया मैं कहूं या नहीं कहूं कहें लेकिन दो चॉइसेस हैं या तो गुस्सा होकर कहें डिस्टर्ब होकर कहें या फिर स्टेबल रहकर करें वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल वी थॉट रिएक्ट करना गुस्से से बोलना डिस्टर्ब होना दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी सुनो सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग आपको काम करवाना है लोगों से आप काम करवाओ डिस्टर्ब हुए बना और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24 आवर एक्सपेरिमेंट 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस आज एक दिन स्टेबल और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक ट्रैफिक में अटके ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है नहीं किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया कैसे चलाते हैं पता नहीं इनको लाइसेंस कौन दे देता है ऐसे ही है ये तो ये है सारी सारा दिन सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है सब कुछ करना है सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना स्टेबल रहना एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव डेफिनेटली
1: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है एक्चुअली कितना कुछ और करने के लिए करती है तो ये हम अपने साथ करेंगे ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं खुला निमंत्रण हर बार की तरह तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000 9999-344-555 9999-344-666 9873-666-555 हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति एट बी के मेल डॉट ओ आर जी सीजा शिवानी जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है ट्राई किया है उसे समझें लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें
0: कम्फर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को consciously create karne ka prayas kare let me look at myself the creator the master the powerful being I the creator of every thought has a choice mere aas paas chahe kuch bhi ho jaye I choose stability chahe koi kuch bhi kahe I choose stability और जैसे ही I remain stable situation परिवर्तन हो जाती है एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता ये मुझे डिस्टर्ब करते अपने आप को उनके सामने देखिए वो वैसे ही है वैसे ही बोल रहे हैं वैसा ही व्यवहार लेकिन अपने आप को देखें आई एम स्टेबल उनके बोल उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते आई चूज माई रिस्पॉन्स because I am the powerful being.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, आज 20 मई 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो विशेष राष्ट्रीय शके 1948 30 गति 6 अधिक ज्येष्ठ बुधवार आज है। विक्रम संवत 2083 अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी बुधवार अद्रा आज है। इस्लामी हिजरी 1447 दो जिलहिज बुध अद्रा आज है। इसके साथ ही आज विनायक चतुर्थी है और सुमित्रानंद पंत इनका जन्मदिन भी है। चलिए बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। बुधवार का दिन है तो गणेश जी की एक सुंदर आरती आपके नाम, सुनते रहो मुस्कराते रहो। आइए, इस बीच एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हेलो जी नमस्कार, भाऊ जी नमस्कार। क्या आपने कार्यक्रम का है, हमें सुन सुन करके हम मजा ले रहे हैं। हम सुबह के आपको भजन वगैरह चल रहे हैं उसको सुन करके मजा ले रहे हैं।
0: क्या
1: और
0: बात,
1: आपकी आवाज सुनते ही हमारे को ऐसे दिल दिल गुदगुदिया कर जाता है। कभी मिला, कभी मिलूं और कभी बात करूं। उस बात के अंदर एक मेरा भजन है सर, कबीर वाणी का है।
0: जी जी जी।
1: गया मूल धर्म नहीं प्राणी, मुखड़ा क्या देखे दर्पण माही, दुनिया है कागज की नैया। ये प्राणी, ये गाना है सर, ये हो जाएगा तो मेरा दिल इतना खुश हो जाएगा कि बाद मुझे कुछ और सुनने वाले और सुनाने वाले भी इतने दिल के बोले और खुश हो जाएंगे। नमस्कार सभी प्राणियों को, मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी साथियों को, सभी आर्यों को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत ही सुंदर बातें आपने बताई और आइए आगे बढ़ते हैं। और चलिए आज इस मूल मंत्र से शुरू कर देते हैं। दया धर्म का मूल है। निश्चित तौर पे ये एक ही शब्द ही आपके जीवन को अध्यात्म बना देता है, आपके जीवन को सुंदर बना देता है, आपके जीवन को संपन्न कर देता है, आपके जीवन को संत बना देता है, एक ये आपके जीवन को साधु बना देता है सच्चा, और ये आपके जीवन को मास्टर बनाता है। दूसरों के लिए आप पथ प्रदर्शक बनेंगे, तो ये मूल मंत्र है, दया धर्म का मूल है आपके लिए। अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, थोड़ी देर के लिए रेडियो का थोड़ा सा काम चल रहा था, तो शायद थोड़ा सा विलंब हुआ होगा आपको सुनने में जब ये चीज़ें चल रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बात अच्छा है सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शांति। सुरेश भाई बोलता हूँ।
0: सुरेश जी, स्वागत है आपका।
1: बस हमने कॉल किया था लेकिन आप समझ गए, रेडियो बंद था।
0: हाँ, इसीलिए तो मैंने उसको सेटिंग करके कर दिया।
1: तो समझ गए, चलो कि आपने कॉल किया लेकिन आपने रेडियो तो शुरू कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा दिन है, गणपति जी का दिन है, तो बस हम भी अच्छा गाना सुनेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा।
0: जी जी,
1: माता जाति पार्वती पिता महादेवा। तो आज बुधवार है, गणपति जी का दिन है, तो गणपति जी के ही गाना सुनेंगे तो अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सभी मित्रों को आपको आज के दिन की शुभकामनाएं सर।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: सब हमारे मित्र बहुत अच्छे होंगे। हमारे कंचन भाई भी कई दिनों से नहीं जुड़ रहे, पता नहीं क्या।
0: कंचन भाई भी नहीं जुड़ रहे, सुभाष जी भी जो जलगांव से फोन करते थे उनका भी कुछ पता नहीं। इनको फोन करके पूछो एक बार।
1: नहीं जुड़ रहे हमारे सुरेश भाई धाने वाला, धाने वाले है, वो भी नहीं जुड़ रहे।
0: वो शायद जुड़ गए थे कल, एक दो दिन से जुड़ रहे सुरेश जी।
1: चलो अच्छा है, आज सभी मित्रों को भी आज के दिन की शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है
0: ठीक है, ओके ओके। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और चलिए बात करते हैं अब आज के विशेष दिन पर। जैसे कि मैंने कहा, विनायक चतुर्थी है और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। और विशेष महाराष्ट्र में आज के दिन बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और संकष्टि को बड़ा शुभ माना जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। जैसे एक बहुत ही सुंदर गीत आरती सुनना चाहते हैं सुरेश जी, और मैं बताना चाहूँगा सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। जी हाँ, हिंदी के एक ऐसे छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत। नए युग के परिवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए सुमित्रा नंदन पंत एक ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्राकृतिक चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों जैसे वेशभूषा में रहकर प्राकृतिक केंद्रित साहित्य लिखने वाले थे। जन्म के मजहब 6 घंटे के भीतर उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। पंत लोगों से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर ही उन रचनाओं को लिखा। हिंदी साहित्य के विलियम वाइड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। और पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्राकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी बताया गया है। तो साथ ही प्राकृति के मनुष्य संत के बीच में टकराव, हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंदो, उनकी ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजरे और हिंदी कविता का एक युग जैसे समाप्त हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ एक बहुत ही सुंदर गीत की तरफ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, समाचार डाउनलोड हो चुके हैं, अब सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं। सुनते रहो मस्कर्रात
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
3: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
5: India is accelerating towards universal health coverage.
6: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
5: हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
6: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और का इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको का अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
8: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
9: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
10: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
11: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा बच्चों और बुजुर्गों के जीवन

0: को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य। गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुनाए थे, अंतर आत्मा तक शुद्ध हो जाता है, ऐसे सुंदर गीत आप अगर बार बार सुनते हैं। चलिए बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, इनकी शुरुआती जीवन के बारे में। कवि के बचपन का नाम गुस्साई दत्त था और विशेष स्लेटी छतों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों का चहचहाट, सर्विस पगडंडिया और बांझ बुरांश, चीड़ के पेड़ों के बयार व नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन सी परसी घाटी व उसके ऊपर हिमालय के उमंग शिखरों पर दादी से सुनी कहानियाँ, वो शाम के समय सुनाई देने वाली आरती का स्वर, लहरियों ने गुस्साई दत्त को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया। साथियों, ये इसलिए वर्णन किया कि उनका जो एरिया था वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का ये सारा जो है शिमला, जिसको हिमाचल, ये सारी जगहों के अंदर जो है जो सुंदर मनोरम दृश्य है, इस तरह से इनका था। क्योंकि इनका जन्म ही एक ऐसे जो है उत्तराखंड में हुआ और कैसोनी में, जहाँ पर इस तरह के सुंदर जो चीज़ें हैं, प्रकृति की बहार है, तो उन सारी चीज़ों को देखकर कोई भी कविता कर सकता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जैसे आत्मा को कविताओं का महारत हासिल हुआ, इसलिए प्रकृति की यही रमणीय इनकी माँ बन गई। प्रकृति के इसी ममतामय छाँव में बालक गुस्साई दत्त धीरे धीरे सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से कागज में उकेरने लगा। पिता गंगा दत्त उस समय कैसोनी चाय बगीचे के मैनेजर थे। उनके भाई संस्कृत व अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, हिंदी व कुमाऊनी में कविताएं भी लिखा करते थे। यदा कदा जब उनके भाई अपनी पत्नी को मथुराखंड से कविताएं सुना करते थे तो बालक गुस्साई दत्त किवाड़ की ओट में चुपचाप सुनता रहता और उसी तरह के शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने का प्रयास भी करता। बालक गुस्साई दत्त की प्राइमरी तक की शिक्षा कैसोनी के वर्नूल स्कूल में हुई। इनके कविता पाठ से मुग्ध होकर स्कूल इंस्पेक्टर ने इन्हें उपहार में एक पुस्तक दी थी। 11 साल की उम्र में इन्हें पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा के गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया गया। कैसोनी के सौंदर्य व उनका एकांत का वातावरण और बड़ा ही सुख वैभव से होने लगी इनकी पालना उस समय, और अल्मोड़ा की खास संस्कृति व वहाँ के समाज के जो चीज़ें थी वो सुमित्रा नंदन पंत को एक प्रभावित करने लगा। सबसे पहले इनका अपना ध्यान नाम पर गया, जो इनका नाम था गुस्साई दत्त, जो अच्छा नहीं लगता था उन्हें, और उन्हें लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम गुस्साई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन कर लिया खुदी। कुछ समय बाद नेपोलियन के युवा अवस्था के चित्र से प्रभावित होकर अपने लंबे व घुंघराले बाल रखने शुरू कर दिए और ये आपकी स्टाइल बन गई। और इस तरह से अल्मोड़ा में आप जो है साहित्य संस्कृति गतिविधियों से जुड़े रहे और धीरे धीरे जो है आप एक अच्छे कवि और एक अच्छे लेखक बनकर लोगों के बीच में एक नाम हो गया, सुमित्रा नंदन पंत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ, जो इस प्रकृति की छटा को बिखेरता हुआ एक गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो ऐसा लगेगा मानो कि भाई वो जगह पे हम भी पहुंच गए हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको सीधे एक ऐसा गीत सुनाऊंगा जिससे आप सीधे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी और मनोरम दृश्य के बीच में पहुंच जाएंगे।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बड़ा प्यारा संगीत आपने सुना, शिव हरि का। लता मंगेशकर, बबला मेहता ने इसे गाया था। श्रीदेवी और ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था चांदनी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी आप सुन रहे थे। चलिए, बातें हो रही थी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, पर देश के आज़ादी के संग्राम में गंभीरतापूर्वक इनका ध्यान 1930 के नमक सत्याग्रह के समय अधिक केंद्रित होने लगा। और इन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कलंकार के गांव ग्राम में जीवन के अधिक निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। और उस ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि जो संवेदना हृदय में अंकित होने लगी, वाणी देने का प्रयास उन्होंने युगवाणी 1938 में लिखा और ग्राम 1940 में। यहाँ से उनका काव्य युग के जीवन संघर्ष तथा नई चेतना का दर्पण शुरू हो गया। और स्वर्ण किरण तथा उनके बाद की रचनाओं में उन्होंने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य को वाण्य न देकर व्यापक मानवीय संस्कृति तत्व को अभिव्यक्ति दी, जिनमें अन्य प्राण, मन, आत्मा आदि मानव जीवन के सभी स्वरों को उन्होंने संयोजित करना शुरू कर दिया और फिर काव्य एवं साहित्य की साधना में गहरे उतरने लगे। और ऐसा बताया जाता है, साहित्य सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक हिंदी साहित्य के एक युग परिवर्तक कवि माने गए। भाषा को निखार और संस्कार देने वाले विशेष उनकी जो अतिरिक्त नवीन विचार व भावों को समृद्धि देते थे जब वो लिखते थे। पंत सदा ही अत्यंत सशक्त और ऊर्जावान व्यक्ति और कवि रहे। सुमित्रा नंदन पंत को मुख्यतः प्रकृति का कवि माना जाने लगा, लेकिन पंत वास्तव में मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना की मिलन थे, एक खुशहाल कवि थे। तो रचनाओं को देखा जाए, कभी आप मौका मिले तो इनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़िएगा और निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक लंबा जो है साहित्यिक का पूरा हिस्ट्री इनका है और बहुत सारी किताब इन्होंने लिखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, ये बंधन तोड़। चलिए इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और व्यक्तित्व के बारे में, बातें करते हैं पीरू सिंह के बारे में। जी हाँ, पीरू सिंह एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको आज भी याद किया जाता है। झुंझुनू जिला राजस्थान के रहने वाले और भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक, कश्मीर घाटी के युद्ध में सक्रिय रूप से जूझते हुए उन्होंने पीर कांति और लेडी गानी ठिकानों पर अपनी फतेह हासिल की थी। और 1948 के समय में दारापारी के युद्ध में पीरू सिंह ने वीरगति प्राप्त की। उनके वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे पीरू सिंह का जन्मदिन है, तो उनको रेडियो मधुबन करता है सलाम। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM। पीरू सिंह के बारे में अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद पिता के साथ खेती बाड़ी में लग गए थे। वह एक संपन्न किसान परिवार में जन्मे थे और खेती में पीरू सिंह ने अपनी रुचि दिखाई और पिता की भरपूर मदद की। किसानी का कार्य अच्छी तरह से सीख लिया। किसानी के अतिरिक्त कई प्रकार के साहसिक खेलों में उनका बड़ा मन लगा रहता था। तो शिकार करने तो वो बचपन से ही शौकीन रहे और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो कई बार घायल भी हुए। फिर धीरे धीरे वो भी समय आया 1936 को पीरू सिंह ने फौज में कदम रखा और पंजाब में ट्रेनिंग के लिए उन्हें भेजा गया। फिर मई 1937 में पंजाब में नियुक्त कर लिया गया। फौज में आने के बाद पीरू सिंह के चरित्र में आश्चर्यजनक बदलाव आ गया। स्कूल में उन्होंने पढ़ाई में जो मन नहीं लगता था, इसीलिए खेती का काम और फिर खेल में रुचि रखा उन्होंने। लेकिन यहाँ आने के बाद, फौज में आने के बाद, फिर से उनकी पढ़ाई की तरफ और चरित्र की तरफ काफ़ी जो है गंभीर हुए। और कुछ ही वर्षों में उन्होंने इंडियन आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन सफलतापूर्वक पास कर ली। फिर उनकी पदोन्नति हो गई और 1940 में 17 अगस्त के दिन लायंस नायक के रूप में उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। इस दौरान उत्तर पश्चिम सीमा पर युद्ध में भाग लेने के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। 1941 में वो नायक बनाए गए और 1941 के सितंबर महीने में शिक्षा के बल पर ही पंजाब रेजिमेंट सेंट्रल में इंस्पेक्टर बने। अक्टूबर 1945 में कार्य करते रहे। फरवरी 1942 में हवलदार के रूप में पदोन्नति हुई। फिर कंपनी हवलदार मेजर बन गए और उनकी तरक्की का ये रुझान हमेशा ये बताता रहा कि पीरू सिंह एक कर्मठ, बहादुर और जिम्मेदार फौजी है। और फिर बात आती है जब 1947 और 48 के बीच में जम्मू कश्मीर का मामला, तब उनके पीछे ब्रिटिश राज्य द्वारा 3 जून 1947 को दी गई वो घोषणा थी कि जो देश के विभाजन के साथ साथ की गई थी। दरअसल वो एक चाल थी जो ब्रिटिश राज की कूटनीति से संपन्न थी, वो भी तब जब वो भारत को आज़ाद करने का निर्णय बकायदा घोषित कर चुके थे। ब्रिटिश राज्य ने प्रस्ताव किया था कि देश के विभाजन के बाद अखंड भारत की सभी रियासतें या चुनने के लिए स्वतंत्रता है और भारत में रहने चाहते हैं या पाकिस्तान में जुड़ना चाहती हैं, ये फिर भी उन्हें स्वतंत्र रहना ही पसंद है। इनमें से जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं उनमें महाराजा हरि सिंह भी थे, जिनका राज्य जम्मू कश्मीर में था, और उन्होंने निर्णय करने की प्रक्रिया में जनमत जुटाना पसंद किया, जिसके लिए उन्हें कुछ समय चाहिए था। तो इस तरह की जो चीज़ें घटी वहाँ पर बड़ी मुश्किलें आई और इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचा और जान माल की जो नुकसान है वो हुआ। और पीरू सिंह ने अपनी जो है इस युद्ध के बीच में एकमात्र योद्धा रहे जो बहुत ज़्यादा दिल व जान से लड़ाई करते हुए, यकायक उनके सामने जब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़े गोलीबारी के बीच में, दुश्मनों से बचते बचते आगे निकल गए और यकायक दुश्मन के ऊपर ये आ धमके और पता चला कि पीरू सिंह का ग्रेनेड अपने काम कर गया था। और ठीक इसी समय पीरू सिंह ने भी गोली को झेल लिया और फिर वीरू सिंह ने अपनी बहादुरी भरे कारनामा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन वो अपनी साथियों
के आगे एक जिंदा मिसाल छोड़ गए। अकेले दम पर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, हिम्मत के बल पर भी नतीजा अच्छा दिखाया जा सकता है। युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन दूसरों को हिम्मत, बहादुरी और सूझबूझ से हवलदार मेजर पीर सिंह ने मोर्चा संभाला। उसके लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर नई किरण। 9:45 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, सुनते रहो मुस्कुराते।

जिंदगी कैसी है सहेलिया। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अभी आनंद फिल्म का। निश्चित तौर पे आप सभी को अच्छा लग रहा है और ये राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया किशोर दा का गाया हुआ गीत आप सुन रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के दिन की विशेष बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। और हमारे एक मित्र हैं जो रेडियो पर अलग अलग प्रोग्राम देने के लिए कभी कभी आते हैं, तो उन्होंने भी कॉल करके आप सभी को बड़े प्यार से याद किया है। और चलिए, आज के दिन जन्मे उन लोगों में से कुछ नाम है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। और ये यहाँ पर हैं, बहुत ही पॉपुलर हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत, 1900 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ और जिनके बारे में हमने आपको बताया। भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक पीरू सिंह का भी जन्मदिन आज है, 1918 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही बात करें लोकसभा अध्यक्ष, छठवीं लोकसभा के अध्यक्ष गोदे मुरारी, इनका जन्मदिन भी आज है, 1926 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ बात करें सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री गो चोक टोंग, 1941 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और चलिए, आशा करूँगा कि इनके बारे में आपको नहीं बता पाया, लेकिन फिर कभी मौका मिले तो बताऊँगा। और फिर भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा का भी जन्मदिन आज है, 1977 में इनका जन्म आज के दिन। तो जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और अच्छा आपको लगा हो तो ज़रूर मैसेज करके हमें बताइएगा। और जीवन में खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको खुश रहना। जब आप खुश रहते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, जब आप मायूस हो जाते हैं तो चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को खुश रखिए, और खुश रहने के लिए आपको सिर्फ खुशी की बातों के बारे में जानकारी हासिल करना है और उस पर चिंतन करना है। तो चलिए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए जाते जाते खुशी भरा ये गीत आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: सुबह का समय तब बनता है

खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। विचार पर करेंगे विचार और नुस्खों का देंगे जरूर साथ। खुशनुमा जीवन की करेंगे बात तो नई नई व्यंजन भी बनाएंगे साथ। और प्रश्न पूछने वाली हूँ आज, प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। तो आइए सुनते हैं कि पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना एक कला है। लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था। उसका नाम था मिडास। धनवान होने पर भी वे संतुष्ट बिल्कुल नहीं था। उसे पैसे और सोने का बहुत ही अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई। वह जाग उठा। उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठ करके राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो, मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजा की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर के सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न ही पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली हुई शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप ये शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर के परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। छाती का दर्द हो, पसली का चलना हो, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो बहुत ही अच्छा आपको नुस्खे देने वाली हूँ कि अजवाइन एक चम्मच आप 250 ग्राम पानी में उबालिए, ठीक है। एक चौथाई भाग रह जाए फिर आप इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में दो बार इस तरह आपको पीना है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द खत्म हो जाएगा और काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नुस्खा है, फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अजवाइन एक चम्मच 250 ग्राम पानी लीजिए और उसमें डाल करके उबालिए, फिर एक चौथाई रह जाए तो इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में इस तरह आपको 2 बार पीना है, ठीक है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द ठीक हो जाएगा और ये काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन तक लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। अगर आप 6 महीने से लेकर के 12 महीने के आयु वाले छोटे बच्चे को ठंडे मौसम व ठंडी हवा के कारण सर्दी लग जाए, छाती में कब बोले, छाती में दर्द हो या पसली चले, तो आधा कप पानी में 10-12 दाने अजवाइन के डाल करके उबालिए। बड़ों के लिए आपने सुना है, अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ, 6 महीने से 12 महीने वाले जो साल भर के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। 10-12 दाने अजवाइन के डालिए और उबालिए। आधा रहने पर इसे कपड़े से छान लीजिए और ये अजवाइन पर काढ़ा, थोड़ा सा ये जो अजवाइन का काढ़ा बनाया है, थोड़ा सा गरम गरम पर सहता सहता, ऐसे नहीं कि एकदम गरम, बच्चा बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए सहता सहता एकदम नवसेका हो जाए ना कि बच्चे को अब पिलाने की स्थिति में है ये काढ़ा, तब पिलाइएगा। गरम गरम एकदम जलता हुआ नहीं देना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे उषा दीदी ने कहा है कि गर्मा गर्म देना, अरे भाई अब बड़े तो हम पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म, चाय दूध कैसे पीते हैं, गरम गरम पीते हैं ना, इस तरह काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं, इसलिए बच्चों को बच्चे के हिसाब से नवसेका देना है, दिन में 2 बार, ठीक है, और रात में सोने से पहले देना है और सुबह देना है, दिन में 1-2 बार दे सकते हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरह बच्चों को भी सर्दी जुकाम या पसली, छाती में दर्द जो भी है, उसमें आप इस अजवाइन के काढ़े को दे सकते हो। साथ ही अजवाइन का काढ़ा यकृत, तिल्ली, हिचकी, वमन, मिचली, फिर खट्टी डकारे आना, पेट की गुड़गुड़ाहट, इन सभी समस्याओं में भी ये फायदा करता है। तो कहते हैं ना कि एक वस्तु और फायदे अनेक, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। अगर दमा है, दमा की शिकायत है, तो सुहागा का फुल्ला और मूलहटी को अलग अलग खरल या फिर इसको कूट पीस करके कपड़ छन कर दीजिए और मैदे की तरह बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी बोतल में कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। बस सांस खांसी जुकाम के ये सफल दवा है। अब इसको आप कैसे 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गर्म जल के साथ लेना है, ठीक है। बच्चों के लिए आप 0.5 ग्राम माने रत्ती भर की मात्रा आप आयु के अनुसार दे दीजिए। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े हैं तो मात्रा को बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो रत्ती भर ही दीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि सुहागा का फुल्ला और मूलहटी, इनको अलग अलग खरल या फिर खरल में बांटिए या हमारदस्ते में कूट पीस करके कपड़ छन करके मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख दीजिए। बस सांस खांसी जुकाम इन सब के लिए ये सफल दवा है। लेना कैसे है जो आपको बता रही हूँ कि साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गरम जल के साथ लीजिएगा। और बच्चों के लिए एक रत्ती, ठीक है, मात्रा आयु के अनुसार इसी तरह देना है। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे ही नुस्खे फायदेमंद है और आप चाहो तो आजमा सकते हो। अब आइए ले लेते हैं एक अल्प विराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न भी पूछूंगी, खुशनुमा जीवन की बातें भी आपके साथ करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: माता रानी कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि गरीब लोगों पर अक्सर हम छिटाकसी करते, हीन भावना से देखते, उनकी मजाक उड़ाते हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि अगर चार जनों के बीच कोई गरीब रिश्तेदार, कहते हैं ना चार जने रईस बैठे हुए होते और कोई गरीब रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है, तो उसको ऐसे नकारने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं नहीं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना ना, ये तो बहुत दूर से है। भले सगे भाई भी होगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो दूर से भाई है, हमारा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मतलब गरीब लोग इतने आपको ऐसे लगते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को अपने इंसल्ट महसूस होती है कि मेरा रिश्तेदार इतना गरीब है तो मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने इसके साथ रहूं। अंदर भले वो काम लेंगे, अंदर ही अंदर उनसे कहेंगे आपसे, और देखिए आप देखिए गरीब लोग जल्दी से आपकी मदद करेंगे, पैसे वाले मदद नहीं करेंगे। फिर भी पैसे वालों के पीछे सभी दीवाने होते हैं, उनके गुणगान करेंगे बिना कारण, उनकी तारीफ करेंगे। और गरीब भले आपकी मदद करता होगा लेकिन चार जनों के बीच में खुल करके उसके आप तारीफ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हेलो।
4: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। कुपाराम जी बोल रहे हैं?
4: हाँ जी कुपाराम।
3: हाँ जी कुपाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
4: प्रश्न तो आपका है वो शरद पुनमारी है
3: जी, चलिए हम जवाब जरूर देंगे, सही है या गलत आपको इंतजार करना पड़ेगा जी।
4: गरीब पहली बात पे थोड़ा ये उल्लेख करना, वास्तव में गरीब किसको मानेंगे? और मेरे यहाँ कई भी मांगने वाले जो आते हैं ना
3: जी,
4: उनके मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको हाँ सरकार राशन दे रही है
3: जी,
4: वो राशन तो यहाँ किराने की दुकान में आके गेहूँ बेचते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा,
4: मांग के खाते हैं
3: जी।
4: मेरे पास कभी आते मैं पूछता हूँ, मेरे को बीड़ी पीते हो? जगह हाँ
3: जी।
4: तो मैंने कहा आज तो कुछ देता एक दो रुपया, लेकिन आज नहीं दूंगा जी, क्यों? बीड़ी छोड़ के आना मैंने
3: जी।
4: अब उसको बीड़ी की क्या जरूरत है
3: जी, अब गरीब है तो बीड़ी सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। सही कहा,
4: 2 रुपए जिनकी पीता है ना
3: जी,
4: 20 साल के अंदर 54,000 रुपए होते हैं उसके
3: जी। क्या बात,
4: जब वो भीख मांगने वाला बीड़ी पीता है
3: जी।
4: अच्छा उसको बोलेंगे कि थोड़ा धंधा करो, मजदूरी चलो, तो वो कभी मजदूरी नहीं करेगा वो
3: जी,
4: क्योंकि उसको एक तो आदत पड़ गई है मांगने की
3: जी।
4: मानता हूँ गरीबी है, ऐसी बात नहीं, मजबूरी में भीख मांगता है तो वो बरोबर है
3: जी,
4: लेकिन जब उसे समझ आ जाएगी फिर तो उसको भीख मांगना बंद करना चाहिए, फिर धंधा मजदूरी करना पड़ता है
3: जी।
4: हाँ
3: जी,
4: मेरा ये विचार था
3: जी।
4: अच्छा दूसरी बात ये रही, अब वो एक सुबह उठ के आता है तो वो स्नान करके क्यों नहीं आता, जब पानी का तो पैसा लगता नहीं है
3: जी। बिल्कुल सही कहा आपने,
4: मेरे हिसाब से उनको गरीब को थोड़ा, ये गरीब जिसको मानते हैं उनको थोड़ा विचार देना है कि वो भीख ना मांगे, वो सफाई से रहे
3: जी,
4: तो अपना विचार बदल जाएंगे
3: जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत आभार कुपाराम जी
4: आपके,
3: आपके इन विचारों ने मुझे भी कुछ बातें याद दिला दी है, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए गरीबी मतलब गरीब किसे कहते हैं, कोई दिल से होते हैं तो कोई वो नेचुरल गरीब होते वो बात अलग है, वो खुददारी से जीवन जीते, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, खुददारी से वो अपने रोजगार करते रहते, छोटा मोटा जो भी उनको मिला है मजदूरी करके पेट भरते, लेकिन हाथ नहीं फैलाते। और जो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हाथ फैलाने की आदत हो जाती है, वो उनके कितने भी सरकार मदद करे लेकिन वो मदद उनको मतलब लेना ही नहीं आती है, ले लेते। जैसे कि कुपाराम जी ने बताया कि राशन से जो उनको अनाज मिलता है बेच देते हैं, थोड़े से 2-4 रुपए दुकान वाले ज़्यादा दे देते तो उस लोभ में बेच देते हैं, और भले बेच करके वो सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शराब के भी आदि होते हैं, बहुत सारे गरीबों को देखा है शराब के भी आदि होते हैं, लेकिन उनको वही जीवन अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन की टीम कभी आपने सुना भी होगा, पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि हमारे आबू के अंचल में ही कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको जैसे कि कुपाराम जी ने कहा ना कि वो गंदे रहते हैं, नाना तो कम से कम हैंडपम्प लगे होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, तो हमने देखा है कि उन गरीब बच्चों के घर के बाहर ही हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन वो स्नान ध्यान नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं, और कपड़े तो देख लो कि क्या डिज़ाइन है क्या कलर है समझ में ही नहीं आता। तो उन बच्चों को नहलाना धुलाना सब सिखाया, कपड़े धुलाना भी सिखाया। उन बच्चों का कहना था कि उनकी माता क्या करती है, कपड़ों को जला देती है, 8-10 दिन पहने रहते हैं, फिर उन कपड़ों को जला देती, फिर मांगने चले जाते हैं, और लोग देते भी हैं, क्योंकि अब बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट बन जाती है, तो वो फिर इस तरह गरीब बच्चों को दे देते हैं, तो उनको नए नए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, और कीमत तो उनको पता नहीं, क्योंकि खरीदते हैं पैसे दे करके खरीदते हैं, तो उस चीज़ की कीमत नज़र आती है, और भीख में मिल गई ना, दान में मिल गई, उस चीज़ की क्या वैल्यू। तो उन बच्चों को उस वैल्यू का एहसास कराया कि आपकी माताएं जला देती है जाने दो, लेकिन आपको खुद को नहा धो करके स्वच्छ होकर के पढ़ने के लिए आना है, कपड़े धुलाई करके आना है, तो बच्चे अच्छी तरह आने लगे। लेकिन माता पिता की आदत है ना, कुछ पिता लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कचरे बीनते हैं उसमें से 50-60 रुपये वो कमा लेते हैं पूरे दिन के, और पिता लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं, ऐसा भी हमने इन आँखों से देखा है, और उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह आप क्यों खराब करते हो। उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गार्जियन के तौर पर, लेकिन नहीं समझते हैं ना, वो बदलना ही नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों को, उनको ऐसे कि बस 50-60 रुपये वो, फिर 50-60 रुपये उनकी बीवी कमा के लाती है कचरा बीन करके, 100-150 रुपये आ गए हो गए, आप पूरे दिन का आराम से गुजारा चल जाएगा, इससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए ये भी सही है कि जानबूझकर के लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के भी लोग कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते, लेकिन चलिए ये तो बात हो रही थी भाई गरीबों की कि वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गरीब जो अपने स्वाभिमान में रहते हैं, आप उनकी मदद लाचार स्थिति को देख करके अगर मदद करेंगे तो वो मदद भी नहीं लेंगे, खुददारी से जीवन जियेंगे, नहीं नहीं साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो नहीं लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि कोई कोई तो उसको गलत समझ लेते हैं कि अरे देखो गरीब है फिर भी इतरा रहा है, लेकिन इतरा नहीं, वो स्वाभिमानी है। और कहीं कहीं पर मजबूरी भी होती है, माताएं बहनों को देखिए आप, कहीं कहीं पर पति गुजर जाता है या फिर शराबी कबाबी होता है, बच्चे हो जाते हैं तो माताएं मजबूर हो जाती हैं, वो खुद के लिए फिर भीख नहीं मांगेगी लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भीख मांगेगी, क्योंकि उनको काम अगर नहीं मिलता है तो। बहुत सारी माताओं को तो जैसे कि कुपाराम जी ने कहा कि भाई काम के लिए कहते हैं कि आइए और काम करिए, लेकिन बहुत सारे गरीब को कोई काम, ऐसे भी लोग हैं जो देना नहीं चाहते कि अरे भाई बहुत गरीब है, कहीं घर से कुछ उठा के ले गया तो, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको परखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेंगे, कपड़ों की शर्म नहीं है कि उन्होंने फटा पहन रखा है या पुराना पहन रखा है, फटे है तो आप सिलाई कर लीजिए, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुलाई करके पहनिए। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको 2 नहीं 4 काम देंगे। घर पर देखिए आजकल माताएं बहनें भी क्या है, सर्विस ज़्यादा करती है या फिर घर पर भी रह करके बिजनेस करती है, तो उनको सारा काम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू पोछे बर्तन में भी माइयों को रखते हैं, तो ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारी, हम गरीब है तो कोई सा भी काम शर्म नहीं, काम करने की कभी ऐब या शर्म नहीं रखनी चाहिए, चोरी झूठ छल कपट इनकी शर्म होनी चाहिए, इसलिए काम का शर्म नहीं करनी है। जैसे कि एक बार शुक्रवार को जब हम स्पेशल कोई माता बहन से आपको मिलवाते हैं, तो एक बहन से भी मिलवाया, नेपाल की बहन थी, किस तरह वो झाड़ू पोछा करके 6-7 हज़ार महीने के कमा लेती है। और देखिए अच्छे घर होते हैं, वहाँ से फिर बच्चों के कपड़े है, फिर खाने पीने का है, वो भी देते हैं। वो देखिए ऐसे नहीं कि उनका दया देख करके, कि उन पर दया करके दे रहे, नहीं, स्वाभाविक है। 4 जनों का खाना बनाते हैं तो 5वें का बन ही जाता है, 1 जनों का ज़्यादा बनता ही है, और लास्ट में भोजन करने के बाद बचता है तो वो हम अपनी माइयों को ही देते हैं कि भाई ये बच्चा है जो ले जाओ, तो वो तो ताज़ा खाना ही है ना, बच्चा इसलिए दे रहे हैं और उनको पता है कि बच्चा है इसलिए दे रहे हैं, स्पेशल नहीं बनाया हमारे लिए, या फिर हम उनके लिए स्पेशल नहीं बना रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना ये अच्छी बात है। कि गरीबी तो परिस्थितियां सभी के अंदर आती है, और बात रही हंसने की कि गरीब को देख करके हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहते ना कि कभी भी ये पहिया घूम करके, ये चक्र घूम करके हमारे तक भी आ सकता है। हेलो
5: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं फिर से सुरेश भाई दानेरा से। मुझे एक सच्ची घटना याद आई है
3: जी,
5: कि एक गरीब जो तो वो मांग रहा था, तो जो ज्यादा भीड़ में फुटपाथ पर, तो उनका जो मांगने का जो वक्त का होता है ना, वो लोगों को पैरों से इधर उधर हो रहा था, पैसे भी गिर रहे थे। तो एक इंसान ने देखा और वो बोला कि तुम इधर ऐसे ही हर रोज रहते हो, कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यों कुछ काम नहीं करते, कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। तो उन्होंने पैसा 500 रुपया दिया और कुछ कुछ काम कर लो ऐसा बोलकर वो तो चला गया
3: जी।
5: और लगभग 4-5 साल बाद जब वो 500 रुपया देने वाला जा रहा था, तो एक इंसान ने पकड़ा और पैरों में गिर गया और के अपने साथ ही चलो, अरे भाई मैं आपको पहचानता नहीं, आप है कौन। तो बहुत छोटा मोटा घर था, उनके घर में ले गया और अच्छी सी खातिरदारी की, लेकिन आप बताओ तो सही है कौन
3: जी।
5: तो क्या आपको याद हो 4-5 पहले जो आपने 500 रुपया दिया और मैं भीख मांग रहा था ना, वो फुटपाथ पर, वो मैं ही हूँ। आपने सिर्फ उन दिन 500 रुपया ही नहीं दिया, लेकिन मुझे जीने की तरकीब सिखाई है। तो ये सब कुछ आपका ही है और आप बहुत धन्यवाद दिया, सब कुछ किया। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए।
3: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़े जी। तो ऐसा भी होता है कि देखिए गरीब के अगर हम समय रहते उनकी मदद करते हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं, उड़ सकते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कला है कुछ करने की। जैसा कि आपने बताया कि 500 रुपए से उनको इतनी मदद मिली कि कुछ ही सालों में वो थोड़े से योग्य बन गए, छोटा मोटा घर भी खरीद लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पैसों का सदुपयोग करना आना चाहिए। पैसे तो सभी के हाथ में मिल जाते हैं, लेकिन कितनी बार क्या है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो बात चल रही थी कि गरीब है, ठीक है वो गरीब है, लेकिन हमें उसकी हंसी मजाक उड़ाने की कहाँ आवश्यकता है। कभी कभी इंसान बेमतलब ही गरीबों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर कॉमेंट कसते हैं, न जाने कितने व्यंग मार देते हैं। मांगने वाले के भी आप देखना, कोई मांगने हमारे दहलीज पर आता है तो बहुत सारे लोग तो उसका पूरा ही अपमान कर देते, अरे भाई अच्छे खासे हो, कुछ काम धंधा करो ना, ऐसे मतलब व्यंग में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आया है हमारे द्वार पर तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। अगर आप मदद कर सको तो ठीक है, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मांगने आता है और अपना ही चेन वगैरह खींच के ले जाता है, ऐसा भी हो रहा है अभी वर्तमान में। तो मत करिए, लेकिन हंसना नहीं है, उसके ऊपर छीटा कसी नहीं कसनी है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम तो काम धंधा कर सकते हो। प्यार से कहो कि भाई काम धंधा करके अपना गुजारा करो, मांगना अच्छा नहीं है, ये बात तो अलग है, एक सलाह देना हुए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे ताने मारते, ऐसे डांटते कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। हमने दिया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ सुना दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी सामने वाला अगर वो मजबूरी से आया, हमें नहीं पता कि वो किस आशय से, किस मतलब भाव से आया है, लेकिन हमने उसका अपमान किया और उसका दिल दुख गया, उसको ताने मारे, उसके ऊपर व्यंग कसे और उसका दिल दुख गया, तो भी पाप के भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसलिए कोई मांगने आ रहे हैं, देना न देना अपने हाथ में है, लेकिन अपमान नहीं करना है गरीब का, क्योंकि कब समय पलटी खाए, कब परिस्थितियां हमारे पास आ जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे। हो रहा है समाज में, देखिए करोड़पति के रोडपति बन रहे और रोडपति के करोड़पति बन रहे, जैसे योग्य बच्चे निकलते हैं पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति अच्छी संभल जाती है, तो वो अच्छा जीवन जीने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो अहंकार में रहते हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता, वो देखो आप भीख मांगते नजर आते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ रॉयल भिखारी भी होते हैं कि लोगों से पैसे मांगने की आदत होती है और देना नहीं होता है, तो दरअसल गरीब तो उनको ही कहेंगे जो पैसे तो ले लेते हैं लोगों से कि धंधे में डालना, उसमें डालना, इसमें डालना, और फिर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। जो मांगने आते हैं ना, उनको मुंह भी नहीं दिखाएंगे और घर परिवार में समझा देंगे कि बता देना भाई, वो आवे तो बोल देना कि घर पर नहीं हूँ, और वही जवाब मिलता है। बेचारे लोग कितना धक्का खाएंगे, 10-15-20 धीरे धीरे फोन कॉल्स भी बंद, उठाना बंद, नंबर बदल देंगे। गरीब वो है जो इस तरह लोगों का मांग मांग करके खाते, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान का जीवन जीना है और स्वाभिमान में रहना है, यही दरअसल दिल के अमीर कहलाते हैं। और आज के प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आती आने वाली है अभी, जो ये सब हम करने वाले हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए सुनेंगे फिर से एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। परंतु आज के प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है।

0: तो भाई ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है? नवरात्रि तो देखिए बहुत सभी ने गरबा रास किया, डांडिया किया, मजा आ गया सभी को, है ना। तो गरबा रास अपने अपने सोसाइटी में हुए हैं और किए भी होंगे, लेकिन फिर से गरबा रास करेंगे परंतु कौन सी तिथि को? जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आशियाना की किचन में आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट वानगी, गुजराती में वानगी कहते हैं, और वैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक अच्छे से डिश, तो बनाएंगे राजस्थानी कचौरी चाट। राजस्थानी कचौरी चाट का नाम सुनते ही तो पानी आ ही गया होगा, और वो भी जोधपुरी कचौरी चाट, उसका तो कहना ही क्या है। जगह जगह पर भले मिष्ठान वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानों पर लिखा होता है कि जोधपुरी कचौरी, लेकिन चलिए जोधपुरी कचौरी आज हम सभी को बनाना सिखाएंगे ताकि आप सभी बना करके आनंद ले सको। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्कार लीला जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम जी, आपकी इतनी अपनी फर्स्ट क्लास आवाज आज बराबर आई है, आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रहा था।
0: अच्छा,
1: थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, बराबर गुर गुर गुर गुर करके तो मजा नहीं आ रहा था सुनने में।
0: चलिए आज तो आवाज एकदम क्लीन आ रही है।
1: बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हर पूनम में, बस हर पूनम में गरबे के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं रात की।
0: अच्छा, तो आ जाइए फिर करेंगे हम सभी।

0: रेडियो मधुबन में धमाल
1: बिल्कुल बिल्कुल है
0: जी जी जी। चलिए हम देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। आ रही है तो कब आ रही है?
1: जल्दी जल्दी खीर पौवे की खीर बनाएंगे और फिर चांदनी रात में रख देंगे और फिर चंदा मामा से अमृत गिरेगा अंदर
0: जी जी क्या बात है बहुत अच्छा।
1: तरत बुनमनी रात जो चांदनी उग्यो सखी सखी मारा चौक मा
0: क्या बात है बहुत खूब। तो लीला जी, हम जरूर आएंगे इस बार, भाई ज्यादा बनाना ठीक है?
1: बहुत देरों बनाएंगे अपन, कमी नहीं पड़ेगी
0: ठीक है चलिए अच्छी बात है। और उस दिन हमारे श्रोता बंधु को आप ही सिखा देना ठीक है, दूध पोहे
1: ठीक है मैडम जी।
0: ओके जी, बहुत बहुत आभार आपका जी। तो आज आपको कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट बनाना सिखा रही हूँ ठीक है। तो पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी आप तैयार होगी आपके हाथ में, सामग्री लिख लीजिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि लिख लेना अच्छा है, आप रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं। तो लिख लीजिए कि सामग्री है मैदा 250 ग्राम, फिर आप धुली हुई मूंग की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, और हरी मिर्च ले लीजिए 3-4, अदरक भी एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, हींग चुटकी भर लेना है, पीसी हुई लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच लेना है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोयन और तलने के लिए तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है। भरने की सामग्री दोहरा रही हूँ, 4-5 उबले हुए आलू लेना है, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला भी लेना है, हरी चटनी और इमली की सौंठ ये भी आपको तैयार रखना है, बीकानेरी भुजिया और फेटा हुआ दही, और ये सब आपको तैयार रखना है ठीक है। तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी कचौरी चाट, वैसे तो देखिए राजस्थान के लोग चटपटा खाने के बहुत ही प्रसिद्ध है, जोधपुर की स्पेशल कचौरी की चाट खाने के बाद तो दिनों तक, बहुत दिनों तक उसका स्वाद याद आता रहता है। अक्सर आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होंगे हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने जोधपुरी कचौरी चाट नहीं खाई होगी, और उसका आज मैंने याद दिला दिया होगा तो उसका टेस्ट भी याद आ गया होगा कि कैसा उसका स्वाद रहता है। लेकिन अब ये रोज़ तो बाहर से ला के नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर पर बना करके आप ज़रूर खा सकते हैं, क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ही अच्छी रहती है। तो मैदा 250 ग्राम लीजिएगा, दाल लेना है 100 ग्राम मूँग की दाल ठीक है, हरी मिर्च, अदरक सब अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, जैसे 3-4 हरी मिर्च है, 1 अदरक का टुकड़ा है, जीरा 1 चम्मच है, चुटकी भर हींग है, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों ही अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, और अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच लेना है, और मोटा कुटा हुआ गरम मसाला भी 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोमन के लिए और तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है। फिर भरन की सामग्री है भरने की, कि उबले हुए आलू 4-5 ले लीजिए, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये सब आपको आवश्यकता के अनुसार लेना है, इसके साथ चाट मसाला भी आपको लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आप तैयार रखेंगे हरी चटनी, इमली की सौंठ, बीकानेरी भुजिया और दही आपको लेना है ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुनेंगे, उसके बाद राजस्थानी कचौरी चाट कैसे बनाई जाती है वो जरूर सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न है, हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं दे सकते हैं आज के प्रश्न का जवाब। प्रश्न है, ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है रेडियो मधुबन के 94-14-15-14-15, और सुनते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सभी आशियाना की किचन में हो और आशियाना की किचन में बना रहे हैं राजस्थानी कचौरी चाट। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, आप लिख चुके होंगे। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या करेंगे। मैदे को छानिए, छान करके एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक मिला करके नरम नरम इसको गूंदना है और गूंद करके गीले कपड़े से ढक करके रख देना है, ठीक है। फिर एक कढ़ाई रखिए गैस पर, कढ़ाई में तेल डालिए और हींग जीरे का तड़का लगाइए। फिर दाल जो हमारी भीगी हुई है, दाल को क्या है भिगो के रखना है एक घंटे पहले ही, ठीक है। तो इसका छोक लगा दीजिए, पानी निकाल देना है और छोक देना है दाल को। फिर नमक लाल मिर्च डाल करके कम पानी में गलने तक पकाइए, हल्के हल्के से छींटे देते जाने हैं। पानी तो निकाल ही देना है, बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो हाथ में लेकर के थोड़ा सा छींटा दीजिए, ठीक है, ताकि दाल हमारी थोड़ी सी गल जाए। गलने के बाद यदि वो पानी तो रखना ही नहीं है, फिर भी है तो आप उसको सुखा दीजिए और अच्छी तरह इसको मेश करिए। गरम मसाला और अमचूर मिलाइए, थोड़ा हरा मसाला भी मिला दीजिए। मैदे की छोटी लोइया बना करके बीच में मूंग का मिश्रण थोड़ा सा फैलाना है लोइया बना करके, ठीक है। फिर मूंग के दाल की ये पिट्ठी रखिए और इस मिश्रण को भर करके चारों ओर से मोड़ करके गोलाई में बंद करिए। हथेली से हल्का सा दबा करके कचौरी की तरह बनाइए, ठीक है। फिर गरम तेल में इसको डाल दीजिए, मंदी आंच पर करारी होने तक तलना है तो कचौरी फूलना अवश्य। देखिए कचौरी आप डाल रहे हैं, तल रहे हैं, तो कचौरी फूलनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फूली बैठ जाएगी तो फिर वो कचौरी की तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए इस बात पर आपको पूरा ध्यान देना है। एक आध बिगड़ जाए तो दूसरी पर अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी तरह इसका लुआ बनाना है, लुआ बना करके इसको हथेली से ही चौड़ा चौड़ा बना करना है। फिर मसाला जो पिट्ठी बनाई है दाल की बीच में रख करके गोल गोल फिर से लुआ बना करके हल्के हाथ से दबा देना है कचौरी की तरह। फिर तेल गरम हो जाए उसको मध्यम करके मध्यम आंच पर कचौरियां तलिए, दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो जाए फिर आप निकाल दीजिए और दूसरी कचौरी तल दीजिए। कचौरी फूलनी जरूर चाहिए। कचौरी को ऊपर से थोड़ा फ्राई करके उसमें कटे हुए आलू, हरा मसाला, जैसे कि हमने सामान लिया ना भाई, उबले हुए आलू 3-4 लिए, उसके आप थोड़े से कटके कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और उसमें ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कटा हुआ चाट मसाला, ये सभी आपको बताया था तो लीजिए। फिर आलू डाल करके हरा मसाला और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए और हरी मिर्च, बीकानेरी भुजिया ये भी डाल दीजिए। इमली की सौंठ भी इसमें डालनी है, इमली की सौंठ बोले तो चटनी, ठीक है। और दही और नमक सब छिड़क करके पिरसिए। तो ये बन गई कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट। इसके खाने का जायका ही अलग है, बनाने का भी तरीका और खाने का भी स्वाद पूरा ही आपको अलग ही लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। बच्चे, बुजुर्ग, किशोर सभी इसको पसंद करते हैं और सभी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कचौरी चाट तैयार है, अब देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट। प्लेट में ये सब रखिए और अच्छी तरह इसमें सब कुछ मसाला डालिए और एक थाली में रख दीजिए, स्वच्छ थाली में। और भी आपने कुछ बनाया है वो भी रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो कचौरी चाट का। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सभी झूमने वाले हैं, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। तो आज के प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया है। नाम मैं पहले सुना रही हूँ, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई दानेराव से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी माउंट आबू से, सभी ने सही जवाब दिया है। शरद पूर्णिमा जय। तो सही जवाब आप सभी के लिए तालियां। और अब खाली दो लाइन में गीत की सुनाऊंगी क्योंकि समय भी होने को आ चुका है, इसलिए सिर्फ दो लाइन गीत की सुनाऊंगी। आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
2: भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या।

0: कर।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सब की जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता, जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: घड़ी घड़ी चार पड़ोसन खड़ी खड़ी बाता बनावे घड़ी घड़ी।
1: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटियां पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटियां कोनी बेटाएं।
2: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अत्री बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटफटो लेन दौड़ती परे, वो छोरे की नैन पेंट शूट पहरे हैं।
3: छोरा की नैन बॉयकट रखे, आदमी का सारा काम छोरी करावे, पंचायत में जानो वे कि राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
4: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बापरो जदी था पड़ी।
5: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
6: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
3: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अणी खुशी को राज।
6: खुशी की तो बात है।

0: में नजरिया परी उतारूली, लूण मरच में वारूली। अरे मारा कुलदीप, मारा राजकुमार, कई छोरिया की न्यान रोवे रे, बोल तारे कई हुओ?
1: मारी माता दा चरणो हमारी मानी नहीं जलाली हो, नहीं जलाली हो।
0: अरे मारा लाडला, तू छोरो है, छोरा का साथ में खेल, छोरिया रो खेल कोनी खेलनो?
2: निम्मा आवो बेटा, गरम गरम खिचड़ी बन गई, इमे घी भी अच्छो डाल रखियो, तू खा ले।
0: बीनड़ी, तू यो कई कर रही? छोरी ने अत्री मत इतार, अत्रो अत्रो घी खिलावा की जरूरत कोनी, कतरो भी हाउ खिलाई तो भी खानदान रो नाम तो छोरो ही कर रही हूँ।
2: जी माँ जी, पर छोरी भी तो।
0: कई बोल रही, पर वर कई कोनी, गणो छोरिया ने माता पे कोनी चढ़ानो, छोरिया तो रोड़ी को कचरो है और रोड़ी में ही अच्छी लगे, समझी? मारा पोता रो ध्यान पूरो राख, यो मारा वंश ने आगे बढ़ाई, मारा खानदान नो नाम रोशन करी।
3: माँ, मैं थारी सगली बात सुनी, पर मैं थारी बात तो सहमत कोनी, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि बेटा करता बेटिया ज्यादा मेहनती होवे है। देख अपना पड़ोस माँ, लक्ष्मी आंटी की छोरिया कतरी होशियार है, घर को सारो काम कर लेवे, बालो भी, आज वह इंटरव्यू भी देवागी, काले नौकरी भी लाग जाए। मानू के वाके बेटो कोनी, पर देख माँ बाप रो कतरो ध्यान रखे, अतर तो बेटा भी कोनी ध्यान रखे।
0: मने तो लक्ष्मी पे गुस्सो भी आवे, दया भी, चार चार बेटिया ने जन्म दीदो, एक भी बेटा ने जन्म कोनी दीदो, छोरिया परणी ने हारे परी जाई, जदी ठा पड़ी ने।
3: माँ, छोरो के छोरी इंसान का हाथ में कोनी, और देख छोरिया भी तो माँ बाप की सेवा कर सके, अपनी मासी की सरिता ने देख, माँ बाप की कतरी सेवा कर रही, वहाँ ने ठाई कोनी पड़ रही के वाके बेटो कोनी, और अपना मामा का सोनू ने देख, परंतु इन माँ बाप से अलग हो गयो। अबे बता छोरिया की कहूँ कम है?
0: तू सही कह रही हो बेटा, पर आशा हमारे एक छोरो तो होनो ही चाहिए।
4: इंटरव्यू देवा जाऊं, पछे नौकरी भी करूं, सखी चाला

0: आज तो
1: दीपक आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000। इज इट ओके?
2: सर ये अंतर क्यों है जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
1: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
2: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं। रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूं। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर।
1: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
2: थैंक यू सर।
3: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहां पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
5: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसकी खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद से तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन जवानी और बुढ़ापा तीन पापे टिकी है, पिता पति पुत्र। एक इंसान होने के नाते, एक महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी, अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका काम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद पैसा सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम, और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा, खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पर बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एक दिन धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है
4: जी।
5: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है। घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वाले, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप कोई फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी पूरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है। बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का, एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं। इतना जबरदस्त कंट्रोल है सत्ता की।
3: तो सुना दोस्तों हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर। आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे उषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सपनों पूरों

0: ओए रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। और हमराही प्रोग्राम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग एक तो इतना पसंद करते हैं और जो इसका मेन उद्देश्य है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सब जानती हैं कि हम इसमें कपल्स के साथ बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कोई एक या फिर दोनों किसी न किसी शारीरिक समस्या को झेल रहे हो, लेकिन बावजूद इसके वो अपना जीवन बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ और हौसले के साथ जी रहे हो। तो आज ऐसे ही मेहमान मुझे मिल गए तो फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर के। अच्छा, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि देखिए, कभी कभी दोस्तों कई लोगों में हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, लेकिन महज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आज के जो मेहमान है वो मुझे कुछ इस तरह ही मिले। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा जिसमें जो महिला है वो लिख रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं और हम लोग हमारे दोस्तों को इंश्योरेंस में मदद करते हैं, इसके अलावा हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं और अपनी ये कंपनी भी रन करते हैं। तो ये चीज पढ़ करके मुझे अपने आप में, मतलब आप लोगों को हो सकता है प्रोग्राम सुन करके मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन इतना मैसेज, ये चार लाइनें पढ़ करके मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा भाई इनको तो फिर जरूर इन्वाइट करना चाहिए अगर ये तैयार होंगे तो।

0: हमारे आज के मेहमान तैयार हुए और फिर प्रोग्राम हाजिर है। चलिए, तो भूमिका हो गई बहुत सारी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संभवतः पहली बार उस राज्य से जहां पर आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं। कई बार वहां की राजनीति बड़ी चर्चाओं में भी रहती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की, और वहाँ का एक बहुत ही सिटी ऑफ जॉय जिसको कहते हैं कोलकाता, वहां से ही आज के हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करिए मेघा जी और पीयूष जी का, पीयूष रखेजा और मेघा रखेजा, वेलकम आप दोनों का।
1: हाय संदीप, थैंक यू सो मच. आपके इतने सारे शब्दों सुन के हम लोग तो बस एकदम खुशी इतनी मिल रही थी कि आपने इतना हमारी तारीफ करी. एंड थैंक यू सो मच हमें शो पे इनवाइट करने के लिए.
2: थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है इस शो को करने के लिए, बिकॉज ये हमारा साथ में पहला ऐसा चीज़ है। ऐसे अलग अलग हम काफ़ी सारे सेशंस में बोलते हैं और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बट साथ में हम ये पहली बार ही कर रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप दोनों को हम साथ लेकर के आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्रेडिट जाता है उस मैसेज को जिसका मैंने जिक्र किया। अब वो मुझे नहीं पता पीयूष जी ने लिखा मेघा जी ने लिखा, लेकिन उसमें नाम और नंबर तो मेघा जी का ही था।
1: नहीं तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मैसेज का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ, मैंने
0: पता नहीं, अब ये तो बाद में आप दोनों को डिसाइड करना। लेकिन हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मेघा जी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आप लोग जो सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन चलिए, इस पर तो हम आएंगे, पहले शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मेघा जी बताएं जरा अपने बारे में, क्या यादें हैं जुड़ी हुई हैं अपनी लाइफ के साथ।
1: सो ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ एंड शादी के बाद ही मैं कोलकाता शिफ्ट हुई. तो मेरी काफ़ी मेमोरीज है दिल्ली से लेके, विजुअल इम्पेयरमेंट से लेके, जो आई थिंक सबके साथ होती है. कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं. एंड आई थिंक हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं. वी ऑल फॉट कि हम लोग को सारी सुविधाएं मिले. तो वही मेरा भी जर्नी रहा है पूरा. एंड एंड ये बहुत अच्छी चीज है कि दिल्ली से हूँ और हम दोनों भी दिल्ली में ही मिले. तो
0: अच्छा, क्या
1: हाँ,
0: बात है,
1: बिल्कुल दिल वालों की दिल्ली बन गई. यस
0: दिल्ली दिल्ली में ही दिल मिले दोनों के।
1: टोटली. तो हाँ,
0: तो थोड़ा सा बताइए, मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और बाप की ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे क्या हुआ और एजुकेशन क्या क्या रही आपकी, और अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप।
1: श्योर. सो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है. और आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो वो अभी उनकी शादी हो गई और वो US में सेटल्ड है. तो बाकी उनसे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ. एंड जब ऑब्वियसली वो शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल था, बट वी स्टिल कनेक्टेड. बाकी अगर मैं अपनी आई कंडीशन की बात करूँ, सो आई हैव मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटेशन. एंड ये सिंस बर्थ है, बट मेरे को ऑफिशियली डायग्नोज हुआ जब मैं 9 ईयर्स की थी. एंड
0: अच्छा,
1: या एंड ये एक्चुअली हुआ भी ऐसे कि जब मैं 3 साल की थी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है. तो उन्होंने मेरे को चेक भी कराया था और एक डॉक्टर ने बोला भी था कि इनको शायद MD है. लेकिन जब सेकेंड थर्ड ओपिनियन लिया तो सबने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ गलत लगा होगा. तो मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया, कोई भी बुरी न्यूज तो सुनना नहीं चाहता, राइट? आपको अच्छी न्यूज ही ज्यादा समझ आती है, राइट? तो फिर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया एंड आई वॉज इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल. फिर हर साल ना हमारे एनुअल चेकअप्स होते थे, तो उसमें आई चेकअप भी होता था. और वो मुझे सबसे डरावना लगता था क्योंकि हमारी वो टीचर इतनी स्कैरी थी और मेडिकल रूम के होती आई गेस. एंड मैं जब पढ़ नहीं पाती थी ना तो बड़ी खतरनाक वे से दिखती भी थी कि अरे ऐसे
0: उनको पता भी
1: कैसे.
0: नहीं होता ना कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, या मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो
1: राइट.
0: उसके साथ ट्रीट कैसे करें उनको, कई बार ये भी मुझे लगता है कि
1: हाँ,
0: नॉलेज नहीं होता।
1: ये भी लगता है ना, आई थिंक उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बच्चा ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहा, जान पूछ के तंग करने के लिए. बट तो यही सिलसिला चला और हर साल मेरा नंबर बस बढ़ जाता था, चश्मे मोटे होते रहते थे. जब मैं 9 ईयर्स की थी तब मम्मी ने कहा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है ही। तो जिनसे पहले जिनने डिटेक्ट किया था ना जब मैं 3 साल की थी उनको ही वापस दिखाया, तो उनने फाइनली ऑफिशियली बोला कि नहीं इनको है। फिर हम शंकर नेत्रालय और ये सब गए और कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे आई कंडीशन है। तो तब हम लोग का वहां से शुरू हुआ, बट मैंने फिर भी अपनी पूरी एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल से ही की, सेम स्कूल से। एंड तकलीफें बहुत रही क्योंकि एज आप जैसे आपने कहा रही, टीचर्स को समझ में नहीं आता एक्चुअली कैसे संभाले, क्योंकि पूरे स्कूल में मैं ही एक विजुअली इम्पेयर्ड किड थी। तो उनको भी थोड़ा सा जानने को मिला, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव भी मिली, कुछ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी।
0: नहीं थी।
1: बट धीरे धीरे करके वही एक्स्ट्रा टाइम, बड़ा फॉन्ट, बट ये सब मेरा मेनली विद टाइम डिटोरिएट हुआ। तो बोर्ड्स में जाते जाते मेरे को ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, पहले इतना दिक्कत था नहीं। एंड लकीली मेरे फ्रेंड्स हमेशा स्कूल में बहुत अच्छे रहे, तो मुझे उन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। उनकी नोट्स मिले, उनकी नोटबुक से ही मैं कॉपी करती थी क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो बहुत पहले ही दिखना बंद हो गया था। एंड ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं हमेशा बहुत सोशल और बहुत आउटगोइंग थी, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी था। एंड मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड थी, बट वही धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें थोड़ी छूट गई।
0: टूट गई।
1: राइट। एंड देन बस फिर 12th में था कि जब मेरी काफ़ी विजन चली गई, तो बोर्ड्स के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरी बुक्स पढ़ती थी और मैं वैसे लर्न करके मैंने किया, क्योंकि इतना अवेयरनेस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडियो सॉफ्टवेयर और ये सब अवेलेबल है। और उस टाइम उसके बाद कॉलेज वगैरह जैसे गई, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
0: अच्छा
1: हाँ, मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। वो मेरी मतलब वो मेरी ज्यादा मदर जैसी थी क्योंकि मम्मा तो वर्किंग थी, तो
0: वर्किंग थी
1: उसने
0: राइट।
1: मेरा तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया। जब कुछ चीज़ ऑडियो बुक, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, तो जैसे वो ढूंढी कि ऑडियो बुक्स भी होती हैं, मेरे को डाउनलोड करके दी, क्लासेस पे लेके जाती थी। तो दिस इज हाउ मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं LSR साइकोलॉजी ऑनर्स में गई। अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे 1 ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा।
0: अच्छा
1: इसी वजह से क्योंकि टीचर सपोर्ट थे, काफी नेगेटिविटी थी। और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं था, उसके बाद में मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम पढ़ सकते
0: ये
1: हैं।
0: जब आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया ये कब की बात रही होगी?
1: 2010 की
0: 2010 की। बताइए मतलब स्कूल में आपको फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन जहां हायर लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए वहीं पे प्रॉब्लम हो गई।
1: बिल्कुल। एंड बल्कि जहाँ बच्चे ज्यादा मच्योर भी हों, क्योंकि देखो स्कूल में कितने छोटे
0: छोटे
1: छोटे होते हैं, फिर भी
0: होते हैं।
1: सबने इतना सपोर्ट किया। और बड़ी एज में जाके आई थिंक लोग अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों का सपोर्ट भूल जाते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं जाके। तो वहाँ पे रहा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसा फेज आया कि मतलब मैं कोपा भी कर रही थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ। तो वो कुछ 5-6 साल मेरे ऐसे गए, बट उसमें मैंने क्रिएटिव चीज़ें बहुत की क्योंकि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग मैंने प्रोफेशनली घर से करी भी।
0: अरे वाह।
1: राइट, मैं काफ़ी सेल किया, ब्राउनीज एंड एवरीथिंग वाज माय फोर्टे, बहुत मज़े आते थे मुझे।
0: समय आप लो विजन थे या टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी एकदम आपको?
1: ऑलमोस्ट टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आई थिंक मुश्किल से 5% विजन बची होगी उस टाइम पे। तो उधर उस टाइम मेरे कजन ने मेरे को बड़ा अच्छा एक चीज लेके दिया था, तब वो आजकल वो आती है ना इंग्रेडिएंट स्केल टॉकिंग वाली डिजिटल, तो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी बट वो बाहर रहते थे, तो उनको कहीं मिली तो वो मेरे लिए इंडिया लेकर आए थे। तो तब वहां से मेरा शुरू, और मेरे को इतना आसान हो गया ना सब कुछ करना।
0: क्या बात है।
1: तो दैट वेज मैं लकी रही हूँ कि मेरा फैमिली सपोर्ट, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो इमिजिएट, सब लोग बहुत ही मतलब कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा पुश किया टू डू मोर।
0: बेसिकली वो 5 से 5 6 साल आप एजुकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन
1: नहीं, क्रिएटिव
0: आपका
1: फील्स
0: क्रिएटिविटी
1: में।
0: आपकी पूरी तरह से चालू थी।
1: राइट, मैं डांस भी सीखा, पियानो सीखा, मैंने और काफी कुछ किया होगा, अब मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम मेरा काफी एफ, मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था
0: हाँ तो पता
1: कुछ
0: नहीं था ना कि ऐसे किसी दिन इंटरव्यू में भी बताना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बट हाँ, लकीली बस इसके आगे छोटा ही है कि लकीली बस 2019 में जाके सोचा नहीं करना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती, आगे कुछ हासिल करना जरूरी है. तो मैंने बस सोचा, रैपिड ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, खत्म किया. फिर एक विजन एड करके एक वो है एनजीओ, वहां से मैंने अपना डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किया. एंड देन आई वॉज वर्किंग एज एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर विथ अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर फॉर 3 ईयर्स. और उसके साथ साथ मैं काफी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए. और एज आई सेड, एक क्रिएटिव हमेशा मेरे अंदर में ही रहता है. तो और कुछ ऑडियो स्टोरीज के लिए अपनी वॉइस और वॉइस ओवर लैंड किया, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैराथन किया, और काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज का काफी शौक है. लकीली हम दोनों को, सो पीयूष और मैं जब मिले तो हमारा आई थिंक बॉन्डिंग फैक्टर यही था. सबसे पहले हमारी बात ही एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर शुरू
0: क्या बात है।
1: हुई थी.
0: नहीं खैर, आपके मिलने पर तो हम आएंगे, और
1: राइट.
0: मेन वही काम करना है हमको, प्रोग्राम में भी आप दोनों को मिलाना है। लेकिन पहले पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको आप दोनों से अलग अलग मिलवाना है, फिर आप दोनों को साथ साथ मिलवाना है।
1: राइट. यस. तो आई थिंक
0: तो
1: लास्ट, आई थिंक आपने एक बस ये चीज पूछी थी कि अभी करंटली क्या कर रही हो, राइट?
0: हाँ जी,
1: तो एज आपने जैसे मैसेज पढ़ के बोला कि अब मैं इंश्योरेंस संभाल रही हूँ. ये तो आप पीयूष से वैसे पूछेंगे एंड वो बताएगा, बट उसका खुद का फाइनेंशियल
0: ठीक से कर रहे हो कि
1: सिचुएशन.
0: नहीं कर रहे हो।
1: ये तो हाँ पूछना बनता.
0: आगे ऐसे ही मैसेज भेज दिया सोशल मीडिया पे, पता
1: नहीं, एक्चुअली
0: चला।
1: फाइनेंस फील्ड से ऐसे ही जुड़ी मैं इन्हीं के वजह से. सो ही हैज इज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. तो व्हेन जब हमारी शादी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, बट ही ऑल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस क्लाइंट्स. एंड
0: अच्छा।
1: हमारे काफी सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे एंड सबको बहुत दिक्कत आती है, हमें खुद को बहुत दिक्कत आई टू गेट इंश्योरेंस. तब हम
0: काम
1: दोनों ने सोचा कि हमें इस पे काम करना चाहिए.
0: करना चाहिए। बहुत सही।
1: तो वहीं से मेरा शुरू हुआ एंड मैं फुली डेडिकेटेड हूँ टू द इंश्योरेंस वर्टिकल. एंड मेन स्ट्रीम की तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ब्रेक थ्रूज करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस में, कि उनको जितने लोगों को दिला सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो वो हम कर सकें. तो उसी से रिलेटेड वो मैसेज था.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस मैसेज की वजह से मैं आप दोनों को बुला पाया। क्या
1: यस.
0: बात है। और अभी कुछ आपको है आई साइट या नहीं? अभी टोटल लॉस?
1: ऑलमोस्ट टोटल लॉस है, मे बी 1% होगी, बट वो भी जैसे एकदम सब्जेक्टिव है. जैसे सनलाइट वगैरह या अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता,
0: ओके ओके
1: थोड़ी
0: ओके ओके
1: बहुत लाइट हो तो थोड़ा बहुत ऐसे सब पता है कहाँ है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे बस.
0: चलिए, अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई आपके साथ, लेकिन पीयूष जी
1: यस.
0: कहेंगे भाई हम भी तो हैं यहाँ पर। पीयूष जी,
2: हाँ जी.
0: अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताएं बॉस।
2: हाँ संदीप जी. तो मेरा डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 4 साल का था. सिमिलर स्टोरी है घर में. जैसे मैं घड़ी जब जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का वो रहता है कि एज अ एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको टाइम देखना सिखाए. तो पेरेंट्स बार बार मम्मी पूछती थी कि टाइम देख कर बताओ, तो बहुत पास से तो मैं देख के बताया था. थोड़ा सा भी अगर मेरे को मेरा वॉल हैंगिंग जो क्लॉक था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता था तो मैं नहीं बता पाता था टाइम. तो
0: जी
2: उनको थोड़ा डाउट होने लगा. फिर डॉक्टर, कई डॉक्टर्स से हम मिले, टेस्टिंग वगैरह कराया. तो 4 साल में मेरी डायग्नोसिस हुई मैक्यूलर डिजेनरेशन. पहली डायग्नोसिस थी उस समय.
0: अच्छा।
2: और उसके बाद मतलब लो विजन था, मैं ब्लाइंड ब्लाइंड तो नहीं था उस समय, लो विजन था. तो मैं फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड भी मुझे दिखता था. इनिशियली तो मैंने फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड दे के वैसे मैनेज किया. फिर ग्रेजुअली वो ट्रांजिशन फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रेजुअली क्या
0: अच्छा।
2: होता है ना, जब आपका साइट, आपको नहीं पता, एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स में आपका साइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है. तो उसमें क्या होता है, आपको भी नहीं समझ आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास जितने सारे बच्चे हैं आप भी उस समय इमेच्योर, जितने बच्चे हैं वो आराम से काम कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड. कहीं ना कहीं आई साइट वो तो पता है कि नेचुरली आईसाइट वीक के कारण अब हमें पता है कि चलो ठीक है उसके कारण हो रहा था, बट कहीं ना कहीं अपने अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरा बहुत खराब हो गया, बहुत कम हो गया कि मुझे मुझे नहीं दिख रहा, आई थिंक मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है।
0: प्रॉब्लम है राइट
2: तो और टीचर्स ने भी कभी मतलब आई थिंक काउंसलिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी जरूरत होनी चाहिए, और ये मैंने उस
0: एग्जैक्टली
2: समय, हाँ उस समय रियलाइज किया। पर और जैसे मेघा का है, मेघा को स्कूल में स्पेशली इनिशियली मुझे इसको बहुत सपोर्ट मिला। मेरा इनिशियल फेज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, टिल
0: अच्छा
2: सिक्स स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि बच्चे भी इमेच्योर होते हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो तो उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है वो मतलब। तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट था सिक्स स्टैंडर्ड तक। फिर इनफैक्ट एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, स्कूल का नाम तो मैं नहीं लूंगा बट स्कूल का एक इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ। तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरी पेरेंट को बुलाया गया, मेरी मम्मी को बुलाया गया कि एक बार आप आओ और देखो आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आप एक बार आओ। तो मेरी मम्मी गई और उन्होंने कोशिश किया टीचर को समझाने का कि देखिए ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, इसके आंखों में आंखों की रोशनी कम है, ये नहीं कोप अप कर रहा पा रहा मे बी, तो इसको दूसरी तरीके से थोड़ा कराना पड़ेगा। तो वो बोले दूसरी तरीका को कुछ होता ही नहीं है, सेम एक ही तरह होता है काम करने का, दूसरा तरह नहीं होता है। तो
0: अच्छा
2: फिर टीचर ऐसा था कि होता है ना, मतलब पेरेंट और टीचर आमने सामने बैठे हैं टेबल के अक्रॉस, ठीक है, वो बोलते बोलते मम्मी समझाने की कोशिश करे, टीचर उठ के चली गई पेरेंट के सामने। मतलब
0: बताइए
2: कितनी
0: हद है,
2: कितनी इंसल्टिंग बात है ये, मतलब पेरेंट के
0: बताइए
2: लिए।
0: मतलब कोई, हाँ मदर बैठी हुई हैं और आपको एटलीस्ट कम से कम चलो कुछ कर नहीं पाओ तो उनकी बात तो सुन लो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम उस समय फिर मम्मी को भी समझ में आ गया कि शायद ये स्कूल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने सेवेंथ स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज करा है। और वो बोलते हैं कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट, मम्मी ने बहुत लड़ के कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थी फाइनेंशियली, बट कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में सुन के लोगों से कि नहीं ये स्कूल अलग तरीके से काम करता है हर बच्चों को समझाने। और वहाँ पे एक और चीज़ मदर ने नोटिस किया कि यहाँ टीचर्स को भी काउंसलिंग होती है, एक इन हाउस काउंसलर है स्कूल में जो टीचर्स की
0: अच्छा
2: काउंसलिंग करती है बच्चों से पहले।
0: क्या बात है।
2: तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ सेवन स्टैंडर्ड में, और डे वन से ही ऑब्वियसली इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चीज़ें बदल गई, वहाँ भी मैं मेघा की तरह मैं भी एक ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था पूरे स्कूल में। तो पहले 2-3 साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई बट टीचर्स ने कभी उस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा समझने का कोशिश किया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल को भी मम्मी ने, मतलब मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में कि एक बार आप आओ, हम अच्छे से समझना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको सपोर्ट करें और इसको बच्चे को आगे बढ़ाएं।
0: आगे
2: तो
0: बढ़ाएं जी।
2: और वो फिर रेगुलरली मिलना चालू कर दी मम्मी से, मतलब ऐसा होता है ना कि चलो आप मतलब 3 महीने 6 महीने हर साल होते टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो नॉर्मली टीचर्स पेरेंट्स से मिलती है, प्रिंसिपल नहीं मिलती है इंडिविजुअली पेरेंट्स से, वो हर बार मिलती थी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी से। तो मिसेस सीमा सप्रू जो हमारी प्रिंसिपल थी द हेरिटेज स्कूल में,
0: जी
2: उनकी उनकी बदौलत आई थिंक शी वॉज द इंस्पिरेशन, मतलब वो और मेरे साथ भी लेती थी सेशंस, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट की। फिर टीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि कैसे इसको हम ज़रूरत पड़े तो अलग से इसको पढ़ाएं समझाएं और चीज़ों को करवाएं कि ये परफॉर्म कर पाए। फिर परफॉर्मेंस में भी इमीडिएटली रिजल्ट्स आने लगे, 9th स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एकदम ही टर्न अराउंड हो गया, आप मानिए बिल्कुल जो मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं सब्जेक्ट्स में फेल होता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। फिर
0: वाह क्या
2: 9th से 12th मेरा इस तरह गया, अच्छे से मैंने परफॉर्म करके अच्छी मार्क्स के साथ मैंने अपने 10th और 12th बोर्ड को फिनिश किया। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैं मोस्टली इस टाइप का कॉलेज में था जहाँ पे कॉलेज जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दो अटेंडेंस थी बट आप मैनेज कर सकते थे, उस तरह का कॉलेज था। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली साथ में सीए की पढ़ाई करनी थी, तो उसमें भी प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप स्क्राइब करवा सकते हो। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि मेरी छोटी सिस्टर जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके टीचर प्रिंसिपल जो मैंने जैसे पहला स्कूल में फेस किया वो भी फेस कर रही थी, तो मेरी प्रिंसिपल ने
0: अच्छा
2: एफर्ट लेके, मेरी प्रिंसिपल ने उसके स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, उसको पूरा समझाया, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल का एक्चुअली सिटी में और मतलब बाकी स्कूल में नाम भी बहुत था, तो उनको उनकी उनका कॉल या उनकी बात को कोई टालने या मतलब एटलीस्ट सुनेंगे वो तो पता ही था हमें। तो उन्होंने मेरी मेरी मदर के रिक्वेस्ट में उन्होंने बात करके पूरा उसके लिए भी एकदम रास्ता क्लियर करवा दिया, मेरी छोटी बहन के लिए भी। तो अब फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सीए की पढ़ाई की, जो मेरे को बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंटर करके छोड़ दिया सीए को और मैं फिर कैट की तैयारी करने लगा। फिर कैट करके मेरी आईआईएम रायपुर में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया में।
0: डेफिनेटली डेफिनेटली
2: तो वहाँ तो डेफिनेटली, और वो बोलते हैं ना कि मेघा के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट मिला मुझे स्टूडेंट से, टीचर से मिला जो मिला, चलो ठीक है। मतलब मैं बोलता हूँ कि टीचर से सपोर्ट नहीं भी मिला होता तो स्टूडेंट्स और फेलो लोगों का इतना सपोर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है।
0: कौन से ईयर में आपने आईआईएम किया पीयूष जी?
2: 2013 से 15, 15 में मैंने फिनिश किया, 2 साल।
0: जबकि जबकि उस समय भी मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी,
2: हाँ, पर आप ये
0: तो
2: नहीं, मतलब
0: वहां का
2: ऐसा।
0: एक्सपीरियंस तो कैसा थोड़ा बताएं, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा
2: बिल्कुल
0: आईआईएम का?
2: बिल्कुल
0: क्योंकि हर
2: बिल्कुल
0: कोई जा नहीं पाता आईआईएम, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
2: हाँ
0: तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है।
2: बिल्कुल, वो सोचना मुश्किल मेरे लिए था। पता नहीं इसको डेस्टिनी बोले या क्या बोले, हमेशा से मेरे मन में, मतलब जब से मैं स्कूलिंग में 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड, इस टाइम से मेरे में मन में हमेशा था कि मुझे एमबीए करना है। पता मुझे भी नहीं पता था क्यों करना है, बट हमेशा मन में था कि एमबीए करना है। और फिर ग्रेजुएशन करते हुए मेरे को ये था कि इनिशियली बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि कैट की, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, कैट की कोचिंग के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, सबने मना कर दिया था। तो मेरे जो ग्रेजुएशन में मुझे जो टीचर ने घर में पढ़ाते थे, उन्होंने कैट का कभी ट्यूशन नहीं करवाया था वैसे, पर बोले कि चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लूंगा। वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने कैट की पढ़ाई में मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जो करियर लॉन्चर और ये सब जो कोर्सेज करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कभी ऐसा विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट को लिया नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं पर आप घर में पढ़ो अपने आप, हम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने पूरा पढ़ा के मुझे कैट की तैयारी करवाई, फिर मैंने कैट क्लियर किया। और अब कमिंग टू आईआईएम रायपुर, कैसे मैंने वहाँ मैनेज किया, डे 1 से ही आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट मिला फेलो स्टूडेंट से कि मेरे को लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ, सारे लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक दो, ऑलमोस्ट अब मैं आपको बोलूंगा हमारा बैच था 120 लोगों का, 50-60% बैच, मतलब आप लोग समझ लो 50 से 60 लोग, एटलीस्ट 60 लोग मान लो, उनसे मेरा ऐसा रिलेशन था कि मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ। आज भी
0: क्या
2: यहाँ तक मैं, इनफैक्ट आज भी ऐसा हाल है, मैं उनको फोन करके बोलूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स से मुझे एक पेमेंट करना है, वो सोचेंगे भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी मुझे दे देंगे।
0: क्या बात है।
2: मतलब वो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट के लिए ही वो कार्ड यूज करता, मैं यूज करता क्योंकि कोई डिस्काउंट होता है ना कार्ड में, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है, कोई डिस्काउंट है तो वो सोचेंगे भी नहीं कि यार ये क्या क्यों मांग रहा है, एक सेकंड वो सोचेंगे, पॉज लेंगे, ऐसा होता है ना कि भाई ये पैसा
0: ट्रस्ट
2: वापस दे तो
0: मतलब
2: दे देगा ना।
0: उनका इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा आपका रिलेशन उनके साथ।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 2 साल मेरी इतनी अच्छी गई, और मैंने उनको बहुत, मैं दो, क्योंकि क्या होते हैं 80% ऑफ द बैच इंजीनियर्स थे, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, उनको फाइनेंस अकाउंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स का, तो मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत कई लोगों को पढ़ाया। तो आज भी वो याद करते हैं कि मैं उनको काफ़ी एग्जाम के पहले काफ़ी उनको तैयारी मैं भी कराता था, और जहाँ उनका सपोर्ट, मे भी मैं तो अपने लेवल पे जो कर पाया किया, पर उनका जो सपोर्ट था ऑल थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए, चाहे रात हो दिन हो, जब मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द मटेरियल, कुछ समझना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, हमेशा वो अवेलेबल थे।
0: तो उस समय 100% विजन लॉस हो गया था आपका, या कुछ था आई साइड
2: मतलब आप
0: आपको?
2: समझ लो 5%, 4-5% कुछ
0: और
2: साइट बची
0: अभी
2: होगी, अभी आप मेघा के बराबर ही है, लगभग 1-2% साइट
0: अच्छा,
2: मेरा है।
0: मतलब आप लोग काफी चीजों में बराबर हैं।
2: बिल्कुल
0: अच्छा, फिर ये वहां से आईआईएम से निकलने के बाद ये अपनी कंपनी
2: हाँ,
0: रन करने के बारे में कब सोचा और कैसे ये शुरुआत हुई?
2: ये मैंने एक्चुअली सोचा आईएम करते हुए ही, जब
0: अच्छा
2: मैं आईएम में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहां पे जो लोग आए हैं वो जनरली वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, वो पहले जॉब करके आए थे, तो पहले उन्होंने पैसा कमाया हुआ था। तो अब जब पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हो, और कहीं ना कहीं कुछ सोचते समझते हो भी इन चीज़ों के बारे में। तो कई लोगों ने बैंक के कहने पे, कहीं और किसी के एडवाइस पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, मैं उनको एनालाइज करना चालू किया, और कई लोग मेरे से पूछते भी थे, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स मेरे से पूछते थे कि भाई ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं, पहले तो उनको पता आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया नहीं था। मैंने उनको उसमें गाइडेंस देना स्टार्ट किया, और मेरा मेरा रुचि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पहले से था, स्कूल से है। स्टॉक्स, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, इनके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि पापा को मैंने इन्वेस्ट करते हुए उस समय देखा समझा, तो इंटरेस्ट मेरा था। और फाइनेंशियल एडवाइस, पापा के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनसे भी मैं डील करता था, समझता था चीज़ों को। तो अब उनको मैं समझाने लगा कि हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए था, ये आपने गलती की है। तो वही मेरा एक्चुअली मेरे को बताया कि ये जब मैं अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स को जब समझा रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बनाऊँ, मुझे जॉब करने की
0: वाह,
2: ज़रूरत ही क्या है, मैं अपना ही बिजनेस बनाऊंगा और लोगों को फिर एम्प्लॉय करूंगा और जॉब्स भी क्रिएट करूंगा।
0: बिल्कुल सही।
2: तो अब उसके बाद 2015 में मैंने MBA फिनिश की। MBA के दौरान मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर, जो 3 महीने का ट्राइमेस्टर था, वो मैंने फ्रांस में किया था, ग्रेनोबल फ्रांस गया था मैं 3 महीने। वो भी ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के भरोसे गया, क्योंकि हम मेरा रूममेट ही जो मेरा रूममेट था इधर IIM रायपुर में, वो भी मेरे साथ फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो 3 महीना
0: वाह,
2: हमने वहाँ रह के पढ़ाई की, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिला उन लोगों, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिका से लोग थे, अफ्रीका से थे, चाइना से थे, रशिया से थे, तो हर यूरोप से तो ऑब्वियसली थे ही, तो हर जगह के लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर और चीज़ें सीखने को मिली। तो फिर मैं जब वापस आया, 6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ करना है, अभी आपको पता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऑपरेशंस कैसे सेटअप करना है, किस तरह के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, पूरा सब सेटअप करने में मुझे 6 महीना लगा। एंड ऑफ 2015 या अर्ली 2016 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया। अभी लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए। मेरे अभी 350 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और कुछ NRI क्लाइंट्स भी हैं मेरे जिनको मैं सर्विस देता हूँ। मेरे कैलकटा में से ज़्यादा एक्चुअली बाहर क्लाइंट्स हैं, और लगभग 25 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हम सर्विस दे रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं। और
0: और आपने जॉब जॉब कितने लोगों को दी हुई है पीयूष जी?
2: जॉब अभी तो हम 5 लोगों को हमने रखा है अपने टीम में। अब इनिशियली ऑब्वियसली सैलरी देना हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि डे वन से ऐसा है कि एक मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से होता है तो आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते, तो डे वन से। पर यह है कि अब धीरे धीरे हमारा भी बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि हम हर साल कुछ डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे।
0: वेरी गुड, चलो करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि भाई अब ऑप्शंस हैं लोगों के पास जब चलिए वो तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमरा ही, और आज पीयूष राखेजा जी और मेघा राखेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। तो काफी बात हो गई अब आप लोगों की पर्सनल जो जर्नी रही है अब तक की उस पर, तो लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम है। तो मेघा जी बताइए, ये दिल्ली में रहते हुए दिल कैसे मिला पीयूष जी से?
1: ये हम आची दोनों को साथ में बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
0: थोड़ा थोड़ा, हाँ तो बताओ ना, बिल्कुल दोनों बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरुआत
1: सो
0: कहाँ से हुई मिलने की?
1: शुरुआत ऐसे हुई कि दिल्ली में तो मेरे इतने कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे नहीं, और ज्यादा किसी कम्युनिटी में किसी को इतना जानती नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी। इवन इन 2024 तक यही सच था। व्हाट्सएप
0: अच्छा,
1: ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी पार्ट, बट ऐसे किसी को नहीं जानती थी इतना। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ धर्मशाला गई थी, एंड हम उनके फ्रेंड के यहाँ ही रुके हुए थे। आंटी की एक नेबर थी जो दिल्ली से थी, एंड वो जब मुझसे मिली तो एकदम से ऐसे पूछी कि तुम्हारे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं दिल्ली में? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है। तो कहती है तुम यू नो यू शुड नो योर कम्युनिटी, बहुत सीखने को
0: सही है।
1: मिलता है ना। तो वो मुझे एक जने का नंबर दी, उनने कहा इनका अपना NGO है, दिल्ली में रहते हैं और इनके काफी फ्रेंड्स और काफी गेट टुगेदर्स और फंक्शंस होते हैं, तो आपको मिलने को बहुत लोगों से मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो वो एक किसी का नंबर दिए, एंड मैं वापस आई, उनसे बात हुई, एंड उनका एक गेट टुगेदर हो रहा था सितंबर में। तो उन्हें बोला कि यू नो आप व्हाई डोंट यू कम, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं, 13-14 लोग हैं, एंड उसमें ना काफी सारे मैरिड कपल्स भी हैं, जो दोनों
0: अच्छा
1: ही विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, और बहुत अच्छा, वेरी एजुकेटेड ग्रुप, सब वर्किंग है अच्छे से, इंडिपेंडेंट हैं, तो और सब मेरी एज के ही थे. तो उनने कहा आपको आना चाहिए, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं गई, 2 दिन का प्लान था.
0: सिस्टर के साथ गए अकेले? अरे
1: नहीं, अकेले, क्योंकि ये सिर्फ सारे विजुअली
0: अच्छा,
1: इम्पेयर्ड ही थे.
0: ओ
1: अब वो मिल नहीं, अब मेरी सिस्टर तो है नहीं ना यहाँ, वैसे भी US में, तो अब सोच लिया था कि और लोगों से मिलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे अकेले
0: जरूरी
1: अकेले तो नहीं इतना टाइम निकलता.
0: है, निकलता बिल्कुल सही
1: हाँ,
0: है।
1: और अब जॉब भी कर रहे हो, तो आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत मतलब यू नीड दैट सोशलाइजिंग.
0: कहाँ का ट्रिप था वो ओमेगा जी? दिल्ली
1: दिल्ली का ही था, गुड़गांव में हम लोगों ने,
0: का?
1: हाँ जी,
0: ओके ओके।
1: गुड़गांव में एक होटल बुक करके, तो ये लोग सब मिलते हैं, तो पूरा अपना दिन पार्टी करते हैं, बातें बातें करते हैं, मिलते हैं, खाना पीना होता है, तो इट वाज गुड फन. तो मैं वैसे तो बड़ा डर डर के गई थी मम्मी
0: हाँ
1: को
0: वही,
1: बोल के.
0: मैं भी मन में वही सोच रहा था कि ऐसे मतलब आप तो फिर भी चले गए, नहीं तो हर कोई सोचेगा यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सब इश्यूज का क्या होगा।
1: देखो, चांस कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है, और प्लस मैं वैसे पर्सनली किसी को जानती तो नहीं थी, बट इससे पहले हम लोग डिनर पे मिले थे एक बारी, तब मैं एक लड़की से मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी होगी तो यू नो ठीक ही रहेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. एंड वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब देखो
0: आपकी
1: अच्छी
0: तो कहानी सिमरन
1: फैमिलीज.
0: से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा
1: हाँ, तो शायद मेरा राज आ ही गया वहां पे, मिल ही गया
0: हाँ
1: था.
0: राज पता नहीं राखे जा जरूर आ गया।
1: वही है, मैंने चांस लिया, पर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि देखो अगर मैं बोर होंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, आप मुझे लेने आ जाना. बट लकीली हम वहां पहुंचे, तो पहले तो हम लोग ने किया, पीयूष था नहीं वहां पे उस टाइम, मुझे पता नहीं था कि पीयूष के बारे में उस टाइम कुछ, तो ये बाय चांस उस टाइम कैलकटा से दिल्ली आया हुआ था, इसकी कोई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस थी,
0: अच्छा
1: तो हाँ, और ये भी वहां सबको जानता था, तो ये भी इनवाइटेड था. तो शाम को ये हम लोग सब स्विमिंग विमिंग करके आए, अपना तैयार व्यार हो रहे थे, तो एकदम से ये आया. वहां पे एकदम एंट्री
0: ओहो
1: मारी, एंड हाँ बिल्कुल आया, एंड देन बस एकदम से एक होता है ना कनेक्शन, आपको फील होता है, हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को हाय बोला, बट उतने में ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कनेक्शन है.
0: कुछ तो है।
1: हाँ,
0: कुछ
1: ये पीयूष को
0: है
1: ज्यादा
0: तो कुछ
1: लगा था वैसे, आप इससे पूछना जब
0: है।
1: इसकी बारी आएगी. एंड देन बस पूरा रात बाय चांस ऐसा होता रहा कि हम एक
0: लेकिन
1: दूसरे
0: आपको तो
1: के.
0: कुछ पता थोड़ी था कि ये सिंगल है कि मतलब कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता थोड़ी था आपको? लेकिन
1: सिंगल था ये पता था, क्योंकि ग्रुप में जो मैरिड थे उनके बारे में तो पता ही था, बाकी सब हम सिंगल ही थे. एंड
0: मतलब
1: हाँ
0: बेसिकली आपके नाम वगैरह और वो क्या बैकग्राउंड है या बायो क्या है वो सब छोटा मोटा आपको मालूम था कुल मिलाकर?
1: नहीं, सिर्फ इनका नाम पता था और थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि क्या हुआ था उसी के 2 हफ्ते पहले ना, इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आई, ये चंद्रशिला ट्रेक के लिए गए थे,
0: अच्छा
1: तो वो वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि एज आई सेड ना मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत शौक है,
0: बहुत शौक है। राइट
1: तो आई वॉज लाइक एक VI कम्प्लीटली ब्लाइंड ये ट्रिक्स कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका वो वीडियो देखा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा. तो एक्चुअली यही हुआ कि जब हम मिले तो इनका नाम पता था, बेसिक पता था बिल्कुल, 2 3 4 चीजें,
0: और आपने
1: तो
0: सोचा होगा यार यूट्यूब पे जिसको देखा वो यही मिल गया।
1: हाँ बिल्कुल. मैंने कहा ये अच्छा टाइम है पूछने का कैसे. तो जब इससे साइड बाय साइड हम बैठे थे, इससे बात होनी शुरू हुई, तो ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ सोच के बात शुरू किया नहीं था, क्योंकि ये दिल्ली से भी नहीं थे, एंड आई हैड नेवर थॉट कि मैं कभी दिल्ली छोड़ के यू नो जाऊंगी,
0: कहीं
1: तो वो
0: जाऊंगी?
1: क्वेश्चन ही नहीं था कभी. बट मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है, समझना चाहिए कैसे ट्रैक कर रहे हो और क्या क्या चीजें कर रहे हो, तो उसी टॉपिक पे बस बात शुरू हुई और हमारी बात होती गई, और हमें अच्छा लगा एक दूसरे का कंपनी, तो नंबर शेयर किए, फिर वी स्टेड इन टच, एंड फिर बस चीजें बदलती गई, तो दिस इज हाउ वी मेट. एंड
0: ये आपका ऐसे मिलना हुआ आपका। और पीयूष
1: यस
0: जी
2: हाँ
0: आपको
2: जी,
0: भी कुछ कुछ हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था?
2: मेरे को तो बहुत कुछ हुआ था, जो झूठ क्यों बोलूं, पर ये पहला मीटिंग में इतनी देर हमने बात की, आप समझो कि ऑलमोस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आया उधर शाम को 6 7 बजे, 8 9 बजे से पार्टी हुई और सुबह 4 बजे तक चली, ऑलमोस्ट हम आधे से ज्यादा टाइम हम दोनों ही बात कर रहे थे साइड
0: अरे भाई
2: बाय
0: साहब,
2: साइड बैठ के.
0: लोगों को तो वही समझ में आ गया होगा। गेट टुगेदर
1: हाँ, वो तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा.
0: जो है सफल हो गया।
2: बिल्कुल.
0: हाँ
2: नहीं, मेरा भी स्टोरी मेघा जैसे ही है. मैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है हार्डली लोगों को जानता था, सिर्फ 2-3 लोगों को ही जानता था. फिर आई थिंक बिजनेस के वजह से ही, काम के वजह से ही, पहले किसी ने बोला कि जॉर्ज ने, जॉर्ज के पास आपको रेकमेंड किए हैं, जॉर्ज सर एक सेशन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि फिनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेसिबल वे में कैसे पर्सन विद डिजेबिलिटीज कर सकते हैं. तो उसके लिए मैंने एक सेशन किया और वहाँ काफ़ी चीज़ों को समझा. तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम्युनिटी में, हाँ
0: उसी ट्रिप में,
2: नहीं,
0: नहीं
2: उस ट्रिप
0: नहीं
2: में नहीं, ये
0: उससे
2: थोड़ी
0: पहले,
2: स्टोरी
0: अच्छा
2: पुरानी. उससे आई थिंक
0: इससे
2: उसके टाइम
0: पहले
2: ना,
0: की,
2: उससे
0: इससे
2: दो
0: पहले की
2: साल,
0: बात,
2: मतलब हम
0: अच्छा
2: मिले 2024, ये दो 2022 की बात, टू
0: की बात है. ओके.
2: थाउजेंड ट्वेंटी टू में हम, मेरा पहला सेशन हुआ था जॉर्ज के साथ. फिर जॉर्ज के साथ, तो मैंने जॉर्ज सर के साथ करीब करीब 3-4 सेशन किया है. फिर उन्होंने मुझे एक बार, ये जो पर्पल फेस्ट होता है गोवा में,
0: जी
2: 2024 में, उन्होंने जनवरी के महीने में
1: हाँ,
2: हुआ
1: सेम
2: था.
1: योर. हाँ.
2: हाँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ पे कि हम एक लाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप गोवा आओ और अपने अपनी जो जर्नी है, कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किए, और कैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आज लोगों के साथ आप शेयर करो वहाँ आकर. तो ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे दानिश जी के साथ भी मैंने किया है सेशंस. तो इसके कारण क्या है कि लोग जानने लगे कम्युनिटी में, तो ऐसे कनेक्शन बढ़ता रहा. और गोवा में ही, आई थिंक गोवा में जब मैं गया था, तभी मैं सबसे ज़्यादा लोगों से मिला. और एक होता ना कि आपको कम्युनिटी में भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिसके साथ आप समय बिता सको, चीज़ें डिस्कस कर सको. तो वहाँ पे मुझे गोवा में कई लोग ऐसे मिले, और वहाँ से फिर मेरा काफ़ी इस कम्युनिटी में भी काफ़ी जान पहचान लोगों से हुआ. और अभी मैं एक थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी में लोगों से. और यही होता है ना कि आपकी एक, मैं वही बोलता हूँ ना, बिजनेस के वजह से ही मैं आज कम्युनिटी में भी कनेक्टेड हूँ. और मेरी शादी भी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया म्यूचुअल फंड का, वहाँ मुझे मेगा भी मिल गई.
1: ये वो भी थोड़ा डिग्रेस हो गया. आई थिंक ये वही है कि पर्पल फेस्ट में जब ये गया, तो उसी टाइम ये भी उन्हीं लोगों से वही मिला था. सो द सेम ईयर जब मैं उस पूरे ग्रुप से मिली, वो भी सेम ईयर स्टार्टिंग में उस ग्रुप से वहां पर्पल
0: बताइए,
1: फेस्ट पे मिला.
0: कहाँ दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ धर्मशाला, कहाँ गोवा और कहाँ
1: सही में.
0: गुड़गांव.
1: सच्ची में तो वही है ना, जब मिलना होता है, लिखा होता है, तो हो ही जाता
0: हाँ, तो हम
2: बिल्कुल.
0: थे गुड़गांव के ट्रिप पर, वहां पर बहुत बातें की आप दोनों ने मिलकर के. और बातें करने के बाद फिर ये कब तय हुआ कि भाई अब तो बातों से काम नहीं चलेगा?
2: बहुत जल्दी, क्योंकि मैं, देखिए, हमारे दोनों का ही माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो कोई शादी की बात भी नहीं हो सकती. पहले आप एक जन को जानोगे, समझोगे, एटलीस्ट 1-2 साल निकलते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि क्या हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, हम दोनों कंपैटिबल हैं, और शादी की सोचें. हम तो लगभग सितंबर एंड में मिले थे, और आप समझ लो नवंबर मिड में तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं.
0: अरे
2: आप
0: भाई
2: समझ लो
0: साहब,
2: ऐसे,
0: गजब.
2: या आप समझ लो नवंबर,
1: इसने डिसाइड किया था.
2: चलो, इसने नवंबर एंड में डिसाइड कर लिया, ठीक है, 15 दिन बाद इसने
0: अच्छा.
2: डिसाइड कर लिया, ठीक है. तो मतलब
0: हाँ, नहीं,
2: आप
0: मैं
2: समझ
0: वही
2: लो
0: पूछ
2: दो
0: रहा हूँ.
2: महीने
0: मैं उस पर आने वाला भी था कि भाई प्रपोज किसने किया पहले.
1: इसने
2: प्रपोज मैंने किया था, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने में, आप पॉइंट हुई है कि 2 महीने में ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को इतना मैं श्योर हो जाऊंगा कि 2 महीने में मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे शादी करनी है.
0: नहीं कि
1: एंड आई
0: मुझे
1: थिंक
0: परफेक्ट, मुझे मेरी सेनोरिटा मिल गई है.
1: नहीं, सही बात है. आई थिंक यहाँ पे मैं भी यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज यू नो, एक होता है, आप एक सर्टेन टाइम से जब आप नहीं किसी के साथ होते हो एंड ऐसा कुछ हो भी नहीं रहता है, तो आई थिंक आपके माइंड में वो चीज़ आ भी जाती है कि चलो अब तो शादी नहीं करेंगे, बट ठीक है, फ्रेंड्स हैं, जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो शादी का पॉइंट भी नहीं होता. एंड अब ऐसा नहीं है, हम मिले भी काफ़ी, ये लोगों से मिला होगा इससे पहले, मैं भी मिली, लेकिन किसी के साथ ना कभी वो कनेक्शन फील नहीं हुआ कि चलो इसको यू नो किसी चीज़ में कन्वर्ट करा जा सकता है. बट आई थिंक
0: मेघा जी, मैं पूछने वाला ये था कि लाइफ पार्टनर के बारे में, मतलब चलो आप अकेले थे, सब कुछ था, ब्लाइंड कम्युनिटी का नहीं जानते थे, उस दौरान मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी करूंगी तो इससे करूंगी उससे करूंगी, तो वो कैसा था दौर?
1: आई थिंक जैसे पहले तो 20s में तो ऐसा लगता है, हाँ चलो कोई तो मिल ही जाएगा. काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं, एवरीथिंग. और मेरा क्या था कि, और ये आई थिंक काफ़ी लोगों का होता है, हम आई थिंक पहले भी इसके बारे में, आप और हम शो से पहले बात कर रहे थे, कि विजुअली इम्पेयर्ड खुद हो के आपको ये लगता है यार कोई साइटेड मिल जाए. और ऐसा ही था, मतलब पहले और मेरे, एज आई सेड राइट, मेरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स या कम्युनिटी में कोई कनेक्शन था नहीं. मैं हमेशा
0: नहीं,
1: मेनस्ट्रीम,
0: आपके सर्कल में मेन स्ट्रीम के लोग ही थे।
1: राइट, तो हमेशा वही रहे हैं और वही मेरे लाइफ का पार्ट भी रहे हैं. उसी ग्रुप में मतलब फ्रेंड्स के साथ, साइड फ्रेंड्स के साथ अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बट कभी कुछ पैन आउट हुआ नहीं. फिर एक सर्टेन एज के बाद आके तो यही लगा कि देखो, शादी जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए तो नहीं करनी थी, करती तो इसलिए करती कि हाँ कोई सच्चा मिला तो. एंड जैसे सबके साथ होता है, मेरे पेरेंट्स ने भी अरेंज मैरिज में भी किया, जैसे पोर्टल्स वगैरह पे दो तीन लोगों से मिली, कुछ साइटेड, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से. पहले तो पेरेंट्स का यही था कि नहीं, साइटेड से ही करो, तुम दो विजुअली इम्पेयर्ड कैसे मैनेज करोगे जिंदगी, बहुत डिफिकल्ट होगी. और वही मेरा भी माइंड फ्रेम था, बट और फिर काफी लोगों से मिली बट किसी से कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ. फिर धीरे धीरे करके यही सोच लिया कि ठीक है, नहीं होएगी तो नहीं होएगी. अब ठीक है, कभी कोई मिल गया तो देखा जाएगा. अरेंज मैरिज तो नहीं करूंगी, और बाकी कुछ होगा तो वील सी इन द फ्यूचर. तो वही माइंडसेट हो भी गया था. एंड पेरेंट्स भी आई थिंक यही सोच लेते कि ठीक है, हमारे साथ खुश है तो हमारे साथ ही रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसी माइंडसेट में ही आई थिंक चलते चलते, बट सडनली पीयूष के साथ इट जस्ट हैपेंड कि वो एकदम क्लिक हुआ, ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लिक हुआ कि बस 2 महीने में ही सब कुछ हो गया. सोचा ही नहीं कि अरे 2 साल की जरूरत भी है. अब
0: डिसीजन लेने में टाइम क्यों लगा मेगा जी? नहीं,
1: इतना टाइम तो चाहिए. दो दो महीने से कम तो बहुत कम है.
0: पीयूष ने कहा ना 15 डेज बाद आपने भी डिसाइड कर लिया था।
1: अब थोड़ा टाइम तो लगता है. अब एक्चुअली जैसे
0: जब कभी मन में आ गया था आपके कि यार मतलब यही कर दे प्रपोज पहले तो ठीक रहे?
1: हाँ, वो तो था ही ऑफ कोर्स. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पीयूष मतलब कि किसी को डेट या किसी को लाइक करता है या नहीं करता. जब हम मीटिंग हमारी हुई, हमने काफी बात की, तब ऐसा लगा तो कि सिंगल है. जैसे आपने पूछा भी था ना इस सेट की, तब वहां सब सिंगल ही थे. बट फिर भी किसी के लाइफ में कोई हो तो पता तो ऐसे रहता नहीं है, और किसी से ऐसे डायरेक्टली पूछो तो अजीब लगता है. तो अक्टूबर हम पूरा महीना ऐसे बात करते रहे, एंड ऑन एंड ऑफ बात होती रही. फिर तब लगता था जैसे आप कह रहे हैं, यार खुद ही बोल दे तो सही रहेगा.
0: काम आसान हो जाए, अपन को नहीं बोलना
1: हाँ,
0: पड़े।
1: तो देखो लाइक
0: अपना
1: ने
0: काम,
1: लाइक हाँ जी,
0: अपना काम खाली सोचने का ही रहे।
1: हाँ सही में कि हाँ ना बोलो, खत्म. तो लाइकिंग तो थी ऑब्वियसली. एंड जब इनने प्रपोज किया, ही ऑब्वियसली प्रपोज्ड फॉर अ रिलेशनशिप. पहले शादी का था माइंड में, बट पहले देखा था कि ठीक है, अभी तक मिले एक ही बारी है, मिलके थोड़ा पता चलेगा. तो ही प्रपोज्ड, एंड देन नवंबर के एंड में ये दिल्ली आए थे. उस टाइम इनको एनएबी से एक अवार्ड मिल रहा था, तो ही केम अ फ्यू डेज अर्ली सो दैट हम लोग थोड़ा मिल पाए, टाइम स्पेंड कर पाए. तो उस टाइम बस मिलके लगा फर्स्ट टाइम में कि नहीं यार, जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो अच्छा है, इट वुड बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. तो ही मेट माई फैमिली, मम्मी पापा से मिला, इसके कुछ कजिन्स दिल्ली में रहते हैं, इसके भैया, तो उनसे मैं मिली. एंड हमें काफी पॉजिटिव फीलिंग आई. तो हाँ, तो इसलिए वो तब उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना ईजी था कि हाँ ठीक है, शादी कर सकते हो इससे.
0: ओके, वेरी गुड। और नवंबर से मई 2025 में तो आपकी शादी हो गई।
1: लिटरली वो बोले चट मंगनी पट बिया.
0: तो नवंबर से अप्रैल तक, मई तक का जो दौर था वो कैसा था?
2: ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना था, तो नवंबर मिड में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसे मैं किसी से मिला था दिल्ली में और मैं उसको लाइक करता हूँ। तो इनिशियली पेरेंट्स पहले मेरे हम दोनों के पेरेंट्स ऐसे ही थे कि देखो, दो वीआई की शादी तो बहुत मुश्किल है, ऐसा करना आगे लाइफ में दोनों के लिए डिफिकल्टी होगा, इससे बेटर है कि कोई साइटेड को ढूंढ ढूंढ ले, भले और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बट ऐसे फिर और वीआई कपल, जो एक और वीआई कपल से, विजुअली इम्पेयर्ड कपल से मेरे पेरेंट्स कैलकटा में मिल के इतने इम्प्रेस हुए कि ये देखो, ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने खुश हैं, और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और इतना मतलब ऐसा लगता नहीं इनसे मिल के कि ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ अपना साइट को लेके, ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल भी चिंता करते हैं। तब उनसे मिलके और उनसे बात करके उन्हें उन्हें ये समझ में आ गया कि विजुअली इम्पेयर्ड सामने वाला अगर लड़की विजुअली इम्पेयर्ड मिलती है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब मैंने मतलब पेरेंट पहले तो पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया था, फिर पेरेंट्स सामने से बोले कि नहीं इस ये ऐसा कुछ आता है रिश्ता तो हमें बिल्कुल देखना चाहिए। तो फिर जब मैंने बताया तो बहुत ईजी हो गया, जब नवंबर में मैंने पापा मम्मी दोनों को बताया तो बहुत ईजी था, उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा उस बारे में, बट लड़की के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर ये था कि उनको कि एक बार मिल लें और एक बार लड़की को देख लें, उसके बाद फिर देख लें आगे क्या क्या करना है। तो दिसंबर में फिर दोनों के पेरेंट्स मिले, हम ये क्या इसके पेरेंट्स और मेघा दोनों कैलकटा आए थे, सब मिले और फिर वहीं ट्रिप में ही

0: गाइड कर लिया, आगे हमने फिर जनवरी में रोका कर ली और फिर मई में शादी।
1: तो पीयूष जी, मेघा से मिलने से पहले, चूंकि आप भी थ्रू आउट पूरा मतलब मेन स्ट्रीम में ही रहे, कभी ये था मन में कि यार ब्लाइंड से शादी करनी है या साइटेड से करनी है, या फिर मतलब जो मिल जाए उससे करनी है, क्या सोचा था आपने?
0: देखिए पहले 20s में ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं बिल्कुल ऐसे जैसे इसका था ना, मेघा ने बताया कि कुछ न किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी, इतना मैंने सोचा नहीं कभी। लेट 20s में ही मैं रियलाइज़ करने लगा कि पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं, और पेरेंट्स भी रिश्ता देख रहे थे, साइटेड ही देख रहे थे, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख रहे थे, बट कोई रिश्ता वैसा आ नहीं रहा था। और कोई रिश्ता आता भी ना तो आपके मन में डाउट होता है, बोले ये अगर सामने से ऐसा रिश्ता आ रहा है तो क्यों ऐसा आ रहा है ना, मतलब अगर मैं साइटेड होता तो मैं क्यों ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों सोचूंगा, जबकि लव मैरिज अगर नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो क्यों कोई ऐसा देखेगा रिश्ता। तो वो एक फेज था जिसमें ये था, बट फिर मतलब ये मेरे को था कि विजुअली इम्पेयर्ड कोई अगर मिलना होगा तो मिल जाए, मैं ओपन हूँ, मेरे को कोई ऐसा कुछ इशू
1: कोई
0: या
1: दिक्कत
0: प्रॉब्लम
1: नहीं।
0: नहीं है। और क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 सालों में कई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिला, समझा कि काफ़ी अच्छे से सब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुश हैं और काफ़ी चीज़ों में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड से नहीं करना है या करना है, मैं दोनों तरह से ओपन था।
1: आप दोनों की स्टोरी सुन के ना एक बात मेरे मन में आ रही है,
0: हाँ जी
1: और मैं आप दोनों से ही पूछना चाह रहा हूं। जो लोग ब्लाइंड फील्ड में रहते हैं शुरू से, उनको जब ये शादी की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी फॉर ब्लाइंड सेम डिसेबिलिटी, उनको डिसीजन लेने में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप दोनों थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों वी आई हैं, तो आप दोनों को ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्या रीजन है इसके पीछे?
0: आई फील दोनों का कॉन्फिडेंस, मेघा का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि ये चीज़ों को कितने अच्छे से करती है, शी इज सो कॉन्फिडेंट। अगर इसको देखोगे आप, हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, शी इज कॉन्फिडेंट, और मिल के बात करने का तरीके से लगा कि कोई फील ही नहीं होता इसको, कुछ है भी नहीं। क्योंकि कई बार होता है ना, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको कई बार लो लगता है कि ये मोटिवेटेड नहीं है, डिमोरलाइज्ड है खुद, कई बार ऐसा लगता है, बट मेघा से मिलके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आई थिंक मेघा ने भी मेरा जब ट्रैकिंग वाला स्टोरी सुना और ये समझा कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक उसको भी ये चीज़ अच्छी लगी।
2: आई थिंक वही बात है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड लोग जो स्टार्टिंग से इस कम्युनिटी में है, उनको डिसीजन लेने में मुश्किल रहता है। आई फील कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढते। आप ना ये सोचते हो कि ठीक है, हमको कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है हम लोग ही साथ में हो लेते हैं, एटलीस्ट कोई रहेगा साथ में ज़िंदगी भर, बट वो मुझे लगता है एक कॉम्प्रोमाइज़ है। और वो ठीक है आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना कि हाँ आपके साथ सच्ची में कोई है। तो जब मैं पीयूष से मिली तब मुझे यही ऑनेस्टली लगा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या साइटेड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्लिक करते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ
1: मेरे क्वेश्चन का ये तो एक पार्ट रहा है ना,
2: जी
1: और लेकिन हो सकता है हजार में से एक दो लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आप लोगों ने जो बात अभी कही अपने आंसर में, बिल्कुल ठीक कही अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को, यानी जो शुरू से ब्लाइंड फील्ड में रहे, उन्हें एक दूसरे के चैलेंजेस का पता होता है, और चूंकि आप दोनों नहीं रहे ब्लाइंड फील्ड में, तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस मैटर नहीं करते थे एक दूसरे के?
2: आई डोंट थिंक, मे बी आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटायरली ट्रू नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं दैट पीयूष या मुझे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस नहीं रहे, एंड स्पेशली जब आप पहले देख सकते हो और फिर आप अपनी साइट खो देते हो तो थोड़ा डिप्रेसिंग ज़्यादा लगता है फील। क्योंकि एक चीज़ करते करते एकदम से उस चीज़ को नहीं कर पाना और उस वजह से काफ़ी चीज़ों को छोड़ देना, और फिर उसके बावजूद आप इतनी सारी चीज़ें लाइफ में अचीव कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस पीयूष का मुझे अट्रैक्ट करता है देन चैलेंजेस। बट आई हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम एक दूसरे के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बिकॉज हम दोनों लेट ब्लाइंड हैं, तो हमें वही जो मैं आपको बोल रही हूँ वो डिप्रेसिंग फेज और हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए ऑफ रीलर्निंग, जैसे एक छोटी सी बात कहूँ तो
1: आइसोलेशन में भी एक तरह से आप मेन स्ट्रीम में होते हो भी आइसोलेशन में रहे।
2: बिल्कुल बिल्कुल वो चैलेंजेस राइट, ये जब आप देख सकते हो कि आपके आसपास सब लोग सब कुछ कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, वो भी एक अपने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आप सिंपली एक मोबिलिटी की बात कर लीजिए व्हेन इट कम्स टू व्हाइट केन। जो लोग स्टार्टिंग से ब्लाइंड होते हैं मैंने देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं केन यूज करने के लिए क्योंकि हमेशा से उनका माध्यम मोबिलिटी का वही रहा है। बट ये लेट ब्लाइंड में हमने देखा और हमारे साथ भी हुआ है कि हमें इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज को एक्सेप्ट करना टू वॉक विद अ व्हाइट केन।
1: व्हाइट कैन।
2: हाँ जी, तो हम इसलिए बहुत बारी खुद से चल के ये नहीं, हम तो चल ही लेंगे, हम बहुत गिरे हैं, हमें बहुत लगी है और हमें सब बोलते हैं अरे तुम कितने पागल हो, व्हाइट केन यूज करो कितना आसान हो जाएगा। बट वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो इमोशनली एक बहुत मुश्किल चीज है टू एक्सेप्ट। तो पीयूष और मैं एक दूसरे के बारे में वो चीज समझ पाते हैं कि हमें कितना डिफिकल्ट हुआ वो चीज को एक्सेप्ट करना। एंड अब बल्कि हम दोनों ऑनेस्टली बताऊं तो हम दोनों को जरूरत है, हमें यूज करना चाहिए, बट हम शादी से पहले दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा था। बट अब शादी के बाद आई थिंक हमने एक दूसरे का उस चीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अब हम दोनों अकेले बहुत घूमते हैं, हम डिनर्स लंचेस शो सब जाते हैं अकेले और हम व्हाइट केन लेके जाते हैं। एंड हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ व्हाइट केन तो यूज करना ही है और हमें वो नॉर्मल लगता है। तो
1: जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं दोस्तों, समझिए आपको कि ये लोग आज मतलब अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको व्हाइट केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जी।
2: हाँ जी, तो हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगी क्योंकि जैसे हम बिल्कुल जैसे पीयूष भी आई थिंक पीयूष अपना ओपिनियन तो हम लोग को ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक है एंड हमें बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों बहुत फूडी हैं, एक तो ये कैलकटा से हमें दिल्ली से हो तो दोनों को खाने का शौक बहुत है
1: शौक है ही बिल्कुल।
2: एंड हम लोग को काफी
1: अच्छा, आप
2: ऐसे
1: दोनों
2: मिले
1: के बीच में कहीं वेज नॉन वेज वाला इश्यू तो नहीं आया?
2: नहीं, हम दोनों
1: क्योंकि
2: वेजिटेरियन
1: अच्छा फिर
2: है
1: ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है ना कि नॉनवेज थोड़ा ज्यादा चलता है।
0: ऐसे एक्चुअली मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, बट फैमिली हम पहले से ही मेरे बर्थ के पहले यहाँ सेटल हो गई थी कैलकटा में, तो शुरू से ही हम वेजिटेरियन रहे हैं।
1: वेरी
0: और
1: नाइस।
0: कमिंग कमिंग टू योर टॉपिक, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये दो विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं या उनकी उनकी शादी होती है या कंपेनियनशिप होती है, तो आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर इसलिए रहता है क्योंकि चीजें जो आपको पसंद है बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर होगी। और जैसे आप मान लो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, एक्साइटेड है और एक विजुअली इम्पेयर्ड है एक शादी में या मतलब एक रिलेशनशिप में, तो कई बार होता है कि जो साइटेड इंसान है उसे साइट सीइंग की शौक है और ऐसे कई चीजें शौक है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, उनको उसके उसके मतलब का चीज नहीं है। और जब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हो तब उनके वो लाइक माइंडेड भी होते हैं और उनके जो इंटरेस्ट की चीजें कई बार सिमिलर मैच हो जाती है।
2: मतलब ये मैं इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ हम लोग जानते हैं पर्सनली जो एक विजुअली इम्पेयर्ड और एक साइटेड है, वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट वही एक दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है बिकॉज आई फील एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को मोटिवेट करना कि और ग्रो हो इंसान, बेटर चीजें करे, वो इम्पोर्टेंट है। आई फील एज ए सेक लाइक माइंडेडनेस कंपैटिबिलिटी वो इम्पोर्टेंट है, अब चाहे विजुअली
1: बहुत
2: इम्पेयर्ड हो
1: बढ़िया,
2: साइटेड हो डजेंट मैटर।
1: काफी सीरियस बातें हो गई। जरा ये बताओ, हनीमून प्लान किया कि नहीं दोनों ने?
2: बिल्कुल किया। एंड हम लोग अकेले गए भी, हमारे लिए फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप अलोन था। एंड
1: ओ
2: यस, एंड हम लोग ने पहले एक्चुअली बहुत डिबेट किया। हमने सोचा इंडिया में पहले कहीं सोचा चले जाए क्योंकि इजी रहेगा राइट, इंडिया में अपने ही लोग हैं, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाता है। बट फिर पीयूष ने एक्चुअली पुश किया कि नहीं यार बाहर जाने का मन है तो चलते हैं, वर्स कम वर्स क्या होगा, हम होटल में बैठे रह जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, बट
1: सही
2: ट्राई
1: है।
2: नहीं है ना, तो ट्राई नहीं किया तो वो बनता नहीं। तो हम लोग ने फिर सोचा ठीक है बाली चलते हैं, क्लोज है अगर कुछ हुआ भी
1: इंडोनेशिया।
2: तो। हाँ जी, ये सोचा क्लोज है कुछ हुआ भी तो फैमिली पहुंच सकती है, हम वापस आ सकते हैं। एंड यू नो वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं काफी, हमने लोगों से सुना, रिव्यूज लिए, खुद से इसने अपनी आइटिनरी सेट की।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा ही प्रोग्राम पीयूष राखेजा और मेघा राखेजा के साथ, लेकिन हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और वो सारा जो काम है उसके ऊपर इनके साथ एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सेशन करेंगे, जहां आप खुल करके इनके साथ सवाल, क्यों भाई, कर सकते हैं ना आप दोनों के साथ?
2: ऑफ कोर्स, बिल्कुल
0: बिल्कुल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तुरंत

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगी, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुखवंत सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। काफी लंबे समय से डीपीएल से जुड़े रहे हैं, प्रिंसिपल का काम भी आपने किया है, और फिर एक अच्छे टीचर का जो सम्मान है आपको दो बार मिला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम आपने किए हैं जिसके लिए आपको सम्मान प्राप्त है, और आज भी लोग आपको एक शिक्षाविद के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं अपने स्थान पर भोपाल में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने लंबे समय से कम 3 दशक तक आपने एजुकेशन फील्ड में काम किया है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, एक बहुत बड़ा अनुभव है। आदमी अगर 3 दशक किसी फील्ड में रहता है तो उस फील्ड का पूरा जो है निचोड़ उनके पास हो जाता है। तो बिल्कुल आपके एजुकेशन शिक्षा के अंदर जो गतिविधियां हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसकी पूरी आपको जो है ज्ञान भी है, और आप बच्चों से अगर जुड़ते होंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे बेहद खुश होते होंगे और आपको पसंद भी करते होंगे, और आपने इंग्लिश बच्चों को पढ़ाया है। और मैं चाहूंगा कि आगे की जो बातें हैं, जितना मुझे जानकारी हो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन अभी हम लोग सर से ही अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। तो आप सभी की तरफ से सुखवंत सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर।
1: नमस्कार सर
0: जी, कैसे हैं आप?
1: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला, और ये भी एक परमात्मा की देन मैं समझता हूँ कि वो हमें मिलाता है और साधन बनते हैं। साधन हमारे यहाँ से जो आपके ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है उनके थ्रू मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि आप इस तरह से शो कंडक्ट करते हैं, और आपने मुझे इस काबिल समझा, ये मेरा सौभाग्य है।
0: अरे सर जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको सुनने का। एक सौभाग्य है मेरा कि मैं आप जैसे एजुकेशनिस्ट को सुन पा रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे कि शिक्षा प्रणाली में काफी अच्छा जो बदलाव आए हैं, इसके अलावा और क्या बदलाव होने चाहिए, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा अपना

0: विचार हमारे साथ साझा कीजिए।
1: सर, अभी तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की,
0: हाँ।
1: उसमें बहुत बदलाव जो हैं वो सारे जो होने चाहिए उस ओर, मतलब एक बहुत ही
0: अग्रसर है।
1: अच्छा एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को प्राप्त हुई है और आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। और जो एक रॉट लर्निंग पहले होती थी कि चीजों को कंठस्थ कर लिया जाए और उसको फिर एग्जाम कंडक्ट हो और बच्चे जो लिख देते थे, जो कंठस्थ करने की क्षमता रखते थे वो अव्वल नंबर पा जाते थे, और जो अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते थे वो पीछे हो जाते थे। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा मतलब इसका तालमेल अब चेंज होगा और अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और क्वेश्चंस भी उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे और जो आउटपुट होगा इसका निश्चित रूप से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। नए पॉलिसी में काफी कुछ बदलाव किए हैं और जो हमें चाहिए था वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, दो कैटेगरी के बच्चों को जो बाहर कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं, उन दोनों को भी न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ जो सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जितना तक वो पढ़ता है उतना तक उसको सर्टिफिकेट में, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर काम हो रहा है एजुकेशन नए पॉलिसी में। तो अब मैं चाहूंगा कि जैसे आज के समय में जिस चीज को हम लोग देख रहे हैं, और आप 30 यानी पूरे 30 सालों तक आप एजुकेशन फील्ड में काम किया है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज से अगर हम लोग पीछे चले जाते हैं, 30 ईयर्स बैक चले जाते हैं, 3 दशक पीछे चले जाते हैं, तो उस
1: जी
0: समय आपकी जब शुरुआत एजुकेशन फील्ड में आप एंट्री कर रहे होंगे तो उस समय का जो सिनेरियो था वो कैसा था, और आप किस लक्ष्य को लेकर वहां पहुंचे थे, और कैसे कैसे आप में क्या बदलाव आया, वो भी मैं
1: सर,
0: चाहूंगा कि जरूर।
1: एक प्रश्न पूछा जाता है शिक्षकों से, जो शिक्षक जो
0: जी
1: शिक्षा
0: जी
1: की लाइन में होते हैं, कि आप इस फील्ड में अपनी इच्छा से आए या किसी
0: मजबूरी से
1: परिस्थितियों
0: आए।
1: से आए। तो अगर आप मेरे से ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा था, एक वक्त ऐसा आ गया था जब हम लोग मैं उस 83-85 के दौरान मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था रेवेंशा कॉलेज कटक से,
0: जी जी जी
1: और उसी दौरान कुछ ऐसा हो गया था कि हम लोग उड़ीसा में रहते थे, लेकिन जो 84 के जो रायट्स हुए थे उसमें हमारे पिताजी का और उस कारण से जब मेरी एमए कंप्लीशन की तरफ थी तो कुछ आर्थिक समस्याएं गई और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दिल्ली पढ़ने के लिए जाऊं, आगे अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। लेकिन मैंने जब घर के
0: जी जी
1: हालात
0: जी
1: देखे तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ नौकरी की ओर भी जाना चाहिए, और मैंने वहीं से एक मैं अगर आप समय दें तो मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरह डीपीएस में आया। और मैं अपने जीजा जी के साथ में गया हुआ था वेलोर में, और वेलोर में
0: अच्छा
1: जीजा जी का इलाज चल रहा था, मुझे वहां पर करीब 4 महीने रुकना था, 87 की बात मैं कर रहा हूं। और उस दौरान जब एक दिन सुबह मैं जीजा जी को नाश्ता करा के लौट रहा था तो जीजा जी ने कहा कि आज लंच जब लेके आओगे हॉस्पिटल में तो डाब लेके आना मेरे लिए, नारियल का पानी जो होता है।
0: नारियल का पानी डाब। हाँ
1: आते वक्त अपने होटल से जब खाना लेके जा रहा था जीजा जी के लिए तो रास्ते में एक पान की दुकान थी, उसमें से मैंने 2 डाब लिए जो 4 रुपए के आए, और मैंने जब
0: जी
1: पान वाले को 5 रुपए दिए तो उसने कहा मेरे पास में अभी चेंज नहीं है तो आप बाद में ले लीजिएगा। और मेरी नजर एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे पड़ी, मैंने वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज
0: अच्छा
1: ले लिया, और उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज को पढ़ने के लिए मेरे को 2-3 दिन का और समय लग गया था। लेकिन जब मैंने उसको खोला तो उसमें डीपीएस कोरबा के की एक एडवर्टाइजमेंट थी, और
0: अच्छा
1: डीपीएस जो था नाम, इससे मैं वाकिफ था क्योंकि ये हमारे उड़ीसा के जयपुर जहां का मैं रहने वाला हूं उसके बगल में दामन जोड़ी है। दामन जोड़ी में 83 में डीपीएस की ब्रांच खुली थी, और हम दोस्त लोग थोड़ा सा मतलब मन में ये कहते थे कि अगर ये हम लोग के स्कूलिंग के दौरान डीपीएस खुला होता तो हमें इसमें पढ़ने का हमें भी मौका मिलता, तो वो हमने लोगों ने मौका
0: जी
1: मिस किया था। जब मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज में डीपीएस देखा तो मुझे अपने स्कूल डेज याद आए और मैंने कहा देखिए स्कूल में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला और यहाँ पर मुझे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी शायद मिल जाए। तो मैंने वहीं से वेलूर से ही एक प्लेन पेपर में मैंने चिट्ठी लिखी डीपीएस कोरबा के मैनेजमेंट को कि मैं इस तरह से जीजा जी के इलाज के लिए आया हूँ और मेरा ये बायोडाटा है, मैंने एमए तक शिक्षा ग्रहण की हुई है और मैं नॉन बीएड हूँ, मेरे पास में सर्टिफिकेट्स नहीं है, मेरे को आप अगर मौका देंगे तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हो सकता हूँ। मैंने वहां से वो चिट्ठी पोस्ट कर दी वेलोर से और जब वापस विशाखापट्टनम आया मैं, जब विशाखापट्टनम हम लोग रहते थे क्योंकि जयपुर से हम लोग शिफ्ट कर गए थे, विशाखापट्टनम से डैडी ने रेजिडेंस अपना विशाखापट्टनम कर लिया था। तो
0: अच्छा,
1: विशाखापट्टनम में एक दिन मेरे को अचानक से कॉल लेटर आ गया डीपीएस कोरबा का
0: अरे
1: और मैं
0: वाह,
1: प्रिपरेशन कर रहा था आंध्रा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, मैं जाता था वहां पर एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको हम बबला बबला सर कहते थे, तो उनके
0: अच्छा
1: अंडर में
0: अच्छा
1: मैं प्रिपेयर कर रहा था सिविल सर्विसेज के, दो सब्जेक्ट मैंने लिए थे साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी की अनुमति दी हुई थी यूज करने की और आंध्रा यूनिवर्सिटी की उस लाइब्रेरी ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने मतलब उस दौरान पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिली मुझे। तो बबला सर को जब पता चला तो नाराज हुए, बोले क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं क्योंकि अभी इस वक्त खाली बैठा हूं तो काफी लोग मेरे को यूज करते हैं, यूज करने का सेंस है कि अगर मामा जी को अपने ससुराल जाना है तो कहते हैं कि मेरी दुकान में आके बैठ जाओ, चाचा जी को कहीं जाना है तो कहते हैं मेरी दुकान में आके थोड़े दिन बैठ जाओ, तो मेरी पढ़ाई में इफेक्ट होता है, इसलिए मुझे कोई एक ऐसा जॉब मिल जाए जहां पर मैं बैठ के पढ़ाई अपनी कर सकूं। तो मैंने
0: बिल्कुल
1: वहां से
0: बिल्कुल
1: जब अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद में फिर मैंने पिताजी से अनुमति मांगी कि मेरे को नौकरी करने का मौका दिया जाए, मैं जाके अपनी प्रिपरेशन जारी रखूंगा। तो
0: बिल्कुल
1: पहला साल जो था 87 का, वो मैंने इस कंडीशन में ज्वाइन किया था कि मैं अपनी साथ साथ में तैयारी रखूं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो नौकरी मेरे को मिली है एक बहुत ही अच्छे विद्यालय में मिली है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ में मिली है, और मैं मुझे तब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पता चली कि नहीं भाई आप इसमें कंटिन्यू करोगे तो आपके दो बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी। मैं उस वक्त बैचलर था लेकिन फिर भी ये एक जो पॉइंट था कि दो बच्चों की पढ़ाई मैं फ्री करा सकूंगा अपने बच्चों की, तो मुझे लगा कि अगर मैं आईएएस नहीं बनता तो नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन बचता था बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का।
0: बिल्कुल
1: तो मैंने सोचा कि अगर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन गया तो दो बच्चों की पढ़ाई अगर मैं डीपीएस के जैसे स्कूल में अगर करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो मेरे पास में जो ऑप्शन था मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं एक अच्छा शिक्षक बनने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट सेशन जो था मेरा दैट वाज आउट ऑफ प्योर चॉइस और आज की डेट तक मुझे कोई इसका रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो सब बातें पीछे रह गई। मैंने वहां से प्रयास किया है कि मैं एक अच्छा टीचर बनने का प्रयास करूंगा इसी विद्यालय में और फिर आगे चल के हमारी शादी हुई, एक बच्ची हुई, दो बच्चे तो नहीं हुए हमारे, एक ही बच्ची है और उसको भी डीपीएस में पढ़ने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि मेरा ये जो कैरियर था मतलब अभी तक जो चल रहा है मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और बच्चों को पसंद करता हूँ और शायद बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आज से 30 साल पहला जो चीजें आपके सरकमटेंस आ गए ऐसे कि आपको इस तरह आपको जाना हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे गीता का
1: बिल्कुल
0: जो शब्द है वो लिखते हैं कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा
1: वो
0: होगा।
1: भी अच्छा होगा।
0: तो बिल्कुल, मानसी जी ने याद भेजा है ओम शांति करके। मानसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कुछ सवाल हो तो जरूर पूछिए शिक्षा के क्षेत्र की। और हमारे कर्नल सर भी जुड़ गए हैं, सोलंकी सर राजस्थान से, उन्होंने भी याद भेजा है और आपको भी याद किया है। सुखवंत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं। और शिक्षक तो बच्चों के भविष्य बनाते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद कर्नल सर याद करके मैसेज करने के लिए। अब आइए मैं आपको जोड़ना चाहूंगा फिर से सुखवंत सिंह सर से। जैसे कि अब आते हैं बात करते हैं हम लोग कि आज से 30 साल पहले जब आप पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो उस समय आपकी जैसे कि बिल्कुल हम लोग फर्स्ट टाइम बच्चों से मिलते हैं तो आपको कितने टाइम में ऐसे लगा कि मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाऊंगा और ये बहुत अच्छा कर पाऊंगा मैं?
1: सर, पहली क्लास, पहला दिन और पहली क्लास से मुझे लगा कि मैं बच्चों के बीच में बहुत अच्छी जगह में आया हूँ। मुझे आज भी वो क्लास याद है,
0: अच्छा
1: क्लास 5 थी वो, 87 की बात कर रहा हूँ,
0: हाँ
1: 87-88 की बात है,
0: जी
1: और
0: जी
1: मुझे क्लास 5 का टीचर बनाया गया था। हालांकि मैं क्लास 10 तक जाता था पढ़ाने के लिए, लेकिन क्लास 5 का टीचर था मैं। तो जब उस क्लास के अंदर में मैं जब गया और मुझे छोटे बच्चे दिखे, और उसमें मुझे अच्छे से सब कई सारे बच्चों के नाम भी याद है। श्रीजीत चक्रवर्ती, वो आज डॉक्टर है। शोभी अब्राहम, वो न्यूजीलैंड में है। उसके बाद में मोनिका नागपाल एक थी, वो डॉक्टर है। फिर मुक्ता मुक्ता करके एक लड़की थी, बड़ी प्यारी सी। उसके बाद मतलब इसी तरह से कई सारे बच्चे उस क्लास के हैं जो आज भी मेरे टच पे हैं फेसबुक के द्वारा। और
0: जी
1: मुझे उस क्लास में जाके बहुत अच्छा लगा था, और मुझे लगा कि एक अच्छे विद्यालय में और अच्छे बच्चों के साथ में होना एक मतलब एक बड़े ही किस्मत की बात है जो मुझे उपलब्ध थी उस
0: जी
1: वक्त। और उन बच्चों के साथ
0: बिल्कुल
1: में आई से टॉट देम एंड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि उस वक्त के माहौल और पढ़ाने की जो टेक्निक्स होती थी, वो बड़ी बेसिक्स होती थी हमारे पास में। जैसे हम लोग रिजल्ट भी बनाते थे जब, तो रिजल्ट हम लोग प्लेन शीट्स में स्केल, पेंसिल, रबर लेके हम लोग लाइनें खींचते थे, और उसमें सब्जेक्ट का स्लॉट बनाते थे, फिर मार्क्स लिखते थे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी की जो हेल्प होती थी, वो एक कैलकुलेटर होता था। छोटा सा हमारे पास में कैलकुलेटर था, पॉकेट कैलकुलेटर, उसको खोल के हम लोग टोटलिंग करते थे। और उस वक्त जो मेरे सीनियर कोलीग्स थे, जैसे आर एन त्रिपाठी सर और कुछ उस विद्यालय के जो कुछ और पुराने टीचर्स जो थे, वो हमें कहते थे अपना पुराना 10 साल का एक्सपीरियंस, इस थापर जी आपके पास में तो आज कैलकुलेटर है, हम लोग तो एकदम से मतलब मेंटल टोटलिंग करते थे और उसको परसेंटेज निकालते थे, आपके पास में तो आज कैलकुलेटर है। तो हम लोग, मैंने
0: जी
1: अपना कैरियर जब चालू किया था, हम लोग रिजल्ट कैलकुलेटर हमारे पास में मैक्सिमम एक टेक्नोलॉजी की हेल्प होती थी। और जब टाइम टेबल भी बनाते थे हम लोग बैठ के, टीचर्स का टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल, तो वो भी हमें एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके, उसमें पहले तो करीब करीब एक आध घंटा लग जाता था लाइंस ड्रॉ करने के। फिर उसमें टीचर्स के नाम लिखते थे, टीचर्स के नाम आगे सब्जेक्ट लिखते थे, फिर क्लासेस अलॉटमेंट होती थी। तो बड़ा समय लगता था उस टाइम टेबल को बनाने में। और इधर आज के जमाने में आपके पास में एक्सेल शीट्स हैं और टेक्नोलॉजी की पूरी हेल्प है आपके पास में। क्वेश्चन पेपर्स जब हम बनाते थे तो मुझे याद
0: जी
1: है न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स काट के उसको हैंड रिटन लिख के, या मैक्सिमम अगर प्रिंसिपल परमिशन तो उसको कहीं बाहर से या स्कूल ऑफिस से उसको जीरोक्स करा के उसको लगाते थे और उस पर क्वेश्चन बनाते थे। आज एट द प्रेस ऑफ ए बटन वी हैव वेरियस सैंपल पेपर्स अवेलेबल विच टीचर्स आर यूजिंग। तो फर्क थोड़ा सा ये आ गया है सर, कि उस वक्त हम लोग काफी इन्वॉल्व रहते थे क्वेश्चन पेपर बनाने में, और आज जो रेडीमेड जो मिल जाता है, उसमें मुझे थोड़ी सी कभी कभी क्वालिटी की कमी नजर आती है। कि मतलब जो एक पूरा ध्यान लगा के जो टीचर्स क्वेश्चन पेपर बना देते थे पहले, वो एक उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती थी, जो कि आज हम लोग सैंपल पेपर से इजीली उठा लेते हैं। जो टीचर्स सारे क्वेश्चन पेपर्स सैंपल पेपर से ना उठा के खुद बनाए, वो मेरे ख्याल से बच्चों
0: बेटर
1: को भी
0: ज्यादा है।
1: पसंद आएगा, पेरेंट्स को भी पसंद आएगा।
0: जी सुखवंत सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या सिचुएशन होता है, और बच्चों को पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें रम जाते हैं जैसे आप रम गए, पर पहले दिन ही आपको एहसास हुआ कि मैं बच्चों के साथ अच्छा कर पाऊंगा। तो निश्चित तौर पे ये एहसास ही हमें जो है 30 साल तक बांध के रखा है, और आपने उसको बखूबी निभाया है। तो अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कई बच्चों का शिकायत होती है कि वो कुछ चीजें नहीं समझ पाते, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या आप बताएंगे, बच्चों के साइड से क्या एफर्ट्स होना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए टीचर्स का क्या एफर्ट होना चाहिए?
1: सर, ये आपने एक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है स्कूल सिनेरियो के लिए।
0: जी जी
1: मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ, अपने टीचर से भी कहता हूँ, और ये आप ऑब्जर्व भी करते हैं, आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे आपने भी देखा होगा कि
0: जी
1: जो
0: जी
1: टीचर नॉलेजेबल है वो कभी भी बच्चों से गुस्सा नहीं करते। क्लास में बच्चा अगर जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब वो जरूर देते हैं। गुस्सा कौन करता है? जो अपने में उसका कॉन्फिडेंस कम हो, शायद समझ लीजिए जो बच्चा क्वेश्चन को पूछ रहा हो उसका उत्तर उसको ना आता हो और वो स्वीकार ना कर पा रहा हो कि मुझे ये उत्तर नहीं आता। जिस दिन एक टीचर ये कहना सीख जाए कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता बच्चे, मैं तुमको ये कल बताऊंगा, तो मैं उस टीचर की रेटिंग काफी हाई करूंगा। मतलब उस टीचर में एक कम से कम क्वालिटी है कि अपनी कमी को वो स्वीकार कर रहा है। जिस दिन हम अपनी कमी को भी स्वीकार कर लेना सीख जाते हैं, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। और बच्चों को हम बहुत देर तक या बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे निश्चित रूप से समझ जाते हैं कौन किस टीचर के पास में कितनी नॉलेज है और ये हमें क्यों डांट रहा है, ये सब बच्चे पकड़ते हैं।
0: जी जी चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और सोलंकी सर ने एक शायद विचार भेजा है, लिखते हैं, ओम शांति, मैंने तो बीएड भी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से और डीपीएस आरकेपुरम नई दिल्ली में, तीन विषयों में पढ़ाया, बच्चों से बहुत सीखने को मिला जो पूरे जीवन काल में काम आया और पूर्ण रूप से सहमत हूँ।
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सोलंकी सर बहुत ही अच्छा लगा।
1: अभी जैसे उन्होंने आरकेपुरम की बात की है तो
0: जी जी जी जी।
1: मैं कहूंगा जब मैंने 87 में डीपीएस कोरबा ज्वाइन किया था तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ डॉक्टर बी सिंह, भीकम सिंह के साथ में काम करने का। और डॉक्टर भीकम सिंह 10 साल वो करीब डीपीएस आरकेपुरम में काम करके आए थे, एज फिजिक्स पढ़ाते थे क्लास 11 12th में। तो आरकेपुरम का जो कल्चर जो था वो उन्होंने डीपीएस कोरबा में इंप्लीमेंट किया और उनके अंडर में रह के 7 साल वो हमारे साथ रहे। उसके बाद फिर वो चले गए रामपुर में मोदी एकेडमी में। तो 7 साल हम लोगों ने उनसे डीपीएस का कल्चर ग्रहण किया। वो जब वहां से निकले थे तो उनके साथ में मिस्टर एम आई हुसैन, ये चले गए थे डीपीएस भिलाई, और त्यागी सर गए थे डीपीएस बोकारो। तो त्यागी सर और आपके एम आई हुसैन सर और डॉक्टर बीकम सर, इन तीनों ने डीपीएस कोरबा, डीपीएस भिलाई और डीपीएस बोकारो को बनाया, और इनके अंडर में रह के हम लोगों ने सीखा। और मेरे साथ में थे जय महंती, डॉक्टर अरुण प्रकाश, मैं और कई सारे टीचर्स जो थे, हम लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा। और आगे जब हम लोगों को जिम्मेवारियां मिली डीपीएस चलाने की, तो ये जो परंपरा है डीपीएस की उसको हम लोगों ने आगे और बढ़ाया। डॉक्टर अरुण प्रकाश काफी विद्यालयों में रहे, वो गए वहां से न्यू बुनगाईगांव, फिर गुवाहाटी, फिर बिलासपुर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद वो जेड्डा चले गए, इंटरनेशनल स्कूल्स कुछ चलाए उन्होंने, फिर वो चले गए साई इंटरनेशनल भुवनेश्वर जो नंबर वन स्कूल कहलाता है के स्कूल कैटेगरी में, वहां से फिर वो चले गए अपने इलाहाबाद, वहां पर उन्होंने अपना स्कूल खोला हुआ है लॉरल्स इंटरनेशनल। जय महंती सर ये भी मेरे कोलीग रहे हैं और वो वहां से कोरबा से निकले और वो आए डीपीएस विंदनगर, फिर यहाँ डीपीएस विंदनगर से गए डीपीएस रांची और डीपीएस रांची से अब चले गए हैं वो डीपीएस नवी मुंबई। तो जो कहते हैं एक जोत कोई जलती है उसे जोत से जोत जलाते चलो, तो ये डीपीएस मथुरा रोड की जोत जो है जो 1947 में जली, जो स्थापित होकर जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया आए थे, तो उन्होंने एक रिफ्यूजी कैंप टाइप का स्कूल चलाया था और टेंट्स में ये स्कूल चला था डीपीएस मथुरा रोड। और आगे चल के 1972 में डीपीएस आरकेपुरम की ब्रांच चली, उसके बाद 1972 से लेकर 83 तक दो ही ब्रांचेस थी, मथुरा रोड और आरकेपुरम। 83 में डीपीएस स्प्रेड करना चालू किया आरएस लुखानी सर के अंडर में, बीएचईएल भेल दैट इज रानीपुर हरिद्वार में स्कूल एक खुला और साथ साथ दामन जोड़ी। 85 में डीपीएस कोरबा भिलाई और बकारो खुला और उसके बाद फिर कई सारे स्कूल्स खुलते गए। आज की डेट में करीब 240 से ज्यादा दिल्ली पब्लिक स्कूल्स हैं और इंडिया में हैं, अब्रॉड हैं और मेरे ख्याल से सब सारे स्कूल अच्छा कर रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
0: सुखवंत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात है आपने डीपीएस स्कूल के बारे में बताया, उसका इतिहास। और अब मैं चाहूंगा कि आपको जो नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है 2013 एंड 14, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे आपको प्राप्त हुआ। जी
1: सर, इसकी एक एक रिपोर्ट मांगी जाती है आरओ ऑफिस द्वारा और हाँ। उसको वो एनालाइज करते हैं, आपका पर्सनल डाटा लेते हैं, स्कूल का प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं पिछले कई सालों की।
0: अच्छा।
1: और जो प्रिंसिपल्स और जो स्कूल का जो रिजल्ट्स रहता है उस पे उसको एनालाइज करते हुए एक रिपोर्ट मांगी जाती है जो काफी पन्नों में होती है। और
0: अच्छा अच्छा।
1: उसकी फिर एक आपके जो सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसके भी कई सारे मार्क्स होते हैं उस पे, वो फिर पूरे देश में से करीब 30 से 35 टीचर्स प्रिंसिपल्स को ये अवार्ड देते हैं। अब उसको और स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, अब वो काफी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस साथ में लेते हैं जो कि आपके वीडियोस हो गए और आपके टीचिंग पैटर्न क्या है, आपके स्कूल के रिजल्ट्स क्या है, ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है, आपका इंटरेक्शन क्या है सीबीएसई के लिए, आपने क्या क्या काम किया हुआ है। जैसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1993-94 में सीबीएसई के साथ जुड़ने का। मैं आपको एक अच्छा एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं 87 में मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया, डॉक्टर बी सिंह आके जुड़े और 88 में एक लेटर आया था सीबीएसई की तरफ से।
0: अच्छा।
1: और वो लेटर था, सीबीएसई एक एनालिसिस करना चाहती थी और इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है उसके जी, बारे जी, में वो एक अच्छा सर्वे करके कुछ बदलाव लाना चाहती थी। तो वो चीज 88 में जो लेटर आया था उसमें लिखा था कि आप उस टीचर का नाम फॉरवर्ड करें जो कम से कम 5 साल कक्षा 10वीं को पढ़ाया हो। और मैंने तो सिर्फ 1 साल ही हुआ था मुझे ज्वाइन करे हुए, तो मैंने वो पोर्ट मिस कर ली। मुझे अफसोस हुआ कि मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया भी कि जब नया हो तो इसमें अफसोस करने की कोई बात भी नहीं। खैर वो पीछे छूट गया। जब आगे समय आया 93-94 तो सीबीएसई से फिर लेटर आया कि 88 से जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था उसमें हम लोगों ने पूरे इंडिया से करीब 30 टीचर्स को चुन के, जो टीचर्स जो थे वो पब्लिक स्कूल से भी थे, केंद्रीय विद्यालय से भी थे, नवोदय विद्यालय से भी थे और दूसरे कई सारे स्कूल से थे, और उनको उन्होंने ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा था। उन्होंने ये सर्वे करके पाया था कि एक अजीब सा पैटर्न सामने आया था। वो पैटर्न ये था कि पब्लिक स्कूल के जो बच्चे पढ़ाए हुए होते थे
0: जी जी
1: इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते थे, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, और जो दूसरे विद्यालयों से गवर्नमेंट स्कूल के विद्यालयों से बच्चे आते थे वो कम्युनिकेशन में ठीक नहीं होते थे। लेकिन एक दूसरी बात, दूसरा एंगल भी था कि पब्लिक स्कूल के बच्चों को जब ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे अलग से तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये पाया गया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ग्रामर तो वो लोग काफी अच्छा कर लेते हैं लेकिन पब्लिक स्कूल के तरह बच्चों के वो कम्युनिकेट नहीं करता, लिखने में कमजोर हैं, बोलने में कमजोर हैं। तो लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव को जब ध्यान दिया गया तो ये ग्रुप ने पाया कि नहीं, हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए, तो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ते हुए हम इंटरैक्टिव अप्रोच में आए कि हमें लैंग्वेज की 4 स्किल्स, लिसनिंग स्किल, स्पोकन स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, इन 4 पे हमें फोकस करना है। तो ये जो 30 टीचर्स का ग्रुप जो था, इन्होंने 88 से लेकर 93 तक इस पे पूरा ध्यान दिया और इसके लिए मटेरियल नया तैयार किया। मटेरियल तैयार करने के लिए अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हो, मटेरियल चेंज कर रहे हो, तो निश्चित रूप से टीचर्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग ग्रुप भी एक बना उसी में से। और
0: बिल्कुल
1: 93-94 में सीबीएसई ने स्टाफ को फिर ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया। जब ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया तो उनको लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है, पूरे हिंदुस्तान के टीचर्स को ट्रेन करना, इस नए पैटर्न पे लाना, इंटरेक्टिव अप्रोच कैसे अडॉप्ट करना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे और रिसोर्स पर्सन चाहिए। तो मुझे मौका मिला था 11 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने का इंदौर में दिल्ली कॉलेज में।
0: अच्छा,
1: 94 की बात कर रहा हूँ। तो 94 में जब मैं वहां बात ट्रेनिंग ले रहा था तो एसके गंगल सर थे वहां पे, जो इस सीबीएसई के ईएलटी प्रोजेक्ट के ऑफिसर थे, मेन पर्सन। और साथ में थे ही साधना पराशर मैम, आज भी वो सीबीएसई में है, गंगल सर रिटायर कर गए। उस 11 दिन के दौरान तीसरे या चौथे दिन मेरे को गंगल सर ने अलग से अपने ऑफिस में बुलाया और मेरे से उन्होंने वहीं दिल्ली कॉलेज इंदौर में मेरे से कहा कि हमें और टीचर्स की जरूरत है जो इस ईएलटी प्रोजेक्ट में जुड़ सकें, तो क्या आप जुड़ोगे? मैंने कहा सर मैं तो जुड़ने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे प्रिंसिपल मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं निश्चित रूप से जुड़ूंगा, क्योंकि मैं बिना प्रिंसिपल के परमिशन के मैं आपको हाँ नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम आपके प्रिंसिपल से भी बात कर लेंगे। तो मैं जब वापस आया कोरबा तो माय प्रिंसिपल वाज वेरी हैप्पी बिकॉज बाय दैट टाइम आई थिंक गंगल सर हैड स्पोकन टू डॉक्टर पीकम सिंह एंड ही टोल्ड मी दैट यू शुड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स। तो हमें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड तो नहीं भेजा गया था, लेकिन हैदराबाद भेजा गया था इस ट्रेनिंग के लिए। तो हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का स्टाफ था और प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से रिसोर्स पर्सन आए थे हमें वहां ट्रेन करने के लिए, जो नेक्स्ट 30 टीचर्स का ग्रुप था। तो वहां से मैं फिर सीबीएसई के साथ जुड़ा और काफी सारी वर्कशॉप्स मैंने इंग्लिश टीचर्स के लिए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और दूसरे पब्लिक स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, इन सब के लिए मध्य प्रदेश में, उस वक्त जब छत्तीसगढ़ भी इसका पार्ट था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के टीचर्स के लिए मैंने ये वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट। तो वो सब जो बैकग्राउंड था मेरे ख्याल से उसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने मुझे 13-14 के लिए मुझे चुना था। एंड अगेन आई एम थैंकफुल दैट ये रिकॉग्निशन मेरे को सीबीएसई की तरफ से मिली।
0: चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, इस खुशी के मौके पर हमारे साथ ममता जी जुड़ गई हैं, तो आपके लिए गीत जो है छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको एक गीत डेडिकेट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति जी। जी
2: तो भगवान की याद से और
0: जी,
2: हमारे
0: जी।
2: सामने जो गुरु है उनकी उनको डेडिकेट करेंगे।
0: बिल्कुल

0: अच्छे हो हमारे करम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि
2: सही
1: जी
2: लाइन।
0: है बस यही कामना, सतगुरु परमात्मा। ओम शांति।
1: ओम शांति। धन्यवाद ममता जी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और इस गीत के साथ मैं फिर से सुखविंदर जी को जोड़ना चाहूंगा और हमारे कुछ
2: सुखवन
1: सवाल आए। सुखवन सर, सुखवन
2: सर,
1: सर को
2: अगर आप
1: जोड़ना
2: इजाजत
1: चाहूंगा।
2: दें तो एक मैं यहां पर मानसी देवनीकर जी का एक क्वेश्चन देख रहा
1: हाँ
2: हूं,
1: वही सब सवाल है
2: उस
1: उनका
2: क्वेश्चन को अगर ले
1: वो।
2: लिया जाए तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लिखती है कि आज के समय में जो है टेक्नोलॉजी है और टीचर्स भी अच्छे हैं, बट एज पेरेंट्स वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, सो हाउ आई बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडी, बिकॉज नाउ डेज चिल्ड्रंस आर वेरी ऑलरेडी वेरी गुड क्वालिटी हैविंग क्वालिटीज
2: ऑलराउंड पर्सनालिटी रहती है
1: ऑलराउंड।
2: जी। मानसी जी, मैं इसके लिए एक चीज कहना चाहूंगा। मैं याद करता हूं कि जब एक वक्त था जब हम लोग टीवी ऑन करते थे तो एक फिक्स टाइम में कुछ कुछ चीजें आती थी। एज ए टीचर व्हेन आई वाज इन डीपीएस कोरबा, मुझे याद है कि शाम 8:30 बजे मैं 8:40 मिनट में न्यूज आती थी, 8:40 मिनट से लेकर 9 बजे तक, और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता था और 9:05 मिनट से कोई सीरियल आता था। तो मैं क्योंकि बैचलर होता था तो मैं उन 40 मिनट में या आधे घंटे में मैं अपना रात का जो खाना होता था, 2-3 रोटियां, कुछ भुजिया और कुछ साथ में बना के दाल वगैरह कुछ रख के खा लेते थे टेबल पे और सीरियल देखते थे। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको याद करना चाहूंगा कि हम लोगों को, आपको याद होगा सर, वेंसडे और फ्राइडे को शायद चित्रहार आता था दूरदर्शन, तो हर कोई चित्रहार देखता था उस वक्त। और बड़े बड़े शहरों
1: बिल्कुल
2: में उसी वक्त चोरियां भी होती थी बहुत सारी, क्योंकि चोर भी जानते थे कि सारे घर के मेंबर ड्राइंग रूम में बैठे होंगे और वो अपना काम कर जाते थे, हम लोग इतना एनग्रॉस्ड होते थे। अब देखिए अब क्या हुआ, अब हमारे पास में सारी चीजें 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। जब भी हम चाहें न्यूज लगाएं, न्यूज आ रही होती है, कोई भी चैनल हम देखना चाहें उस वक्त वो आ रहा होता है, सीरियल्स हर वक्त आते हैं, हर एक चैनल आता है। अब हमें अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, वी हैव टू नॉट सकम टू द थिंग्स अराउंड अस, बट वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल देम। हमें अपना टाइम डिसाइड करना
1: बिल्कुल
2: है कि हमें, ठीक है, कुछ पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं कहते हैं कि सर मैंने बच्चे का टीवी बंद कर दिया है, मैं टीवी नहीं देखने देता, मैंने उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया है, हम मोबाइल नहीं देते। लेकिन सर दैट इज नॉट द राइट थिंग। बच्चा अपने आप को खोया हुआ पाएगा जब क्लास में बच्चे बहुत सारी कुछ बातें करेंगे और उसको पता ही नहीं होगा उन चीजों का, तो ही विल नॉट डेवलप इन टू उस सर्कमस्टेंसेस, मतलब प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं होगी, हम उसकी ग्रोथ को इम्पीड कर।
1: बिल्कुल
2: तो राइट वे ये है मानसी जी कि आप बच्चे को समझाएं, अपने आप को भी समझाएं कि मुझे जो चाहिए, अगर आपके बच्चे को कुछ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ठीक है, उसको एक समय निर्धारित कर दीजिए कि मैं इस समय से इस समय तक मैं देखूंगा। अब जैसे मैं सुबह उठता हूं तो मैं मोबाइल, अनलेस अनटिल देयर इज अ फोन कॉल, आई डोंट टच इट टिल आई रीच द स्कूल ऑफिस। स्कूल ऑफिस आने के बाद में जब सारा कुछ सेटल हो जाता है, एट दैट टाइम आई ओपन माई व्हाट्सएप टू सी इफ देर आर एनी मैसेजेस फ्रॉम सर्टेन इंपॉर्टेंट एरियाज। उसके अलावा अगर मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेजेस हैं तो मैं उनको ओपन नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी क्या है। उस तरह से वी हैव टू सेट अवर प्रायोरिटीज। बच्चे को सीरियल अच्छा लगता है, उसको सीरियल देखने दें, उसको कहें कि आपका कौन सा कन्वीनियंट टाइम है जिसमें आप देखना चाहोगे, और उतना उसको अलाउ कर दें, बिल्कुल बंद ना करें। तो मेरे ख्याल से दैट वे विल बी एम्पावरिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को एम्पावर करें। ये ताकत जो है कि मुझे अपना समय कैसे यूटिलाइज करना है, ये मेरे पास होना चाहिए ना कि सरकमस्टेंसेस के पास। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगी, तो निश्चित रूप से आप अपने व्यस्त समय से भी समय निकाल के आप बच्चे को गाइड कर पाएंगी। और बच्चे की अगर इस समझ से चलता है तो वो भी अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सुखवंत सिंह जी। आशा करूंगा कि मनसी जी को आपकी बात सुनकर समझ आ गया होगा कि क्या करना चाहिए उन्हें। और आज के समय में जो है जैसे कि मानसी जी लिखती हैं आगे, रियली थैंक यू वेरी मच सर करके मैसेज किया है। मानसी जी समझ गई हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और ममता जी के गीत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा गीत करके मैसेज किया है। सोलंकी सर ने भी याद भेजा है और गीत के लिए बड़ी प्यार से उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, बहुत अच्छा गीत ममता जी करके मैसेज किया है। अब आइए हम लोग एक और बात, जैसे कि अब फिर बच्चों की बात ही हो रही है क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो बच्चों को लेकर काफी काम किया है और टीचर्स के साथ भी आपने काफी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं और कंडक्ट भी किए हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है। तो निश्चित तौर पर आज जैसे कि हम लोग शुरू शुरू मैंने बात की कि बच्चे अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं कोप अप कर पाते, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, बच्चे पास आउट होने में दिक्कत हो जाते हैं उनको, तो ऐसे बच्चे फिर कैसे वो क्या अल्टरनेटिव चीजों को ले वो अपने आप को अपग्रेड बना के रखे, क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा वो बताइए सर जी।
2: सर इसमें हमें थोड़ा सा बच्चों को यही बताना होता है मेरे ख्याल से कि अगर तुम में कोई घबराहट हो रही है, कई बार बच्चे बोलते हैं ना हम नर्वस हो रहे हैं सर, तो बच्चों को मैं ये समझाता हूँ कि बेटा कोई भी अच्छा काम करने से पहले, बड़ा काम करने से पहले नर्वस होना बहुत नॉर्मल बात है। तो अगर बच्चे को समझ में आ जाए कि ये नॉर्मल है, हर कोई नर्वस होता है, हम इतने साल प्रिंसिपल रह चुके हैं लेकिन अगर हमें कोई मंच पे बुलाने के बोलने के लिए कुछ बोलता है तो निश्चित रूप से हम भी थोड़ा सा कुछ सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे हम। तो ये नर्वसनेस अगर बच्चे के साथ हम शेयर करें कि हम भी नर्वस होते हैं बेटा, तुम कोई अलग से नहीं हो रहे हो, तो बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होता है। और हम किसी को भी, किसी बच्चे को भी किसी दूसरे के साथ में कंपेयर कभी ना करें, उसके भाई या बहन के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और हम बच्चे को कहें कि आज आप क्या, कल क्या थे, आज उससे अच्छा बनने का प्रयास करें, आज जो है और कल आने वाले कल में आज से अच्छा बनने का प्रयास करें, आप खुद से कंपीट करें ना कि किसी और से। और इसी के साथ एक और भी बात ऐड करना चाहूंगा कि हम बच्चे की प्रोग्रेस बच्चे के हिसाब से ही करें। अगर पिछले एग्जाम में उसने 40 मार्क्स लाए थे और अगले एग्जाम में वो 50 ला रहा है, तो उसको 10 मार्क्स का जो इंक्रीज हुआ है उसका क्रेडिट हम उस बच्चे को जरूर दें। हम लोग तभी देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे इस दोस्त को 80 मार्क्स आए, तुम अभी भी 50 में पढ़े हो। मोटिवेट मोटिवेट ना करें। और कोई भी बच्चा खराब करना नहीं चाहता, अगर वो सही तरह से गाइडेंस में हो तो कभी भी कोई भी बच्चा ना टीचर खराब नहीं करना चाहता, उसको बस अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्या अल्टरनेट कर सकते हैं हम लोग, बच्चों को समझना और उसको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है और ग्रेस मार्क की भी कभी कभी उसको जरूरत पड़ती है, तो हमें वो सर्कमटेंस और सिचुएशन बच्चे की कैपेसिटी को देखकर उसको बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ सके और आगे बढ़ते रहे बच्चे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो और अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिसर्च की भी जरूरत है, और टीचर या प्रिंसिपल जो स्कूल में है और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को टारगेट करके उनको एक्स्ट्रा अगर मेरे ख्याल से थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई बार क्या होता है कि हम लोग 10th तक जो है बच्चों को पढ़ाते जाते हैं और बच्चे जो है, कुछ जो बच्चे हैं वो अपने 5th से 8th 9th 10th में ही अपना करियर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस और जाना है, इस और बढ़ना है, और कुछ बच्चे जो है उनको ये फ्रेमिंग ही नहीं आता है कि भाई मुझे क्या बनना है, क्योंकि उनके घर के माहौल अलग रहते हैं, उनको तो बस पढ़ाई करके पास होना है, यही मकसद उनका रहता है सर्टिफिकेट पास का मिलना, ऐसा सोचते हैं कई बच्चे, तो क्योंकि उनके यहाँ वो चीजें शायद होती नहीं है तो वो थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। तो ऐसे बच्चों का सरकमटेंस देखने के बाद उन बच्चों को शायद उस तरह का कुछ ऐसी मोटिवेशन वाली टॉक्स बीच बीच में हो एक अलग लेक्चर हो ताकि वो अपने करियर के बारे में सोच सकें, क्या बनना है ये सोच सकें, है ना। और उनको
2: जी
1: कोई
2: बिल्कुल
1: बड़ी बड़ी, जैसे कि हम लोग डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, शब्द ही उनके समझ में नहीं आता एक्चुअली में। कभी कभी ऐसा हो जाता
2: बहुत
1: ना कि
2: बहुत
1: भाई
2: सही कहा
1: डॉक्टर बनना है तो क्या बनना है
2: जी
1: इंजीनियर बनना है तो क्या बनना है, तो उनके फोकस में ये पिक्चर क्लियर नहीं होता कि हाँ डॉक्टर बना ये, इंजीनियर बना ये, और इससे ये हो सकता है, ये चीजें करने की जरूरत है, तो वो चीजें वो नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा बताइए।
2: सर, इस और भी मैं तो कहूंगा कि हर एक के साथ में एक अपनी घड़ी होती है प्रोग्रेस की। कोई जल्दी कर जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें बच्चों को भी नर्वस नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स को भी नर्वस नहीं होना चाहिए कि हर एक के साथ में अपना अपना समय बंधा है। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से गाइड कर लेते हैं घरों में, क्योंकि वो खुद काफी आगे होते हैं इस ओर, दे आर वेल एजुकेटेड, व्हाट आई मीन टू से, एंड दे आर एबल टू गाइड देयर चिल्ड्रन बैक एट होम इन द राइट डायरेक्शन एट अ वेरी यंग एज। ऑन द अदर हैंड, यस, देर आर फ्यू केसेस वेयर द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ हैविंग दीज काइंड ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स। तो उनके लिए तो निश्चित रूप से स्कूल के टीचर्स बढ़ जाता है ताकि उनको अच्छे से गाइड कर पाए। और हमें उन बच्चों को एक चीज बतानी होती है कि कभी भी कोई एक रास्ता, मतलब आप निर्धारित करके ना चले। जैसे कई, मैं आपको बहुत अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूं, जो मैं देखता हूं कि 90%+ वाले जो बच्चे होते हैं, नर्वसनेस उनमें ज्यादा होती है। जो 70s 80s में रहते हैं, मतलब बेसिकली बड़े खुश रहते हैं वो बच्चे। जब रिजल्ट के दिन भी आते हैं ना, रिजल्ट निकलता है उसके बाद जब मुलाकात होती है, तो 94% वाले को जब कंग्रेचुलेट किया जाता है कई बार, तो वो बड़ा दुखी सा दिखता है। और उसको हम कहते हैं, क्या हो गया बेटा? बोलता है, नहीं सर, मैं 96 ला सकता था लेकिन सिर्फ 94 लाया हूं। दूसरी तरफ 72-74% वाले जो बच्चे आते हैं रिजल्ट लेने के लिए, तो उनसे मेरी मुलाकात होती है तो वो बड़े खुश नजर आते हैं, सर वी आर हैप्पी गोइंग फॉर दिस कोर्स दैट कोर्स, एंड लाइफ में बड़ी जल्दी सेटल भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि 90+ वाले बच्चे सेटल नहीं करते, वो भी करते हैं, लेकिन वो थोड़े से ज्यादा नर्वस रहते हैं। इस नर्वसनेस को हमें रिकॉग्नाइज करना है और उसको कम करने का प्रयास करना है। बोथ एज पेरेंट्स एंड टीचर्स इट इज आर ड्यूटी टू टेल द चिल्ड्रन, बच्चे अगर IIT में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो जिंदगी के दरवाजे बंद नहीं होते। FMC और एम्स में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते भी हैं। हमें बच्चों को हमेशा कई सारे ऑल्टरनेटिव्स बता के रखने चाहिए, नहीं तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे का IIT में चयन नहीं हुआ और हम देखते हैं वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा ना हो, गलत कदम उठाने वाले हमेशा वही बच्चे होते हैं जिनको ये
1: बिल्कुल
2: बता के रखा जाता है कि बेटा तुम्हारा अगर इसमें नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ ठीक नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। ऐसे करके उनको हम कभी डीमोटिवेट ना करें, यही मेरा कहना है।
1: एक और सवाल मानसी जी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपने को, वो लिखते हैं पेरेंट्स एक्सपेक्शन एंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ विद गुड रिलेशनशिप।
2: हाँ जी सर,
1: पेरेंट्स की जो अपेक्षा है और विद्यार्थियों का स्ट्रेंथ विद गुड रिलेशनशिप, ये वो पूछ रही है।
2: मैं इसमें ये कहूंगा कि एक अच्छा विद्यालय वो होता है जिसमें टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स आर एसेसिबल टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर टीचर्स को पेरेंट्स ना मिल पाए, मतलब उनको हम बहुत ज्यादा ये कर दें कि मतलब आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप आके मिल सकते हैं, और
1: भी हम सोच समझ के देंगे। मेरे ख्याल कुछ ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जो करते हैं, लेकिन बड़ा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, उससे पेरेंट्स कम स्कूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं मोटिवेट करता हूँ पेरेंट्स को भी कि आपको जब कभी कुछ अगर लगता है, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत पहले जब ये व्हाट्सएप भी नहीं आया था,
2: तब से मैंने अपने स्कूल के टीचर्स के फोन नंबर भी पेरेंट्स को अवेलेबल कराए हुए हैं, मेरा नंबर भी अवेलेबल है, और कोई भी पेरेंट जब भी चाहे वो उस फोन पे कॉल कर सकता है। इतनी लिबर्टी होने के बाद में भी सर, कोई ऐसा नहीं होता कि हम दिन भर फोन ही अटेंड कर रहे हैं या मेरे टीचर्स आके मेरे को बताएं कि सर आज तो 20 पेरेंट्स ने फोन कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ गिने चुने ही पेरेंट्स फोन करेंगे और जो जिनको जरूरत होती है वही करते हैं, और
1: बिल्कुल
2: इससे एक
1: सर,
2: रिलेशनशिप अच्छा बनता है। मेरे चैम्बर में संजोग से दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा है जो ऑफिस की तरफ से आता है, निश्चित रूप से कोई पेरेंट्स या विजिटर जब आते हैं तो वो उस दरवाजे से आते हैं क्योंकि वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है ताकि वन टू वन मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकूं। दूसरी तरफ, दूसरा दरवाजा जो मेरा है वो स्कूल एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ खुलता है, और उस रास्ते से मैंने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को ये कहा हुआ है कि आप मेरे बाहर दरवाजे के आके आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप दरवाजा खोलें और निश्चित रूप से अंदर आ जाएं। अगर मेरे पास में कोई पेरेंट बैठे हों, कोई बैठे हो, विजिटर बैठे हो, मैं हो सकता है आपको रोक दूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप बाहर वेट नहीं करेंगे, यू जस्ट कम इनसाइड और अपनी समस्या जो है आप मेरे को बताएं, मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा, चाहे क्योंकि टीचर अपना काम छोड़ के आ रहा है, बच्चे भी अपनी क्लास छोड़ के आ रहे हैं अगर मेरे को मिलना चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ यू नो सिचुएशन, आई थिंक वी आर रेडिली एसेसेबल टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स, एंड टीचर्स शुड बी एसेसेबल टू द पेरेंट्स ऑल्सो, सो दैट वे पेरेंट्स को भी खराब ये नहीं लगेगा कि नहीं नहीं मुझे इस टीचर से मिलने के लिए या बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अगर हम मैनेज अच्छा से कर लें तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और पेरेंट्स को, बच्चे को
1: बिल्कुल
2: जब पता चलता है कि माई पेरेंट्स कैन टॉक टू माई टीचर एट एनी टाइम फॉर ए हेल्दी रिलेशन। मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ जब ओपन डे होता है कि पेरेंट्स अब आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पेरेंट को टीचर बच्चे की शिकायत ही करें, अच्छी बातें भी बताएं।
1: बिल्कुल अच्छी
2: और
1: बात
2: वैसे ही
1: बता सकते
2: पेरेंट्स को मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप मेरे टीचर से जब मिलें खाली कंप्लेन मत करें, उनके अच्छे पॉइंट्स ही बताएं। और मैं एक स्लोगन स्कूल के कैंपस में मैं लगा के हमेशा रखता हूँ कि जो भी विजिटर आए, पेरेंट्स आए, मैं उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे विद्यालय की कोई चीज अच्छी लगती है तो आप बाहर जाके सबको बताएं, और अगर कोई कमी नजर आ रही है
1: बिल्कुल
2: तो हमें बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मानसी जी और नीता नायक जी लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है उन्हें, और गिव सम सजेशन प्लीज सर करके बोला है, तो बहुत सारे सजेशन आपको मिल गए हैं। नीता जी लिखते हैं, ऐसा ही प्रिंसिपल होना चाहिए ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को मिलने में आसानी हो और उनकी प्रॉब्लम्स जल्दी से रिजॉल्व हो सके। तो चलिए सुकुन सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया है, और निश्चित तौर पे जो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स अगर सुनेंगे आपको ये एपिसोड फिर से, तो उन्हें काफी कुछ बातें क्लियर होगी और विद्यार्थी का जीवन बेहतर होने के लिए वो निश्चित तौर पे काम करेंगे जिस तरह से आपने बताया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत
1: एंड
2: धन्यवाद,
1: मंगल
2: थैंक
1: जी,
2: यू,
1: मैं चाहूंगा जाते जाते दो लाइनें आप गुनगुनाइए, उसी के साथ पूरा करेंगे जी, दो लाइनें सिर्फ गुनगुनाइए।
2: आवाज नहीं आ रही।
0: तुमसे
2: आ
0: उजारा
1: गया, आ गया।
0: जीवन

0: बहुत
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ममता जी। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। आशा करूंगा सुखवंत सिंह सर की बातें आपको अच्छी लगी हो, तो जरूर उसे अमल में लाएं और अपने जीवन को और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है मुझे आप सबसे मिलना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपसे मिलके मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ खेलना, साथ में पढ़ना, इकट्ठे होके खाना खाना, वही स्कूल की बात ही कुछ और है ना? वो देखो, मीना भी दीपू और मोनू के साथ अपने स्कूल में है। आओ वही चलते हैं।
1: क्या हुआ मोनू, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो?
2: मीना, दीपू की शक्ल देखो, बिल्कुल बूढ़ा बाबा लग रहा है।
1: बूढ़ा बाबा
2: और क्या। दीपू, शीशे में जाके देखो, तुम्हारे मुंह पे सफेद मूछे हैं।
1: ओह, अब समझा। मैं अभी घर से दूध पी के आया हूँ ना, तो जल्दी मैं अपना मुंह साफ करना भूल गया था।
2: दूध पी के? मुझे तो दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो दूध का नाम सुनते ही कुछ होने लगता है।
3: कुछ होने लगता है, मोनू रोने लगता है।
1: भाई, मैं तो रोज दूध पीता हूँ। माँ कहती है कि तभी मैं इतना लंबा और तगड़ा हो गया हूँ। अरे मोनू, अगले महीने तो तुम्हारा मुकाबला है ना?
4: कैसा मुकाबला दीपू?
1: मीना, साथ वाले गांव के रमेश ने मोनू को पंजा लड़ाने की चुनौती दी है। मुकाबले की तैयारी कर रहे हो ना मोनू?
2: अरे, उस रमेश को तो मैं एक ही मिनट में हरा दूंगा।
0: और अगले दिन।
4: अरे मोनू, तुम इस पेड़ की शाख को पकड़ के क्यों लटके हुए हो?
2: मीना, पंजा लड़ाने के लिए अपनी बाजुओं को तगड़ा बना रहा हूँ।
1: मोनू, बंदर की तरह लटक के?
2: दीपू, तू लटक के देख, तब पता चलेगा तुझे।
1: इसमें कौन सी मुश्किल बात है?
2: अच्छा ठहर जा, अब मैं नीचे उतरता हूँ और तू हमें लटक के दिखा। पता नहीं क्या समझता है। ये मैं कूदा नीचे, जा अब तू लटक के दिखा।
1: हाँ, पहले मेरे हाथों से ये थैले तो पकड़ो।

0: यहाँ पकड़ता हूँ। अरे बाप रे, इतने भारी थैले मैं तो नहीं उठा सकता। इसमें है क्या? अरे मीना, दीपू कहाँ गया?
1: मैं यहाँ हूँ मोनू, पेड़ पर।
0: अरे तुम तो एक ही हाथ से पेड़ की शाख पकड़ के लटक गए।
2: लटक गए? तू चुप गटक गए।
0: दीपू, इन थैलों में क्या है? बाप रे बाप, इतने भारी।
3: मोनू, इनमें दालें हैं घर के लिए।
0: इतनी सारी दालें?
3: हमारे घर में रोज एक ना एक दाल जरूर बनती है।
4: आय हाय, दाल?
5: क्या हुआ मोनू, तुम्हारे घर में दाल नहीं बनती?
0: बनती तो है, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ।
2: नहीं खाता हूँ, नखरे दिखाता हूँ।
3: मोनू, माँ कहती है कि दाल खाने से हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास भी होता है। बल्कि माँ तो कई बार आटे में दाल डाल के उसकी रोटियाँ भी बनाती हैं।
0: ठीक है ठीक है, मुझे क्या?
5: अब नीचे उतरो दीपू, वरना तुम थक जाओगे।
3: थकूंगा तो नहीं मीना, लेकिन हाँ, मुझे नीचे उतरना ही होगा, माँ मेरा रास्ता देख रही होंगी।
0: तुम थके नहीं दीपू?
3: थकूंगा क्यों? लाओ ये थैले मुझे दो। अच्छा मीना, अब मैं चलता हूँ।
0: अरे ये दीपू तो इतने भारी थैले उठा के बिल्कुल आराम से जा रहा है। भाई मैं तो बहुत थक गया, चलो मीना।
6: मीना और मोनू आपस में बातें करते हुए घर की तरफ चले।
0: एक बात समझ नहीं आई मीना, दीपू इतने भारी भारी थैले उठा के आया, फिर झट से पेड़ पर भी चढ़ गया, एक हाथ से लटका भी, और फिर नीचे उतर के वही थैले आराम से उठा के चला भी गया।
5: कितनी ताकत है ना उसमें।
0: काश मुझ में भी दीपू जैसी ताकत होती। एक काम करते हैं मीना, पहलवान चाचा के घर चलते हैं।
5: वो क्यों?
0: उनसे उनकी ताकत का राज जानने।
6: मीना और मोनू पहुँचे पहलवान चाचा के घर।
7: नमस्ते चाची।
8: अरे मीना, मोनू, खुश रहो बच्चों।
0: चाची, चाचा नजर नहीं आ रहे।
8: बेटा, तुम्हारे चाचा तो किसी काम से पंचायत घर गए हुए हैं। आओ बैठो।
0: नहीं चाची, वो ये क्या चाची, इतना सारा दूध?
8: हाँ मोनू, ये दूध तुम्हारे चाचा के लिए है।
0: पहलवान चाचा इतना सारा दूध पीते हैं?
8: तुम्हारे चाचा दिन में 3-4 बार दूध पीते हैं।
5: चाची जी, क्या पहलवान चाचा को दाल खाना भी अच्छा लगता है?
8: बहुत, उन्हें तो खाने में रोटी और चावल के साथ दाल जरूर चाहिए।
2: दाल जरूर चाहिए, जितनी चाहे खाइए।
5: अच्छा चाची, अब हम चलते हैं। नमस्ते।
8: बच्चों, कोई काम था क्या अपने पहलवान चाचा से?
0: चाची
5: जो काम था वो हो गया चाची।
8: हो गया?
5: चलो मोनू।
0: लेकिन मीना।
5: चलो तो।
6: पहलवान चाचा के घर से बाहर निकलते ही मोनू ने मीना से कहा।
0: क्या मीना, तुमने चाची से ये क्यों कहा कि हम जिस काम के लिए आए थे वो हो गया?
5: क्योंकि हमारा काम हो गया था।
2: काम हो गया था, लगता है मोनू सो गया था।
5: चुप मिट्ठू, शरारती कहीं के।
0: मैं समझा नहीं मीना, हम तो यहाँ।
5: तुम पहलवान चाचा से उनकी सेहत और ताकत का राज जानना चाहते थे ना?
0: हाँ
5: मोनू, पहलवान चाचा की सेहत का राज है सही भोजन, जिससे उन्हें मिलती है ताकत, जैसे कि दाल और दूध।
0: क्या, दाल और दूध?
5: हाँ मोनू, अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही कहा था ना कि काश तुम में दीपू जैसी ताकत होती।
0: हाँ कहा तो था।
5: और दीपू को भी पहलवान चाचा की तरह दूध और दाल बहुत पसंद है, समझे?
0: अब समझा मीना, आज से मैं भी दीपू और पहलवान चाचा की तरह रोज दूध पीऊंगा और हर एक दाल खाऊंगा बिना मुंह बनाए।
2: बिना मुंह बनाए? मोनू जी मुस्कुराए।
6: और फिर अगले एक महीने तक मोनू ने रोज दूध पिया और खाने में रोटी और चावल के साथ दाल भी खाई। और मुकाबले के दिन रमेश और मोनू ने पंजा लड़ाना शुरू किया। उन दोनों के दोस्त उनका उत्साह बढ़ा रहे थे।
9: हरा दे रमेश, उसे हरा दे।
10: मोनू हरा दे उसे, मोनू मोनू हरा दे।
2: तू कर सकता है।
11: अरे वाह, मोनू जीत गया, मोनू जीत गया।
5: मोनू, तुम में तो सचमुच बहुत ताकत आ गई, कमाल है।
2: कमाल है, इसका राज दूध और दाल है।
6: देखा दोस्तों, है ना चतुर और चपल अपनी मीना। अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
5: बनेगी सेहत मिलेगी ताकत होगा खूब कमाल,
2: लंबे तगड़े बन जाओ तुम पी के दूध खाके दाल।
6: क्या बात है, छोटी सी कविता में कितनी बड़ी बात कह गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।
4: पहले खाना फिर गाना।
7: नहीं भैया, पहले गाना फिर खाना।

0: था ना गाना मजेदार। अरे भाई आपसे कह रहा हूँ, कमाल है। दोस्तों आप गाना ही गाते रहोगे या कुछ खेलना भी है? जल्दी से चलो खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। मैं आपको तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और आपको मुझे बताना है उसका सही जवाब, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो, पहली कड़ी, छोटा सा हूँ लेकिन सबके आता बहुत मैं काम, जेब से मुझे निकालो जब हो खांसी या जुकाम।
3: क्या हो सकता है उसका जवाब?
4: क्या हो सकता है?
3: सोचो सोचो।
5: लल्ला, तुम सब हंस क्यों रहे हो? सही तो कहा है मैंने, लल्ला अभी छोटा सा है और वो हम सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, यानी हमारे बहुत काम आता है ना बहन जी?
1: दीपू, तुम्हारा कहना ठीक है कि लल्ला हम सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन क्या हम लल्ला को जेब में रखते हैं? भूल गए, जेब से मुझे निकालो जब हो खांसी या जुकाम।
6: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है मिली, दूसरी कड़ी सुनो बच्चों। हूँ सफेद रंगीन भी हूँ, चौकोर मेरा आकार, साफ सफाई मुझको भाती, इससे मुझको प्यार। सोचो सोचो।
7: ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है।
8: तीसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है सोमा, ये रही तीसरी कड़ी। पास में रहता हूँ तुम सबके, जरा ध्यान से सोचो, खेल के या फिर कुछ खा पी के मुझसे हाथ मुंह पोंछो।
2: रुमाल।
1: शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आज एक बार फिर संदीप त्रिवेदी आप सबके बीच में है और आप सब जानते हैं क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और बुक का नाम है गोल्डन रेज, लेसन नंबर था 2 और आज है ग्रामर, और उसमें भी पास्ट टेंस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट लेसन में हमने प्रेजेंट टेंस पर बात की थी, आज हम कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे किसका, पास्ट टेंस का। तो आज शुरू करते हैं ऑन वायलेंस में, एक्टिविटी नंबर 3 है बच्चों, आपके हाथ में आपकी बुक होनी चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। टेंस के बारे में हमने जब बात की थी तो पढ़ा था प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए, ही रोट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, और डिडंट ही राइट अ लेटर। ये आपको 4 एक तरह से एग्जाम्पल दे दिए, किसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। एक बार फिर हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि जो 3 टेंस होते हैं उसमें प्रत्येक के टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, या सिंपल या इंडेफिनेट, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस या परफेक्ट, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। अब इनमें भी 4 भाग होते हैं जो मैंने अभी ऊपर बोले, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आपको पहला जो एग्जाम्पल दिया इन्होंने वो अफर्मेटिव का था, दूसरा नेगेटिव का, तीसरा इंट्रोगेटिव का, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। यहाँ यानी कि ये जो एग्जाम्पल दिए हुए इन्हीं से इसके रूल्स जो है हमें समझ में आ रहे हैं। मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे लग रहा है बड़ा इजी है, आप लोग पढ़ेंगे

तो आपको भी लगेगा इट्स रियली वेरी वेरी इजी। ओके, कैसे देखते हैं, देखिए, ही रोट अ लेटर, यानी रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म। एक बात क्लियर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है किसमें, सिंपल पास्ट में, ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो राइट रोट रिटन, राइट होता है लिखना डब्ल्यू आर आई टी ई, रोट डब्ल्यू आर ओ टी ई और रिटन डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन। ही क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, तो यहां पे वो चक्कर नहीं है। यहां पे देखिए सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। आई के साथ भी सेकंड फॉर्म, यू के साथ भी सेकंड फॉर्म, प्लूरल के साथ भी इवन सेकंड फॉर्म ही आएगी, ये आपको याद रखना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या था, एस आई एस का चक्कर पड़ता था ना, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो चक्कर पड़ेगा वो नेगेटिव से शुरू होगा, वो भी बताते हैं आपको कैसे। ये अफर्मेटिव की बात चल रही है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो आप आंख बंद करके, मेरी तरह नहीं यानी बिल्कुल ये कंफर्म मान करके चलिएगा कि वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस, ओके, या सिंपल पास्ट या पास्ट इनडेफिनेट, ठीक है। अब इसमें देखिए, दूसरे वाले में देखिए, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, राइट आ गया, लेकिन बीच में डिड नॉट जुड़ गया। डिड क्या है, डिड क्या है, डिड क्या है, डिड है डू की सेकंड फॉर्म। तो फिर हमारा सेकंड फॉर्म वाला फॉर्मूला काम कर गया, कैसे, राइट तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेकिन डिड अगर सेकंड फॉर्म आ गई है डू की, तो फिर हमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब की ही रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि यहां से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाते हैं नेगेटिव में, और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या रहेगा, केवल और केवल डिड। नेगेटिव है तो उसके साथ नोट लगेगा, वरना आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो उसकी जरूरत कहां पड़ेगी, नेगेटिव में आपको पड़ेगी। अब ही डिड नॉट राइट अ लेटर, वो पत्र नहीं लिखता था, या उसने पत्र नहीं लिखा, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, डिड सबसे पहले आ गया, डिड ही राइट अ लेटर, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी कहां पे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में। केवल और केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। देखते हैं आप क्या लिखा है इन्होंने, कुछ मैं रीडिंग कर लेता हूं। द अबव एग्जांपल्स शो एन एक्टिविटी कंप्लीटेड द पास्ट, दीज आर सेड टू बी इन द सिंपल पास्ट फॉर्म। ओके, वही सब बात जो हमने की, फर्स्ट इज एन अफर्मेटिव यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड is negative using did not plus present form of the verb, third is interrogative using did before the subject and the present form of the verb and a question mark at the end, and fourth is negative interrogative. The simple past tense is used for a action which took place in the past. ये बात समझ लीजिए कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कहां किया जाता है, कि जो कोई घटना जो घटित हो चुकी है पहले ही, एंड इज कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने या लिखने से ठीक पहले वो घटना हो चुकी थी। द फॉलोइंग एडवर्ब्स आर नॉर्मली यूज्ड इन द टेंस। ओके, ये देखिए कुछ एडवर्ब्स हैं, हमने एडवर्ब्स की बात की थी काफी सारी, वो इसमें यूज होते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जस्ट नाउ, फ्यू मिनट्स अगो, थ्री मंथ्स अगो, एक्सेट्रा, ये इसमें एडवर्ब्स यूज होते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। अब आती है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है। देखिए पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। Put in the blanks the correct form of the verbs given in bracket. Bracket में जो verb दिए उसको ठीक करना हमें, कैसे, Columbus खाली जगह अमरीका, आएगा discovered, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है अमरीका की खोज किसने की थी, Columbus ने की थी, तो कौन सा टेंस बनेगा, की थी मतलब कर चुके थे, कर हो गई थी अमरीका की खोज, किसने की, Columbus ने, discover की second form आ जाएगी Columbus discovered, और ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ही खाली जगह फेवरेबली फ्रॉम 8 इंस्टीट्यूशंस, हियर ही हर्ड, हियर होता है सुनना, और हियर
में डी लगा दो, एच ई ए आर डी, तो वो होती है सेकेंड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, हियर हर्ड हर्ड। अब बहुत सारे बच्चे हमारे, खासकर मेरे स्कूल में भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसको वो हर बोल देते हैं, लेकिन बेटा हर होता है अलग, एच ई आर ई, वो फीमेल के लिए, लड़की के लिए इस्तेमाल में आता है वो हिज की जगह, तो हर अलग चीज है और ये है हियर, इसको बोलेंगे हियर हियर हियर, तो एच ई ए आर हियर हर्ड हर्ड, तो ही हर्ड यहाँ पे हर्ड हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, शी ब्रैकेट में क्या है, रिटर्न, तो यहाँ पे भी ये भी अफर्मेटिव है, शी रिटर्न्ड, रिटर्न की सेकंड फॉर्म, शी रिटर्न्ड। ओके, फोर्थ में क्या वर्ब दी हुई है, सी, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, सी सॉ सीन, सॉ एस ए डब्ल्यू, सीन एस डब्ल्यू एन, व्हेन। ओके, ये तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगी। मैंने कैसे पहचाना कि ये इंट्रोगेटिव है और आप कैसे पहचानेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन आ गया दैट मींस ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, दो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, दो खाली जगह दिख रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट से पहले है, एक सब्जेक्ट के बाद है, दैट मींस सब्जेक्ट के पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो व्हेन डिड यू लास्ट सी। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म कोई सी भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि डिड आ गया है। व्हेन डिड यू लास्ट सी योर फादर। ओके, पांचवा, इट इज एग्जैक्टली 5 years अगो टूडे दैट वी गेट है, तो गॉट आ जाएगा, वी गॉट मैरिड, अफर्मेटिव। ठीक है, सिक्स्थ, द पुलिस, खाली जगह, द थीफ यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्ब आ गया है, देखिए अफर्मेटिव, कैच कैच सी ए टी सी एच, कैच या नहीं पकड़ना, कैच की सेकंड फॉर्म होती है सी ए यू जी एच टी, कॉट, सी ए यू जी एच टी, कॉट, द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे, द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सेवंथ, ही सडनली, खाली जगह, दैट ही वाज ट्रेवलिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन रियलाइज, ब्रैकेट में दिया हुआ है बच्चों रियलाइज, रियलाइज मतलब एकदम से पता लगना, महसूस होना, आर ई ए एल आई जेड ई, रियलाइज, अब इसमें डी और लग जाएगा, रियलाइज्ड हो जाएगा, उसको अचानक ये समझ में आया कि भाई वो किसी गलत दिशा में जा रहा है। आठवां, ही, खाली जगह, मी अप जस्ट नाउ, जस्ट नाउ भी देखो एडवर्ब आ गया, रिंग, रिंग यानी फोन करना, घंटी बजाना, तो रैंग हो जाएगा, ही रैंग, आर ए एन जी, और रिंग की स्पेलिंग है आर आई एन जी, ही रैंग मी अप जस्ट नाउ। नाइन्थ, आई, खाली जगह, अ लेटर फ्रॉम माई वाइफ लास्ट वीक, आई हैव, तो आई हैड हो जाएगा, आई हैड अ लेटर। टेंथ, द थीव हैड एस्केप्ड बिफोर ही, खाली जगह, इन टू द रूम कम, तो बिफोर ही केम हो जाएगा, बिफोर ही केम, कम केम कम, सेकेंड फॉर्म होती है केम, सी ए एम ई, और फर्स्ट और थर्ड फॉर्म होती है एक जैसी। अब हमारा आता है दूसरा, पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलेंगे इसको हम, या पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे इसको। जल्दी से हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रहीम वाज प्लेइंग टेनिस एट द टाइम, वाज इट रेनिंग एट दैट टाइम, हाँ, इट वाज नॉट गेटिंग डार्क एट दैट टाइम, वाज शी नॉट रिटर्न एट दैट टाइम। ओके, थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी समझ में, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज किया गया है, ए बी सी डी, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पहला एग्जांपल अफर्मेटिव का है, दूसरा एग्जांपल नेगेटिव का है, तीसरा इंट्रोगेटिव का है और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। अब इन एग्जाम्पल्स को पढ़ करके कुछ बातें मुझे जो समझ में आ रही है वो कि एक तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, वाज और वर्ब, और आपको मैंने बताया था जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे हम कि तीनों टेंस में कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी लगेगी, तो इस नियम में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब दिमाग लगाना है कहां वाज कहां लगेगी और वर्ब कहां लगेगी। देखिए, जहां जहां सिंगुलर है थर्ड पर्सन का वहां वाज, बाकी सब में वर्ब लगेगी, बिल्कुल भूल जाओ, आई के साथ भी वाज लगेगा, ये याद रखने वाली बात है छोटी सी, आई वाज, लेकिन यू वाज नहीं होगा, यू वर होगा, वी वाज नहीं होगा, वी वर होगा, ही वाज होगा, ही वर नहीं होगा, शी वाज होगा, इट वॉज होगा, ठीक है, दे वाज नहीं होगा, दे वर होगा, दीज वर, दोज वर। ओके, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड में इंट्रोगेटिव बनाया इन्होंने, वॉज इट रेनिंग एट दैट टाइम, क्या उस समय बरसात हो रही थी,
थर्ड ये है नेगेटिव, इट वॉज नॉट गेटिंग डार्क. देखिए इट के साथ वाज आ गया और लास्ट में फोर्थ में शी के साथ भी वाज आया है, यानी इन्होंने वर वाला कोई एग्जाम्पल नहीं दिया. द अबव सेंटेंसेस इंडिकेट द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट. दिस फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव. दिस टेंस इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एक्शंस इन द पास्ट अबाउट हूज बिगिनिंग एंड एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड. इट इज मोर ऑफन फाउंड इन कंपाउंड सेंटेंसेस विद अनदर वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस. इट डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच द सिंपल पास्ट टेंस टुक प्लेस. ओके कुछ और एग्जाम्पल दिए. आई वॉज रीडिंग अ बुक वेन यू केम इन. जब तुम अंदर आए तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था. इसको इस तरीके से भी बनाया जाता है. इट इज ऑफन फाउंड विद एडवर्ब क्लॉजेस बिगिनिंग विद वाइल. इसमें जो एडवर्ब क्लॉज आते हैं कौन कौन से, वाइल, वेन एंड अदर एडवर्ब्स विच शो द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. जैसे ऑल लास्ट वीक, ऑल यस्टरडे, ऑल लास्ट नाइट. ये भी इसमें यूज हो सकते हैं. कैसे आप जानेंगे एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज आ गई है. फर्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस. ओके फर्स्ट में देखिए वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में वॉश. तो आई के साथ मैंने अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे वॉज. आई वॉज वॉश में आई एन जी लगाओगे आई वॉज वॉशिंग. वॉश मतलब कपड़े धोना होता है, आप सब जानते हैं. आई वॉज वॉशिंग यहाँ पे हाथ धोने के लिए, वॉश यानी धोना होता है एक्चुअली. तो आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स. अब मैं मेरे हाथ धो रहा था कब, वेन, जब द टेलीफोन. फिर एक और दिया यहाँ पे रिंग. रिंग का रैंग हो जाएगा. यानी यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल दोनों का इस्तेमाल किया इस सेंटेंस में. तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स वेन द टेलीफोन रैंग. दे ऑल खाली जगह. फिर हैव है ब्रेकफास्ट वेन आई गॉट अप. They all had breakfast when I. They all were having breakfast when I got up. They all were having breakfast. They के साथ were आ गया. Third, the door bell. फिर bracket में दिया ring was ringing while she was reading. Okay, यहाँ पे इनको the door bell was ringing while she was reading. Okay. जब वो पढ़ रही थी किताब तो दरवाजे की घंटी भी बज रही थी. अब यहां पे देखो वाइल शब्द आया है तो ये समझने वाली बात है. वाइल शब्द आ गया इसलिए हमने इसको पहले वाले भाग को भी कंटिन्यूअस में ही बनाया बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यहां पे हम अक्सर गलती करते हैं. प्लीज इसको थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं. अब यहां पर अगर वेन होता वाइल की जगह, देखिए मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं. द डोर बेल खाली जगह रिंग वाइल शी वॉज रीडिंग. तो यहां पे अगर वेन होता तो ये हम पहला वाला जो भाग है इस सेंटेंस का, दो भाग है इस क्वेश्चन के, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पास्ट सिंपल में बनाते. द डोर बेल रैंग वेन शी वॉज रेडी, यानी जब वो पढ़ रही थी तब घंटी बजी. लेकिन यहां पे क्या लिखा है, द डोर बेल वॉज रिंगिंग. जितनी देर वो पढ़ रही थी उतनी देर घंटी बज रही थी, बस अंतर इतना सा है. तो ये वाइल और वेन का चक्कर है. प्लीज ये आप डोंट बी कंफ्यूज, इसका जरूर ध्यान रखिएगा. फोर्थ, माय आंट खाली जगह फिर वॉक इन द पार्क व्हेन आई मेट हर. तो यहां पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा. दूसरे वाले भाग को इन्होंने पास्ट सिंपल में बनाया तो डेफिनेटली क्यों बनाया, वेन आ गया इसलिए फर्स्ट पार्ट को हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है. तो माई आंट वॉज वॉकिंग इन द पार्क व्हेन आई मेट हर. फिफ्थ क्वेश्चन, शी खाली जगह टॉक to her neighbors when the baby began to cry. Okay, so she was talking TLK बातचीत करना to her neighbors when the baby began to cry. Okay, next, he suddenly खाली जगह realized that he, okay ये यहां पे देखिए, he suddenly realized that he was traveling इन द रोंग. क्योंकि देखो रियलाइज कब होता है, अचानक, सडन, ऑल ऑफ अ सडन. तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, उसको महसूस हुआ तो रियलाइज्ड पास्ट सिंपल हुआ आया. और सेकंड में ही वाज ट्रैवलिंग
TRAVELLING, ट्रेवलिंग जब करेंगे बेटा तो ध्यान रखना स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डबल एल हो जाएगा यहाँ पे, ट्रेवल यानी यात्रा करना, ट्रेवलिंग तो जब ट्रेवलिंग आईएनजी लगाएंगे तो डबल एल हो जाएगा, TRAVEL, ये तो होता है मेन वर्ब, लेकिन TRAVELLING ट्रेवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। एज आई खाली जगह क्रॉस द रोड, आई खाली जगह स्टेप ऑन ए बनाना स्किन एंड खाली जगह ब्रैकेट में फॉल हेविली। एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं सड़क पार कर रहा था, आई स्टेप्ड ऑन ए बनाना स्किन, मेरा पैर एक केले के छिलके पे पड़ गया। बनाना स्किन, स्किन वैसे होती है चमड़ी, तो केले की चमड़ी वही केले का छिलका। एंड फेल हेविली, और मैं गिर गया, यानी दो पास सिंपल बना दिए और एक पास कंटिन्यूअस, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ही खाली जगह लीव द ब्लाइंड स्कूल एंड खाली जगह एनरोल एट अनदर स्कूल, ही लेफ्ट द ब्लाइंड स्कूल एंड वॉज एनरोलिंग एट अनदर स्कूल, ठीक है। नाइन्थ, द हार्टमैन्स खाली जगह ब्रैकेट में फील है डेविड खाली जगह हेड फॉर ग्रीफ, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द, दसवा कर रहे हैं अपन, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एट नाइट बट आई नेवर फाइंड का फाउंड हो जाएगा द आंसर। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि पहले वाले भाग में कंटिन्यूअस बना बनाया है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, स्टडी द फॉलोइंग, वही एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड नंबर पे हम पास्ट परफेक्ट में आ गए हैं, तो पैटर्न क्या है देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, समथिंग इज चेंज्ड, देखिए क्या, ध्यान देना, द पेशेंट हैड डाइड, दो भागे इसमें, बिफोर द डॉक्टर केम। व्हेन आई एंटर्ड द रूम द थीफ हैड ऑलरेडी एस्केप्ड, इन बोथ द एग्जांपल्स टू एक्शंस हैपेंड बोथ इन द पास्ट, फॉर फॉर्मर एक्शन वी यूज पास्ट परफेक्ट एंड फॉर द लेटर एक्शन सिंपल पास्ट। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे दो दो भाग दिए हुए हैं, पास्ट पर दो सेंटेंस के दो दो भाग है, एक भाग है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा भाग है पास्ट सिंपल में। तो जो घटना पहले हो चुकी है उसके लिए पास्ट परफेक्ट आएगा, जो घटना बाद में हो रही है उसके लिए पास्ट सिंपल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पहले द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर गया, तो मरीज पहले मरा कि डॉक्टर पहले आया, मरीज पहले मरा, डॉक्टर कब आया, मरीज के मरने के बाद, तो डॉक्टर बाद में आया, इसलिए उसमें हमने पास्ट सिंपल का यूज किया। दूसरे में देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, द थीफ हैड ऑलरेडी एस्केप्ड, चोर पहले से ही जा चुका था। अब चोर पहले गया कि मैं कमरे में पहले गया, चोर पहले से जा चुका था, इसलिए दूसरे वाले भाग में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की, इन दोनों एग्जांपल्स को पढ़ करके हमें कुछ रूल्स समझ में आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब की फॉर्म है हर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट याद करिएगा बच्चों, जब आप पास्ट परफेक्ट को पढ़ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, मैंने कहा था कि तीनों में, यानी फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, किस में, परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब जरूर चेंज है, प्रेजेंट में हैज और हैव थी, लेकिन आपके लिए आसान कर दिया पास्ट में कि केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, और वो कौन सी है, हैड, केवल और केवल हैड, बस। तो समझ में आ गया आपको हेल्पिंग वर्ब की कहानी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम एक दिन एक क्लास इस पर भी करेंगे अलग से, कि तीनों जो फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की उस पर बात करेंगे, मीनिंग और फॉर्म। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड, वो तो हमको पता ही है कि इसके लिए इस्तेमाल होता है कि जो घटना घटित हो चुकी थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस इज जनरली फाउंड ए इन इनडायरेक्ट स्पीच, जनरली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, इन कंपाउंड सेंटेंसेस इन द पास्ट दैट क्लॉजेस
of time introduced by such words as after, before, when, until, as, soon, as. For example, his finger began to bleed as soon as he had cut himself. When we got home, night had already fallen. Exercise aa jati hai. Exercise hum kar bhi lete hain. Fatafat put the verbs given in the brackets in the correct forms using past perfect had plus past participle form or past simple. Theek hai? To wahi baat aa gayi. He said, he khali jagah had been, he had not been present at the meeting. He had not been, be ki been ho jayega aur had a jayega, not a jayega. Second, John wanted to know why Mary had come home late. Theek hai? Pehla bhag past simple mein, dusra bhag past perfect mein. John wanted to know why Mary had come. Come ki third form bhi kam hi hoti hai. Third, until he, khali jagah, bracket mein hai, explain, the students, khali jagah, not understand, until he had explained, the student did not understand. Theek hai? Jab tak ki unhone samjhaya nahi, tab tak bacche samjhe nahi. Fourth, he, khali jagah, go blind before he be 9 years of age. He had gone blind before he was 9 years of age. Past simple mein, bina verb ke was ka upyog kiya ja sakta hai. The fire, khali jagah, burn for 3 hours. When, khali jagah, the fireman, khali jagah, arrived. The fire had burnt for 3 hours when the fireman arrived. Pehla wala past perfect, dusra wala past simple. Kaise? Yahan pe hum wahi formula use karenge. Jo ghatna pehle ghatit ho chuki hai, uske liye past perfect. Jo ghatna baad mein ghatit ho rahi hai, uske liye past simple. Ab yahan pe kya hua? Aag pehle lagi ki aag bujhane wale pehle aaye? Aag pehle lagi jabhi to aag bujhane wale aaye. Simple, fireman, aag bujhane wale. Okay. Chhata, his neighbors, khali jagah, phir hai, will not speak to him until he, khali jagah, apologize. His neighbors would not speak to him until he had apologized. The seventh question, the workers, khali jagah, will not call off the strike unless their demand accept. So, iska banega, the workers would not call off the strike unless their demand had accepted. Jab tak ki unki mange nahi mani jati, tab tak wo apni hadtal ko samapt nahi karenge. Aur aathwa question hai, is exercise ka last, he told me, past simple, dekhiye, tell ki second form, told, tell yani batana. He told me, T-O-L-D, that he never meet the verb mein, he never had met, M-E-T, meet, theek hai? Meet yani milna, meet you, theek hai? So he told me that he never had met you. So ye hamara past perfect tak yahan par complete hua. Past continuous hum kabhi aur padhenge. कुछ एग्जांपल्स हम इसके अभी कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो पास्ट इंडेफिनेट में, अफर्मेटिव में एग्जांपल्स देखिए आप. उसने अपना पाठ याद किया, ही लर्नड हिज लेसन. याद करना लर्न, एल ई ए आर एन, और उसकी सेकंड फॉर्म लर्नड, ठीक है? तो ही लर्नड हिज लेसन. मैंने एक गाना गाया, I sang a song, sing, sang, sung, ठीक है? हमने कल एक पत्र लिखा था, we wrote a letter yesterday. देखिए, yesterday adverb आ गया, और हमारा ये sentence अभी हमने पढ़ा भी था. कुत्ता भाग सका, the dog could run. ये भी could, can का past tense होता है, इसलिए ये भी past
सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, तुम वहां जा सके, यू कुड गो देयर। छठा, वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे, दे यूज टू प्ले फुटबॉल डेली, यानी यूज टू, ये भी पास्ट सिंपल का ही एक जो है प्रकार है। तो आप कुड और यूज टू से भी पास्ट सिंपल को बना सकते हैं, लेकिन उसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? आपने सुना अभी, वे प्रतिदिन फुटबॉल खेला करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, है ना? तो दे यूज टू प्ले फुटबॉल डेली। ओके, रूल्स पर हमने बात करी ली, और यूज्ड टू, यूज की सेकेंड फॉर्म यूज्ड, फिर यूज्ड टू। तो अभी हम फटाफट किसके एग्जांपल देख लेते हैं, अब हम नेगेटिव के एग्जांपल देख लेते हैं। राम ने एक शेर नहीं देखा, राम डिड नॉट सी अ लॉयन। दूसरा, शीला ने अपना काम नहीं किया, शीला डिड नॉट डू हर वर्क। तीसरा, हमने कल अपने कपड़े नहीं धोए, वी डिड नॉट वॉश अवर क्लोथ्स यस्टरडे। चौथा, मैं वहां कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट देयर। पांचवा, हम वहां नहीं जा सके, वी कुड नॉट गो देयर। ओके, कुड तो यहां भी आ गया। अब इंट्रोगेटिव में आ जाइए, नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में, क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे? Did your father go to Delhi yesterday? दूसरा, क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी? ये इसलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जांपल्स कुछ बता रहा हूं। Did I not read the book? तीसरा, दृष्टिबाधित आदमी कल कहां सोया? Where did the blind man sleep yesterday? Fourth, तुम वहां कब गए थे? When did you go there? पांचवा, क्या वे घर पहुंच सके थे? Could they reach home? Okay? अब जल्दी से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर बढ़ चले हैं। देखिए, यहां है नो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, अफर्मेटिव। एग्जांपल्स नंबर वन, मैं मेरठ जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मेरठ। तुम फुटबॉल खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वही वर आ गया, देखो वाज आ गया, ठीक है। थर्ड, हम सड़क पर दौड़ रहे थे, वी वर रनिंग ऑन द रोड। अब आप बनाइएगा नेक्स्ट। चौथा, मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे, बताइए मेरे पिताजी यानी माय फादर, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज आएगी, है ना, माय फादर सिंगुलर है, और राइट यानी लिखना, उसमें आई एन जी लगाएंगे तो W R I T I N G E हट जाएगा, वैसे स्पेलिंग क्या होती है? W R I T E, तो राइटिंग क्या लिख रहे थे? अ लेटर, तो माय फादर वाज राइटिंग अ लेटर। लास्ट एग्जांपल है, वे कहां, वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, अब हम इसका जल्दी से नेगेटिव देख लेते हैं। पहला है, मैं स्कूल नहीं जा रहा, I was not going to school. दूसरा, वह पत्र नहीं लिख रहा था, he was not writing a letter. तीसरा, लड़के कक्षा में नहीं बैठे हुए थे, the boys were not sitting in the class. ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहे होंगे examples. वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, ये सिंपल सी बातें जो आप और हम बोलचाल में यूज करते हैं, they were not opening the door. opening, O-P-E-N-I-N-G. यानी दरवाजा खोलना। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या तुम वहां खेल रहे थे? वर यू, देखो यू के साथ वर आया, वर यू प्लेइंग देयर। दूसरा है, क्या वह स्कूल जा रहा था? वाज ही गोइंग टू स्कूल। तीसरा है, क्या मैं पानी नहीं पी रहा था? वाज आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। चौथा है, लोग कहां सो रहे थे? कैसे बनाएंगे लोग कहां के लिए? वेयर वर द पीपल, द पीपल में वर आएगा, स्लीपिंग, स्लीप प्लस आई एन जी। पांचवा एग्जाम्पल दे, तुम कल काम क्यों नहीं कर रहे थे? वाई वर यू नॉट वर्किंग yesterday? यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो ऑलवेज सिंपल है, एज यू नो ऑल, एज यू ऑल नो एक्चुअली। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम
किस पे? परफेक्ट पे आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, रात होने से पहले मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन होम बिफोर द नाइट फेल। उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, ठीक है। या वह आने भी नहीं पाया था कि मैंने अपना काम समाप्त पूरा कर, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। देखिए हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा, पहले मैंने काम किया फिर वो आया, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल। पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल को गई, शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। चौथा, उसने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। पांचवा, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, when he reached the school the bell had rung। छठा, वह यह समाचार पहले ही सुन चुका था, he had already heard the news already, yet, ये सब इसमें आते हैं, okay? चलिए negative कर लें, okay? Negative, पहला example है, मेरे station पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं चली थी, the train had not started before I reached the station। उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी, the bell did not ring after he had reached the school। थर्ड, मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, I had not received your letter till yesterday। चौथा है, हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं खेला था, We had never seen such a match before, okay? तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हम जरा कर ही लेते हैं, ओके? पहला एग्जांपल है, क्या वर्षा आरंभ होने से पहले तुम काम समाप्त कर चुके थे, Had you done your work before it rained? वही फॉर्मूला आ रहा है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल वाला, दो भागों में। क्या मेरे आने के बाद वह स्कूल गया था, Did he go to school after I had come? तीसरा, मेरे आने से पहले लड़के ने काम क्यों नहीं किया था, Why had the boy not done the work before I came? चौथा है, क्या वह समाचार पहले ही सुन चुका था, Had he already heard the news? पांचवा है, सीता ने सोने से पहले पत्र कब लिखा था, When had Sita written a letter before she slept? तो ये हो गया हमारा past simple, past continuous, past perfect continuous को फिर कभी हम देखेंगे। और अच्छा लगा मुझे, कल हम पढ़ेंगे next lesson यानी पॉजिटिव हेल्थ, जो कि ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसी के साथ संदीप त्रिवेदी को इजाजत दें, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप, और आज आपका फिर से एक बार स्वागत है बच्चों की दुनिया में, जहां बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चों से हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। और आज हम आ गए हैं स्कूल के कुछ प्यारी प्यारी बच्चियों से बात करने, और उनसे जानेंगे आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डर। डर तो हम सबको लगता है, तो चलिए उनसे जानते हैं किस प्रकार के डर बच्चों में होते हैं या क्या वो महसूस करते हैं, उनसे खूब सारी बातें करते हैं। पहले सब लोग अपना अपना नाम बताना, ओके, और अपनी क्लास।
2: मेरा नाम देवू है और मैं 12th क्लास से हूँ।
3: मेरा नाम दिव्या है और मैं 12th क्लास से।
4: मेरा नाम निकू है, मैं 9th क्लास से।
5: मेरा नाम श्रद्धा है और मैं 9th क्लास से।
6: मेरा नाम अमीशा कान

0: लगता है कि मेरे को घुटन फील होती है, मतलब जी घबराता है मेरा। रोशनी ने देखती है, मतलब मुझे बहुत घबराहट होती है। और एक है ना एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन है, डर भी लग रहा है कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा।
1: मुझे तो मेरे पापा से बहुत ज्यादा डर लगता है
0: और मम्मी से भी लगता है, पढ़ाई से भी लगता है, अंधेरे से तो नहीं लगता, प्रिंसिपल मैम से डर लगता है।
2: मेरे को ना सुनसान रास्ते में कभी मैं अकेली आ रही होती हूँ तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत डर लगता है, अकेला महसूस होता है, अगर कोई साथ में होता है तो ज्यादा डर नहीं लगता।
0: मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है, खून खराबे से और खून देखने से बहुत डर लगता है। जब अगर मैंने कुछ गलती की है तो वो बोलने में डर लगता है कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूंगी तो डांट पिटेगी या तो फिर मारेगी। सबसे ज्यादा जैसे अभी स्कूल में पढ़ते या फिर कभी भी कोई ऐसी वैसी बातें हो जाती है तो डर लगता है कि प्रिंसिपल मैम ये बोलेंगे वो बोलेंगे। घर में भी कोई ऐसी बातें हो जाती है, अगर कोई बोल भी देता है, मतलब गलती तो हम ही करते हैं लेकिन जब कोई डांटता तो उस बात से डर लगता है कि गलती हमने की है।
3: शर्म आती है, शर्म भी एक प्रकार का डर ही होता है। हम डरते हैं जब हम कुछ गलत नहीं बोल दें, कुछ गलत नहीं कह दें।
4: अब मुझे ये बताओ आप लोग, कभी कोई ऐसा आपको घटना याद है कि कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने डर बताए, कभी बहुत आपको डर लगा हो और वो आपको लगता है ये तो नहीं मतलब कभी आए दोबारा, ऐसा कभी हुआ है?
0: हम लोग नक्की पे गए थे घूमने के लिए, मतलब वो हमारे को फॉलो कर रहे थे, हमको नहीं पता था वो हमारे को फॉलो कर रहे। फिर लास्ट मोमेंट पे आके उसने ना हाथ पकड़ लिया और वो बोल रहे कि नंबर दो, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो उस टाइम पे ना मतलब भाई भाई भी थे तो उन्होंने उसको बहुत मारा था, फिर पुलिस में करवा दिया था। बस यही बोलते कि ये ऐसी चीजें हमारे साथ कभी नहीं होगा। बस वो पैसेंजर थे, यहाँ के नहीं थे, दिवाली का टाइम।
4: बहुत अच्छी बात है, बस इस समय ये ध्यान रखो कि आप पब्लिक प्लेसेस पे रहो, चार लोग साथ में हो वो ध्यान रखो, उतना हमारा प्रेजेंस माइंड अगर काम करता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग हमारी हेल्प के लिए होते हैं।
0: दुकानदार थे आसपास में थे शॉप वाले, उन्होंने हेल्प करी थी, उन्होंने हम लोग को मतलब हमारी मदद करी थी।
1: टेंथ का रिजल्ट आया तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो पर मुझे ऐसा था कि मेरी सप्लीमेंट्री आएगी, पर टेंथ के रिजल्ट के टाइम मैं डर गई थी, रोने भी लगी थी, रिजल्ट आया भी नहीं था उससे पहले मैं रोने लगी थी कि मैं फेल हो जाऊंगी। तो और मैं चाहती हूँ मैं कभी बोर्ड के एग्जाम नहीं दूँ क्योंकि मुझे बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा डर लगती है।
4: ऐसे डर किस चीज से लगता है? मैं फेल हो जाऊंगी दोबारा क्लास पढ़ना पड़ेगा या लोग क्या कहेंगे?
1: हाँ, मैं फेल हो जाऊंगी, एक साल बर्बाद हो जाएगा, फ्रेंड्स आगे चले जाएंगे, समय बर्बाद हो जाएगा।
2: मुझे डर लगता है जब पप्पा डांटते हैं या किसी कुछ बात हो जाती है या कुछ गलत बोल लेते हैं तो बाद में ऐसा होता है कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला था इसलिए पप्पा ने डांटा, इसलिए डर लगता है।
5: कभी ऐसा
2: हुआ है? हाँ, मतलब मैं मेरे भाई को या किसी को मारती हूँ या कुछ करती हूँ तो पप्पा मारते हैं या इसलिए डर लगता है।
5: तो क्या करते
2: हो? पप्पा को बोलती हूँ पप्पा सॉरी, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी।
0: लास्ट ईयर हमारा झगड़ा हुआ था, गिराती थे कुछ, तो उन्होंने ना लोगों ने कुछ नहीं किया था ना तो भी उन्होंने ना मतलब झगड़ा किया था ना तो उससे ना मेरी मम्मी के सर पे डंडा मार दिया था, तो उनके सर में छेद हो गया था बहुत बड़ा, तो ना उनको हॉस्पिटल लेके गए थे तो उनके टाके लगवा दी थी तो सही हो गए थे, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे सही नहीं होगा।
3: एक बार मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस दिन मेरे को बहुत डर लगा, फिर मैंने सोचा कि ये वापस कभी ना हो।
0: एक महीने पहले की बात है, हम प्रिंसिपल मैम के घर पर ट्यूशन जाते हैं, हमारे शाम का टाइम है 5 से 6 बजे से, तो ना हम लोग वहाँ से ना ट्यूशन जब हम जाते ना तो वहाँ पर एक मतलब यही ढूंढाई का ही कोई लड़का है तो उसने ना कमेंट पास की थी, मतलब कुछ गाली मतलब ऐसा कुछ बोला था जिससे ना मतलब मैं बहुत डर गई थी। फिर घर पर आके मैंने मम्मी को बताया, घर वालों को बताया, फिर घर वालों ने उसको थाने में करवाया, फिर उनसे पूछा वगैरह,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। ये वार्तालाप धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि विभिन्न विषयों पर हुए थे और उनके द्वारा हमें स्वामी जी के उद्बोधन तथा स्फूर्तिदायक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी दिग्दर्शन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का पुनर्निर्माण पहले होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। इस सत्य का भी यथार्थ ज्ञान हमें इन वार्तालापों से होता है। अब आप प्रियनाथ सिंह जी से स्वामी जी के वार्तालाप के कुछ अंश सुनिए।
2: स्वामी जी उन दिनों कलकत्ते में बलराम बसु के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन मैं भेंट करने पहुंच गया। जापान और अमेरिका पर बड़ी देर तक चर्चा होती रही। मैंने पूछा, स्वामी जी पश्चिम के देशों में आपके कितने शिष्य हैं?
3: बहुत से हैं।
2: 2-3 हजार?
3: शायद अधिक।
2: क्या आपने उनको मंत्र दीक्षा दी है?
3: हाँ।
2: आपने उन्हें मंत्रों का उच्चार करने की अनुमति दे दी?
3: हाँ।
2: आपने कैसे अनुमति दी महाराज?
3: कि जिन्हें मैंने दीक्षित किया है मेरे सब शिष्य हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मंत्रोच्चार का अधिकार नहीं है, पर ब्राह्मण का पुत्र सर्वदा ब्राह्मण ही नहीं होता, यद्यपि उसके ब्राह्मण होने की संभावना अवश्य रहती है। क्या तुमने नहीं सुना, बाग बाजार के अघोर चक्रवर्ती का भतीजा दलित बन गया और दलितों का सब काम करता है, क्या वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं था?
2: स्वामी जी जरा विस्तार से समझाइए।
3: जाति से ब्राह्मण होना और गुणों से ब्राह्मण होना, ये दो भिन्न बातें हैं। भारतवर्ष में ब्राह्मण जन्म लेने से ही हर कोई ब्राह्मण कहलाने लगता है, पर पश्चिम में यदि कोई ब्राह्मण गुण युक्त हो तो उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। जिस प्रकार सत्व, रज, तम तीन गुण हैं, उसी प्रकार ऐसे कुछ गुण हैं दुर्भाग्यवश आज इस देश में क्षात्र व ब्राह्मण गुणों का ह्रास हो रहा है, पर पश्चिम के देशों में लोग क्षत्रियत्व तक पहुंच चुके हैं और क्षत्रियत्व से एक सीढ़ी आगे ही तो ब्राह्मणत्व है। उनमें से कई लोगों ने तो ब्राह्मण कहलाने योग्य योग्यता भी प्राप्त कर ली है।
2: तो जो स्वभाव से सात्विक हैं वही आपके अनुसार ब्राह्मण है?
3: बिल्कुल। जैसे हर एक व्यक्ति में सत्व, रज और तम तीनों गुण न्यूनाधिक अंश में विद्यमान हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण व क्षत्रिय आदि के गुण भी सब मनुष्यों में जन्मजात ही कमोबेश मात्रा में विद्यमान रहते हैं। समय समय पर उनमें से एक न एक गुण अधिक प्रबल होकर उनके कार्यकलापों में प्रकट होता रहता है। आप मनुष्य का दैनिक जीवन क्रम ही लें। जब वो अर्थ प्राप्ति के लिए किसी की सेवा करता है, जब वो स्वयं अपने लाभ के लिए कोई क्रय विक्रय करता है, जब वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, तो उसमें क्षात्र भाव सर्वोपरि होता है, और जब वो ईश्वर चिंतन में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। ये स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए एक जाति से दूसरी जाति में चला जाना संभव है। यदि नहीं तो विश्वामित्र ब्राह्मण कैसे बन सके और परशुराम क्षत्रिय कैसे बन सके? पर इस बात को अभी रहने दो।
0: स्वामी जी ने इसके पश्चात पश्चिम की व्यवहारवादिता की बहुत प्रशंसा की और बताया कि वे धर्म साधना में कितनी व्यवहारिकता प्रकट करते हैं।
2: सच है महाराज, मैंने भी सुना है कि जब वे धर्म साधना करने लगते हैं तो उनकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां शीघ्र ही जागृत होने लगती हैं। अभी कुछ दिन हुए स्वामी शारदानंद जी को उनके एक पाश्चात्य शिष्य का पत्र आया, जिसमें ज्ञात हुआ कि 4 मास की साधना से उनकी कितनी अधिक आध्यात्मिक प्रगति हो गई है।
3: देखा ना, अब तुम समझे कि पश्चिम में ब्राह्मण है या नहीं। आज भी गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, पर ये उसका व्यवसाय बन गया है। और आजकल गुरु शिष्य संबंध भी तो कितना विचित्र हो गया है। अगर गुरु के घर में खाने को दाने नहीं रहते तो गुरु पत्नी उसको ये बात बताती है और बोलती है, अपने किसी यजमान के यहाँ एक बार फिर हो आओ, सारे दिन चौसर खेलने से तो पेट भरेगा नहीं। और गुरुजी जवाब देते हैं,
4: अच्छा अच्छा सुन लिया, अब चुप भी तो रहो, कल मुझे याद दिलाना, अभी अभी मैंने सुना है कि अपने एक यजमान के यहाँ अच्छी कमाई हुई है। उनके यहाँ बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, कल चला जाऊंगा।
3: यही तो है आपके पुरोहितों और कुल गुरुओं की दशा। पाश्चात्य देशों में ऐसा पतन नहीं हुआ है, वहां के धर्म गुरु अपने से कहीं अच्छे हैं।
2: शनिवार 22 जनवरी सन 1898 का दिन था। मैं प्रातःकाल ही बलराम बाबू के घर पहुंच गया। स्वामी जी वहीं ठहरे हुए थे, उनका कमरा श्रोताओं से भरा था। स्वामी जी कह रहे थे,
3: आज हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। बल ही जीवन और निर्बलता ही मृत्यु है। हम आत्मा हैं, अजर अमर मुक्त और शुद्ध। फिर हमसे पाप कार्य कैसे संभव है, असंभव। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार का अडिग विश्वास हमें मनुष्य बना देता है, देवता बना देता है। पर आज हम श्रद्धाहीन हो गए हैं और इसलिए हमारा और देश का पतन हो रहा है।
2: हम श्रद्धाहीन कैसे बन गए?
3: बचपन से हमारी शिक्षा ही ऐसी रही है, उसमें निषेध और नकार का ही प्राबल्य है। हमने यही तो सीखा है कि हम नगण्य हैं, नाचीज हैं। कभी भी हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे देश में भी महान पुरुषों का जन्म हुआ है। हमें एक भी तो अच्छी बात नहीं सिखाई जाती। हमें हमारे हाथ पैर तक तो चलाना नहीं आता। हमें इंग्लैंड के इतिहास की तो एक एक घटना तिथि याद हो जाती है। पर दुख है, हमारे देश के गौरवमय अतीत से हम अनभिज्ञ ही रहते हैं। हम केवल निर्बलता का पाठ पढ़ते हैं। परतंत्र होने से हमें अब ये विश्वास हो गया है कि हम शक्तिहीन हैं और परावलंबी हैं, हम असमर्थ हैं और निकम्मे हैं।
2: क्या इसी कारण से हम श्रद्धाहीन हो गए?
3: श्रद्धा और निष्ठा का ह्रास होने के सिवाय और इसका क्या परिणाम होगा? अब हमें पुनः एक बार वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का भाव जागृत करना होगा, हमारे सोए हुए आत्मविश्वास को जगाना होगा। तभी आज देश के सामने जो समस्याएं हैं वे सुलझाई जा सकेंगी।
2: ये क्या तभी संभव होगा? केवल श्रद्धा से ही हमारे समाज के असंख्य दोष कैसे दूर होंगे? देश में जो बुराइयां कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार और आंदोलन कर रही हैं, तथा अंग्रेज सरकार से प्रार्थना भी कर रही हैं। क्या इससे अच्छा भी अन्य कोई मार्ग है? श्रद्धा का इन सब बातों से क्या संबंध है?
3: पहले ये बताओ कि समाज के दोष दूर करने की आवश्यकता आपको है या सरकार को? यदि आपको आवश्यकता है तो क्या सरकार उन्हें दूर करेगी या आपको स्वयं ही उन्हें दूर करना होगा?
2: पर यह तो सरकार का कर्तव्य है कि प्रजा की आवश्यकताएं समझे और उन्हें पूरी करें। यदि हम हर वस्तु के लिए राजा का मुंह नहीं ताकें तो और किसका ताकें?
3: भिकमंगों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। माना सरकार आपको आपकी आवश्यकता की वस्तुएं देने को एक बार राजी भी हो जाए, पर प्राप्त होने पर उन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने वाले मनुष्य कहाँ है? इसलिए पहले आदमी मनुष्य उत्पन्न करो। हमें अभी मनुष्यों की आवश्यकता है और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं?
2: पर बहुसंख्यक लोगों का मत ऐसा नहीं है।
3: जिसे तुम बहुसंख्यक कहते हो वो मूर्खों और साधारण बुद्धि वालों की बहुसंख्या है। सभी देशों में जिनके पास विचार करने के लिए मस्तिष्क है ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। ये ही कुछ मेधावी और विचारशील व्यक्तित्व सर्वत्र अगुआ होते हैं और बहुसंख्या सदैव उनका अनुकरण करती है। यही अच्छा भी है, क्योंकि जब तक नेताओं के बताए हुए मार्ग पर बहुसंख्या चलती रहती है तब तक सब काम ठीक से चलता रहता है। जो सोचते हैं कि वे इतने ऊंचे हैं कि किसी के सामने सर झुकाना उनकी शान के खिलाफ है वे मूर्ख हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी दुर्बुद्धि से अपना विनाश कर लेते हैं।
2: फिर समाज सुधार कैसे होगा?
3: आप समाज सुधार की बातें करते हैं, पर आप करते क्या हैं? आपके समाज सुधार का मतलब होता है विधवा विवाह या स्त्री स्वातंत्र्य या ऐसी कोई और बात। क्या ऐसा नहीं है? और ये भी किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रहता है। इस तरह के सुधार की योजना से कुछ लोगों का भला अवश्य होता है, पर समूची जाति या राष्ट्र को इससे क्या लाभ? ये तो सुधार नहीं, एक प्रकार का स्वार्थ ही है। अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ रखना और दूसरों के घर ढहने देना।
2: तो आपका तात्पर्य यह है कि समाज सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं?
3: ये कौन कहता है? अवश्य समाज सुधार की आवश्यकता है, पर जिसे आप समाज सुधार कहते हैं उससे सर्वसाधारण जनता, भारत की कोटि कोटि जनता का क्या हित होगा? विधवा विवाह, स्त्री स्वातंत्र आदि जिन सुधारों के लिए आप चिल्ला रहे हैं, उनकी भारत की बहुसंख्यक जनता को आवश्यकता ही नहीं है। उनमें विधवा विवाह की प्रथा भी है और स्त्रियों को स्वतंत्रता भी प्राप्त है, इसलिए वे इन बातों को सुधार ही नहीं मानते। मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब दोष हम में श्रद्धा के अभाव से ही घुस आए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि रोग समूल नष्ट किया जाए, नहीं तो वो फिर बढ़ जाएगा। सुधार अवश्य हो, कौन इतना मूढ़ है जो ये नहीं मानता। उदाहरण के लिए, हमें अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जाति की शारीरिक निर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
0: उस दिन सूर्य ग्रहण था, इसलिए प्रियनाथ जी बोले, अब मैं गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, फिर कभी सेवा में उपस्थित होऊंगा, और प्रणाम कर चले गए। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी के सम्मुख अंतर विवाह का विषय छेड़ा और पूछा,
4: भिन्न भिन्न जातियों और प्रांतवासियों में अंतर विवाह कैसे प्रारंभ किया जाए?
3: मैं भिन्न धर्मावलंबी जातियों या प्रांतवासियों में अंतर विवाह करने के पक्ष में नहीं हूं। कम से कम आज तो उससे समाज के बंधन बहुत ढीले पड़ जाएंगे और कई अनिष्ट होने की आशंका है। मैं तो अभी केवल समधर्म के अनुयायियों के ही परस्पर अंतर विवाह का समर्थन करता हूँ।
4: तो भी इससे कई जटिलताएं उत्पन्न होंगी, जैसे कि मेरी पुत्री बंगाल में जन्मी और वहीं उसका लालन पालन हुआ है, और मैं उसकी किसी महाराष्ट्रियन या मद्रासी से शादी कर दूं तो वो ना अपने पति की भाषा समझेगी और ना उसका पति उसकी भाषा समझेगा, और फिर उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज में भी बहुत अंतर है। इस तरह कई अड़चने हैं, और फिर समाज तो एक तूफान खड़ा कर देगा।
3: अभी वो समय बहुत दूर है जब इस प्रकार के विवाह संभव हो सकेंगे, और आज तो ऐसे विवाहों के एकदम प्रारंभ कर देने का कोई औचित्य भी नहीं प्रतीत होता। काम करने का एक गुप्त गुरु मंत्र ये है कि जिधर कम से कम विरोध हो उस रास्ते चलो। इसलिए प्रारंभ में ही अपनी जाति की उपजातियों में अंतर विवाह शुरू होने चाहिए। बंगाल के कायस्थों का ही उदाहरण लो, उनमें कई उपजातियां हैं, जैसे उत्तराढ़ी, दक्षिण राढ़ी, बंगज आदि, और उनमें परस्पर विवाह नहीं होते। अब दक्षिण राढ़ी और उत्तराढ़ियों में परस्पर विवाह संबंध शुरू करने चाहिए, और यदि ये अभी संभव नहीं है तो बंगजों और दक्षिण राढ़ियों के विवाह ही शुरू हों। इस तरह आज जो चीज विद्यमान है उसी में यथासाध्य सुधार करें। आखिर सुधार बनी बनाई चीज को उखाड़ फेंकने में ही तो नहीं है ना?
5: अच्छा, यही सही, पर इससे लाभ क्या होगा?
3: क्या आप नहीं देखते कि शादियों से एक ही उपजाति तक विवाह संबंध सीमित होने से हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रकार अंतर से निकट के कुटुंबियों और आत्मियों में ही विवाह हो रहे हैं, और इससे हमारे समाज की शरीर संपदा का ह्रास हो रहा है। परिणाम स्वरूप सभी प्रकार की बीमारियां और बुराइयां उसमें घुस रही हैं। एक सीमित संख्या के व्यक्तियों में परिभ्रमण करते करते रक्त दूषित हो गया है, और जन्म से ही नवजात शिशुओं को वंशगत रोग प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की निर्बल संतति रोग के कीटाणुओं के आक्रमण का अवरोध करने में नितांत असमर्थ होती है। विवाहों की परिधि विस्तृत करने पर ही हम हमारी संतति में नए और ताजे खून का संचार कर पाएंगे, जिससे उसकी आजकल के विविध रोगों से रक्षा हो सके।
5: महाराज, आपका बाल विवाह के संबंध में क्या मत है?
3: बंगाल के शिक्षित वर्ग में बाल विवाह की प्रथा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। लड़कियों का विवाह भी पहले की अपेक्षा एक दो वर्ष अधिक होने पर ही होने लगा है, किंतु उसका कारण समाज सुधार की भावना नहीं अर्थाभाव है। किसी भी कारण से क्यों ना हो, विवाह की उम्र और भी अधिक हो जानी चाहिए, पर बेचारा बाप करे क्या। जो ही लड़की जरा बड़ी होती है, माँ से लेकर अन्य सभी स्त्रियां और पड़ोसी ने यही एक टेर लगाने लगती हैं कि वर की खोज की जाए, और जब तक वर नहीं मिल जाता तब तक बेचारे बाप को चैन नहीं लेने देती। सरकार ने कानून बनाकर 12 वर्ष की कन्या से विवाह दंडनीय कर दिया तो ये सब धर्मगुरु चिल्लाने लगे कि धर्म नष्ट हो गया, मानो 12-13 वर्ष की कन्या के माँ बनने में ही धर्म रह गया हो। इसलिए सरकार भी यही सोचेगी कि वाह क्या धर्म है इन लोगों का, और ये आंदोलन कर राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं।
5: तो आपके मत से लड़के लड़कियों का विवाह ज्यादा उम्र हो जाने पर ही होना चाहिए?
3: अवश्य, पर साथ साथ उन्हें अच्छी शिक्षा भी दी जाए, नहीं तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ने की आशंका है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य आधुनिक शिक्षा की प्रणाली से नहीं, वरन ऐसी शिक्षा से है जो भावात्मक हो तथा जिससे स्वाभिमान और श्रद्धा के भाव जागे। केवल किताब पढ़ा देने से कोई लाभ नहीं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखें।
5: हमारे नारी समाज में भी कई सुधारों की आवश्यकता है।
3: इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर स्त्रियां अपनी समस्याएं स्वयं ही हल कर लेंगी। अब तक तो उन्होंने केवल असहाय अवस्था में दूसरों पर आश्रित हो जीवन यापन करना और थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका होने पर आंसू बहाना ही सीखा है। पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हें बहादुर भी बनना चाहिए। आज के जमाने में उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी बहुत जरूरी हो गया है। देखो झांसी की रानी कैसी बहादुर थी।
5: आप जैसा बता रहे हैं यह एक नई बात है और मुझे मालूम पड़ता है कि वैसी शिक्षा व्यवस्था होने में काफी समय लगेगा।
3: फिर भी हमें यथाशक्ति प्रयत्न तो करना होगा। हमें सिर्फ स्त्रियों को ही शिक्षा नहीं देनी है, वरन अपने को भी शिक्षित करना है। साथ ही साथ महिलाओं को विज्ञान व अन्य विषय, जिनसे कि केवल उनका ही नहीं अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाए जाएं। ये जानकर कि परोपकार के लिए ये करना है, भारतीय नारी प्रसन्नता से और सरलता पूर्वक कोई भी विषय सीख लेगी। हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिए आज उसे ऐसे पुण्य संकल्प, पवित्र आत्मा ब्रह्मचारियों व ब्रह्मचारिणियों की आवश्यकता है।
5: इससे देश का किस तरह भला होगा?
3: उनके आचरण से तथा सर्व साधारण के लिए राष्ट्रीय आदर्श में उपस्थित करने के उनके प्रयत्नों से लोगों के विचारों और आशा आकांक्षाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आज क्या स्थिति है, माँ बाप येन केन प्रकारेण अपनी कन्या का विवाह निपटा देना चाहते हैं, चाहे वो 9 वर्ष की हो या 10 वर्ष की। और यदि 13 वर्ष की अवस्था में ही उसकी संतान हो जाती है तो समूचे परिवार के लिए ही महोत्सव हो जाता है। यदि इन विचारों का प्रवाह बदल दिया जाए तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन की कुछ आशा हो सकती है। और जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करेंगी उनका तो कहना ही क्या, उनकी स्वयं में कितनी महान श्रद्धा और विश्वास होगा और उनसे कितना हित और कल्याण होगा।
0: एक दिन संध्या के समय बलराम बाबू के घर रामकृष्ण मिशन की साप्ताहिक सभा भरी थी। मठ से स्वामी तुरियानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी प्रेमानंद व अन्य लोग भी आए हुए थे। स्वामी जी बरामदे में विराजमान थे और चारों ओर बरामदे में लोग भरे थे। जब जब स्वामी जी कलकत्ता आते इसी तरह लोग जुट जाते थे।
1: सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने ये सुन रखा था कि स्वामी जी बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए वे स्वामी जी से कोई भजन सुनने के इच्छुक थे। ये जानकर मास्टर महाशय यानी श्री महेंद्र नाथ गुप्त ने स्वामी जी के समीप बैठे कुछ सज्जनों के कान में कहा

0: स्वामी जी से गाने का आग्रह करो। स्वामी जी ने उनका आशय ताड़ लिया और वे मुस्कुराकर बोले,
1: मास्टर महाशय, ये आपस में क्या कानाफूसी चल रही है, जरा जोर से बोलें।
0: मास्टर महाशय के प्रार्थना करने पर स्वामी जी अपने सुरीले कंठ से ये गीत

0: ऐसा प्रतीत होता था मानो वीणा बज रही हो। भजन समाप्त होने पर वे मास्टर महाशय से बोले,
1: अब तो खुश हो ना, पर अब और नहीं गाऊंगा, नहीं तो मैं भावावेश में आकर गीत की मादकता में डूब जाऊंगा और पश्चिम में व्याख्यान देते देते मेरा गला भी तो अब खराब हो गया है। मेरे स्वर में अब बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न हो गया है।
2: स्वामी जी ने एक ब्रह्मचारी को मुक्ति पर कुछ कहने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी ने खड़े होकर काफी देर तक भाषण दिया। उसके बाद अन्य ब्रह्मचारी भी बोले। फिर स्वामी जी ने इस विषय पर उपस्थित सज्जनों को अपने विचार प्रकट करने को कहा। उनके एक गृहस्थ शिष्य ने वाद का प्रारंभ किया। जब वे अद्वैत और ज्ञान को भक्ति और द्वैत से श्रेष्ठ बताने लगे तो बीच में कहीं किसी श्रोता ने प्रतिवाद किया। जब वे दोनों अपने अपने पक्षों का खंडन करने लगे तो एक अच्छा खासा वाद विवाद आरंभ हो गया। स्वामी जी कुछ देर तो सुनते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों आवेश में आ रहे हैं तो उन्हें शांत करते हुए बोले,
1: देखिए देखिए, आप लोग विवाद में इतना आवेश लाकर सब मजा किरकिरा कर देती हैं। सुनो, श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि विशुद्ध ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भक्ति योग में परमेश्वर से परे कोई प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है। भक्त के हृदय में जो ईश्वर प्रेम है, वो प्रेम भी तो परमेश्वर ही है।
0: उन्होंने बात को समझाते हुए आगे कहा,
1: इस तरह भक्ति द्वैत कहां रहा? इसी प्रकार जो भी इच्छाएं हैं, आकर्षण हैं, वृत्तियां हैं, वे भी ईश्वर के ही रूप हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, इन सब भावनाओं और वृत्तियों में भी ईश्वर ही है। एक ग्रहपुंज दूसरे ग्रहपुंज को आकर्षित करता है, उसमें भी ईश्वर ही है, सर्वत्र वही है। ज्ञान योग के अनुसार भी वो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए ज्ञान और भक्ति में विरोध कहाँ है? वे तो एक ही विषय का प्रतिपादन करते हैं।
3: महाराज, माँ की ममता में ईश्वर रह सकता है, पर इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर जगत के सत्कार्यों का जितना कारणीभूत है उतना ही पाप का भी है।
1: ये दृष्टि केवल परम सिद्धावस्था तक पहुंच जाने पर ही प्राप्त होती है। तभी ऐसा लगता है कि जहां भी प्रेम या आकर्षण है वहीं ईश्वर है। पर अपने जीवन में ऐसी दृष्टि प्राप्त करने के लिए उस अवस्था का प्राप्त होना आवश्यक है।
3: फिर भी ये तो स्वीकार करना ही होगा कि पाप में भी ईश्वर ही है।
1: देखो, यथार्थ में ना तो कोई चीज भली है और ना बुरी है, ये तो केवल एक परिपाटी है कि हम किसी चीज को भली या बुरी कह देते हैं। एक ही चीज को हम बुरी कह देते हैं तो किसी अन्य अवसर पर उसे भली कहने लगते हैं। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी, ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है।
3: वो कैसे स्वामी जी?
1: उदाहरण के लिए इस दीप ज्योति को ही लो। इसके प्रकाश में हम पढ़ते हैं और कई अन्य उपयोगी काम भी करते हैं, ये उसके उपयोग का एक प्रकार है। अच्छा, अब यदि उसमें कोई अपनी उंगली रखे तो वो जल जाएगी, ये उसके उपयोग का दूसरा प्रकार है। इस प्रकार कोई वस्तु जिस प्रकार उपयोग में लाई जाती है, इसी से उसके भले बुरे का निर्णय होता है। इसी प्रकार सद्गुण दुर्गुण, पाप और पुण्य है। हमारी मानसिक व शारीरिक प्रवृत्तियों का उचित उपयोग ही पुण्य है और उनका अनुचित उपयोग व ह्रास ही पाप है।
2: इस तरह कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर किसी ने कहा, नक्षत्र तारा ग्रह मंडलों के परस्पर आकर्षण में भी ईश्वर है। ये सिद्धांत सच हो या ना हो, पर यह विचार अत्यंत कवित्वमय है, इसमें कोई संदेह नहीं।
1: नहीं महाशय, ये कल्पना की उड़ान नहीं। ज्ञान प्राप्ति होने पर इस महान सत्य का आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं।
0: स्वामी जी आगे जो कुछ बोले उसका आशय ये था, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और जड़ यद्यपि भिन्न मालूम होते हैं, तथापि वे एक ही तत्व के दो रूप हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और अंतर जगत में जो भिन्न भिन्न शक्तियां क्रियाशील हैं, वे भी एक ही महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं।
3: महाराज, तो यह माया क्यों है और आई कहां से?
1: ईश्वर के संबंध में क्यों का प्रश्न करना गलत है। जो अपूर्ण है, जिसमें अभाव और कामनाएं हैं, उसी के संबंध में क्यों का प्रश्न किया जा सकता है। जो निष्काम है, जो पूर्ण है, एक है उसके संबंध में क्यों कैसा, माया कहां से आई, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। देश काल निमित्त ही माया है। तुम, मैं और हम सब माया में हैं, तथा तुम माया में रहते हुए ये प्रश्न कर रहे हो कि माया के परे क्या है। तुम जब तक माया में हो तब तक ये कैसे कह सकते हो।
2: इसके पश्चात फिर कई प्रश्नोत्तर हुए। फिर मिल, हैमिल्टन, हर्बर्ट, स्पेंसर आदि पाश्चात्य पंडितों के दर्शन शास्त्र पर चर्चा हुई और स्वामी जी ने सरलता से सब समझाया। सबको स्वामी जी का पाश्चात्य दर्शन का अगाध ज्ञान देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद विविध सामयिक प्रश्नों पर चर्चा हुई और सभा विसर्जित हो गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में, और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, आज 20 मई है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग गुस्से रूबरू होते हुए हमें कुछ लोगों की जीवन कहानी को सुनने और सुनाने का मौका मिलता है। और इसके साथ में अगर बात करें तो आज सुमित्रा नंदन पंत, पीरू सिंह, अजुम चोपड़ा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ में लीला दुबे, गया प्रसाद शुक्ला, स्नेही टी प्रकाश मम, बिपिन चंद्रपाल, मल्लार राव होलकर, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष रूप से कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करते एक बहुत ही खूबसूरत गीत के जरिए। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ना कमाल का विचार। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। आगे बढ़ते हुए आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के बारे में स्तंभों में एक है और सुमित्रा नंदन पंत एक नए युग के परिवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उनका नाम आता है। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों में जैसे वेशभूषा में रहकर प्राकृतिक केंद्रित साहित्य लिखते थे। जन्म के मजहब 6 घंटे के भीतर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। पंत लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ कुदरत और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंद के साथ उनकी जिंदगी के अच्छे दिन गुजरे। आधी सदी से भी अधिक लंबे समय तक रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग उनके अंदर समाया हुआ है। तो आइए ऐसे विशेष सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आज ही के दिन 1900 में कौसानी उत्तराखंड भारत में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही मां के क्रूर मृत्यु ने छीन लिया। इस तरह मुझे लगता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है अपनी मां को देखा ही नहीं और समझा ही नहीं, लेकिन शिशु को उनकी दादी ने पाला पोसा और शिशु का नाम रखा गया गुस्साई दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत की आरंभिक शिक्षा कौसानी गांव में हुई। फिर वो वाराणसी आ गए और जयनारायण हाई स्कूल में शिक्षा पाई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके 21 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो आइए आगे क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा के बाद फिर किस तरह से उनका जीवन में एक यू टर्न आया और फिर समाज के साथ, देश के साथ जुड़कर फिर समकालीन उस समय के जो कवि थे दिनकर जी और अन्य जो कवियों के साथ उनकी उठक बैठक होती रही और इस तरह से वो अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाने में कामयाबी हासिल करते रहे साहित्य जगत में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। हाँ, ये बात कर रहे थे हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। कवि के बचपन का नाम गुसाई था और स्लेटी छात्रों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों का सुंदर आवाज और सरपिल, पगडंडियों, बांझ, बुरंच व चीड़ के पेड़ों के बयार व नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन से पसरी घाटी व उसके ऊपर हिमालय के उत्तम शिखरों पर दादी से सुनी कहानियां और शाम के समय सुनाई देने वाली आरती के स्वर लहरी ने गुसाई दत्त को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया, क्योंकि जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माँ का निधन हो गया था। इसलिए प्रकृति की यही रमणीय उनकी माँ बन गई और प्रकृति के साथ उनकी ममतामय छवि हमेशा दिखाई देता है। धीरे धीरे यहाँ के सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से कागज पर उतारने का कार्य इनको आने लगा और कौसनी चाय बागान के बगीचे के मैनेजर थे वो। उनके भाई संस्कृत व अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी व कुमाऊं में कविताएं भी लिखा करते थे। यदा कदा जब उनके भाई अपनी पत्नी को मधुर कंठ से कविता सुनाया करते थे तो बालक गुसाई दत्त भी सुन ही लेते थे और उनके भी ओट में चुपचाप सुनता और उसी तरह के शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने का प्रयास भी करता। तो इस तरह से उनकी जो है प्राइमरी स्कूल से ही कविता का हुनर उनके जीवन में जगह बनाने लगा और कविता फूटने लगी। तो इस तरह से साहित्य के साथ उनका जो है, अल्मोड़ा में जब साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती रही उसमें पंत अक्सर भाग लेते थे और स्वामी सत्यदेव जी के प्रयासों से नगर में शुद्ध साहित्य समिति नाम से एक पुस्तकालय चलता रहा और उसमें ये भागीदारी बन के रहे। फिर उसके बाद जब पुस्तकालय बन गया तो पुस्तकों का जो है एक बड़ा खजाना उनको मिल गया और वो रोज उनके साथ जुड़े रहते थे और साहित्यिक वातावरण का अंकुरित होने लगा इनके जीवन में और कविता का प्रयोग व सगे संबंधियों को पत्र लिखने का कार्य करने लगे और धीरे धीरे जो है इनके जीवन में उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के दन लोलुप स्वभाव, तंबाकू का धुआं जैसे कुछ छुटपुटी कविताएं उन्होंने शुरू शुरू में लिखी। फिर उसके बाद तो कहानी आगे बढ़ी और ये लंबा रेस का घोड़ा बन गए। नभ की उसी नीली चुप्पी पर गठा है एक टंग सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज बज कर। फिर उसके बाद इनका काम 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़कर देश की आज़ादी के लिए गंभीरता से काम करने लगे और 1930 के नमक सत्याग्रह में शामिल होकर उन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कालांतर में ग्राम जीवन के अधिक निकट संपर्क में आने का अवसर मिला और फिर ग्राम जीवन के पृष्ठभूमि में जो संवेदनाएं उनके हृदय में अंकित होने लगे, उन्हें वाणी देने का प्रयास युगवाणी और ग्राम्य में किया। यहाँ से उनका काव्य का एक नया युग शुरू हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ और ये गीत आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ सफर कार्यक्रम के स्टूडियो में मेहमान आए हुए हैं, परमार सर। परमार सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत मस्ती में हैं। अच्छा लग रहा है।
1: जी जी जी जी, अपने बारे में बताइए हमें थोड़ी बातें।
2: मैं साहब ऐसे तो बेसिकली बचपन से स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा शौक था फुटबॉल हॉकी खेलना, उसमें मैं फिर कस्टम एक्साइज में लग गया।
1: जी जी जी।
2: हाँ, उसके बाद वहाँ से मैं 2012 में रिटायर हो गया। अभी मैं रिटायर लाइफ जीता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, बहुत
2: आज आपके यहाँ आए हैं।
1: अच्छा, आपने माउंट आबू थोड़ा सा आपने झलक देखा तो कैसे लगा?
2: माउंट आबू तो बचपन से देखते आए हुए हैं।
1: जी जी।
2: लेकिन अभी ये बार मुझे कुछ आर्टिफिशियल ज्यादा लगा।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, जो पहले नेचर में रहता था मैं, वहाँ पे जाके लेक व्यू होटल में तो आजू बाजू रहते, मॉर्निंग में उठ के 8 बजे पूरा लक्की लेक का वॉक करता था और वो करता था, लेकिन अभी ऐसा लगा कि बहुत मुझे कंजेस्टेड ऐसा हो लग रहा है अभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: काफी अच्छा है,
1: काफी लोग आए हुए हैं।
2: और थोड़ा आर्टिफिशियल जैसा हो गया, नेचर उसका चला गया ऐसा लगा मुझे थोड़ा।
1: हाँ नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि लोग आने शुरू कर देते हैं तो उनकी फिर व्यवस्था करने के लिए सारी चीजें
2: तो होते हैं।
1: तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और चलिए, मैं चाहूँगा कि अब जो मेडिटेशन का जो बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है यहाँ पर विद्यापीठ है, तो इसमें कभी जो है 3 दिन का जो मेडिटेशन शिविर होता है उसमें आइए आप, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा जो है अपनी अंतर आत्मा को जानने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि सारी उम्र हमने जो चीज़ें देख कर जिंदगी जिया है
2: जी,
1: लेकिन उन सारी चीज़ें जो दिखाई दे रहा है, लेकिन उन सभी को जो नहीं दिखता है वो चीजें चला रही है ना। जैसे बिजली है, लेकिन बिजली को करंट के बिना तो नहीं चलेगा, तो करंट नहीं दिखता, बिजली का बल्ब जलते हुए दिखता है। वैसे ही गाड़ी चलाते हैं आप, तो गाड़ी चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसको कोई लाइट चला रही है, डीजल पानी पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी मिलके एक स्पार्क करता है, वो स्पार्क की वजह से गाड़ी म्यू कर रहा है, लेकिन स्पार्क को तो देख नहीं सकता ना कोई भी। तो वैसे अनसीन चीजों के बारे में जानना और फिर अपने जीवन का सही बुनियादी तौर पे आप उसको अपने जीवन को फ्रेम कर सकते हैं।
2: ओके।
1: तो उस पर जरूर काम कीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक संदेश, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
2: उन सभी के लिए संदेश तो ये है कि भाई आप भी आइए, अगर इतना अच्छा आप लोग चला रहे हो और जो अनुभूति दे

0: जी जी जी
1: जिंदगी क्या है, कौन से पॉइंट पे होता है, जनरली ये सब लोगों को पता होता नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: अगर इस तरह है तो सबको निवेदन करूंगा कि उनको एक बार आना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और हो सके तो हम भी ट्राई करेंगे।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल, इस बार आप 3-4 दिन के लिए आइए, है ना, बढ़िया से एकदम से यहीं रहें, हमारे साथ ही रहें और पूरा प्रोग्राम जो है आप अटेंड करें और जीवन का जो सच्चा सुख जिसको कहते हैं,
1: जी जी,
0: व्यक्ति जो है सुख के लिए करता है ना
1: जी।
0: अभी आप यहाँ आए इतनी दूर से तो सुख पाने के लिए आए ना
1: जी।
0: तो एक्चुअली में जो सुख है हमारा मन और आत्मा की सुख
1: की शांति,
0: हाँ, वो जब मिल जाए ना फिर बाकी सब चीजें शांत हो जाती है, फिर कुछ नहीं रहता। तो चलिए परमार जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और बात करें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में तो बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। और राजकीय संग्रहालय कासोने में स्थापित महाकवि की मूर्ति आपको उनकी याद दिलाती है और उनकी छवि को याद दिलाती है। कभी आप कासोली जाएंगे तो ज़रूर सुमित्रा नंदन पंत का जो मूर्ति है वो ज़रूर देखिएगा। और पंत जी ने परंपरागत नवीन दोनों ही प्रकार के अलंकारों का भव्यता से प्रयोग किया था और इसीलिए आज भी वो सभी के दिलों में उपस्थित हैं। उनके छंद और उनके पुरस्कार और उनका जो सुमित्रा नंद पंत राजकीय संग्रहालय भी बनाया गया है कासोनी में, तो संग्रहालय भी आप देख सकते हैं। और कासोनी चाय बागान के व्यवस्थापक के परिवार में जन्मे महाकवि सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सफर कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो एक और शख्सियत के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम में, पीरू सिंह जी हाँ। और ये भी एक ख़ास ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन काल को देखकर ऐसा लगता है कि देश के प्रति अगर समर्पण भाव हो तो इनके जैसा हो, इनकी तरह हो। तो पीरू जी के बारे में बात करें तो पीरू जी राजस्थान से बिलोंग करते, भारतीय सेना के एक वीर अमर शहीदों में से एक, कश्मीर घाटी के युद्ध में सक्रिय रूप से जूझते हुए उन्होंने परिकांति और लेडी गानी ठिकानों पर अपनी फतेह हासिल की थी। तो आइए इनके बारे में जानेंगे। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। और 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव में इनका जन्म हुआ और पिता के 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। पीरू सिंह अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। 7 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूल भेजा गया, लेकिन पीरू सिंह का मन स्कूल में नहीं लगा। स्कूल में एक साथी से उनका झगड़ा हो गया, तब स्कूल का अध्यापक ने उन्हें डांट लगाई। पीरू सिंह ने कभी फिर अपनी स्लेट वहीं पर पटक दी और भाग गए। इसके बाद वो कभी पलट कर स्कूल की तरफ नहीं गए। स्कूली शिक्षा में मन नहीं लगने पर पीरू सिंह के पिता ने उन्हें खेती बाड़ी में लगा दिया। वो एक संपन्न किसान थे और खेती में पीरू सिंह ने अपनी रुचि दिखाई। वो अपने पिता से भरपूर मदद ली और किया और किसान का कार्य अच्छी तरह से सीख गया। किसानी के अतिरिक्त कई प्रकार के साहसिक खेलों में भी वो मन बना रहता था। शिकार करने के तहत वो बचपन से ही शौकीन रहे। अपने इस शौक के कारण कई बार वो घायल भी हुए। शिकार के शौक ने ही पीरू सिंह को सेना में आने के लिए, फौजी बनने के लिए प्रेरित किया। और 1936 को पीरू सिंह ने फौज में कदम रखा और 10x1 पंजाब में ट्रेनिंग के लिए चले गए। फिर 1 मई 1937 को उन्हें 5x1 पंजाब में नियुक्त कर लिया गया। और फौज में आने के बाद वो पीरू सिंह के चरित्र में आश्चर्यजनक बदलाव आया। स्कूल में उन्हें पढ़ाई से चिढ़ थी, लेकिन फौज में वह पढ़ाई की ओर से बेहद गंभीर सैनिक सिद्ध हुए। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इंडियन आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन सफलतापूर्वक पास कर लिया। और फिर इस तरह से उनकी पदोन्नति हुई और फिर जम्मू कश्मीर के मामला में उन्होंने अपना विशेष काम दिखाया और पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला, इसमें उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और बहादुरी दिखाते दिखाते वीर गति को पा लिया। और ऐसा हुआ कि अपनी टुकड़ी में अकेले ही बचे थे और एकमात्र योद्धा बन गए। उनके शेष साथी तो मौत की नींद में सो गए थे और बुरी तरह घायल भी थे। अचानक एक ग्रेनेड आकर सीधे उनके चेहरे पर लगा। उनका चेहरा और आंख खून से भीग गया। इसके बावजूद उन्होंने रेंग कर लुढ़कते हुए ग्रेनाइट की परवाह किए बगैर दुश्मन की दूसरी पोजीशन की ओर कूच कर दिया। और पीरू सिंह ने पूरे जोश से युद्ध घोष किया और दूसरी खाई में छिपे दुश्मनों पर संगीन से वार कर 2 सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। इस हमले का सारा नज़ारा उनकी सी कंपनी के कमांडर ने देखा, जो पीरू सिंह की कंपनी की गोलीबारी में मदद कर रहा था। इसे घायल अवस्था में हवलदार पीरू सिंह दूसरी खाई में निकलकर दुश्मन के तीसरे बंकर की ओर बढ़े। उसी वक्त एक गोली आकर सीधे सिर में लगी और उन्हें दुश्मन की खाई से टकराकर गिरते हुए देखा गया। यकायक दुश्मन को धमके की आवाज़ आई, धमाके से, जिससे पता चला कि पीरू सिंह का ग्रेनेड अपना काम कर गया। ठीक इसी समय पीरू सिंह ने भी गोली को झेलकर प्राण त्याग दिए। पीरू सिंह ने अपनी बहादुरी भरे कारनामा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वो अपने साथियों के आगे एक जिंदा मिसाल छोड़ गए कि अकेले दम पर भी लड़ी गई लड़ाई हिम्मत के बल पर क्या नतीजा दिखाती है। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जिस हिम्मत बहादुरी और सूझबूझ से हवलदार मेजर पीरू सिंह ने मोर्चा संभाला, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ऐसे परमवीर चक्र सम्मानित पीरू सिंह को सलाम। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा संगीत सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: वो थी हम

प्यार हो गया ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा

हमसे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा

0: यानी प्यार हो गया।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। और हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे रूबरू हो रहा है। तो अभी जीएस परमार जी हमारे साथ हैं, जिनको आप हमेशा सुनते रहते हैं और बातें मुलाकातें कार्यक्रम के रेगुलर श्रोता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जीएस परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
4: थैंक यू वेरी मच। ओम शांति,
3: ओम शांति, ओम शांति,
4: ओम शांति। और यहाँ आके हमको बहुत ही अच्छा शांति का अनुभव होता है।
3: जी जी जी।
4: और मैं तो कितनी बार मधुबन से जुड़ता रहता हूँ, और काफी अच्छे प्रोग्राम रमेश भाई लाइनअप करते हैं और सबको बढ़िया सा नॉलेज देता है। मैं आशा करता हूँ कि आगे ऐसे ही नॉलेज वो बांटते रहे और लोगों के जीवन में सुखी खुशियाँ बांटते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ।
3: जी,
4: मैं
3: जी,
4: तो
3: जी।
4: पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा लाइफ स्केच के बारे में भी दे। मैं बहुत स्ट्रगल करके दूरदर्शन में काफी मैंने काम किया है, दूरदर्शन से मैं रिटायर हुआ, आज 13 साल करीबन हो गए रिटायर होते हुए।
3: अरे वाह।
4: फिर भी अभी मैं रेडियो मधुबन से कांटेक्ट में रहता हूँ और काफी मुझे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है।
3: अपने परिवार में थोड़ा सा बताइए, परिवार में कौन-कौन है?
4: मेरे परिवार में मेरे मिसिस है, वो भी कस्टम सुपरिटेंडेंट, कस्टम DOSA डेप्यूटी ऑफिस सुपरिटेंडेंट थी, वो भी रिटायर हो गई।
3: अच्छा, अच्छा।
4: वो भी हम दोनों साथ में, और मेरा लड़का है इज अ फिल्म डायरेक्टर है, और उसने गुजराती 3 फिल्में बनाई है, अभी 3री फिल्म ये 17 मई को रिलीज हो रही है, उसका नाम है अजब फिल्म, अजब रात की गजब बात।
3: अच्छा।
4: और बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, आप सब लोगों को मेरी विनंती है कि वो फिल्म जरूर 17 मई को देखें।
3: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी एस परमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने परिवार के बारे में बताने के लिए। और जो फिल्म का नाम आपने बताया 17 मई को गुजरात में रिलीज होगा, तो हमारे श्रोताओं से भी मैं कहूँगा जो गुजरात के श्रोता है जरूर इस फिल्म को देखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक और हमारे दोस्त हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। और जी एस परमार के सहयोगी हैं, और कहते हैं कैमरे के पीछे ही आप रहे हैं, तो आइए एक और मेहमान जी से भी बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
5: बस अच्छा है एकदम।
3: बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम है इंद्रोदन परीख।
3: इंद्रोदन परीख,
5: राइट।
3: बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप प्रोफेशनली?
5: वैसे देखा जाए तो मैं आदिवासी आदमी हूँ, छोटा देवपुर का जंगल का हूँ।
3: जी छोटा,
5: तो यहाँ आके अहमदाबाद में आके सुधर गए, अदरवाइज पूरा आदिवासी, राइट। फिर तो दूरदर्शन में आने से पहले मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में था, उसके पहले CN कॉलेज फाइन आर्ट्स में था।
3: अच्छा अच्छा।
5: फिर दूरदर्शन में आया, दूरदर्शन में आने के बाद पूरा गुजरात घूम लिया, इधर उधर पूरा दुनिया देख लिया। येलो जर्नलिस्ट क्या बोलते, पहले तो कुछ पता नहीं था।
3: बिल्कुल,
5: सब किताब सब मतलब नजदीक से भी देख लिया, दूर से भी देख लिया। जैन धर्म भी नजदीक से देख लिया, दूर से देख लिया। स्वामीनारायण धर्म भी नजदीक से देख लिया, दूर से देख लिया। सब धर्म एक ही है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
5: सब वही मतलब क्या इसमें आगे क्या बोल सकता मालूम नहीं, मगर सब धर्म वाले सब एक ही होता है, लास्ट में जाओ तो जीरो होता है वहाँ पे।
3: हाँ,
5: तो कुछ नहीं, भगवान भगवान होता है ना इसमें।
3: सही बात है, सही बात। पारिक जी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में युवा साथियों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
5: युवा साथी तो अभी कहाँ किसी का सुनता है हमारे बेटा हमारा नहीं सुनता है ना।
3: सही बात है, सही बात।
5: तो उसको थोड़ा बुजुर्ग लोग का सुनना
3: चाहिए। सही बात है,
5: समझे? वो सुनते हैं, कब बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाता है, रातों रात रोड पे आ जाते हैं,
3: तब जाके
5: सुनते हैं, बराबर। नहीं तो युवा पीढ़ी इतनी फास्ट चल रही है ना अरे न्यू जनरेशन चाह रहा, 2-3 साल वाला वो ऐसा लगता है कि वो बच्चा भी अभी ग्रेजुएट हो गया है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के लिए। न्यू जनरेशन है, कुछ नहीं, खत्म हो गया अपने, अभी आगे जाके अच्छा है, हम टाइम सर बुढ़ा हो गया, टाइम सर ऊपर चले जाएंगे कि इन लोगों को देखना निपटने वाले ऐसा है।
3: चलिए पारिक जी, बहुत ही अच्छी अपनी भावनाएं आपने व्यक्त की, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि पारिक जी को सुनकर वो आपकी दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश में है।
5: थैंक यू।
3: क्योंकि जब हम लोग युवाओं को बात करते हैं या युवाओं की बात करते हैं तो बेटा ही जो है बाप की नहीं सुनता, तो आगे फिर हम लोग किसको क्या बता सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है आज। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आगे जो समय आएगा, जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो ये टेम्प्ररी और क्या कहते हैं कि एक मैजिकल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर चकाचौंध बहुत है, टेक्नोलॉजी का युग बहुत है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास एम्पल हो गया, इस वजह से हमको लगता है कि हम सब में आगे हैं, हमको सब मालूम है। लेकिन जब जीवन के अनुभव की बात आती है, वहाँ पर बुजुर्गों का अनुभव काम में आता है, इसलिए उनका सम्मान करें, उनको याद करें और उनसे कुछ सीखते जाएं, उनसे अनुभव लेकर अपने जीवन को अनुभवी बनाएं, ऐसे शुभ आशा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी से कहना चाहूँगा आज के इस सफर कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

रेडियो 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मई भी जाने की ओर है और जून आने की ओर है और हम सभी सोच रहे हैं कि भाई मई में इतनी गर्मी होगी तो जून में क्या ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों जिंदगी में कोई भी चीज़ गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो रुकती नहीं और रुकते नहीं हैं होने वाले फ्रॉड्स भी। जी हाँ, इंटरनेट पे होने वाले स्कैम, आज ये तो कल वो, आज एक शक्ल तो कल दूसरी शक्ल लेके हमारी ओर बढ़ ही आते हैं। कभी कभी ये थोड़ा और कभी कभी बहुत भारी नुकसान भी कर जाते हैं। ज़रूरी है लेकिन हमें सचेत रहना, और वो सचेत कैसे रहेंगे हम, एक ही तो है अपना हथियार, वो है जानकारी। दोस्तों युवा मंच पे हर हफ्ते में एक दिन हम कोशिश करते हैं आपको ये जानकारी साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई, इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ी हुई ज़रूर दें, ताकि कोई भी ऐसी स्कीम में आप ना फंसे, आपका नुकसान ना हो, आपको परेशानी ना उठानी पड़े। दोस्तों ये जानकारी आपको सही मिल रही है क्योंकि हम आपको सीधा कनेक्ट करते हैं साइबर दोस्त से। साइबर दोस्त के बारे में अगर आपने ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है। जी हाँ, और हर हफ्ते यहाँ पे एक साइबर सेफ लाइफ सेशन होता है जहाँ पे अलग अलग फ्रॉड्स के बारे में आपको बताया जाता है। कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी होती है जो जन जन तक पहुँचनी ही चाहिए, जो हर घर तक पहुँचनी ही चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो अभी कॉल करके बता दीजिए अपने और भी दोस्तों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, सबको कि ज़रूर सुने, क्योंकि इस गाने के बाद आपको पता चलेगा किस प्रकार से जो साइबर फ्रॉड का नेटवर्क है उसका जो सच है वो इस बार क्या है, वो आपको मालूम पड़ेगा। म्यूल अकाउंट क्या होते हैं ये भी आपको पता चलेगा, और

रिकवरी हो पाई, कुछ लाख रुपए किसी के चले गए थे, वो कैसे हो पाई वो भी आपको मालूम चलेगा। और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप कैसे सतर्क रह सकते हैं, क्या स्टेप ले सकते हैं, वो भी आपको मालूम चलेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे कार्यक्रम युवा मंच पर। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Namaskar and welcome to this week's Cyber Safe Live, brought to you by Cyber Dost, the official cyber safety awareness initiative by the Indian Cyber Crime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. Aaj ka session Cyber Prahar 2.0, Mule Bank Accounts or Cyber Fraud Networks par focused hai, jahan Bihar Police ne large-scale crackdown ke through significant action liya hai. Saath hi, ek recent case mein timely reporting ke through 1.04 लाख की सक्सेसफुल रिकवरी भी हुई है, जो अवेयरनेस और क्विक एक्शन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है. इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री दुर्गेश दीपक, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम समस्तीपुर बिहार. सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे.
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू ऑल योर व्यूअर्स.
0: सर, सबसे पहले क्या आप हमें साइबर प्रहार 2.0 इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हैं और बिहार पुलिस ने इस ऑपरेशन को क्यों लॉन्च करा?
1: देखिए, साइबर प्रहार 2.0 जो है वो बिहार पुलिस का एक स्पेशल इनिशिएटिव है, जो जो डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं उसके जो बैकबोन कहे जाते हैं म्यूल अकाउंट्स, उनके अगेंस्ट में एक कोऑर्डिनेटेड और स्पेशल ड्राइव था, जिसमें हम लोगों ने बिहार के हर एक जिला में म्यूल अकाउंट से रिलेटेड या म्यूल अकाउंट्स के ओपनिंग के स्टेज से लेकर के उसके ऑपरेशन और एंड यूजर तक, उन सब के अगेंस्ट में हमने कार्रवाई किया है. बिहार के सभी जिलों में इस पे कार्रवाई हुआ है और इसकी आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी कि जो डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसका ट्रेंड अब बढ़ते जा रहा है और उसका जो बैकबोन है जो म्यूल अकाउंट है, जिसके थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स में लेयरिंग करके और मनी को साइफन ऑफ किया जाता है, तो इसके लिए अगर हम उस पर प्रहार करेंगे, जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम भी है प्रहार, तो वो प्रहार जब कड़ा प्रहार अगर हम म्यूल अकाउंट्स पे ही करेंगे तो हमें जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसको हमें कवर अप करने में और उसको उसके जो ग्रोथ को चेक करने में हमें थोड़ी सी मदद मिलेगी. इसीलिए साइबर प्रहार 2.0 को ऑपरेशनलाइज किया गया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है बिहार में.
0: सर, तो म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं और साइबर फ्रॉड में इन अकाउंट्स का मिसयूज किस तरह से किया जाता है?
1: देखिए, इस आपका जो ये क्वेश्चन है उसको इस तरह से हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अगर पहले सबसे पहले क्या होता है कि कोई अगर फ्रॉडस्टर है, वो सबसे पहले जो विक्टिम्स होते हैं उसको ट्रिक आउट करते हैं कि कभी कोई जॉब स्कैम के नाम पर या कोई उसके टेलीग्राम पे कोई लिंक भेज दिया या सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत सारे एड्स दे करके या और भी तरह से लोक लुभावन जो एड्स होते हैं उस तरह से दे करके, और उसको अपने पास उस उनके सारे जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होते हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स के इंफॉर्मेशन होते हैं वो ले लेते हैं. बहुत ऐसे भी हमने देखा है कि जिसमें इवन बाय पोस्ट भी ATMs और बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स वगैरह पोस्ट किया गया है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप उनको कितना बहला फुसला रहे हो, ट्रिक कर रहे हो कि आप उसके सारे क्रेडेंशियल्स ले रहे हो. ये फर्स्ट स्टेज होता है. उसके बाद क्या होता है कि एक हम कम्युनिकेशन लिंक बनाते हैं. तो कम्युनिकेशन लिंक फ्रॉडस्टर जो है वो अपने नेटवर्क के थ्रू नहीं बनाता, उस नेटवर्क जो रजिस्टर्ड होते जो नेटवर्क से वो कॉल करता है, वेदर सिम कार्ड हो या कोई वाईफाई कनेक्शन हो या कोई भी नेटवर्क हो, तो वो नेटवर्क उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो किसी अननोन पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड होता है और वो भी ट्रिक के थ्रू उसके सिम कार्ड या नेटवर्क को लिया जाता है. ये हो गया कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का. और इसके बाद आती है, जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया उसके बाद फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है. तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो अपने अकाउंट पे या किसी नोन आदमी के अकाउंट पे मनी को नहीं मंगवाते हैं, वो किसी ऐसे अकाउंट पे मंगवाते हैं, ऐसे लोगों का अकाउंट होता है जो कभी कभी लालच में भी किसी कुछ परसेंट कमीशन के लिए अपना अकाउंट दे देते हैं, या ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग अनजाने में, उनको पता नहीं है, उनको ये लगता है कि हमें नौकरी मिलेगी और हम अपना सैलरी देने के लिए अपना पूरा क्रेडेंशियल्स देते हैं, जो अकाउंट नंबर हो गया और जो भी अदर डिटेल्स होता है वो सारा डिटेल्स देते हैं, बट उनके अकाउंट को, उस क्रेडेंशियल को जो वो किसी और पर्पस के लिए दिए गए हों, उसको वो लोग म्यूल के म्यूल अकाउंट के तरह पे यूज करते हैं. तो म्यूल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो पुलिस को एक्चुअल फ्रॉडस्टर और जो विक्टिम के अकाउंट में, विक्टिम के अकाउंट से पैसा जिस अकाउंट में जा रहा है उसके बीच में दूरी क्रिएट करता है, हमारे इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा लेनदेन करता है, जिसके कारण जो है हम एक्चुअल फ्रॉडस्टर से तक पहुंचने से पहले हम बहुत सारे आदमियों के पास पहुंचते हैं जिनका उस फ्रॉड में बस इतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है, आइदर नोइंगली और अनोइंगली वो लोग अपना अकाउंट जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको शेयर कर देते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन में उनका भी नाम आता है। तो ये तीन जो चीज हुआ, आप पहले ट्रैप कर लिए, उसके बाद कम्युनिकेशन लिंकेज बना लिए, और तीसरा में है वो म्यूल अकाउंट्स में आपने मनी निकाला, और उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, एक लिंक से दूसरे, फिर लेयर बाय लेयर उस अकाउंट अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, और अंत में उसको अलग से कभी एटीएम कार्ड से, या कभी अब तो ये भी एक ट्रेंड दिखने को आ रहा है कि जो अमाउंट आ रहा है स्कैम फंड, उसको वो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वहां से फिर एक डेड एंड की तरफ बढ़ जाता है, फिर वहां से इन्वेस्टिगेट करके निकालना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए ही म्यूल अकाउंट पे प्रहार करना जो हम लोग का इनिशिएटिव था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि अगर हम बीच की जो कड़ी है उसको अगर हम तोड़ देते हैं या उस पे अगर हम प्रहार करते हैं, तो हमें एक बहुत ही जो ट्रेंड्स जो बढ़ रही है उसको थोड़ा सा सीज करने में, थोड़ा सा कम करने में हमें कुछ फायदा मिलेगा।
0: सर, जैसे आपने बताया, बहुत बारी लोग अनोइंगली भी इस स्कैम में फंस जाते हैं। जैसे बहुत बार उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके क्रेडेंशियल्स के थ्रू बैंक में अलग अकाउंट्स खुले हुए हैं। तो हम लोगों को ये जानकारी जरूर देते हैं कि अपने बैंक में जरूर पता करें कि कहीं उनके नाम कोई आपको बहुत कम पैसों के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का लालच देके आपसे आपकी डिटेल्स लेते हैं, आपको बोलते हैं कि आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे आएंगे, तो बिना समझे कि ये एक स्कैम है वो इसमें फंस जाते हैं।
1: जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है।
0: तो साइबर प्रहार 2.0 के दौरान इन्वेस्टिगेशन में कौन से मेजर पैटर्न सामने आए?
1: ये प्रहार 2.0 के समय में बहुत ऐसी चीजें समझ में हम लोगों को आई है, कि इसमें हम लोग तो ये तो समझ रहे हैं कि जो न्यू अकाउंट होल्डर्स हैं, हम तो जनरली यही समझते हैं कि जो बैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट प्रहार 2.2 के समय में ऑपरेशन के दौरान हमें ये भी समझ में आया कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। जो इवन कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहां से ह्यूज अमाउंट में अकाउंट्स खोले गए हैं, तो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की गई है। तो ये एक बड़ा सा हुआ जिसपे बैंकिंग ऑफिशियल को, बैंकिंग सेक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम दूसरों जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं उनके साथ मिलकर के तो नहीं काम कर रहे हैं, और हमारी जो मेहनत होती है, पुलिस का जो काम होता है उसको और वो बढ़ाने का काम करते हैं। इवन उनको जो पब्लिक ऑफिशियल के साथ खड़ा होना चाहिए पब्लिक को बचाने के लिए, बट वो दूसरे साइड पे होते हैं। तो ये सब चीज, ये एक मेजर जो हम लोग का फाइंडिंग्स रहा है कि बैंक ऑफिशियल का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। और दूसरा, अभी जैसे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है बिहार में, जीविका के नाम पे लोग एक ग्रुप बना करके और वो काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को ये भी देखने को आया कि जीविका में किसी को बोला गया कि हम आपको फलाने जगह पे जॉब दिलवा देंगे, या आपको हम ये काम का आपको टेंडर दिलवा देंगे, उसमें आप अपना ये क्रेडेंशियल दीजिए, वो दीजिए, बैंक अकाउंट का पासवर्ड दीजिए, नया अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें ये सिम दे दीजिए, और सारे को जो भी आदमी खुलवाता है, जो उनको अपने झांसे में लेकर के खुलवाता है, वो इवन ये भी देखा गया कि बाई डाक पोस्ट करवा लेते हैं। तो ये एक बड़ी सी चीज है जिसमें अवेयरनेस की बहुत जरूरी है, कि आप आज के डेट में डाटा जो है जिसको न्यू गोल्ड कहा जाता है, तो आप अपना कोई भी डाटा को किसी के साथ शेयर ना करें, और फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स तो है वो तो बिल्कुल ही शेयर ना करें। अगर आप शेयर करते हैं तो फिर आप भी उस जो साइबर क्राइम जो फ्रॉडस्टर है उसके तरह ही आप भी क्राइम में इक्वली आपका भी भागीदारी माना जाएगा, और फिर आपके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए आप कोई साक्ष्य नहीं बता पाएंगे कि क्या आपका इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं माना जाए, और आपने सब कुछ भाई खुद ही आपने पोस्ट कर दिया। ये तो एक बेसिक सी कॉमन जनरल कॉमन सेंस की बात है कि हम अपनी बैंक अकाउंट और सिम्स वगैरह क्यों किसी को देंगे, जो हमारे नाम से इशूड है वो हम क्यों किसी किसी को देंगे, वो नहीं देना है।
0: सर, रिसेंटली जो 1.04 लाख रिकवरी केस हुआ, उससे सिटीजन्स को टाइमली रिपोर्टिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में क्या सीखने को मिलता है?
1: सबसे पहले तो मैं सबको हमेशा ही ये अपील करता हूँ कि कभी भी कोई भी साइबर क्राइम हो आपके साथ, तो ऐसा प्रायः देखा जाता है, हमारे पास हमेशा इस तरह की शिकायत आती है और पब्लिक जो आते हैं वो बहुत हैरेस्ड होते हैं, एकदम हताश होते हैं कि सर मेरे साथ इतना ये हो गया, अब हम क्या करें, हम मेरा जिंदगी ये हो गया। बट उसका एक ही उपाय है कि जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, आप तुरंत हमारा जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पे कॉल कीजिए और तुरंत रिपोर्ट कीजिए। जैसे ही आप रिपोर्ट कीजिएगा और जैसे आप रिपोर्ट कीजिएगा, एनसीआरपी का जो मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक ही जहां जहां आपका अकाउंट में पैसा जाएगा उसको होल्ड करेगा, और जैसे अमाउंट होल्ड हो गया तो हमें रिकवर कराने में आसानी होगी। और अगर आपने लेट किया कंप्लेन करने में तो अकाउंट होल्ड होने में देरी होगी, और तब तक जो फ्रॉडस्टर होंगे वो पैसे को इस चेन से, अकाउंट के चेन से वो निकाल चुके होंगे, किसी और फॉर्म में भेज चुके होंगे कहीं और, या तो क्रिप्टो में भेज दिए या कहीं एटीएम के थ्रू निकाल लिए, या उनका कहीं एजेंट्स है कहीं पे वो बैंक से जा करके किसी तरह से निकाल लिया। तो इन सबके लिए ही हमें एकदम प्रॉम्प्टली, जैसे ही हमारे साथ कोई भी साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड की घटना हो, हमें तुरंत ही रिपोर्ट करना है।
0: जी सर, हम भी व्यूअर्स को यही समझाते हैं कि सबसे पहले 1930 पर कॉल करें, और अगर कॉल बिजी आ रहा है तो वेट ना करें, इमीडिएटली cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, एंड दे कैन ऑल्सो गो टू द नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन, ताकि इमीडिएटली एटलीस्ट जो मनी निकला है वो नेटवर्क से बाहर ना जाए और सारे जिस भी बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो रहा है उस पर होल्ड लग जाए, क्योंकि अगर नेटवर्क से एक बार बाहर चले जाता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं।
1: जी
0: सर, हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है, लोग ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे उनके बैंक अकाउंट्स साइबर फ्रॉड नेटवर्क्स का हिस्सा बन जाते हैं?
1: सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि हमारे नाम पे कितने बैंक अकाउंट्स, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने कहीं आधार दे दिया, कहीं आपने फिंगरप्रिंट दे दिया, और आपके आधार फिंगरप्रिंट लेकर कहीं पे कोई अकाउंट खुलवा रहा है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके नाम पे कितने अकाउंट खुले हुए हैं, और वो आप अपने कंसर्न बैंक से जाकर के पता कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना फाइनेंशियल क्रेडेंशियल जो है वो कहीं भी यत्र तत्र सर्वत्र सबको मत बांटते रहिए। पब्लिक जनरली जो है वो अपना कोई भी, अगर उनको लगता है कि हमें यहाँ से 2% या 2 रुपए भी कुछ मिल रहा है, तो वो लोभ और लालच के कारण आकर के वो अपना सारा क्रेडेंशियल देने के लिए तैयार होते हैं। तो उस चीज से बचा जाए, हम जितना अपने डाटा को सुरक्षित रखेंगे उतना ही हम सिक्योर रहेंगे। तीसरा कि हम बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे

0: बहुत ऐसे जो एड्स आते हैं जो हमको दिखने में भी लग जाता है कि ये सिक्योर नहीं है। टेलीग्राम पे बहुत ऐसे ग्रुप्स में आ जाते हैं कि आप इतने का जॉब आपको मिलेगा, यहाँ पे आप ये डिटेल्स दे दीजिए। आपको पता है, पब्लिक जानती है कि वो सिक्योर नहीं है टेलीग्राम, फिर भी वहां पे अपना डिटेल्स दे देती है, तो जिसके कारण उनको परेशानियां होती है। तो एक तो सबसे मेजर चीज है कि आप अपना कोई भी फाइनेंशियल क्रेडेंशियल जो है ऐसे किसी के साथ शेयर ना करें, सबसे पहला। अभी जैसे हम लोग ये जानते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, बट
1: जी
0: ओटीपी के साथ साथ पासवर्ड भी शेयर नहीं करना है। पासवर्ड जब हम शेयर करेंगे और ओटीपी नहीं करेंगे, या दोनों को दोनों जब उनके पास फ्रॉडस्टर के पास जब दोनों का एक्सेस होता है, उसके बाद ही वो आपका जो भी अकाउंट का एक्सेस वो ले पाते हैं। तो आपको दोनों का डिटेल्स नहीं देना है।
1: सर, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे? लोग अपने बैंक अकाउंट, सिम कार्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को साइबर फ्रॉड से कैसे सेफ रख सकते हैं?
0: देखिए, सबसे पहली बात कि अलर्ट रहिए और सतर्क रहिए। दूसरा कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपना डाटा किसी को मत बेचिए। आज अब जैसे मैं एक छोटा सा भी एक नया एक ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा इस टॉपिक से डेविएट होकर के मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है कि आपका छोटा सा डाटा के साथ क्या हो सकता है। अभी जैसे एक डिलीवरी के नाम पे एक फ्रॉड चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई पार्सल मंगवाया, उस पर आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है, और आपने उसको वो जो रैपर जिसमें आता है उसको फेंक दिया। अब कहीं पे वो रैपर किसी के पास पहुंच गया और उसने आपका डाटा वहां से लिया, आपको कॉल किया कि आपके नाम से फलाना फलाना ये आ रहा है, मैडम आप ये इसका ओटीपी दे दीजिए, सर ये ओटीपी दे दीजिए। आपने दे दिया, आपको लगा कि उसी का ओटीपी आपने दे दिया और आपका अकाउंट खाली हो गया। तो आप इस तरह से अपना डाटा किसी को ना दे, सबसे पहला चीज। आज के डेट में डाटा जो है, डाटा पे ही अभी का जो पूरा जनरेशन का जो वर्क चल रहा है वो सब डाटा के बेस्ड ही है। तो
1: जी
0: आप अपना डाटा किसी को ना दें, सबसे बड़ा आपकी सतर्कता वही है कि आप अपना कोई इंफॉर्मेशन अनजाने अनचाहे में जहां पे जिसकी जरूरत नहीं है उसको ना दें। और वो जब आप इंफॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, आप अपने कॉमन सेंस का अप्लाई कीजिएगा। बहुत ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पे आपको लोग बोलेगा कि आप कोई एक बाइक खरीद लीजिए 5,000 में, और वो 10, 1,000 या 1,500 किलोमीटर चली हुई बाइक है। कोई आपको क्यों देगा 5,000 में ऐसी बाइक? ये सब बस आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। तो इस तरह से जब हम अपने कॉमन सेंस का अप्लाई करेंगे, लोग लालच में नहीं आएंगे, तो हम मुझे उम्मीद है कि हम लोग साइबर सिक्योर रहेंगे और साइबर सेफ रहेंगे। तो मैं आपके सभी दर्शकों से ये अपील करता हूं कि सब लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लोभ लालच या भय में ना आए और साइबर सेफ रहें।
1: सर, साइबर प्रहार 2.0, म्यूल अकाउंट, नेटवर्क्स और रिकवरी केसेस पर आपकी इनसाइट हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अवेयरनेस ड्रिवन रही। थैंक यू साइबर सेफ लाइफ का हिस्सा बनने के लिए, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और साइबर सेफ्टी इंपॉर्टेंट

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
6: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, कोई भी ऐसी जानकारी हो जो आपको लगता है आप रेडियो मधुबन से बोल सकते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए। साथ साथ कोई मैसेज हो, कोई फ़ोटो हो या कोई ऐसी बात हो जिसमें आपको डाउट है कि ये फेक है या नहीं, तो भी आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं और हम जाँच करके आपको ज़रूर बताएंगे कि वो सही है या नहीं। वैसे तो समय प्रति समय हम आपको तरीके भी बताते हैं कि कैसे आप पता करें कि ये फेक न्यूज़ है क्या सही है, ये स्कैम हो रहा है या रियल है। और हमेशा हमेशा डर और लालच दो चीज़ों से बचेंगे तो सुरक्षित ज़रूर रहेंगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। अगर कोई कहता है आपसे पैसा डबल कर देगा या कोई कहता है आपसे ये तुरंत ये डाउनलोड करो इससे ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए पहले ही सतर्क हो जाएं। दूसरी बात यह, अगर आपको डाउट है, कोई भी मैसेज आपके पास आया है, कोई अननोन लिंक है, तो उस पर क्लिक ना करें। अननोन फोटो को भी डाउनलोड ना करें। सुरक्षित रहने में ही अपनी सुरक्षा है दोस्तों। हमें खुद को सुरक्षित रहना होगा, तभी हम सबकी सुरक्षा कर सकते हैं, परिवार की हो चाहे समाज की हो। तो पहले अपनी सुरक्षा, फिर सबकी सुरक्षा, और उसके लिए है एक ही हथियार, वो है जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है

9914151415, यानी कि 9414151415। अगर कोई भी आपको डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं, या किसी फ्रॉड के बारे में कोई और तरह की जानकारी आपको चाहिए, कोई भी ऐसी जानकारी आपको चाहिए जो आपके लिए हितकारी हो सकती है, तो भी हमें मैसेज या व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगला कार्यक्रम उस पर लेकर आएँ। फिलहाल वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। शाम 6 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम उड़ान आरजे मोना के साथ। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम
2: उड़ान के साथ।
1: मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाती खूबसूरत शाम बिताने आ चुकी हूँ और आज लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी, कविता, साथ ही साथ क्या क्या चीजें और होंगी भाई। आपके लिए सवाल भी होगा, कहानी भी होगी, कविता भी होगा और आपसे पूछा जाएगा जो सवाल उसका जवाब देना होगा। आपका नंबर है
2: 9414151415।
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बोलो राम राम। इस प्यारे पवित्र गीत के बाद मैं मोना वापस आ गई हूँ और आज के अमेजिंग जानकारी के साथ आप दोस्तों को जोड़ लिया है। आज है विश्व प्रसिद्ध सुमित्रा नंदन पंत के की का जन्म दिवस। जी हाँ, 20 मई 1900 में उनका जन्म हुआ और 28 दिसंबर 1977 में हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक अपने शरीर को छोड़ दिया। सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी इतिहास में उदित हुए। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्राकृतिक चरित्र समकालीन कवियों में से सबसे बेहतरीन था। वे पंत अंग्रेजी रोमानी कवियों जैसे वेशभूषा में रहकर प्राकृतिक केंद्रित साहित्य लिखते थे। जन्म के महज 6 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी माँ को तो खो दिया। पंत लोगों से बहुत जल्द प्रभावित होते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर कई रचनाएं लिख डाली और महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम भी इन्होंने ही दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य एकेडमिक पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया है और उनकी कुछ अनोखी जो सुंदर कविताएं हैं वो ज़रूर हम आप तक पेश करेंगे। लेकिन कौसानी के उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में इनका जन्म हुआ था। इस अद्भुत व्यक्तित्व के साथ साथ आज का सवाल, वो कौन सा देश लैंड अर्थात भूमि के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है? वो कौन सा देश दुनिया के तौर पर दुनिया सबसे बड़ा देश है? आपके सामने ऑप्शन है ए चाइना, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी रशिया। पुनः एक बार सवाल दोहराते हैं, वो कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा भूमि उसकी है? आपके सामने ऑप्शन है ए
1: चाइना, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ऑप्शन सी है रशिया।
0: तो झटपट जवाब दीजिए, नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
0: चलिए एक गीत और पेश करते हैं, कबीर का ये भजन सिर्फ आपके लिए अब उड़ान में।

0: कबीर के दोहे के साथ साथ आज की कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा ही रचित भारत माता।
1: ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी।
0: दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अंधेरों में चिर निरव रोंदन, युग युग के तम से विषपाणा विष्णापन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी।
1: 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुतित शोषित
0: निरस्तर जन, मूड असभ्य शिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी।
1: स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, कंद्रन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रस्ती शरदिंदु हासिनी।
0: सफल आज उनका तप संयम, पीला अहिंसा सत्यन सुधोपन, हरती जन मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी। कठिन है ये कविता, सचमुच कठिन कविता थी, खैर खूबसूरत थी, इनके द्वारा रचित थी, और उनकी एक और रचना आपके लिए लेकर आ रहे हैं। न निराश करो मन को।
2: नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, संभलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ अपना प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता यह सत्व कहाँ, तुम स्वत्व सुधार स्पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो, दवरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को, करके विधि का वाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो।
0: वेल दोस्तों, आज एक होमवर्क भी आप तक पहुंचाएंगे, पर उससे पहले आज का सवाल दोहराएंगे।
1: क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है?
0: आपके सामने ऑप्शन है ए चाइना अर्थात चीन, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जिसे हम यूएसए कहते हैं वो, या फिर सी रशिया। इतना बता देते हैं, ये जो देश है वो दो कॉन्टिनेंट में या दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। और ये हिंट आपके लिए विशेष था। अब इस हिंट को सुनकर यदि आप सही जवाब देना चाहते हैं तो हमारा नंबर है
1: 9414151415।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
0: चलिए कदम कदम पर लक्ष्य है इस गीत के बाद लौट कर आएंगे और पाठ भी आपके लिए लेकर आएंगे। पाठ का एक हिस्सा आपके लिए होगा।
3: तंबाकू क्या होता है?
4: अरे तिकुनी पतंगिया, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
5: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
3: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
4: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
6: ऐसी बातें बचपन में होती है, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर

बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन।
2: अजय सुनिए, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सब ठीक है ना? हाँ,
3: क्या करूँ बताओ, लॉकडाउन के चक्कर में सारे काम धंधे बंद हो गए हैं मेरे।
2: देखिए, अब जो होना था वो हो चुका है ना, अब कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। हाँ,
3: शहर में मिठाई का काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन शहर में लड्डू बनाने के अलावा दूसरा काम था ही नहीं। यहाँ पर मैं एक आधा दुकान देख लूँ क्या?
4: जो करना है वो करिए, पर घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये बात याद रखिए।
3: ठीक है, फिर मैं जाके वही करता हूँ अभी।
4: अरे वाह वाह वाह वाह, सुगंध तो बहुत बढ़िया आ रही है, लगता है बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। हाँ,
3: मेहनत का फल मीठा होता है, समझी भाग्यवान।
4: अब सब अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा होगा।
5: सुनो, मुझे एक लड्डू दो।
6: एक खाने पर तो मन भर ही नहीं रहा।
3: अरे देता हूँ, आराम से बैठ के खाइए, और भी लोग हैं लाइन में यहाँ पर।
7: ठीक है, दीजिए, बैठकर ही खाते हैं।
6: ये लड्डू जो नहीं खाएगा वो पछताएगा, क्यों काका?
7: हाँ सही कहा, पहले भी मैंने यहाँ लड्डू खाए हैं, पर ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए।
6: लाजवाब है।
7: अरे भाई, जो ये लड्डू एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा।
3: एक खाकर भी लोगों का मन नहीं भरता है, मुझे लगता है कि मेरा कारोबार यहीं पर सेट हो जाएगा।
4: क्या खाक जम गया है? हाँ, क्या खाक जम गया है? रोज रोज ये ऐसे चिल्लर ही तो गिनते हैं आप।
3: बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है भाग्यवान। हाँ, मेरा कारोबार रफ्तार पकड़ लेगा। हाँ।
4: बूंद बूंद से कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो पूरा सागर चाहिए।
3: अच्छा, तू रातों रात बड़ा होने का सपना देख रही है? हाँ?
4: अब जब आप समझ ही गए हैं ना, तो पूरा करके भी दिखाइए। रोज रोज ना ये ऐसे चिल्लर नहीं, नोटों का बंडल गिन कर दिखाइए।
6: देख रहा हूँ, सभी उस दो दिन से आए उस लड्डू वाले के पास दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, और मेरे पास कोई भी नहीं आता। पर ये भूल गए हैं कि जो पुराना होता है वही असली होता है, बाकी तो नकली लड्डू बेच रहे हैं।
7: पर सभी उसके लड्डू की बहुत तारीफ कर रहे हैं। हाँ
6: हाँ, जब कल पेट खराब होगा ना, तब पता चलेगा कि लड्डू कैसा है, बेकार लड्डू।
3: ये सब झूठी झूठी अफवाहें फैला कर मेरा धंधा बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। मैं अभी सही से जवाब दूंगा।

0: क्या यही गोविंद लड्डू वाले की दुकान है?
1: आप एकदम सही दुकान पे आए हैं। आइए बैठिए, ठंडा पानी पीजिए और गले को गीला कर लीजिए।
0: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हारे लड्डुओं की बहुत तारीफ सुनी है इसलिए आया हूँ। मेरे दुकान में गणेश पूजा है इसलिए मुझे 5,000 लड्डू चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम ही ये लड्डू बनाओ।
1: आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ठीक पूजा के दिन आपको लड्डू पहुँचा दूंगा सब।
0: हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उफ, मैंने इतनी कोशिश की फिर भी गोविंद का धंधा बर्बाद नहीं कर पाया। ओह, अब तो वो बड़ा दाव मार देगा, बड़ा दाव। नहीं नहीं, मैं चुपचाप खड़ा ये सब नहीं देख सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। कैसे एक तीर से मैं दो निशाने लगा सकता हूँ यही सोचना पड़ेगा। हाँ, जिससे कि ये गोविंद बदनाम भी हो जाए और उसका धंधा बर्बाद भी हो जाए। हाँ,

0: आजी, सुबह से आप लगातार काम ही करते जा रहे हैं, थोड़ा सा खाकर आराम भी कर लीजिए ना।
1: लड्डू ही बना रहा हूँ भाग्यवान, चिंता मत करो तुम। बहुत बड़ा ऑर्डर है भाग्यवान, सेठ जी अगर खुश हो गए तो कोई चिंता नहीं। अब ये सारे लड्डू ठीक से सजा कर रख देता हूँ मैं।
0: सबको हांडी में भर कर रखते तो अच्छा नहीं होता?
2: नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। चाशनी को तुम अलग से रख दो, फिर सुबह क्या करना देख लेंगे हम।

कल सुबह रो रो कर तुम लोगों का जो हाल होने वाला है वो सोच कर मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाए लड्डुओं का गणेश नहीं गणेश के वाहन ही चटकर जाएंगे।

0: अरे ये क्या हो गया? अरे आके देखो भाग्यवान, सर्वनाश हो गया।
1: अरे अरे बाबा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ?
0: अरे देखो तो सही, कल रात तुमने इसको ऐसे ही खुले छोड़ दिया तो चूहों ने तहस महस कर दिया इन्हें।
1: क्या कहते हो, सच में अब क्या होगा?
0: अभी
1: क्या हो गया?
0: अभी मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर शाम तक लड्डू नहीं पहुंचाऊंगा तो बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी। हाय हाय, अब मैं क्या करूं?
2: बेटा बेटा बहुत ही भूख लगी है मुझे, खाना नहीं तो पानी पिला दीजिए।
0: हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए, पानी पिलाने में कौन सी बड़ी बात है, आइए मेरे साथ में देता हूँ।
2: वो क्या है, लड्डू? मुझे भी एक दोगे, एक एक दोगे मुझे?
0: मेरे सारे लड्डू चूहे खा गए बाबा।
2: तो क्या हुआ, उसमें से ही मुझे एक दे दो ना बेटा, दे दो।

0: अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने में बहुत ही अच्छे हैं बेटा, बहुत ही अच्छे हैं। वाह,
1: बहुत बड़ी समस्या हो गई, पता नहीं अब मैं अपना मुंह सेठ जी को कैसे दिखाऊंगा।
0: सच्चाई के रास्ते पर चलकर और मेहनत करने पर उसका फल अच्छा ही होता है। तुम दुखी मत हो बेटा, और मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें क्या दूं, बोलो बेटा।

0: अब इस हंडी को कहाँ रखूंगा? हाँ, जो कुछ बचे कुचे लड्डू है वो इसमें डाल देता हूँ।
1: अरे सबको आप अपनी हांडी में क्यों भर कर रख रहे हो? लाइए इन्हें फेंक देती हूँ।
0: फेंक दूँ?
1: हाँ हाँ फेंक दीजिए फेंक दीजिए।

0: अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लड्डू कहाँ से आ रहे हैं?
1: अजी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हंडी जरूर जादुई है। चलिए अब जल्दी जल्दी हाथ डालकर निकाल लीजिए, 5,000 लड्डू निकालेंगे हम। अरे देख क्या रहे हैं, जल्दी कीजिए ना।
0: हाँ सही कहा भाग्यवान, उस बूढ़े बाबा के जादुई हंडी में मुझे लगता है उनका ही कोई कमाल होगा। ठीक है भाग्यवान, जाके देखता हूँ सेठ जी को खुश कर पाता हूँ कि नहीं।
1: अरे आज तो इस जादुई हंडी की वजह से हमारी इज्जत जाते जाते बची है। अब जाकर देखती हूँ उस हंडी में कुछ और रखने से और क्या निकलता है।

अपने हाथों के इन कंगनों को निकालकर इसमें रख देती हूँ। अरे वाह, इतने सारे कंगन! अब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। लगता है रातों रात हमारे भाग खुलने वाले हैं। और तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता।

0: हाँ, सारी चिंताएं मिट गई। सेठ जी ने खुश होकर तोहफा दे दिया। अब जो मेरे पास जादुई हंडी आ गई है तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। एक मिठाई बनाऊंगा, फिर हंडी के अंदर डाल के बहुत सारी मिठाइयां बनाऊंगा, फिर मैं उन्हें बेच दूंगा। क्या बात है।
1: अरे वाह, ये हार, कान की बाली, ये कंगन और कितने सारे गहने, सबको मैंने 2x, 3x, 4x, 8x कर दिया है। अब ना एक काम करती हूँ, इन जूतों को डालकर देखती हूँ क्या होता है। हाँ?
0: अरे अरे, ये क्या कर रही हो, एक साथ सब डालोगी तो वो फूट जाएगी।
1: आप ना हर बात पर मुझे टोकते हैं। आप बस अपना मुंह बंद रखिए, एक ही दिन में हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसीलिए जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दीजिए। हाँ। अरे अब ये क्या हो गया जी, ये हांडी तो टूटकर चकनाचूर हो गई। हमारी किस्मत मिट्टी में मिल गई, अब क्या होगा।
0: क्या होगा, लालच का फल बुरा ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ। लगता है तुम भूल गई थी, जो मेहनत करके सत्य के रास्ते पर चलता है वही भाग्यशाली होता है। अब मैं नए से शुरू करूंगा सब।
2: अरे भाई गोविंद, मुझे भी एक देना भाई, मतलब जब सभी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी दे दो। हाँ, एक दे दो।
0: खाओ भाई, खाओ खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, खाओ खाओ।
2: मैं भी अब।
3: वेलकम बैक दोस्तों, एक मजेदार कहानी तो आपने सुनी ली, लेकिन एक बार सवाल दोहराते हुए मैं और रूहानी आपके लिए आज का होमवर्क भी लेकर आएंगे। सवाल है,
4: क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
3: आपके सामने ऑप्शन है ए चाइना या चीन, बी यूनाइटेड स्टेट जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या फिर सी रशिया। तीनों में से सिर्फ एक सही जवाब है, झटपट देना 9414151415 पर देना। और है आज की कहानी या हमारा होमवर्क, दो बैलों की कथा।
4: जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हो तो उसे गधा कहते हैं।
3: गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
4: गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अन्यास की सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है।
3: किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता सुना और न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेते हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा।
4: उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं।
3: पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर कभी बदनाम है।
4: कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते।
3: जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य कर दिया, बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है और भी है, जो उससे कम ही गधा है, वह है
4: बैल।
3: जिसके अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं।
4: बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। जूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती।
3: दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे।
4: एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें से कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
3: दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, दोनों विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते है ना। धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त
4: दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते।
3: नींद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नींद नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा हटा लेता था।
4: संयोग के बाद जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे, समझे मालिक ने हमें बेच दिया।
3: अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर पर गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हांकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते।
4: अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्या निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करवा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था।
3: हमने कभी दानाचारे की शिकायत नहीं की, तुमने तो जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया।
4: संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला।
3: दिल भारी हो गया था उसे, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगानों से लगते थे। हम बेगाने तो नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन विश्व एक परिवार है, ये गाना हम जरूर लेकर आ रहे हैं। अनूप जलोटा जी की मीठी आवाज आपके लिए अब उड़ान में। सुनते रहो,
4: मुस्कुराते रहो।

0: विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, ये गीत आगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवाल का जवाब भी देंगे। सवाल था आपके लिए,
1: क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
0: हमने ऑप्शन रखा था आपके सामने, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रशिया, और सही जवाब है
1: ऑप्शन सी, रशिया।
0: हाँ, चीन भी काफी बड़ा है, पूरे हमारा जो पूरा एशिया का सबसे बड़ा भाग है वो चीन ने ले रखा है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और पर रशिया जो है वो तीसरा नंबर का है, तो इसमें पहला रशिया है, पहले नंबर का है, रशिया फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थर्ड और चीन फोर्थ, तो दूसरा कौन सा है?
1: दूसरा कैनेडा।
0: ओए होए, तो ये चार देश हैं जो अपने आप में बड़े बहुत है क्षेत्रफल के हिसाब से। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे,
0: तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे
1: गुड बाय,
0: सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, क्योंकि

0: में पहुंचेंगे। पहले हमारे स्कूल के सर जी उपस्थित है तो उनको स्वागत करते हैं। सर, रेडियो मधुबन आज आपका प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे जो सांगवाड़ा ग्राम पंचायत में आता है, पिंडवाड़ा ब्लॉक में, तो सर आपको वेलकम करते हैं। अपना परिचय दीजिए और खासकर बच्चों को एक वार्म अप कराइए जो आपका आवाज को सुनकर बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे। ताली बजाओ सर जी के लिए, जोर से ताली। वेरी गुड। आज तो रेडियो मधुबन मतलब मनोरंजन, आरजे मतलब रेडियो जोकी, सब हमारे एक एक बच्चे आज आरजे बन जाएंगे एक दिन के लिए, और रेडियो में जो बोलते हैं उसको आरजे कहते हैं, रेडियो जोकी कहते हैं। तो सर को स्वागत करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए और स्कूल का बारे में थोड़ा बताइए, नामांकन का बारे में बताइए, और बच्चों का रुचि पढ़ाई में कितना है वो भी बताइए।
1: मेरा नाम सर जितेंद्र परियार है और मेरा मूल जो पद स्थापन है वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांगवाड़ा में। यहाँ पर स्कूल में दो स्टाफ है, एक मैडम है, उनका डेपुटेशन उनके गांव के नज़दीक ही हुआ है, तो मेरा प्रतिनियुक्ति इस विद्यालय में है। यहाँ जो कुल नामांकन है वो है 44 का भी, और यह एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कहे इसको, और इस विद्यालय में सारे अनुसूचित जनजाति वर्ग से बच्चे पढ़ने आते हैं, और इनका पढ़ाई के प्रति रुझान, मैं जब सुबह विद्यालय आता हूँ तो बीच रास्ते में मुझे लगभग ये 2-1.5 किलोमीटर लगभग पैदल चलते हुए मिलते हैं, और इनका पढ़ाई के प्रति जो प्रेम और गुरु जी के प्रति भी जो आदर भाव और सम्मान की जो भावना है वो इनमें कूट कूट के भरी है, और राष्ट्रहित में अगर इनकी बात की जाए, अगर इनको अच्छा एक मंच मिले और इनको शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधाएं अगर जो वंचित है मिलना शुरू हो जाए, तो यकीन मानिए कि आप ये देश के लिए सब कुछ समर्पण करने को तत्पर है। तो मैं इन बच्चों को राष्ट्रहित की भावना पढ़ने के लिए एक कविता सुनाना चाहूंगा।
0: क्या बात, क्या बात।
1: हम भारत के भरत कहलाते हैं, इतिहास में आपने भरत का नाम सुना ही होगा। हमारा देश जो विश्व गुरु, हम कहते हैं कि हमारे जो पहले ऋषि मुनि जो हुए हैं, या फिर जो हमारे पहले ऐसे ऐसे महान तपस्वी हुए जो जिनके जो बच्चे थे वो शेरों के साथ खेलते थे, और वो भावना आज उन बच्चों में भरनी है, ताकि राष्ट्र पर कोई आपदा आती है तो हम सब एकजुट होकर मिलजुल कर उस समस्या का सामना करें। जैसे अभी वर्तमान में ईरान और अमेरिका का जैसे युद्ध चल रहा है, तो ऐसी आने वाले समय में और परिस्थिति आ सकती है, तो हम देश हित में क्या करें। तो इन बच्चों में ऐसी भावना पढ़ने के लिए कि मैं कविता सुना रहा हूँ, तो ये बच्चे भी मेरे साथ में गाएंगे और मैं भी।
0: सही बात है, कहा देश हित में और देश प्रेम में, जन हित में जो गीत कविता सर ने सुनाएंगे बच्चों का साथ। और भारत आजादी का अमृत महोत्सव से अमृत काल तक पहुंच रहा है, क्योंकि जब 100 साल पूरा करेगा तो हमारा भारत विश्व गुरु क्या भारत सबका साथ होंगे, और हमें खुशी है इस तरह भारत में भारतीय नागरिक शुरू से बचपन से ही उनका अंदर में जिस राष्ट्रहित में राष्ट्र सुरक्षा के लिए और खुद का सुरक्षा देश सुरक्षा के लिए जो भावना है ऐसे जागृत होगा तो जरूर अपने को भी बचाएंगे और देश को भी बचा पाएंगे। कोई भी विकट परिस्थिति आए लेकिन अपने को स्वस्थ स्थिति में रहकर अपना मन बल को बढ़ाएंगे तो जरूर कामयाब होंगे। लेकिन कविता सुनेंगे अल्प विराम के बाद, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, क्योंकि एक सस्पेंस देश हित में जो बच्चों का साथ एक जो जुनून देखने को मिलेगा सुनने को मिलेगा। लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है आज राज्य के प्राथमिक विद्यालय जो सांगवाड़ा स्थित छोटा सा डूबा नाड़ी में पहुंचे। डूबा नाड़ी में आज तो गीत कविता में डूब जाएंगे, जब डूबेंगे तब तो हमको मजा आएगा। जितना डूबेंगे मन गहरा में जाएंगे तो उसमें पूरा डीपली जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो देर किस बात की, सर का आवाज को सुनने के लिए हमारा श्रोता मित्र आ गए हैं गीत का पश्चात, तो एक कविता बच्चों का साथ होंगे। सर आपको पुनः स्वागत करते हैं इस कार्य कविता को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा साथ बच्चे भी साथ देंगे। बच्चे हाँ जी बोलो, जोर से बोलो हाँ जी।
2: गुड। तो हम शुरू करने जा रहे कविता, हम भारत के भरत।

0: भारत माता की
1: जय।
0: वंदे। सभी बच्चे पढ़ेंगे आगे
2: बढ़ेंगे।
3: भारत माता की वंदे। वंदे भारत माता की। आज बच्चों का अंदर में रग रग में भारत का जो देश हित में खून दौड़ रहा है और भाव भावना को लेकर सारे बच्चों का साथ बच्चे बन के हमारा रेडियो कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, इस तरह मौका बार बार मिलता नहीं। जब मिलता है मौका, उस मौका का फायदा लेकर अपना भाव भावना को देश हित में समर्पित करते हैं। समर्पण भावना है और हम सब भारतीय होने के नाते गर्व है, क्योंकि हमारा भारत कोई देश ऐसे नहीं जो भारत के टक्कर देने के लिए लायक हो। भारत सबसे महान है, क्योंकि जिस भारत में 33 कोटि देवी देवता का जन्म स्थान है और जीरो भारत ने दिया देश को, पूरा विश्व को दिया है। विश्व गुरु तब बनेगा जब हम सब बच्चे इस तरह देश हित में अपना जुनून को, अपना हित को सब तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। सर को भी धन्यवाद देते हैं। सर अचानक में आए, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं था, फिर भी बच्चे अपना सच्चे मन से गीत गाए हैं, तो सुंदर प्रस्तुति के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। और ये बच्चे तो कम नहीं है, ग्रामांचल बच्चे, शहरांचल बच्चे भी कम नहीं, आदिवासी बहुल में रहते जैसे सर ने बताया, पहाड़ी में गोद में बसा हुआ गांव है। सर क्या लगा आज अचानक आया था, आपको क्या लगा?
0: बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि प्रतिभाएं जो छिपी होती है उनको उजागर करना बेहद जरूरी होता है। कि जमीन के अंदर सोना कितना है, या फिर पानी जो नदी में बहता है वो गहरा कितना है, उसकी परख तो पानी में उतरने के बाद ही पता चलती है। अन्यथा पानी का वेग क्या है वो तो हम बाहर बैठे तो पता नहीं कर सकते। एक कहते हैं कि पूरी जमीन साथ दे तो और बात है, हम लोग एक दूसरे का जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को चल लेते हैं लोग एक पाँव पर, लेकिन दूसरा पाव भी साथ दे तो और बात है।
3: क्या बात, ताली बजा भाई इस मौका पर।
0: तो हमें एक दूसरे का साथ और सहयोग, अगर कोई नीचे गिरा पड़ा है तो उसको जब तक हम नहीं उठाएंगे तो वो गिरा ही रहेगा। तो एक दूसरे का साथ सुख और दुख में जिस तरह हम देते हैं, उसी तरह सदैव अगर देते रहेंगे तो यकीन रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमने देखा कि एक पाव पर भी लोग तो चलते हैं। एक पाव का मतलब ये नहीं कि जिसके एक पाव है, यहाँ साथ की बात है। जैसे हमने भी कविता पढ़ी थी कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, यहाँ पे हम आया तो हम का मतलब है हम सभी मिलजुल कर। नहीं तो मैं भारत का भरत खेलता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सभी का साथ और सहयोग होना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो वो कहते हैं कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते और नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशे ही लाशे, उस मंदिर में दर्शन देने को कभी राम नहीं आते। तो सिक्के की परख जब सिक्का बाजार में चलता है तभी होती है, वरना खोटे सिक्कों के तो कभी कोई दाम नहीं आते। मैं इन बच्चों को तो यही कहूँगा कि बच्चों, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। पत्थर और नगीना होता है उसमें भी बड़ा, फिर मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। तो सांस तो हम, मैं हूँ अब सुबह उठा, सुबह से शाम तक मैंने कोई काम नहीं किया और मैं घर पर ऐसे ही बैठा हूँ, मेरी सांसें तो चल रही है, तो वो सांसें कोई सांस नहीं है, वो तो फिर एक तरह से मुर्दा हो गया। अपन खुद के लिए क्या कर रहे हैं, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के बाद हमारा गांव है, फिर हमारा जिला है, राष्ट्र है, तो हम राष्ट्र हित में क्या कर रहे हैं वो हमारा मायने रखता है। अन्यथा मुर्दों की तरह वो तो फिर सांस लेना हो गया। तो जिस तरह जैसे किसान है वो खेती बाड़ी करके हम सभी के लिए अनाज पैदा करता है, मजदूर है तो मजदूरी करके अपने कुछ ना कुछ वो सहयोग राष्ट्र हित में कर ही रहे, और हम भी जैसे बच्चे हैं तो आगे बड़े होकर कोई सिपाही बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई गुरुजी शिक्षक बनेंगे, अध्यापक, तो हम अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो अपना हर क्षेत्र में अपना हम सहयोग करेंगे, तो वो राष्ट्र हित में अपना सही मायने में सहयोग होगा। तो आप सभी आगे बढ़ेंगे तो हमारे राष्ट्र हित में हमको आगे बढ़ना है निस्वार्थ भाव से। कैसे?
3: निस्वार्थ भाव से।
0: एक बार क्या होता है कि एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कुछ मेंढकों ने कसम खाई। किसने? मेंढकों ने, कि आज हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेंगे। अब सभी ने एक दूसरे को कसम खाई और लगभग आधा घंटा हुआ तो देखा कि एक मेंढक केवल उस पहाड़ी पर चढ़ा है, चोटी पर। उसने पीछे देखा कि एक भी मेंढक नहीं था। बाद में पता चलता है कि वो मेंढक जो ऊपर चढ़ा था वो बहरा था। क्या था? इसलिए वो आगे बढ़ा। अब उसको क्या बातें सुनाई नहीं दी, जैसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है तो किसी ने ये बोला होगा, अरे यार बहुत गर्मी है कौन चढ़ेगा। किसी ने ये बोला होगा, अरे कसम खाई तो चौ खाई, झूठी कसम खाई है। मतलब उन लोगों ने जिन्होंने अधूरे मन से प्रयास किया था। जैसे अपन पढ़ने आते हैं, एक दो बच्चे ऐसे भी होंगे, अरे यार क्या करना है पढ़ के, अपन तो खेती बाड़ी करेंगे, अपन तो मजदूरी करेंगे, अपन वो करेंगे। लेकिन उन बातों को जो सुनता नहीं है, अनसुना करके आगे बढ़ता है तो वो हमेशा कामयाब होता है। लेकिन हम जो अधूरे मन से प्रयास करता है, जो घर पर जाकर पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल में आकर भी नहीं पढ़ता है, तो वो फिर लास्ट में जब एग्जाम होता है और रिजल्ट आता है तो वो फिर फेल होता है, तब क्या बोलता है, मेरे तो घर पर मम्मी बीमार थी, फिर बोलता है मेरे तो घर पर काम था। मतलब उसने प्रयास तो किया ही नहीं, अधूरे मन से प्रयास किया और जब नाकामयाब हुआ तो उसने अपनी जो नाकामयाबी थी वो सारा बोझ किसी और के ऊपर डाल दिया। यानी उसने झूठे बहाने बनाए कि मेरे तो ये हो गया। अब जैसे कभी कभी हम देखते हैं कोई बच्चा बोलता है, सर मेरे तो पेट दुखता है, तो या तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता और वास्तविक स्थिति हम जानते हैं, तब वो बोलता है नहीं सर, हम बोलते हैं कि डॉक्टर साहब को बुलाते हैं इलाज करवाने के लिए, नहीं नहीं सर मैं तो ठीक हूँ। तो ऐसे लोगों की बातों को हमें कभी सुनना नहीं है, जिन्होंने कभी सच्चे मन से प्रयास नहीं किया है। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग बहुत आएंगे जो आपको पीछे धकेलने के लिए ऐसे झूठे बहानेबाजी करेंगे। उन लोगों की आवाज को हम सुनेंगे नहीं, हम अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे, बुरी बातों को किनारा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे नशा नहीं करना है, अगर घर में भी कोई नशा करता है तो उनको बोलना है कि इस नशे से ये बीमारी होती है। कोई गुटखा खाता है तो उसको बोलना इससे कैंसर होता है। कोई दारू पीता है तो उसको बोलना देखो आप दारू पीते हो, लेकिन आप जब घर पर जाकर दारू पीकर उनसे झगड़े करते हैं तो उसकी बच्चे है तो वो भी बेचारे परेशान होते हैं, घर में जो माता जी है तो वो भी परेशान होती है। तो ऐसी जो गंदी आदतें हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना या फिर कोई पाप करना, ये सब आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। आपने कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी ना, जैसे खरगोश और कछुआ वो दोनों दौड़ लगाते हैं तो खरगोश तो है वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति से धीरे धीरे धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है। अब जैसे आप स्कूल में आए तो पहले कक्षा पहली पास की, दूसरी पास की, ऐसे थोड़ी कि आपको डायरेक्ट पांचवी में दिया, पांचवी में तो नहीं लिया। तो सब काम धीरे धीरे होते, कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अब जैसे अपन ने पिछले साल यहाँ पे पौधे लगाए थे तो नीम का पेड़ है, अपन देखते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है बड़ा। ऐसे थोड़ी कि अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी तो हम एक काम करते 50 घड़े एक साथ पानी उसमें पिला देते हैं तो छुट्टियों के बाद में आएंगे तो वो नीम एकदम बड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आम का भी पेड़ है तो ऋतु के अनुसार फल आते हैं, आते कि नहीं आते। तो सब काम समय पर और समय के अनुसार होता है। जैसे कहते हैं कि समय समय की बात है, एक समय में दिन बढ़ा एक समय में रात। अभी जैसे दिन बढ़े, गर्मियों का समय है, अपन देखते हैं कि सुबह 5:30 बजे लगभग अंधेरा समाप्त होता है और शाम को 7:45 तक दिन रहता है। तो गर्मियों के दिन में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो सब समय के अनुरूप होता है। पेड़ है, अपन देखते हैं सुबह छाया तो उस तरफ है और शाम को देखते छाया इस तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये समय के अनुसार सब प्रकृति का खेल है, अपन थोड़ी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ पे स्कूल में पिछले साल पौधे लगाए थे तो हम सभी का कर्तव्य क्या है, मैं भी साथ में आपके काम करूंगा, अपन सारे मिलकर पौधों को पानी पिलाएंगे तो ये पर्यावरण संरक्षण होगा। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो पेड़ पौधों की रक्षा करनी है हमें, तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें फल फूल ये सब कहाँ से मिलेंगे, तो जीवों की रक्षा करनी है हमें। जीव जंतु है, जैसे चींटियां भी गर्मियों की अपन देखते बहुत आती है, तो उनको भी हम अपने पास जितना है उस अनुसार अपन उनको दे सकते हैं। तो हम सभी करेंगे राष्ट्र हित में काम। बोलो
3: जी।
0: बोलो भारत माता की
3: जय। भारत माता की जय का साथ इस कार्यक्रम को कहते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बच्चों का तुतल तुतल आवाज में सुनेंगे कुछ प्रस्तुतियां प्रार्थना के रूप में, और उनका जो आदिवासी देसी अंदाज से भी गीत गाएंगे। और बच्चों को आज मंच मिल रहा है तो मंच का तो फायदा होना चाहिए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति दी। और गुप्त रुस्तम जैसे कुछ हो सकता तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहुत कुछ नॉलेज है सर का। और एक क्या बोले मास्टर है, ये तो मास्टर तो है ही है, लेकिन सब चीज में मास्टर है गीत भजन में। अभी देखा रहते सर अपना हारमोनियम का साथ भी, जहाँ जहाँ भजन मंडली होता है, भजन संध्या होता है, वहाँ पर भी पहुँचते हैं। और आज मौका मिला, हम तो पहला बार आए, फिर भी बच्चों का साथ बच्चे बनकर बहुत कुछ देश हित में, स्वहित में, और गांव का हित में, और विद्यालय का हित में, पर्यावरण का हित में भी तत्पर रहते हैं। पर्यावरण सुरक्षा कितना आवश्यक है और हम उसी पर्यावरण में एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके बारे में दो शब्द बोलेंगे। पर्यावरण क्या है और क्यों है, पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, तो पर्यावरण का जो भावार्थ है वो सुनेंगे। अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो है, हमें बहुत खुशी है। आज बच्चों का साथ हम बच्चे बनकर गीत सुनाएंगे और राज के प्राथमिक विद्यालय डुबा नाड़ी में हम पहुंचे जो कि सांगवाड़ा ग्राम पंचायत में आते हैं। सभी बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे और क्लास बताएंगे कौन सा फौली बा कौन सा गांव से वो बताएंगे। तुम अपना नाम पहले बताओ।
1: दीपू कुमारी।
0: कौन सा गांव से?
1: डुबा नाड़ी मधुराम।
0: कौन सा गांव?
1: डुबा नाड़ी।
2: यमुना कुमारी। श्रवण कुमार डुबा नाड़ी।
0: डुबा नाड़ी।
2: ज्योति कुमारी डुबा नाड़ी।
3: गंगा कुमारी डुबा नाड़ी।
4: सुनीता कुमारी डुबा नाड़ी।
0: क्या करेंगे, रेडियो में प्रोग्राम करेंगे? प्रोग्राम करेंगे तो प्रार्थना गाएंगे पहले। माँ सरस्वती का भजन।
1: माँ

0: बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ सुंदर प्रस्तुत। जैसे हर विद्यालय में जब आते हैं तो बच्चे पढ़ने का पहले माँ सरस्वती को याद करते हैं, क्योंकि ज्ञान का दात्री माँ सरस्वती है, ब्रह्मा का बेटी है, और सरस्वती का कृपा जिसका ऊपर पड़ेगी उनका विद्या तो भरपूर हो जाएगी। और माँ सरस्वती को इसलिए हम याद करते हैं प्रार्थना सत्र में, और गणेश को भी याद करते हैं, है ना। प्रार्थना सत्र में माँ सरस्वती को और गणेश को याद करते हैं, और माता पिता का सम्मान भी करते हैं, और शिक्षक गण का चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बढ़कर क्या बनेगी तुम?
1: मैडम
0: बनेगी। अरे वाह, मैडम बहुत अच्छा काम है। मैडम का काम सबको पढ़ाना होता है। मैडम क्या करती?
1: पढ़ाती है।
0: और तुम्हारे स्कूल में कोई मैडम है?
1: ना,
0: कोई मैडम नहीं है। और कौन कौन है? सर का नाम बताओ। इंद्र सर और
1: बैराज।
0: हाँ, दो मास्टर साहब हैं। पांच क्लास को दो मास्टर हैं, लेकिन फिर भी बच्चे क्या क्या स्कूल में मिलता बताओ।
1: फल,
0: ओके,
1: दाल बाटी, चावल, दूध
0: भी मिलता है। अरे वाह, और क्या मिलता है?
1: सेब।
0: सेब भी मिलता है, फल में सेब मिलता है। और केला मिलता है?
1: हाँ।
0: क्या क्या मिलता है बताओ फल में? केला,
1: सेब, संतरा,
0: सब चीज मिलता है। इसलिए बच्चे स्कूल आते हैं। स्कूल नहीं, जो स्कूल नहीं आएगा उसको मिलेगा नहीं। आज जो जो बच्चे नहीं आए उसका नाम बता, कौन कौन आज नहीं आया?
1: गीता
0: नहीं। और
1: पिंकी।
0: पिंकी भी नहीं आया। और कौन है? और कौन नहीं आया?
1: हिना
0: भी नहीं आया। और कौन?
1: रमीला
0: भी नहीं आया। और कौन नहीं आया?
1: लीला
0: भी नहीं। जो नहीं आया आज तो रेडियो प्रोग्राम में वो आ नहीं पाएंगे, उनका गीत रुक गया बोलने के लिए, उसको मौका मिला नहीं। जो आया उसको गीत गाने के लिए मौका मिला, है ना। इसलिए हर रोज विद्यालय में आना है। जब स्कूल खोलेगी पढ़ाई होगा तब आना, संडे को नहीं आना। और बाकी समय में जब स्कूल में पढ़ाई होता है तब छुट्टी का दिन में नहीं आना। छुट्टी का दिन में आते हैं?
1: नहीं।
0: और जब स्कूल रेगुलर, पंक्चुअलिटी पूरा रेगुलर, नियमित स्कूल का समय में आएंगे तो हमें अच्छा अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा? क्या क्या सीखने को मिलेगा स्कूल आने से?
1: पढ़ाई
0: और
1: गाना
0: सीखने को मिलेगा। अरे वाह, तो पढ़ाई मिलेगा, एक को गाना मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा आने से?
1: कविता
0: सुनने को मिलेगा। अरे वाह, तुमको क्या मिलती है?
1: गाना,
0: खाना। गाना नहीं, खाने को भी मिलता है। मिलता ना पोसार, मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को सुंदर प्रस्तुति के लिए। और एक प्रस्तुति दोहा का रूप में गीत गाएंगे। सभी बच्चे गाएंगे दोहा? हाँ, दोहा तो सबको अच्छा है ना, दोहा अच्छा लगता है। हाँ, सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे। आज खुद के लिए ताली बजाओ बच्चे, तुम्हारे लिए खुद के लिए ताली बजाओ। श्रवण और उनका दोस्त को भी धन्यवाद देते हैं। सुंदर रूप में सभी मिलकर ताली बजाए खुद के लिए। और ऐसे बच्चे आते जब उनका माँ बाप सुनेंगे रेडियो में, अरे ये श्रवण का आवाज है, ये पिंकी का आवाज है, ये गुड़िया का आवाज है, ऐसे बताएंगे तो खुशी लगेगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक। ये था राजकीय प्राथमिक विद्यालय डूबानाड़ी सांगवाड़ा का आवाज। दुरुस्त जगह है, फिर भी बच्चे कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। कोई डर है? नहीं। डर लगता है?
1: नहीं
0: लगता। तुमको डर लगता है?
1: नहीं।
0: तुमको?
1: नहीं।
0: हाँ, डर लगना नहीं चाहिए, झिझक, कोई झिझक नहीं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है। बच्चों का साथ हम भी आज बच्चे बन गए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं और बच्चे महान होते हैं। बच्चे सत्य बात करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं और बच्चे महात्मा जैसे सब काम करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय डूबानाड़ी जो कि सानवाड़ा में आता है, और आज हम उसी स्कूल में पहुंचे। बच्चों का साथ हम भी बच्चे बनकर उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनका भाव भावना, उनका अंदर में जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे धीरे धीरे एक के बाद एक गीत दे रहे हैं और हमें खुशी सबको एक मंच मिल रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं लेकिन तोतल तोतली भाषा में अपना आवाज को दे पा रहे, और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमें दोहा होगा, एक दोहा प्रस्तुत करेगी हमारा छोटी सी परी। नाम बताइए, नाम
1: गंगा।
0: गंगा, गंगा में नहाते तो पूरा पवित्र हो जाते, गंगा पानी है और शिव का माथा में गंगा जल निकलता है, सुने हैं भक्ति मार्ग में। और गंगा तुम्हारा नाम कौन दिया, गंगा नाम कौन रखा है?
1: मम्मी।
0: आई, मम्मी को आई कहते हैं ना। चलिए एक दोहा सुनाएगी, सुना।
1: पत्ते

0: बजा।
1: क्या बात, ताली बजा बच्चे। ऐसे गवाह हो तो ऐसे छोटी गंगा है और आज तो हमारा कान में पवित्र करा दिया गंगा अपना दोहा सुनाने के बाद। सुंदर दोहा, दोहा में बहुत रहस्य और भावार्थ अर्थ सहित जीवन में धारण करेंगे तो जरूर हम कामयाबी होंगे। भले बच्चों को उसका अर्थ नहीं हो, बिल रट लिया और उनका भाव का साथ, भावना का साथ चलेंगे तो जरूर बढ़ेंगे। और इस दोहा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, दूसरा नंबर में हमारा छोटी सी और एक परी, वो भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएगी, सुनाएगी। हेलो, नाम बताओ।
0: जमुना।
1: हाँ देखा, मैं गंगा, जमुना, सरस्वती भी आ जाएंगे, क्योंकि गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां हैं, पूरा भारत को पूरा पानी में भरपूर कर देते, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो गंगा के बाद अब जमुना भी उपस्थित है, जमुना को साथ देने के लिए आएंगे हमारा और एक छात्रा, नाम बताओ।
0: दीपू।
1: दीपू जमुना को साथ देने के लिए दोहा में है ना, और दीपू तो सब दोहा उनको मालूम होता है, क्योंकि बड़े बच्चे कितना, कौन सा क्लास में दीपू?
0: पांच।
1: पांचवी क्लास। और जमुना तुम्हारा कौन सा क्लास?
0: पांचवी।
1: लंबा है, हाइट है, ठीक है, लंबा है और ये छोटा, छोटे है, कोई बात नहीं। चलिए सुनाते हैं दोहा, चलिए सुना।

0: सुपंडित हो।
1: पढ़ेंगे तो पंडित होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गवार हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे। इस दोहा में ये हमें सीख मिलता है, इसलिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। चलिए इस दोहा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ गुड्डा भी है। गुड़िया का बाद गुड्डा आएगा। गुड्डा मतलब एक छात्र आया है। हेलो, नाम बताओ।
2: माधु।
1: अभी तो गंगा जमुना के पास माधु आया है, माधु भी एक दोहा सुनाएगा, है ना। तुम्हारा साथ देने के लिए दीपू को बुलाएंगे, दीपू सबको साथ दे रही है और दीपू को पूरा मालूम है, लीडर है। सुनाओ देखिए, दीपू और

0: क्या बात भाई, कोई भूखा नहीं रहे। और सभी इस गीत में क्या सीख मिलता है दीपू, इस गीत में हमें क्या सीख लेना चाहिए?
1: जैसे भोजन करना, कोई भी भूखा नहीं रहे,
0: साधु भी खाए और हम भी खाए, साधु को दे और हम भी खाए, तुम सुख रहो और हम भी सुख मिले, सुखी रहना और सुख बांटना है, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, है कि नहीं? तो पंडित हो चाहे जो भी है, सभी को भोजन मिलना चाहिए। तुमको भी मिलता है भोजन?
2: हाँ।
0: क्या क्या मिलता है दीपू
1: भोजन में?
2: दाल, रोटी,
1: अरे वाह,
2: आलू की सब्जी,
1: ओके, खिचड़ी,
0: कोई बोलता खिचड़ी भी मिलता है, बहुत अच्छा दीपू भी, बहुत अच्छा बात बताइए। तो इस कार्यक्रम को सजाने का और एक हाथ उठा ले, मैं भी बोलूं तो कौन सा बोलेंगे? वो भी और एक छात्रा भी आए, गुड़िया हमारा परी है, तो परी भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएगी और सबको देख कर ये भी बोले हमें कुछ करना चाहिए, है ना? हेलो, नाम बताओ।
3: सुनीता कुमारी।
0: सुनीता कुमारी, गंगा जमुना सरस्वती का बाद सुनीता आई है, सुनीता एक दोहा सुनाएगी। तुमको क्या अच्छा लगता है खाने में? कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा खाना अच्छा लगता है? रोटा ना, चावल ना, डालमा, क्या अच्छा लगता है?
3: चावल।
0: चावल अच्छा, क्यों? चावल में क्या है? चावल उनका अच्छा लगता है, वेरी गुड। एक सुनाएगी, सुना दोहा, दीपू साथ देगी।

0: क्या बात, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा भाई लाल के लिए, लाली के लिए, हाँ जोर से। बच्चों को पहला बार मौका मिला गीत गाने के लिए, कविता बोलने के लिए, दोहा बोलने के लिए रेडियो में अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं और खुशी लग रहा है क्योंकि रेडियो प्रोग्राम में सबका आवाज को लेकर एक गुलदस्ता बन जाता है। सबका आवाज अलग अलग है, दीपू का अलग है, जमुना का अलग है और हमारा गंगा का अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन चलिए और एक प्रस्तुति, और एक प्रस्तुति, श्रवण, श्रवण आ जाओ श्रवण, क्योंकि श्रवण हम सुन रहे थे और श्रवण कुमार पहुंचा है और श्रवण को भी, श्रवण अकेला काफी है, अभी दीपू को नहीं बुलाएगा, बुलाएगा दीपू को नहीं, तुम अकेला बोल देगा ना, हाँ क्या बात। श्रवण के लिए जोर से ताली बजा। चोटी रखा है, चोटी क्यों रखा है, चोटी, अच्छा चलिए एक दुआ सुनाएगा। क्या नाम है?
1: श्रवण कुमार।
0: कौन सा क्लास?
1: तीसरी।
0: तीसरी, अरे वाह। और कौन सा गांव?
1: डुबानाडी।
0: डुबानाडी, डुबानाडी के आसपास कौन सा मंदिर है? मंदिर है कुछ, मंदिर है बताओ, कोई मेला लगता है, मेला भरता है? कौन सा मेला?
1: रूपची बासी।
0: बासी, वहाँ पर जाते हैं कभी कभी, जाते हैं। वेरी गुड, तो दुआ सुनाओ।

0: विषय विकार,
1: जहाँ विषय विकार है वहाँ जाना नहीं है। विषय विकार मीन्स पूरा गट्टर है जो बहुत खराब करता है, इसलिए विषय विकार में नहीं जाना है, निर्विकार रहना है, निर्व्यसनी रहना है, तब हम आगे जाकर गांव का और खुद का नाम रोशन करेंगे। विषय विकार में नहीं जाना चाहिए। चलिए अंतिम प्रस्तुति की दोहा का अंतिम लाइन सुनाने के लिए लास्ट सो फास्ट होगा हमारा छोटी सी परी गुड़िया, नाम बताएगी और इस कार्यक्रम को सुंदर में सजाएगी। हेलो, नाम बताओ।
2: ज्योति।
1: हाँ, कितना सुंदर नाम है, ज्योति। ज्योति को जगाएगी आज, आत्मा ज्योति है, आत्मा ज्योति है, जिसका ज्योति मतलब प्रकाश, तेज, आलोक। ज्योति मतलब क्या है? लाइट। क्या बोला? लाइट। ज्योति मतलब प्रकाश। क्या बोला? प्रकाश। अंधकार को दूर करता है ज्योति। ज्योति एक प्रस्तुति सुनाएगी जो भी दोहा में है ना, दोहा। हाँ, दोहा को साथ देने के लिए कौन? दीपू को बुलाएंगे। हाँ, दीपू का बिना हमारा काम अधूरा है। दीपू साथ देगी और ज्योति एक प्रस्तुति सुनाएगी।
2: तुले

0: क्या बात, क्या बात, सभी के लिए जोर से ताली मैं बजा देता हूँ, सभी बजा रहे हैं, और खासकर दीपू के लिए, दीपू तो सबको साथ दिया है, बड़ी बच्ची है उनको सब दोहा मालूम है। दोहा कैसे सीखती है दीपू, तुम कहाँ से सीखती है, कौन सिखाता है दीपू?
1: कौन सा सर?
0: राम सार सिखाते हैं और दोहा में पूरा प्रैक्टिस कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अच्छा, जोर से ताली बजा सभी के लिए, मास्टर के लिए। सर आइए सर, आपका ही नाम ले रहे थे। देखिए हमारा सर को स्वागत, जब से ताली बजा तो हमारा सर भी अपना आवाज रोक नहीं पाए और उनका पैर चल पड़ा हमारा प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि ऐसे होना चाहिए बच्चों का साथ। आज मैंने अभी पूछा इतना दोहा कैसे सीखें, तो आपका नाम ले रहे थे, मतलब बोले कहीं सर को बुलाओ, तो सब डर रहे थे आपको बुलाने के लिए, लेकिन आप आ गए, हमें खुशी है ना बच्चे। अभी सर को बुलाने के लिए हम बच्चों को

0: भेज रहे थे, बोले हम जाएंगे तो सारा में डांटे गए, ऐसे सुमन में ऐसे आ रहा था, तब आपका ताली बजा बोले तो बच्चे ताली जो बजा दिए बजाओ जो क्योंकि ताली बजाने में कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है, और चेहरा गोला फूल जैसे खिलता है और एक्सरसाइज हो जाता है, शारीरिक एक्सरसाइज होता है, और जो नींद जिसको आता है वो ताली जब बजता है तो नींद फिट जाता है और अपना जागृत अवस्था में आता है, और जैसे सर ताली जब सुने उसी कमरा से इस कमरा तक आ गए, क्योंकि ताली में मजा और ताली में खुशी मिलता है, ताली में स्वागत भी होता है। तो सर आपको स्वागत करते हैं अंतिम प्रस्तुति में, दोहा जो बच्चे गाए, क्या क्या दोहा गाए, सभी एक एक दोहा गाए सर, सभी को एक एक चांस मिला। अच्छा तुम कौन सा गाए ज्योति, तुम कौन सा दोहा बोला उसका?
1: तुलसी।
0: हाँ तुलसी, तुम आ जाओ, तुम कौन सा, सर को बताओ दोहा, इधर सर को बताओ, सर अभी सबका अर्थ बताएंगे।
1: लाली
2: लाली मेरे लाल की।
0: हाँ श्रवण तुम आओ,
2: श्रवण
0: श्रवण क्या बोला था,
2: नाम भी याद हो गया देखो।
0: हाँ श्रवण का नाम तो बहुत अच्छा है,
1: केशन
2: कहाँ भी गाड़ी हो,
0: जब ने क्या बोला था तुम,
1: पोती
3: पड़ पोती पड़ पड़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई।
0: सर ये सभी जो दोहा है क्यों बच्चों को सिखाते,
4: दोहा के अंदर जो क्या कि उनके सामाजिक जो वातावरण के अंदर जो बातचीत होती है उससे ज्ञान भी बढ़ता है और बच्चों को मालूम भी पड़ता है कि भाई कि दोहा के पीछे बहुत बड़ा राज खुला मिलता है अपन को। दोहा के हिसाब से अपन बच्चों को सिखाएंगे तो दोहा के अंदर जैसे कि अब साई इतना दीजिए जाम में कुटुंब समेत, तो अपने समाज के अंदर अपने कुटुंब है उसको किस प्रकार से मेंटेन करना है, जो अपन के पास में है उसके अंदर ही अपन को समावेश करना है। अपने ज्यादा अपन लेने की कोशिश करेंगे तो वो हाथ में है वो भी चला जाएगा, तो अपने पास में है उसको मिलजुल करके बांट करके खाओ।
0: क्या बात, कितना सीख भर का है, कबीर जी को कितना धन्यवाद दे, कबीर का दोहा आज भी प्रचलित है और उसको जो अमल करेंगे, छोटे छोटे दोहा है उसको जो अमल करेंगे।
4: केशन कहाँ बिगाड़ियो जहाँ मुंडियो सो बरता, अपने बालों ने क्या बिगाड़ा है जो अपन कंघी लेकर के बार बार इसको मोड़ते उधर उधर के, ऐसे नहीं बैठता था ऐसे बैठाते पानी लगा लगा करके, लेकिन अपने मन के अंदर तो विकार भरे हुए है, मन के अंदर तो जहर भरा हुआ है, तो उसको मिटाओ। बालों को मोड़ने से क्या नहीं, अपने शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है जो ये पांच नागिने हैं उन नागिनों को मारो।
0: अच्छा बात बात, कितना सुंदर दोहा, और बाल को सजाने में कुछ नहीं होगा, आंतरिक सजावट होना चाहिए।
4: जिस प्रकार से अपने बालों को संवारते हैं उसी प्रकार से अपने मन को भी संवारना है,
0: मन को बुद्धि को।
4: हाँ संस्कार अपन को इससे संस्कार मिलेंगे और अपने समाज के अंदर भी अपना नाम होगा कि बच्चा कितना छोटा बच्चा है लेकिन उसके अंदर व्यवहारिकता कितनी अच्छी है।
0: मन बल बुद्धि बल संस्कार बल, ये तीनों बल को रखेंगे तो मन बुद्धि संस्कार से हम अच्छा बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर सभी का दोहा आपको याद है? हाँ। और हमारा गंगा कौन सा दोहा सुनाए थे,
4: पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। देखो अपन ये अपने पेड़ के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं जैसे ये छोटा कोपेला निकलता है तो वो उस डाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होता होता होता बड़ा हो जाएगा, फिर उसके अंदर बुढ़ापा आ जाएगा यानी पीला पड़ जाएगा और वो हवा का झोंका आएगा, फिर उस डाल से उसको तोड़ करके वो दूसरी चला दूर पड़ा जाएगा,
0: मतलब परिवर्तन होते रहे।
4: ठीक है, अपना शरीर है उसके अंदर भी परिवर्तन है, अपन छोटे थे और धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े जवान हो गए, जवान से बाद में बुढ़े हो गए, फिर अपन को लाठी पकड़नी पड़ेगी और फिर अपन भगवान में लीन हो जाएंगे।
0: सभी का दोहा में बहुत सार, सही में इसमें थोड़ा जैसे सार ने बताया ऐसे जीवन में सामाजिक जो मुद्दा है जो हर रोज हम करते हैं वो सबको करेंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे और एक दोहा में बहुत कुछ सीख मिलता है,
2: दोहा के अंदर बहुत सीख है।
0: सीख है तो इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सर तो पूरा मनन चिंतन कर बच्चों को पढ़ाते और आत्मसात कराने के लिए जितना हो सके वो कराते, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के लिए हम तत्पर रहते, क्योंकि ये बच्चे जाकर भारत का नाम रोशन का भविष्य है। ये बच्चे कभी कोई मालूम नहीं, अभी ये कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई सरपंच, कोई अच्छा किसान भी बन सकता है जो कि देश को अन्न भी चाहिए ना, सभी लोग मान नौकरी करेंगे तो हमको अनाज कौन देगा,
2: इसलिए तो अपना किसान
0: है। इसके बाद
4: किसान नहीं होगा तो खेती होगी भी नहीं। ठीक है, खेती होगी नहीं, पैदावार होगी नहीं तो अपन कहाँ से खाएंगे। हाँ
0: किसान नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े दिमाग रहेगा तो हम किसान में भी अच्छा किसान बनकर हमारा भारत को अच्छा
2: विकास
0: की ओर ले पाएंगे, क्योंकि किसान जो राज ऋषि जो होता है प्रगति में अच्छा से पैदावार करेंगे तो अच्छा अच्छा स्वादिष्ट फल मिलेगा, कोई जहरीला रासायनिक पदार्थ से निकला हुआ अनाज नहीं कराएंगे, पूरा जैविक खेती होगा, योगिक खेती होगा, शाश्वत खेती होगा, तो खेती में पुष्टिसार पौष्टिक खाद्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर को भी धन्यवाद देते हैं सर इस तरह प्रोग्राम में आज रेडियो मधुबन पहुंचा। कभी ब्रह्मा कुमारी और रेडियो मधुबन जानते सर आप अपना परिचय दीजिए।
5: मेरा नाम विष्णु दास है और मैं इस स्कूल में पहले विद्यार्थी मित्र था।
0: धन्यवाद, आज का कार्यक्रम हमारा हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो गया क्योंकि गुलदस्ता बन गया सभी का आवाज। सर को भी पीछे नहीं रखे, सभी का आवाज और बच्चों का आवाज है ना, सबको अच्छा लगा बच्चे? हाँ जी बोलो। हाँ जी हाँ, बच्चों का अंदर में जुनून है, जोश है और उमंग उत्साह है, इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हमें खुशी है क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मंदिर में गीत गाएंगे, लेकिन आज सभी का साथ दिए हैं, सबका विकास हो ये हमारा भावना है। तो सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था आज के प्राथमिक विद्यालय डुबानाड़ी सांगवाड़ा।

नमस्कार आदाब, केम छो किकेन हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और केवल, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, जहां होती है हर धड़कन आपके हम कदम। दोस्तों, आज है 20 मई, हफ्ते के बीच का दिन यानी बुधवार। अब संडे दूर है और मंडे की थकान पीछे छूट चुकी है, तो बॉस आज के मूड तो एकदम मस्ती वाला होना चाहिए। इसलिए आज आपके शो खुशी के नगमे दिल की बातें में हम और आप मिलकर करने वाले ढेर सारी मीठी मीठी बातें।

शो की शुरुआत करते हैं गोल्डन एरा के एक ऐसे सदाबहार और झूमने वाले गाने के साथ जिसे सुनकर आपके पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। सुनिए एक बेहतरीन नगमा और बने रहिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 FM के साथ। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे

0: उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ. वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स. ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं. उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.

दोस्तों ये गाना सुनकर कितनों को अपने बचपन की वो यादें आने लगी कि बचपन का वो प्यार याद आ गया, स्कूल की वो मीठी भाग दौड़, स्कूल छूटने के बाद की वो मोहब्बत, उनसे मिलने की, दोस्तों से मिलने की वो मचमचाहट जिसे हम कह सकते हैं, कितनों को वो याद आ गई। जल्दी से कॉल उठाए, हमें बताइए अपने बचपन की वो राज हमारे साथ खोलिए। जी हाँ, बहुत ही प्यारा, अभी हमने ये गाना सुना, फिल्म थी बैजू बावरा, गीतकार थे इसके शकील बदायूनी, इसे आवाज़ दी थी हमारे लता मंगेशकर जी ने, और इसका जो संगीतकार थे नौशद जी थे। जी हाँ, यानी कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे नौशद थे। बहुत ही प्यारा गीत है। कई बार जब भी हम ऐसी कोई जगह पे होते हैं जहाँ पे मतलब ये गाने के जो बोल है बहुत ही ऊंधा है, कभी भी कोई ऐसी प्यार वाली चीज़ें हो जाती है या बचपन की कुछ चीज़ें आ जाती, तो ये गाना सबसे पहले लबों पर आता है। जी हाँ, फिल्म में ये जो गाना है तब आता है जब बचपन के प्रेमी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये गीत एक मासूम वादे और जुदाई के गहरे दर्द को बयां करता है। वैसे इस गाने को सुनकर बचपन का वो प्यार तो याद आ ही गया। वैसे आज रेडियो मधुबन की स्टूडियो में बैठकर मैं सोच रहा था कि हम सब रोज़ कितनी भागदौड़ करते हैं, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की टेंशन, कभी किसी और चीज़ की, कभी कभी काम का प्रेशर इतना हो जाता है, लेकिन इस सब के बीच में हम वो छोटी छोटी खुशियाँ भूल जाते हैं जो मुफ्त में मिलती है, जैसे दोस्तों के साथ बिना वजह की चाय पर गपशप, या फिर बचपन की कोई पुरानी यादें। जी हाँ, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसी कौन सी छोटी सी चीज़ है जो आपके चेहरे पर तुरंत 32 दांतों वाली मुस्कान ले आती है। मुझे तुरंत मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए, आपको पता है नंबर 9414151415। आज एक और प्रश्न की भी बात है, एक और सवाल है, तब तक दिल को थोड़ा और खुश करते हैं और सुनते हैं ये अगला नगमा, जो कि अगला नगमा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको ये पहली है, ये एक क्वेश्चन के रूप में ये मैं गाना सुनाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा गाना सुनाऊंगा। जी हाँ, टेस्ट होगा आपकी यादों का और पुरानी फिल्मों के आपके ज्ञान का। तो आपको फ़ोन उठाना है और आपको तुरंत उंगलियां घुमा करके हमें कॉल करना है। नंबर है 9414151415, 9414151415, 9414151415 पे। चलिए सुनिए ये अगला गाना, और गाने को सुन के बताइए कि ये गाना किसने गाया है। इस गाने को जिसने गाया है आपको उसका नाम बताना है, और जो सबसे पहले इसका नाम बताएगा उसके नाम को हम अगले लिंक में, यानी कि अगला जो गाना होगा उसमें हम बताएंगे। तो हो जाए शुरू, रेडी है आप सभी गाना सुनने के लिए? तो चलिए सुनते हैं ये अगला गाना।

दोस्तों आशा करते हैं कि आपने ये गाने के जो बोल है या जो गाना है आपने ठीक से सुना है और इसके इसे जिसने गाया है उसका नाम आपके दिमाग में आ गया है। तो जल्दी से फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए 9414151415 पे, यानी कि 9414151415 पे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, यानी कि अगला जो गाना है ये कोई पहली नहीं है, ये हम आपके लिए सुना रहे हैं बहुत ही प्यारा गीता दत्त जी की आवाज़ में, मोहब्बत कर लो जी भर लो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: मोहब्बत कर लो जी भर लो, अजी किसने रोका है।
1: ये चेतावनी और निमंत्रण दोनों है। कहते हैं कि प्यार करने की मनाही नहीं है, आप दिल खोल कर मोहब्बत करो, लेकिन याद रहे ये एहसास जितना खूबसूरत है उतना ही दिल तोड़ने या धोखे मिलने वाला है, खतरा भी उतना ही ज़्यादा है। इसकी एक और पंक्ति है, शिकायत कर लो जी भर लो, अजी किसने रोका है। हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। अगर आप प्यार में चोट लगी है, अगर आपको प्यार में चोट लगी है, तो आप दुनिया से या अपनी किस्मत से जितना चाहे शिकायत करें, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, यह पूरी दुनिया ही मायावी है, अविश्वसनीय है। अगर आप पूर्ण शांति चाहते हैं तो इस सांसारिक उम्मीदों को छोड़ना एकमात्र। इस तरह से कुछ पंक्तियाँ इस गाने में छुपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म थी आर पार, इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे ओपी नैयर जी, लिरिक्स यानी कि जिसने लिखा है मजरूल सुल्तानपुरी जी, और गीता दत्त की इसमें प्यारी सी आवाज़ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। ये भी बहुत ही प्यारा नगमा है,

अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, है ना दोस्तों। कई बार ऐसा मन होता है ना कि पंछी बन के उड़ जाए कहीं फिर मस्त गगन में। बहुत सी हमारे जो भी हम कारोबार करते हैं या कई चीज़ें ऐसी होती जब हम थक जाते हैं किसी चीज़ से, फिर मन होता है कि यार आज तो मैं एकदम फ्री बर्ड हो जाओ, फ्री बर्ड करके उड़ने लगूँ, बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ करके आज़ाद हो जाओ दुनिया के चमन से, है ना। कई बार ऐसा होता है। तो आपको भी कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, से अगर हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9414151415 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और बताइए। अभी जो हमने गाना सुना फिर से वही शंकर जयकिशन साहब जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मूवी थी चोरी चोरी, और इसका जो आवाज़ दी थी हमारी स्पेशल लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी जी ने इसे लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, और जो अगला नगमा है वो हम सुनने वाले हैं। इसके बारे में आपको कुछ बताऊँ कि ये जो खास सफ़र आज हम आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब एक नौजवान अपनी गर्दन झटक कर और आँखों में शरारत लेकर पर्दे पर आया तो पूरा हिंदुस्तान एक दिल धड़का उठा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ याहू, जी हाँ, शम्मी कपूर साहब की। तो अगला ये जो गाना है शम्मी कपूर साहब के ऊपर फिल्माया गया है, चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

टोपी लाल, हाथ में रेशम का रूमाल, हो तेरा क्या कहना। जी हाँ दोस्तों, ये गाने आज तो हमारे शेड्यूलर ने जो भी गाने लगाए हैं, बड़े ही अलग अलग किस्म के, फास्ट ट्रैक, स्लो ट्रैक, बचपन की यादें, प्यार को भूलना या प्यार याद आना, ऐसे प्यारे प्यारे गाने लगाए। और अब ये जो लगाए, गोरे गोरे गाल, गाल पे उलझे उलझे बाल, ओह तेरा क्या कहना। जी हाँ दोस्तों, उस बचपन के प्यार की अगर हम याद करते हैं तो फिर ये जब उस चेहरे को सामने देखते हो, चेहरा सामने देखने के बाद ऐसा ही नज़र आता है। जी हाँ, और इस गाने की एक खास बात और है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस मनो क्या कहते हैं मन मौजूदपन और मस्ती के साथ इस गाने को गाया है, वो आज भी सुनने वाले के पैरों के थिरकने को, पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। और ओपी नैयर साहब का वो मशहूर रिदम, वाह लगता है जैसे कोई बग्गी सड़क पर दौड़ी। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो इस गाने की म्यूजिक पे तो हाँ सही में ऐसा लगता है जैसे पीछे वो बग्गी दौड़ रही, तबड़क तबड़क तबड़क ऐसा आवाज़, मतलब इस टाइप का कुछ धुन है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग अभी हमने सुना। दोस्तों कॉल के लिए मैं चाहता हूँ माफ़ी आप सभी से, अभी मेरा ध्यान गया है हमारे कॉल की तरफ, फिर से कुछ मिस्टेक आई है फ़ोन में, जिस वजह से मुझे लग रहा है आप लोग मुझे कॉल नहीं कर पा रहे, हमें कॉल नहीं कर पा रहे, और हमारा जो भी सवाल था वो पेंडिंग रह गया है। बट बेशक इस जो पहली हमने बात की थी, पहली को हमने जो सुनने की बात हुई थी, वो ज़रूर से हम इसका जवाब देंगे, लेकिन आज नहीं। हम चाहते हैं कि आप इसी पहली को अपने पास रखें, अगले मंडे को जब हम मिलेंगे तब आप इस पहली का उत्तर हमें दें, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, बिकॉज अगला जो नगमा है किशोर कुमार साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारा नगमा है। जी हाँ, आपको इसके बोल थोड़े से मैं सुना दूँ, अगर आपको याद आ जाए वो गाने की बोल। दिल दे दूँ है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे कोई नहीं है देने वाला। जी हाँ, इना मीना डिका डे डाए डामा डिगा। चलिए सुनते ही अगला प्यारा समस्ती भरा गाना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। ये गाना देखते ही या सुनते ही दिमाग में सबसे पहले किशोर कुमार की वो एनर्जेटिक आवाज़ और उनका बेमिसाल अंदाज गूंजने लगता है। जी हाँ, फिल्म आशा का ये गाना इना मीना डी का इंडियन सिनेमा के सबसे पहले और सबसे मशहूर रॉक एंड रोल गीतों में से एक है। जी हाँ, इस गाने से गाने की जो शुरुआत में जो गिब्रिश वर्ड है, यानी कि ये जो इना मीना डी का जो यूज़ किया हुआ है, वो दरअसल स्केट सिंगिंग से प्रेरित है। कहा जाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और वहाँ से उन्हें ये शब्द सूझा, इना मीना डी का डे डाए डामा डी का। किशोर कुमार जी ने इस गाने में जो एनर्जी भरी थी वो उस दौर में बिल्कुल नहीं थी। स्क्रीन पर उनका डांस और एक्सप्रेशन इतना नेचुरल था कि आज भी ये गाना फ्रेश लगता है। उन्होंने इसे इतनी शिद्दत से गाया था कि रिकॉर्ड करते वक्त वो थक कर चूर हो गए थे। या इसमें एक दो चीज़ और है इस गाने में कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में इस गाने के दो वर्जन थे, एक था मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन था। फीमेल वर्जन जो था वो हमारी प्यारी आशा भोसले जी ने गाया था और उन्होंने दोनों ने जो किशोर कुमार जी का और आशा भोसले जी ने जो दोनों ने गाया था उसमें किशोर कुमार जी की आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हुआ था, लेकिन जो दोनों गायकों ने जो गाया है वो अपने ज़माने में बहुत ही बेहतरीन वे में गाया है। और एक चीज़ और है कि दोस्तों 1950 यानी कि 1950 के उस दौर में जब ज़्यादातर गाने शायद क्लासिकल बेस पर होते थे, तब सी रामचंद्र ने वेस्टर्न म्यूजिक का तड़का लगाकर बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू किया। जी हाँ, ये गाना उस वक्त के यूथ के लिए एक एंथम बन गया था क्योंकि इसमें जो रॉक एंड रोल यानी कि रॉक एंड रोल वाला जो आप अभी भी हम कभी भी ये गाना सुनते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो गाने सुनना मतलब वो गाने के बोल में थिरकना शुरू हो जाता है या वो राउंड राउंड घूमना शुरू हो जाता है लिरिक्स के साथ। वो हम एक किसी को साथ में पकड़ के उसको हाथ पकड़ के उसके साथ घूमना गोल गोल घूमना ये तो म्यूज़िक के सुनते साथ में ही हो जाता था। और इसमें जो सादगी थी, शैलेंद्र जी ने लिरिक्स लिखे थे दिल दे दूँ है कोई लेने वाला इससे में एक मासूमियत और मस्ती दोनों झलकती है, किशोर दा के व्यक्तित्व पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, तो ये थी इस गाने के बारे में कुछ बातें। समय है अगले गाने की ओर बढ़ने का। अगला जो गाना है उसके बोल है तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, चलिए सुनते हैं ये अगला प्यारा सा नगमा।

क्या प्यारा गाना है ना। पुराने गानों की बात ही एक और थी, किसी की तारीफ करना हो या किसी को अपने प्यार के बारे में बताना हो कि हम आपसे प्यार करते हैं, उसकी तारीफ में कुछ जो शब्द लिखने हो, तो ये शब्द कितने प्यारे हैं ना। यूं तो हमने लाखों हंसी देखे है, तुमसा नहीं देखा हो, तुमसा नहीं देखा, उफ़ी नज़र उफ़ी अदा, कौन है अब होगा फिदा, है ना। कितनी प्यारी बातें हैं। इस गाने की धुन ओपी नैयर ने बनाई थी, ओपी नैयर साहब ने बनाई थी। उनकी खास पहचान थी द रिदम किंग, उन्हें रिदम किंग के नाम से जाना जाता था। इस गाने में उनकी एक सिग्नेचर टांगा बेस्ट यानी कि घोड़े बागी की रफ्तार जैसी धुन महसूस कर सकते हैं, जो सुनते हैं पैर थिरकने पर मजबूर कर देती है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया कि ऐसा लगता है मानो शम्मी कपूर खुद गा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि शम्मी कपूर साहब खुद गा रहे थे। जी हम एक कहते थे कि रफ़ी साहब उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते थे और रिकॉर्डिंग के वक्त वैसे ही एक्सप्रेशन देते थे जैसे शम्मी कपूर साहब स्क्रीन पर देने वाले हैं। इसमें कुछ बोल भी है, जुल्फे है या बदलिया, आंखें हैं या बिजलियाँ। मजरू साहब ने जब इसे लिखा था कि अल्फाज है कि तारीफ करने का सबसे सटीक और फिल्मी तरीका बन गया। आज भी जब कोई किसी की खूबसूरती की तारीफ करता है तो ये लाइन दिमाग में ज़रूर से आती है। और एक और बात, इस मूवी में जो हीरोइन यानी कि जिन अदाकारा जो थी, अमिता नाम था उनका, इस गाने में एक्ट्रेस की सादगी और शम्मी कपूर साहब की वो शरारत का जो मेल है, वो 1950s के ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का सबसे हसीन नज़ारा पेश करता है। एक और बात है कि इस फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन ने पहले ये रोल देवानंद जी को ऑफर किया था, लेकिन उनके मना करने के बाद ये शम्मी कपूर के पास आई और इतिहास बन गई, है ना दोस्तों। बहुत प्यारी प्यारी दिलचस्प बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की और, बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए वेट कर रहा है। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।
1: आशा भोसले साहब, आशा भोसले जी और शमशाद बेगम जी की आवाज़ में हमने बहुत ही प्यारा गाना सुना। फिल्म है नया दौर, गीतकार थे साहिर लुधियानवी जी और इसे जो डायरेक्ट किया था ओपी नैयर साहब जी ने किया था। तो दोस्तों अभी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन लाइन पे है दो बैक टू बैक गाने जो कि हमारी फरमाइशों में से भी एक है और मेरे भी बहुत ही करीब है ये गाना, मेरे दिल के बड़ा प्यारा करीब है ये गाना। तो सुनते हैं ये गाना और हम आपसे लेते हैं विदाई। फिर मिलेंगे आपसे अगले मंडे को, तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ और यूं ही रेडियो को देते रहे अपना प्यार। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: हेलो बच्चों, चलो चलो बैठो रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं सपनों की सैर कार्यक्रम को लेकर के।
1: हाँ बच्चों, और पिछली कड़ी में हमने बहुत सारी बातें की है हमारी सूर्य चाचा के बारे में, है ना, कि सूर्य जो है वो बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, पौधों को भी भोजन बनाने में मदद करता है और मनुष्य भी सूर्य की किरणों से बिजली बना सकता है, तो है ना ये काम की बात।
0: हाँ बच्चों, विटामिन डी मिलता है, पौधे भोजन बनाते हैं, कितना सारा काम सूरज दादा करते हैं। तो चलो मनी दीदी, आज हम खेलते हैं फिर से छोटा सा खेल।
1: हाँ, सही या गलत का तो आपको बताना है कि हमारा प्रश्न का जवाब सही होगा या गलत। तो पहला प्रश्न है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है?
0: सही।
1: दूसरा है, धूप हमारे लिए हानिकारक ही होती है?
0: गलत।
1: तो वैसे बच्चों, अधिक धूप हानिकारक हो सकती है पर संतुलित धूप जरूरी है। अब गर्मी के मौसम में आप दोपहर को 12 बजे धूप खाने निकलो तो गलत बात होगी ना। तो अधिक धूप तो हानिकारक है, लेकिन सुबह की ठंडी ठंडी धूप के 10 बजे तक की धूप बहुत अच्छी है। अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न है, सोलर ऊर्जा से बिजली बन सकती है?
0: बिल्कुल सही मनी दीदी।
1: बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलो अब लगाएं नारा,
0: सूरज की शक्ति अपनाएं,
1: स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाएं।
2: सूरज की शक्ति अपनाएं, स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाएं।
1: तो ये हमारा था नारा, अब लेते हैं सामूहिक शपथ।
0: बच्चों अपना दाहिना हाथ आगे करो और चलो हमारे साथ रिपीट करो। मैं वचन देता हूँ, देती हूँ कि,
1: मैं वचन देती हूँ कि,
0: ऊर्जा की बचत करूँगा, करूँगी,
1: ऊर्जा की बचत करूँगी,
0: प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करूँगा, करूँगी,
1: प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करूँगी,
0: और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने में सहयोग दूंगा, दूंगी,
1: स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने में सहयोग दूंगी।
0: तो देखा बच्चों, ये था सूरज के बारे में उसका महत्व। सूरज तो हर दिन बिना थके हमें रोशनी देता है ना बच्चों?
1: हाँ, तो हमें भी उसकी तरह ऊर्जा से भरपूर और सकारात्मक बनना चाहिए।
0: इसी उज्जवल संदेश के साथ बच्चों, चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
1: सपनों की सैर को।
3: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा मोहम्मद सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए, तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सा मार्गदर्शन मिलो है। और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि आपने जो भी काम आप करा मन लगाता करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाना। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: बच्चों आ जाओ बैठो रेडियो के पास, परी आ गई है इस गाने के बाद। आज आपको मूर्ख और ठग की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक मूर्ख आदमी रहता था। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो लाख चतुर बनने की कोशिश करता, लेकिन बच्चों कोई न कोई उसे मूर्ख जरूर बना देता था। एक दिन क्या हुआ पता है? अपने घोड़े और बकरी बेचने बाजार वो जा रहा था तो घोड़े पर सवार था उसने बकरी के गले में घंटी बांध के रखी थी। रस्सी का एक हिस्सा बकरी के गले में और दूसरा हिस्सा घोड़े की पूछ से बांध के रखा था। मूर्ख को जानने वाले कुछ ठग उसका पीछा कर रहे थे। उसमें से एक ठग ने बकरी के गले से घंटी खोलकर घोड़े की पूछ में बांध दी। इसके बाद बकरी को लेकर वो रफू चक्कर हो गए। घोड़े की पूंछ पर बंधी घंटी बजती रही और मूर्ख यही समझता रहा कि बकरी उसके पीछे पीछे आ रही है। बच्चों, थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग आया। उसने मूर्ख को रोककर पूछा, भाई साहब, आपने अपने घोड़े की पूंछ में घंटी क्यों बांध रखी है? तो मूर्ख ने जब पीछे देखा, बच्चों, बकरी तो थी नहीं। उसको तो बड़ा आश्चर्य लगा। और तभी तीसरा ठगा पहुंचा। उसने कहा, मैंने अभी देखा एक आदमी तुम्हारी बकरी को लिए भाग रहा था। अगर तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो तो मैं उसका पीछा करके तुम्हारी बकरी लेकर आ जाता हूँ। बच्चों, मूर्ख ने तो तुरंत घोड़े पर से उतरकर उस तीसरे ठग को घोड़ा उसके हवाले कर दिया। वो मूर्ख को चिढ़ाता हुआ घोड़े को लेकर सरपट भाग गया। बेचारा मूर्ख बहुत देर तक अपने पशुओं को पाने के इंतजार करता रहा, पर जब वो राह देखते देखते थक गया तो ठग तो लौटकर आए ही नहीं। बच्चों, फिर तो दूर कहीं घंटी बजती रही और तीनों ठग गाते रहे, घंटी घंटी बजती रहो, रातों दिन गाती रहो, जीवन एक खेल है सुनहरा। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मूर्ख की तकदीर कभी लंबे समय तक उसका साथ नहीं देती। इसीलिए बच्चों, हमेशा कुछ भी काम करो तो अपनी बुद्धि से करना, समझदारी से करना, नहीं समझ में आए तो बड़ों से पूछ कर करना, ठीक है ना? तो चलो सुनते हैं अब प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की

चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है और व्यक्ति परिवेश और परिधान के शीर्षक की हम तेनाली रामा की किताब से कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें तेनाली रामा को सिद्ध करना है कि उचित अवसर पर उचित परिधान आवश्यक होता ही है, क्योंकि सभा सदों का कहना था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है न कि उसके परिधान। तो तेनाली रामा को उचित अवसर भी मिला हुआ है, महाराज के महल में उनके पिताश्री की 100वें जन्म दिवस था, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो आगे क्या हुआ चलो चलो मैं आपको बिना देर किए पढ़कर सुनाती हूँ। अब महाराज के घर में तो अतिथियों का आगमन लगा ही हुआ था और महाराज स्वयं अतिथियों को आसन ग्रहण करने के लिए उनके लिए निर्धारित आसनों की ओर इंगित कर रहे थे। सभी आसन भर चुके थे, मात्र तेनाली राम का ही आसन रिक्त था। बार बार महाराज उस रिक्त आसन की ओर देखते और फिर प्रवेश द्वार की ओर उनकी दृष्टि जाती। मन ही मन महाराज को तेनाली राम की अनुपस्थिति उत्तेजित कर रही थी। वे सोच रहे थे कितना ढीठ है यह तेनाली राम, उसे यह ज्ञान है कि भोजन किसके सानिध्य में करना है, फिर भी वह निर्धारित समय पर नहीं आया। लेकिन मन में उठते आक्रोश को पी जाने के अलावा महाराज कर भी क्या सकते थे। वहां उपस्थित सभासदों को तेनाली राम की अनुपस्थिति से उसके विरुद्ध आग उगलने का अवसर मिल गया। वे आपस में तेनाली राम की अनुपस्थिति का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता तेनाली राम अपनी पगड़ी की तहें सजाने में लगा होगा, तो कोई कहता अरे भाई तेनाली राम अपनी रेशमी धोती का फेटा कसने में लगा होगा, फेटा कस ले तो आएगा। और इस तरह की बातें खत्म भी नहीं हो पा रही थी और सभी ही करते रहे थे। अंततः तेनाली राम ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया। सचमुच बहुत आकर्षक परिधान में सजा धजा था तेनाली राम। महाराज ने उसकी ओर आग्नेय दृष्टि से देखा मगर कुछ कहा नहीं। दृष्टि मात्र से ही उन्होंने तेनाली राम के प्रति अपना आक्रोश अभिव्यक्त कर दिया। बड़े और सामर्थ्यवान लोग परिस्थिति विशेष में अपने जो अंदर के भाव होते हैं वो आंखों के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, और महाराज के मनोभावों को समझते हुए तेनाली राम ने महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा महाराज क्षमा करें, यहाँ पर समय पर उपस्थित नहीं हो पाया। तो बच्चों चलो भाई अब तेनाली राम पहुंच ही गए हैं, अब आगे जरूर कुछ न कुछ तो खास होने वाला है, तो क्या होगा खास वो हम जानेंगे अगली कड़ी में। चलिए तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपना।

0: इतनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी। आखिर हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर तो पहुंच ही गए हैं, और आज हमने बहुत सारी जानकारी भी ली, प्रतिज्ञा भी की, और किताबें भी पढ़ी, कहानियां भी सुनी। अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जानना है ना, और बहुत रंगीन सा जवाब है जो पिछली कड़ी में परी ने सवाल पूछा था। हाँ परी, तो पिछली कड़ी में क्या पूछा था आपने?
2: पिछली कड़ी में हमने पूछा था, पंख फैलाकर उड़ता आसमान, रंग बिरंगे दिखे जहान, फूलों पर बैठकर रस पीती, बताओ वो कौन है?
1: और बच्चों, सही जवाब है तितली। तितली रानी, तितली रानी बड़ी सयानी। तो बच्चों को उसके पीछे पीछे भागने में, दौड़ने में, खेलने में मजा आता है ना?
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो जल्दी से नोट कर लो आज की पहेली। पानी में रहती मोती बनाती, सीप के अंदर छिप जाती, समुद्र भी समुद्र की ये अनमोल निशानी, बताओ कौन है पानी की रानी?
1: हाँ बच्चों, अब पानी में रहती है और सीप के अंदर रहती है और मोती बनाती है, तो बच्चों और समुद्र की ये निशानी है क्योंकि ये है पानी की रानी। तो समझ गए होगे, इस प्रश्न में ही सही इसका जवाब छिपा हुआ है। तो सही जवाब हमें 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज देना।
2: हाँ बच्चों, तो चलो अब करते हैं गुड नाइट, लेकिन उसके पहले करो परमात्मा को गुड नाइट और थैंक यू।
1: हाँ, रात की खामोशी में भी एक सुकून है, चांद तारों में छिपा कोई जुनून है,
2: सो जाओ मीठे सपनों के साथ, क्योंकि हर रात में एक नया सवेरा जुनून है।
1: गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय।
2: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। विचार पर करेंगे विचार और नुस्खों का देंगे जरूर साथ। खुशनुमा जीवन की करेंगे बात तो नई नई व्यंजन भी बनाएंगे साथ। और प्रश्न पूछने वाली हूँ आज, प्रश्न का जवाब दे सकते हो। हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। तो आइए सुनते हैं कि पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: ओए रुक, ओए रुक रुक रुक रुक, पीछे पीछे पीछे चल। ओए स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना एक कला है। लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि बहुत समय की बात है, एक बहुत धनवान राजा था। उसका नाम था मिडास। धनवान होने पर भी वे संतुष्ट बिल्कुल नहीं था। उसे पैसे और सोने का बहुत ही अधिक लालच था। एक दिन उसके सपने में एक परी आई। वह जाग उठा। उसने देखा कि वह परी उसके सामने खड़ी है। अपने बिस्तर से उठकर के राजा परी के चरणों में गिर गया। उसने परी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप कितनी सुंदर हो, मैंने सुना है कि परियां मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परी मुस्कुराते हुए बोली, हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। राजा को कुछ समय तक तो समझ में ही नहीं आया कि वह क्या मांगे। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा कि हे परी, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं जिस चीज को भी छूं वह सोना बन जाए। परी ने राजे की इच्छा पूर्ण कर दी। धीरे से राजा एक पत्थर के पास गया। राजा ने अपना हाथ जब पत्थर को लगाया तो पत्थर सोना बन गया। राजा तो जैसे खुशी से नाचने लगा। राजा ने एक फूल को देखा, उसे छुआ तो वह भी सोना बन गया। राजा अपने बगीचे में जाकर के सब फूल पौधों को छूने लगा। वह जिसे भी छूता वह सोने में परिवर्तित हो जाता। राजा तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे भूख लगी तब उसने फल और पानी मंगवाया और जब खाने के लिए हाथ लगाया तो फल सोने में बदल गए। पानी के जग को छूते ही वह भी सोना हो गया। राजा अब न कुछ खा सकता था न ही पी सकता था। अपनी मूर्खता पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। राजा को दुखी देख करके राजा की बेटी उसके पास आई तो राजा ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा तो वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया। पश्चाताप के आंसुओं में राजा जब डूबा हुआ था तब वही परी उसके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो गई। उसने कहा, हे राजन, मैंने तो सोचा कि आप बहुत खुश होंगे, लेकिन आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्या आपको मिली हुई शक्ति से आप खुश नहीं हैं? क्या आपको और कुछ चाहिए? तब राजा ने परी के पांव पकड़े और माफी मांगते हुए कहा, कृपया आप यह शक्ति वापस ले लीजिए और मुझे मेरी बेटी तथा मेरा सामान्य जीवन वापस दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है और आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, अपना धन गरीबों में बांटूंगा। ये सुनकर के परी ने अपनी दी हुई शक्ति वापस ले ली। राजा बहुत खुश हो गया और सदा के लिए उसने सोने के प्रति अपने लालच को छोड़ दिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि लोभ सदा हानि पहुंचाता है, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बनके दीपक जलता
2: चल। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। छाती का दर्द हो, पसली का चलना हो, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो बहुत ही अच्छा आपको नुस्खे देने वाली हूँ कि अजवाइन एक चम्मच आप 250 ग्राम पानी में उबालिए, ठीक है। एक चौथाई भाग रह जाए फिर आप इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में 2 बार इस तरह आपको पीना है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द खत्म हो जाएगा और काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर नुस्खा है, फिर से दोहरा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अजवाइन एक चम्मच 250 ग्राम पानी लीजिए और उसमें डाल करके उबालिए। फिर एक चौथाई रह जाए तो इस काढ़े को छान करके रात को सोते समय गरम गरम पी करके ओढ़ करके सो जाइए। दिन में इस तरह आपको 2 बार पीना है, ठीक है। इससे 5-7 दिन में छाती का दर्द ठीक हो जाएगा और ये काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा से दिन में 2 बार निरंतर कुछ दिन तक लेने से पसली का चलना भी ठीक हो जाएगा। अगर आप 6 महीने से लेकर के 12 महीने के आयु वाले छोटे बच्चे को ठंडे मौसम व ठंडी हवा के कारण सर्दी लग जाए, छाती में कब बोले, छाती में दर्द हो या पसली चले, तो आधा कप पानी में 10-12 दाने अजवाइन के डाल करके उबालिए। बड़ों के लिए आपने सुना है, अभी बच्चों के लिए दे रही हूँ। 6 महीने से 12 महीने वाले जो साल भर के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। 10-12 दाने अजवाइन के डालिए और उबालिए। आधा रहने पर इसे कपड़े से छान लीजिए और ये अजवाइन पर काढ़ा, थोड़ा सा ये जो अजवाइन का काढ़ा बनाया है, थोड़ा सा गरम गरम पर सहता सहता, ऐसे नहीं कि एकदम गरम, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए सहता सहता एकदम नवसेका हो जाए ना कि बच्चे को अब पिलाने की स्थिति में है ये काढ़ा, तब पिलाइएगा। गरम गरम एकदम जलता हुआ नहीं देना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर आप कहेंगे उषा दीदी ने कहा है कि गर्मा गर्म देना। अरे भाई, अब बड़े तो हम पी सकते हैं थोड़ा सा गर्म, चाय दूध कैसे पीते हैं, गरम गरम पीते हैं ना, इस तरह काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं पी सकते हैं, इसलिए बच्चों को बच्चे के हिसाब से नवसेका देना है दिन में 2 बार, ठीक है, और रात में सोने से पहले देना है और सुबह देना है। दिन में 1-2 बार दे सकते हैं, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर होगा। तो इस तरह बच्चों को भी सर्दी जुकाम या पसली, छाती में दर्द जो भी है, उसमें आप इस अजवाइन के काढ़े को दे सकते हो। साथ ही अजवाइन का काढ़ा यकृत, तिल्ली, हिचकी, वमन, मिचली, फिर खट्टी डकारे आना, पेट की गुड़गुड़ाहट, इन सभी समस्याओं में भी ये फायदा करता है। तो कहते ना कि एक वस्तु और फायदे अनेक, तो ज़रूर आप आजमा सकते हैं। अगर दमा है, दमा की शिकायत है, तो सुहागा का फुल्ला और मूलहटी को अलग अलग खरल या फिर इसको कूट पीस करके कपड़ छन कर दीजिए और मैदे की तरह बारीक इसका चूर्ण बना लेना है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी बोतल में कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। बस सांस खांसी जुकाम के ये सफल दवा है। अब इसको आप कैसे लेंगे, तो आप क्या करेंगे, साधारण मात्रा 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गर्म जल के साथ लेना है, ठीक है। बच्चों के लिए आप 0.5 ग्राम माने रत्ती भर की मात्रा आप आयु के अनुसार दे दीजिए। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बड़े हैं तो मात्रा को बढ़ा दीजिए, बच्चे हैं तो रत्ती भर ही दीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ कि सुहागा का फुल्ला और मूलहटी, इनको अलग अलग खरल या फिर खरल में बांटिए या हमारदस्ते में कूट पीस करके कपड़ छन करके मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों औषधियों को बरोबर वजन मिला करके किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख दीजिए। बस सांस खांसी जुकाम इन सब के लिए ये सफल दवा है। लेना कैसे है जो आपको बता रही हूँ कि साधारण मात्रा आधा ग्राम से एक ग्राम तक दवा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चाटिए या गर्म जल के साथ लीजिएगा। और बच्चों के लिए एक रत्ती, ठीक है, मात्रा आयु के अनुसार इसी तरह देना है। परहेज में दही, केला, चावल, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे ही नुस्खे फायदेमंद है और आप चाहो तो आजमा सकते हो। अब आइए ले लेते हैं एक अल्प विराम, पुनः लौट करके आ रही हूँ, फिर आपको मैं प्रश्न भी पूछूंगी, खुशनुमा जीवन की बातें भी आपके साथ करेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: देंगे। तो ये आज का प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। बहुत ही सरल प्रश्न है और अगर आप जवाब देंगे तो साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यह कब आने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर आज का प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे, गरबा रास भी करेंगे। तो ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है और कब ये तिथि है? हेलो,
1: जय माता दी, जय श्री हरि।
0: जी जय श्री हरि, जय माता दी, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: सबसे पहले तो हमारे कंचन पर यात्रा में गए तो बस बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय रहे।
0: जी,
1: और आपका सवाल तो बहुत ही सुंदर है, आंसर दे दो।
0: हाँ जी, बिल्कुल दे दीजिए। अगर आप ऑफ एयर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ऑफ एयर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी थोड़ा सोचने का अवसर मिलेगा।
1: तो कोई बात नहीं,
0: आज के विषय में बोल रही हूँ तो गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया तो कटोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। तो गरीबों पर अक्सर हम कमेंट करते हैं, अक्सर उन पर हंसते हैं, हीन भावना से उनको देखते हैं, उनका मतलब समय प्रति समय वो कहते हैं ना कि लोग बाग अपमान भी करते हैं, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी मतलब तेज मतलब ऊपर से कोई अमीर बन के नहीं आता है।
0: जी,
1: ऊपर से तो सब खाली हाथ ही आते हैं।
0: जी,
1: तो मतलब जो वो गरीब है ना, उनको उनका सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि देखिए हर एक इस धरती माता के ऊपर तो सब उनके पुत्र समान है।
0: जी,
1: वो देखिए मतलब जो पैसे वाला होता है उसको भी अन्न उगा के खिलाती है।
0: जी,
1: और जो गरीब होता है ना उसको भी अन्न मिलता है। प्रभु ने कितनी अच्छी बात बताई है कि देखिए मतलब जो सोते हैं तो कोई भूखा नहीं सोता है।
0: जी,
1: उसको बोले कोई सूखी रोटी खाता है, कोई माल पानी खाता है।
0: जी,
1: मगर उठते हैं तो सब भूखे उठते हैं, पैसे वाला हो या गरीब हो।
0: हाँ जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि भूखे उठते सभी हैं, लेकिन ईश्वर सभी को मतलब भूखा सुलाता नहीं है, उठाता जरूर है लेकिन सुलाता नहीं है,
1: कुछ ना कुछ खिला के सुलाता है।
0: जी जी,
1: तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए आज के मंदिरों पे भी अपन देखते हैं तो कितने गरीब लोग बैठते हैं कटोरा लेके।
0: जी,
1: तो आपने सही बात की कि किसी की गरीब पे हंसना अच्छी बात नहीं है। जो भी आपके हाथ में लगे तो दे दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: मगर उसके ऊपर हंसोगे ना तो वो कल उठ के वही कटोरा अपने हाथ में आ सकता है, क्योंकि पलक झपकते ही करोड़पति रोडपति बन सकता है।
0: जी जी, हो रहा है, देख रहे हैं समाज में। बहुत बहुत आभार।
1: बस तो यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये कुछ भी नहीं है, बस मतलब उसके कुछ पिछले कर्मों का होगा तो उसको मिल रहा है, बाकी अपन को मतलब उसके प्रति अच्छी भावना रखनी है।
0: जी,
1: ताकि अपना जीवन सुधर सकेगा।
0: बहुत सुंदर, बहुत
1: और अपन सच
0: जी
1: अपने अंदर से जो भी अच्छे विचार निकले वो उसको भी मतलब हिम्मतवान बनाए और उसको भी अच्छी राह दिखा सके।
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया है कि भाई देखिए कुछ नहीं कह सकते, आज बीज है तो कल तीज है, कब किसकी परिस्थितियाँ बदल जाए। हेलो,
2: हाँ जी
0: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
2: बहुत अच्छे दीदी, अगर आप आ गए तो और अच्छे हो गए।
0: अच्छा,
2: एकदम कार्यक्रम तो हम सुनते थे लेकिन कार्यक्रम सुनते थे लेकिन आज आपसे रूबरू बात हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
2: और बहुत अच्छी बात हो रही है, विषय भी अच्छा है, प्रश्न भी अच्छा है, प्रश्न तो मैं बाद में दूंगा।
0: जी,
2: लेकिन विषय बहुत अच्छा दिया है दीदी, गरीब और अमीर
0: जी
2: बहुत फर्क है माने तो।
0: जी,
2: वरना कुछ नहीं है
0: जी।
2: वो कहते हैं कि हम भी कभी कभी ऐसे पहले थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा जो पैसे वाले बन गए, तो आज हम गरीब को बोल नहीं सकते
0: जी।
2: क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को ऐसा दिन आता है और उसको मजा करना, उस पर कुछ बोल देना तो सही बात नहीं है। आज देखते हैं हम कई परिवार ऐसे हैं तो खाने का भी नहीं मिल रहा है, ऐसे परिवार है
0: जी।
2: लेकिन इसको हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मजाक तो जरूर नहीं करना चाहिए कभी।
0: बिल्कुल,
2: मदद नहीं करो तो चलेगा, लेकिन मजाक नहीं करना कभी
0: जी।
2: आज कई गरीब परिस्थिति वाला ऐसे लोग होते हैं, तो इसके ऊपर लोग फंसते हैं, उसको ताना बाना मारते हैं, उसके कहते हैं कि भी आप कुछ करो, जैसा क्यों मांग रहे हो, सारी लड़की कर रहे हो, तो ऐसा तो बोलना सही नहीं। आपके पास हो तो जो, वरना तो आपके पास थोड़ा सा ले जाएगा। तो ऐसे ना करके हम कुछ ना कुछ मदद करेंगे तो ही सही है, क्योंकि सब तो अमीर नहीं होता
0: जी।
2: तो सबका हाल ऐसा आता है, सबका दिन ऐसा आता है कभी कभी, तो ऐसा पर हम हंसने से नहीं, तो हम कुछ मदद करें, इसको कोई मदद करे, इसके साथ कोई मजाक करे तो अच्छा नहीं है
0: जी।
2: तो बस ऐसे मजाक नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर भी सुनता है और ईश्वर भी कहता है कि चलो भाई, वो तो आज ऐसा है, आप पैसे वाले, कभी कभी आपका भी दिन ऐसा आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपके पर लोग भी हंसेंगे। तो ऐसे न करके हम जो हमारे पास हो उसकी मदद करें।
0: बिल्कुल, वो कभी कभी नहीं रोज सुनते हैं, लेकिन कहते हैं ना खुदा की लाठी की आवाज नहीं होती है,
2: नहीं होती। और कई लोग, कई किस्से दीदी देखे हैं हमने कि बहुत पैसे वाले थे, आज वो भी ऐसे हालत में हो गए, बहुत गुस्सा करते थे गरीबों पर
0: जी,
2: अत्याचार करे
0: जी,
2: और गरीबों को टाना उठाना मारे
0: जी।
2: तो वो सही नहीं है, वो इसके हिसाब से गरीब है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि किसी का घर में जाके ले जाए, ऐसा तो है नहीं। इसको चोरी करे, गरीब चोरी नहीं करता है कभी, ये हमने देखा है
0: जी।
2: तो बस कुछ न कुछ हम सकता है कुछ मदद कीजिए और मजाक नहीं करना पर।
0: जी जी, बहुत सुंदर,
2: ठीक है
0: जी,
2: नमस्कार,
0: आभार आपका। तो देखिए सुरेश भाई बाहर है, फिर भी देखे जिनको रुचि है रेडियो के प्रति, वो कहीं पर भी जाते हैं तो भी रेडियो से जुड़े रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुनते ही नहीं है, अमल भी करते हैं, और रेडियो को कितना आप दिल में बसाए रखते हैं इस बात से पता चलता है। तो बात चल रही थी कि भाई गरीबी का, जैसे कि सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं गरीब की, तो उसकी मजाक भी मत करिए। बहुत अच्छी बात है, कितनी बार हमारे घर के बाहर जैसे कोई मांगने आते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई, देवी पूजक दानेरा।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
3: बस अच्छे है, और पहले जो रेडियो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, अब तो बात भी हो रही है सुरेश भाई ने, अभी अच्छी अच्छी बातें बनाई सुन रहे हैं हम।
0: जी जी जी,
3: और अभी रेडियो ऑन किया है जब सुरेश भाई का कॉल था, तो किस बारे में चर्चा हो रही है,
0: बात हो रही है कि गरीब पर, देखिए कि मैं एक शेर बोलती हूँ, गरीब पर मत हंसना साहब, कहीं ऊपर वाले ने सुन लिया ना तो कठोरा बदलने में देर नहीं लगेगी। मतलब जो गरीब के हम हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको तुच्छ नजरों से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, ये जी, तो क्या कहेंगे।
3: सुरेश भाई ने जैसे बात बताई उस पर और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कई भी ऐसे गरीब थे जो आज अपनी मेहनत से, मैंने देखा है जो अपनी मेहनत से वो कुछ अपने कदम पर चल रहे हैं, और वो कभी कभी पुराने याद करते हैं, पुरानी बात, जब वो गरीब थे, इधर ठोकरे खाई, ऐसे ठोकरे खाई, तो एक संदेश देते हैं कुछ लोगों को कि आप जो गरीब होते हैं खास करके उन लोगों को
0: जी।
3: पहले हमारी ऐसी परिस्थिति और हम हमने ऐसा किया, जब हम अपने कदम पर खड़े हुए, आप भी ऐसा कीजिए, अगर हम अपने कदम पर चले और मेहनत और अपनी नीति धर्म सब कुछ अच्छे रखे, तो गरीबी दूर हट सकती है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और हम जो वैसे ही परिस्थिति में रहे और जैसे कि अभी बताया कि चोरी चकारी ऐसे कुछ करते हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही और कुछ ना कुछ बातें करते ही रहेंगे।
0: जी जी,
3: तो मेरी राय ये है दीदी।
0: जी बहुत बहुत आभार
3: जी। दीदी अब तो रेडियो चालू हो गया तो हम हर रोज जुड़ेंगे।
0: जरूर जरूर, प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: प्रश्न सुना नहीं दीदी, क्या है?
0: अच्छा, प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है, चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे सब खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, ऐसी कौन सी तिथि आ रही है और कब है वो तिथि?
3: वो अभी कुछ ही दिन है, शायद आज 12-13 से 2-3 ही बाकी है अभी आने वाली पूनम की बात करती है शायद आप।
0: अच्छा ठीक है, आप आशियाना सुनिए, हम जरूर जवाब देंगे आपका। ठीक है,
3: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
0: जी वेलकम, नमस्कार। तो आइए यहीं पर एक छोटा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: ओ जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। ओ ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: माता रानी कहती है, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले, तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तुझे बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि गरीब लोगों पर अक्सर हम छीटा कसी करते, हीन भावना से देखते, उनकी मजाक उड़ाते हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि अगर चार जनों के बीच कोई गरीब रिश्तेदार, कहते ना चार जने रईस बैठे हुए होते और कोई गरीब रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है, तो उसको ऐसे नकारने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं नहीं, इनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो बहुत दूर से है। भले सगे भाई भी होगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये तो दूर से भाई है, हमारा कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मतलब गरीब लोग इतने आपको ऐसे लगते हैं कि उसमें भी बहुत लोगों को अपने इंसल्ट महसूस होती है कि मेरा रिश्तेदार इतना गरीब है तो मैं कैसे दूसरे लोगों के सामने इसके साथ रहूं। अंदर भले वो काम लेंगे, अंदर ही अंदर उनसे कहेंगे आपसे, और देखिए आप देखिए गरीब लोग जल्दी से आपकी मदद करेंगे, पैसे वाले मदद नहीं करेंगे। फिर भी पैसे वालों के पीछे सभी दीवाने होते हैं, उनके गुणगान करेंगे, बिना कारण उनकी तारीफ करेंगे। और गरीब भले आपकी मदद करता होगा लेकिन चार जनों के बीच में खुल करके उसके आप तारीफ भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। हेलो।
4: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति। कुपाराम जी बोल रहे हैं?
4: हाँ जी कुपाराम।
3: हाँ जी कुपाराम जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
4: चलो प्रश्न तो आपका है वो शरद पुनमारी है
3: जी, चलिए हम जवाब जरूर देंगे, सही है या गलत आपको इंतजार करना पड़ेगा जी।
4: गरीब पहली बात पे थोड़ा ये उल्लेख करना, वास्तव में गरीब किसको मानेंगे? और मेरे यहाँ कई भी मांगने वाले जो आते हैं ना
3: जी,
4: उनके मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सरकार राशन दे रही है
3: जी,
4: वो राशन तो यहाँ किराने की दुकान में आके गेहूँ बेचते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा,
4: मांग के खाते हैं
3: जी।
4: मेरे पास कभी आते हैं, मैं पूछता हूँ बीड़ी पीते हो? जगह हाँ
3: जी।
4: तो मैंने कहा अब आज तो कुछ देता एक दो रुपया, लेकिन आज नहीं दूंगा जी। क्यों? बीड़ी छोड़ के आना मैंने
3: जी।
4: अब उसको बीड़ी की क्या जरूरत है
3: जी, अब गरीब हो तो बीड़ी सिगरेट पीने की क्या जरूरत है। सही कहा,
4: 2 रुपए इनकी पीता है ना
3: जी,
4: 20 साल के अंदर 54,000 रुपए होते हैं उसके
3: जी। क्या बात,
4: जब वो भीख मांगने वाला बीड़ी पीता है
3: जी।
4: अच्छा उसको बोलेंगे कि थोड़ा धंधा करो, मजदूरी चलो, तो वो कभी मजदूरी नहीं करेगा वो
3: जी,
4: क्योंकि उसको एक तो आदत पड़ गई है मांगने की
3: जी।
4: मानता हूँ गरीबी है ऐसी बात नहीं, मजबूरी में भीख मांगता है तो वो बरोबर है
3: जी,
4: लेकिन जब उसे समझ आ जाएगी फिर तो उसको भीख मांगना बंद करना चाहिए, फिर धंधा मजदूरी करना पड़ता है
3: जी।
4: हाँ जी, मेरा ये विचार था
3: जी।
4: अच्छा दूसरी बात ये रही, अब वो एक सुबह उठ के आता है तो वो स्नान करके क्यों नहीं आता, जब पानी का तो पैसा लगता नहीं है
3: जी। बिल्कुल सही कहा आपने,
4: मेरे हिसाब से उनको गरीब को थोड़ा, ये गरीब जिसको मानते हैं उनको थोड़ा विचार देना है कि वो भीख ना मांगे, वो सफाई से रहे
3: जी,
4: तो अपना विचार बदल जाएंगे
3: जी। जी क्या बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत आभार कुपाराम जी आपके आपके इन विचारों ने मुझे भी कुछ बातें याद दिला दी है, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर बात कही है कि देखिए गरीबी मतलब गरीब किसे कहते हैं, कोई दिल से होते हैं तो कोई वो नेचुरल गरीब होते वो बात अलग है, वो खुददारी से जीवन जीते, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के सामने, खुददारी से वो अपने रोजगार करते रहते, छोटा मोटा जो भी उनको मिला है मजदूरी करके पेट भरते, लेकिन हाथ नहीं फैलाते। और जो इस तरह के बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो हाथ फैलाने की आदत हो जाती है, वो उनके कितने भी सरकार मदद करे लेकिन वो मदद उनको मतलब लेना ही नहीं आती है, ले लेते। जैसे कि कुपाराम जी ने बताया कि राशन से जो उनको अनाज मिलता है बेच देते हैं, थोड़े से 2-4 रुपये दुकान वाले ज़्यादा दे देते हैं तो उस लोभ में बेच देते हैं, और भले बेच करके वो सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शराब के भी आदि होते हैं, बहुत सारे गरीबों को देखा है शराब के भी आदि होते हैं, लेकिन उनको वही जीवन अच्छा लगता है। रेडियो मधुबन की टीम कभी आपने सुना भी होगा, पहले भी हम बोल चुके हैं इस बात को कि हमारे आबू के अंचल में ही कुछ कचरे बीनने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने पढ़ाया, उनको जैसे कि कुपाराम जी ने कहा ना कि वो गंदे रहते हैं, नाना तो कम से कम हैंडपम्प लगे होते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, तो हमने देखा है कि उन गरीब बच्चों के घर के बाहर ही हैंडपम्प लगा हुआ है, लेकिन वो स्नान ध्यान नहीं करते, इतने गंदे रहते हैं, और कपड़े तो देख लो कि क्या डिज़ाइन है क्या कलर है समझ में ही नहीं आता। तो उन बच्चों को नहलाना धुलाना सब सिखाया, कपड़े धुलाना भी सिखाया। उन बच्चों का कहना था कि उनकी माता ये क्या करती है, कपड़ों को जला देती है, 8-10 दिन पहने रहते फिर उन कपड़ों को जला देती, फिर मांगने चले जाते हैं और लोग देते भी है, क्योंकि अब बच्चों के जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चे की हाइट बन जाती है, तो वो फिर इस तरह गरीब बच्चों को दे देते हैं, तो उनको नए नए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए, और कीमत तो उनको पता नहीं क्योंकि खरीदते हैं पैसे दे करके खरीदते हैं, तो उस चीज़ की कीमत नज़र आती है, और भीख में मिल गई ना, दान में मिल गई, उस चीज़ की क्या वैल्यू। तो उन बच्चों को उस वैल्यू का एहसास कराया कि आपकी माताएं जला देती है जाने दो, लेकिन आपको खुद को नहा धो करके स्वच्छ होकर के पढ़ने के लिए आना है, कपड़े धुलाई करके आना है, तो बच्चे अच्छी तरह आने लगे। लेकिन माता पिता की आदत है ना, कुछ पिता लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जो कचरे बीनते हैं उसमें से 50-60 रुपये वो कमा लेते हैं पूरे दिन के, और पिता लोग शराब पी करके पड़े रहते हैं, ऐसा भी हमने इन आँखों से देखा है, और उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि आपके बच्चों का भविष्य इस तरह आप क्यों खराब करते हो। उनका स्कूल में एडमिशन भी कराया गार्जियन के तौर पर, लेकिन नहीं समझते हैं ना वो, बदलना ही नहीं चाहते अपनी परिस्थितियों को। उनको ऐसे कि बस 50-60 रुपये वो, फिर 50-60 रुपये उनकी बीवी कमा के लाती है, कचरा बीन करके 100-150 रुपये आ गए, हो गया पूरे दिन का आराम से गुजारा चल जाएगा, इससे आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए ये भी सही है कि जानबूझकर के लोग अपनी आदतों से मजबूर होकर के भी लोग कुछ काम धंधा नहीं करना चाहते, लेकिन चलिए ये तो बात हो रही थी भाई गरीबों की कि वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे गरीब जो अपने स्वाभिमान में रहते हैं, आप उनकी मदद लाचार स्थिति को देख करके अगर मदद करेंगे तो वो मदद भी नहीं लेंगे, खुददारी से जीवन जिएंगे, नहीं नहीं साहब हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो नहीं लेते हैं। तब ऐसा लगता है कि कोई कोई तो उसको गलत समझ लेते हैं कि अरे देखो गरीब है फिर भी इतरा रहा है, लेकिन इतरा नहीं, वो स्वाभिमानी है। और कहीं कहीं पर मजबूरी भी होती है, माताएं बहनों को देखिए आप, कहीं कहीं पर पति गुजर जाता है या फिर शराबी कबाबी होता है, बच्चे हो जाते हैं तो माताएं मजबूर हो जाती हैं, वो खुद के लिए फिर भीख नहीं मांगेगी लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भीख मांगेगी, क्योंकि उनको काम अगर नहीं मिलता है तो। बहुत सारी माताओं को तो जैसे कि कुपाराम जी ने कहा कि भाई काम के लिए कहते हैं कि आइए और काम करिए, लेकिन बहुत सारे गरीब को कोई काम, ऐसे भी लोग हैं जो देना नहीं चाहते कि अरे भाई बहुत गरीब है, कहीं घर से कुछ उठा के ले गया तो, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको परखना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए ये ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई वो स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेंगे, कपड़ों की शर्म नहीं है कि उन्होंने फटा पहन रखा है या पुराना पहन रखा है, फटे है तो आप सिलाई कर लीजिए, लेकिन स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुलाई करके पहनिए। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको 2 नहीं 4 काम देंगे। घर पर देखिए आजकल माताएं बहनें भी क्या है, सर्विस ज़्यादा करती है या फिर घर पर भी रह करके बिजनेस करती है, तो उनको सारा काम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो झाड़ू पोछे बर्तन में भी माइयों को रखते हैं, तो ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं है हमारी, हम गरीब है तो कोई सा भी काम शर्म नहीं, काम करने की कभी ऐब या शर्म नहीं रखनी चाहिए, चोरी झूठ छल कपट इनकी शर्म होनी चाहिए, इसलिए काम का शर्म नहीं करनी है। जैसे कि एक बार शुक्रवार को जब हम स्पेशल कोई माता बहन से आपको मिलवाते हैं, तो एक बहन से भी मिलवाया, नेपाल की बहन थी, किस तरह वो झाड़ू पोछा करके 6-7 हज़ार महीने के कमा लेती है। और देखिए अच्छे घर होते हैं, वहाँ से फिर बच्चों के कपड़े है, फिर खाने पीने का है, वो भी देते हैं। वो देखिए ऐसे नहीं कि उनका दया देख करके, कि उन पर दया करके दे रहे, नहीं, स्वाभाविक है। 4 जनों का खाना बनाते हैं तो 5वें का बन ही जाता है, 1 जनों का ज़्यादा बनता ही है, और लास्ट में भोजन करने के बाद बचता है तो वो हम अपनी माइयों को ही देते हैं कि भाई ये बच्चा है जो ले जाओ, तो वो तो ताज़ा खाना ही है ना, बच्चा इसलिए दे रहे हैं, और उनको पता है कि बच्चा है इसलिए दे रहे हैं, स्पेशल नहीं बनाया हमारे लिए, या फिर हम उनके लिए स्पेशल नहीं बना रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना ये अच्छी बात है। कि गरीबी तो परिस्थितियां सभी के अंदर आती है। और बात रही हंसने की, कि गरीब को देख करके हंसी मजाक नहीं करना है। वो कहते ना कि कभी भी ये पहिया घूम करके, ये चक्र घूम करके हमारे तक भी आ सकता है। हेलो
5: हेलो, नमस्कार दीदी, मैं फिर से सुरेश भाई दानेरा से। मुझे एक सच्ची घटना याद आई है
3: जी,
5: कि एक गरीब तो वो मांग रहा था, तो जो ज्यादा भीड़ में फुटपाथ पर, तो उनका जो मांगने का जो वटका होता है ना, वो लोगों को पैरों से इधर उधर हो रहा था, पैसे भी गिर रहे थे। तो एक इंसान ने देखा और वो बोला कि तुम इधर ऐसे ही हर रोज रहते हो, कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यों कुछ काम नहीं करते, कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं। तो उन्होंने पैसा 500 रुपया दिया और कुछ कुछ काम कर लो ऐसा बोलकर वो तो चला गया
3: जी।
5: और लगभग 4-5 साल बाद जब वो 500 रुपया देने वाला जा रहा था, तो एक इंसान ने पकड़ा और पैरों में गिर गया और के अपने साथ ही चलो, अरे भाई मैं आपको पहचानता नहीं, आप है कौन। तो बहुत छोटा मोटा घर था, उनके घर में ले गया और अच्छी सी खातिरदारी की, लेकिन आप बताओ तो सही है कौन
3: जी।
5: तो क्या आपको याद हो 4-5 पहले जो आपने 500 रुपया दिया और मैं भीख मांग रहा था ना, वो फुटपाथ पर, वो मैं ही हूँ। आपने सिर्फ उन दिन 500 रुपया ही नहीं दिया, लेकिन मुझे जीने की तरकीब सिखाई है। तो ये सब कुछ आपका ही है और आप बहुत धन्यवाद दिया, सब कुछ किया। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि गरीब को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए।
3: जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बड़े जी। तो ऐसा भी होता है कि देखिए गरीब के अगर हम समय रहते उनकी मदद करते हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं, उड़ सकते हैं ऊपर, क्योंकि उनके अंदर कला है कुछ करने की। जैसा कि आपने बताया कि 500 रुपए से उनको इतनी मदद मिली कि कुछ ही सालों में वो थोड़े से योग्य बन गए, छोटा मोटा घर भी खरीद लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पैसों का सदुपयोग करना आना चाहिए। पैसे तो सभी के हाथ में मिल जाते हैं, लेकिन कितनी बार क्या है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो बात चल रही थी कि गरीब है, ठीक है वो गरीब है, लेकिन हमें उसकी हंसी मजाक उड़ाने की कहाँ आवश्यकता है। कभी कभी इंसान बेमतलब ही गरीबों की हंसी उड़ाते हैं, उनके ऊपर कमेंट कसते हैं, न जाने कितने व्यंग मार देते हैं। मांगने वाले के भी आप देखना, कोई मांगने हमारे दहलीज पर आता है तो बहुत सारे लोग तो उसका पूरा ही अपमान कर देते, अरे भाई अच्छे खासे हो, कुछ काम धंधा करो ना, ऐसे मतलब व्यंग में। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो आया है हमारे द्वार पर तो उसकी कुछ मजबूरी होगी। अगर आप मदद कर सको तो ठीक है, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मांगने आता है और अपना ही चेन वगैरह खींच के ले जाता है, ऐसा भी हो रहा है अभी वर्तमान में। तो मत करिए, लेकिन हंसना नहीं है, उसके ऊपर छींटा कसी नहीं कसनी है कि अरे तुम क्या करते हो, तुम तो काम धंधा कर सकते हो। प्यार से कहो कि भाई काम धंधा करके अपना गुजारा करो, मांगना अच्छा नहीं है, ये बात तो अलग है, एक सलाह देना हुए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे ताने मारते, ऐसे डांटते कि जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, हमने दिया भी कुछ नहीं और बहुत कुछ सुना दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा करने से भी सामने वाला अगर वो मजबूरी से आया, हमें नहीं पता कि वो किस आशय से, किस मतलब भाव से आया है, लेकिन हमने उसका अपमान किया और उसका दिल दुख गया, उसको ताने मारे, उसके ऊपर व्यंग कसे और उसका दिल दुख गया, तो भी पाप के भागीदार तो हम हो जाएंगे ना। इसलिए कोई मांगने आ रहे हैं, देना न देना अपने हाथ में है, लेकिन अपमान नहीं करना है गरीब का, क्योंकि कब समय पलटी खाए, कब परिस्थितियां हमारे पास आ जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे। हो रहा है समाज में, देखिए करोड़पति के रोड़पति बन रहे और रोड़पति के करोड़पति बन रहे, जैसे योग्य बच्चे निकलते हैं पढ़ लिख करके होशियार बन जाते हैं, अच्छी ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो जाते हैं, तो उनकी परिस्थिति अच्छी संभल जाती है,

कितना धक्का खाएंगे, 10, 15, 20, धीरे धीरे फोन कॉल्स भी बंद, उठाना बंद, नंबर बदल देंगे। गरीब वो है जो इस तरह लोगों का मांग मांग करके खाते, मेहनत करने वाले कभी गरीब नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान का जीवन जीना है और स्वाभिमान में रहना है, यही दरअसल दिल के अमीर कहलाते हैं। और आज के प्रश्न है कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे और गरबा रास भी करेंगे, तो ऐसी कौन सी तिथि आती आने वाली है अभी जो ये सब हम करने वाले हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए सुनेंगे फिर से एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। परंतु आज के प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो भी आशियाना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये तिथि बहुत ही जल्दी आने वाली है। ऐसी

0: तो भाई ऐसी कौन सी तिथि आने वाली है? नवरात्रि तो देखिए बहुत सभी ने गरबा रास किया, डांडिया किया, मजा आ गया सभी को, है ना। तो गरबा रास अपने अपने सोसाइटी में हुए हैं और किए भी होंगे, लेकिन फिर से गरबा रास करेंगे परंतु कौन सी तिथि को? जवाब दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आशियाना की किचन में आज बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट वानगी, गुजराती में वानगी कहते हैं और वैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक अच्छे से डिश, तो बनाएंगे राजस्थानी कचौरी चाट। राजस्थानी कचौरी चाट का नाम सुनते ही तो पानी आ ही गया होगा, और वो भी जोधपुरी कचौरी चाट, उसका तो कहना ही क्या है। जगह जगह पर भले मिष्ठान वालों की दुकानें होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे दुकानों पर लिखा होता है कि जोधपुरी कचौरी, लेकिन चलिए जोधपुरी कचौरी आज हम सभी को बनाना सिखाएंगे ताकि आप सभी बना करके आनंद ले सको। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्कार लीला जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: एकदम बढ़िया है मैडम जी, आपकी इतनी अपनी फर्स्ट क्लास आवाज आज बराबर आई है, क्योंकि एक तो नहीं रहा ना, आवाज बराबर नहीं सुनाई दे रहा था।
0: अच्छा,
1: हाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, बराबर गुर गुर गुर करके तो मजा नहीं आ रहा था सुनने में।
0: चलिए आज तो आवाज एकदम क्लीन आ रही है।
1: बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पूनम में घर के लिए तैयारी कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो आ जाइए फिर, करेंगे हम सभी रेडियो मधुबन में धमाल।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूनम आ रही है।
0: जी जी जी, चलिए हम देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं है। आ रही है तो कब आ रही है?
1: जल्दी जल्दी खीर, पौवे की खीर बनाएंगे और फिर चांदनी रात में रख देंगे और फिर चंदा मामा से अमृत गिरेगा अंदर।
0: जी जी, क्या बात है। बहुत अच्छा।
1: सरस बुनमनी रात जो चांदनी उगियो सखी सखी मारा चौक में।
0: क्या बात है। तो लीला जी, हम जरूर आएंगे इस बार भाई, ज्यादा बनाना ठीक है?
1: बहुत देर बनाएंगे अपन, कमी नहीं पड़ेगी।
0: ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और उस दिन हमारे श्रोता बंधु को आप ही सिखा देना, ठीक है? दूध पोहे।
1: ठीक है मैडम
0: जी। ओके जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, तो आज आपको कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ, पेन और डायरी आप तैयार होगी आपके हाथ में, सामग्री लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये चीजें ऐसी है कि लिख लेना अच्छा है। आप रोज कुछ ना कुछ सिखाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं, तो लिख लीजिए कि सामग्री है मैदा 250 ग्राम, फिर आप धुली हुई मूंग की दाल ले लीजिए 100 ग्राम, और हरी मिर्च ले लीजिए 3-4, अदरक भी एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, हींग चुटकी भर लेना है, पीसी हुई लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच लेना है, मोटा कुटा हुआ गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोयन और तलने के लिए तेल आवश्यकता के अनुसार लेना है। भरने की सामग्री दोहरा रही हूँ, 4-5 उबले हुए आलू लेना है, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये आप आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, चाट मसाला भी लेना है, हरी चटनी और इमली की सौंठ ये भी आपको तैयार रखना है, बीकानेरी भुजिया और फेटा हुआ दही, और ये सब आपको तैयार रखना है, ठीक है? तो फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी कचौरी चाट, वैसे तो देखिए राजस्थान के लोग चटपटा खाने के बहुत ही प्रसिद्ध है, जोधपुर की स्पेशल कचौरी की चाट खाने के बाद तो दिनों तक, बहुत दिनों तक उसका स्वाद याद आता रहता है। अक्सर आपने देखा ही होगा, क्योंकि कोई ऐसे नहीं होंगे हमारे श्रोता बंधु जिन्होंने जोधपुरी कचौरी चाट नहीं खाई होगी, और उसका आज मैंने याद दिला दिया होगा तो उसका टेस्ट भी याद आ गया होगा कि कैसा उसका स्वाद रहता है। लेकिन अब ये रोज तो बाहर से लाके नहीं खा सकते हैं, इसलिए घर पर बना करके आप जरूर खा सकते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी रहती है। तो मैदा 250 ग्राम लीजिएगा, दाल लेना है 100 ग्राम मूंग की दाल, ठीक है। हरी मिर्च, अदरक सब अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, जैसे 3-4 हरी मिर्च है, एक अदरक का टुकड़ा है, जीरा 1 चम्मच है, चुटकी भर हींग है, पीसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों ही अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच लेना है, और मोटा कूटा हुआ गरम मसाला भी 1/2 छोटा चम्मच ले लीजिए, और मोवन के लिए और तलने के लिए आवश्यकता के अनुसार तेल लेना है। फिर भरण की सामग्री है भरने की, कि उबले हुए आलू 4-5 ले लीजिए, और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये सब आपको आवश्यकता के अनुसार लेना है। इसके साथ चाट मसाला भी आपको लेना है थोड़ा सा। अब इसमें आप तैयार रखेंगे हरी चटनी, इमली की सौंठ, बीकानेरी भुजिया और दही आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुनेंगे, उसके बाद राजस्थानी कचौरी चाट कैसे बनाई जाती है वो जरूर सिखाएंगे। परंतु आज का प्रश्न है, हमारे जो भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं दे सकते हैं आज के प्रश्न का जवाब। प्रश्न है, ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सब झूमेंगे, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है रेडियो मधुबन के 94-14-15-14-15, और सुनते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना?
3: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे हैं राजस्थानी कचौरी चाट। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, आप लिख चुके होंगे। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या करेंगे। मैदे को छानिए, छान करके एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डालिए और थोड़ा सा नमक मिला करके नरम नरम इसको गूंदना है और गूंद करके गीले कपड़े से ढक करके रख देना है, ठीक है। फिर एक कढ़ाई रखिए गैस पर, कढ़ाई में तेल डालिए और हींग जीरे का तड़का लगाइए। फिर दाल जो हमारी भीगी हुई है, दाल को क्या है भिगो के रखना है एक घंटे पहले ही, ठीक है। तो इसका छोक लगा दीजिए, पानी निकाल देना है और छोक देना है दाल को। फिर नमक लाल मिर्च डाल करके कम पानी में गलने तक पकाइए, हल्के हल्के से छींटे देते जाने हैं। पानी तो निकाल ही देना है, बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो हाथ में लेकर के थोड़ा सा छींटा दीजिए, ठीक है, ताकि दाल हमारी थोड़ी सी गल जाए। गलने के बाद यदि वो पानी तो रखना ही नहीं है, फिर भी है तो आप उसको सुखा दीजिए और अच्छी तरह इसको मैश करिए। गरम मसाला और अमचूर मिलाइए, थोड़ा हरा मसाला भी मिला दीजिए। मैदे की छोटी लोइया बना करके बीच में मूंग का मिश्रण थोड़ा सा फैलाना है लोइया बना करके, ठीक है। फिर मूंग के दाल की ये पिट्ठी रखिए और इस मिश्रण को भर करके चारों ओर से मोड़ करके गोलाई में बंद करिए। हथेली से हल्का सा दबा करके कचौरी की तरह बनाइए, ठीक है। फिर गरम तेल में इसको डाल दीजिए, मंदी आंच पर करारी होने तक तलना है। तो कचौरी फूलना अवश्य, देखे कचौरी आप डाल रहे हैं तल रहे हैं तो कचौरी फूलनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फूली बैठ जाएगी तो फिर वो कचौरी की तरह दिखाई नहीं देगी, इसलिए इस बात पर आपको पूरा ध्यान देना है। एक आध बिगड़ जाए तो दूसरी पर अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी तरह इसका लुआ बनाना है, लुआ बना करके इसको हथेली से ही चौड़ा चौड़ा बना करना है। फिर मसाला जो पिट्ठी बनाई है दाल की बीच में रख करके गोल गोल फिर से लुआ बना करके हल्के हाथ से दबा देना है कचौरी की तरह। फिर तेल गरम हो जाए उसको मध्यम करके मध्यम आंच पर कचौरियां तलिए, दोनों तरफ से सुनहरी सुनहरी हो जाए फिर आप निकाल दीजिए और दूसरी कचौरिये तल दीजिए। कचौरिये फूलनी जरूर चाहिए। कचौरी को ऊपर से थोड़ा फ्राई करके उसमें कटे हुए आलू, हरा मसाला, जैसे कि हमने सामान लिया ना भाई, उबले हुए आलू 3-4 लिए, उसके आप थोड़े से कटके कर लीजिए, काट लीजिए, ठीक है। और उसमें ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, कटा हुआ चाट मसाला, ये सभी आपको बताया था तो लीजिए। फिर आलू डाल करके हरा मसाला और चाट मसाला अपने स्वाद के अनुसार डालिए और हरी मिर्च, बीकानेरी भुजिया ये भी डाल दीजिए। इमली की सौंठ भी इसमें डालनी है, इमली की सौंठ बोले तो चटनी, ठीक है। और दही और नमक सब छिड़क करके पिरसिए। तो ये बन गई कचौरी, राजस्थानी कचौरी चाट। इसके खाने का जायका ही अलग है, बनाने का भी तरीका और खाने का भी स्वाद पूरा ही आपको अलग ही लगेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी। बच्चे, बुजुर्ग, किशोर सभी इसको पसंद करते हैं और सभी खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कचौरी चाट तैयार है, अब देर किस बात की, लीजिए एक प्लेट। प्लेट में ये सब रखिए और अच्छी तरह इसमें सब कुछ मसाला डालिए और एक थाली में रख दीजिए। स्वच्छ थाली में और भी आपने कुछ बनाया है वो भी रखिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो कचौरी चाट का। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था कि भाई आप सभी ने सुना ही होगा कि ऐसी तिथि आने वाली है चंदा में सभी झूमने वाले हैं, दूध पोहे भी खाएंगे तो गरबा रास भी करेंगे। तो आज के प्रश्न का जवाब सभी ने सही दिया है। नाम मैं पहले सुना रही हूँ, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुरेश भाई दानेराव से, कुपाराम जी कोजरा से और लीला जी माउंट आबू से सभी ने सही जवाब दिया है। शरद पूर्णिमा जय। तो सही जवाब आप सभी के लिए तालियां। और अब खाली दो लाइन में गीत की सुनाऊंगी क्योंकि समय भी होने को आ चुका है, इसलिए सिर्फ दो लाइन गीत की सुनाऊंगी। आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सब की जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता, जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: घड़ी घड़ी चार पड़ोसन खड़ी खड़ी बाता बनावे घड़ी घड़ी।
1: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटियां पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटियां कोनी बेटाएं।
2: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अत्री बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटपटो लेन दौड़ती परे, वो छोरे की नैन पेंट शूट पहरे हैं।
3: छोरा की नैन बॉयकट रखे, आदमी का सारा काम छोरी करावे, पंचायत में जानो वे कि राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
4: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बापरो जदी था पड़ी।
1: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
5: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
3: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अणी खुशी को राज।
5: खुशी की तो बात है, हमारी मोटी

0: में नजरिया परी उतारूली, लूण मरच में वारूली। अरे मारा कुल दीप, मारा राजकुमार, कई छोरिया की न्यान रोवे रे, बोल तारे कई हुओ।
1: मारी माता दा छेड़नो, मारी मानी नहीं जलाली हो, नहीं जलाली हो।
0: अरे मारा लाडला, तू छोरो है, छोरा का साथ में खेल, छोरिया रो खेल कोनी खेलनो।
2: निम्मा आवो बेटा, गरम गरम खिचड़ी बन गई, इमे घी भी अच्छो डाल रखियो, तू खा ले।
0: बीनड़ी, तू यो कई कर रही, छोरी ने अत्री मत इतार, अत्रो अत्रो घी खिलावा की जरूरत कोनी, कतरो भी हाउ खिलाई तो भी खानदान रो नाम तो छोरो ही कर रही हूँ।
2: जी माँ जी, पर छोरी भी तो
0: कई बोल रही, पर वर कई कोनी, गणो छोरिया ने माता पे कोनी चढ़ानो, छोरिया तो रोड़ी को कचरो है और रोड़ी में ही अच्छी लगे, समझी। मारा पोता रो ध्यान पूरो राख, यो मारा वंश ने आगे बढ़ाई, मारा खानदान नो नाम रोशन करी।
3: माँ, मैं थारी सगली बात सुनी, पर मैं थारी बात तो सहमत कोनी, बल्कि मैं तो यूं कहूं कि बेटा करता बेटिया ज्यादा मेहनती होवे है। देख अपना पड़ोस माँ, लक्ष्मी आंटी की छोरिया कतरी होशियार है, घर को सारो काम कर लेवे, बालो भी आज वह इंटरव्यू भी देवागी, काले नौकरी भी लाग जाए। मानू के वाके बेटो कोनी, पर देख माँ बाप रो कतरो ध्यान रखे, अतर तो बेटा भी कोनी ध्यान रखे।
0: मने तो लक्ष्मी पे गुस्सो भी आवे, दया भी, चार चार बेटिया ने जन्म दीदो, एक भी बेटा ने जन्म कोनी दीदो, छोरिया परणी ने हारे परी जाई, जदी ठा पड़ी ने।
3: माँ, छोरो के छोरी इंसान का हाथ में कोनी, और देख छोरिया भी तो माँ बाप की सेवा कर सके, अपनी मासी की सरिता ने देख, माँ बाप की कतरी सेवा कर रही, वहाँ ने ठाई कोनी पड़ रही के वहाँ के बेटो कोनी, और अपना मामा का सोनू ने देख, परंतु इन माँ बाप से अलग हो गयो। अबे बता छोरिया की कहूँ कम है?
0: तू सही कह रही हो बेटा, पर आशा हमारे एक छोरो तो होनो ही चाहिए।
2: इंटरव्यू देवा जाऊ पछे नौकरी भी करू, सखी चाला इंटरव्यू देवा आज तो, सपनों में पूरो करूं और आसमां में उड़ू, सखी चाला इंटरव्यू देवा आज तो।
4: दीपक, आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000, इज इट ओके?
5: सर ये अंतर क्यों है, जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
4: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
5: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं, रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूं। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर।
4: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
5: थैंक यू सर।
6: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहां पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों, लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं, अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर, परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
7: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों, हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
8: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसकी खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद से तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीन पाप पे टिकी है, पिता, पति, पुत्र। एक इंसान होने के नाते, इससे महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी, अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका काम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद, पैसा, सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा, खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पर बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एकदम धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है
7: जी।
8: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है, घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वालों, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप एक फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी पूरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है। बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का, एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं। इतना जबरदस्त कंट्रोल है सत्ता की।
6: तो सुना दोस्तों हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर। आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे उषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
9: सपनों पूरों कर।

ಬಡುಲಿ

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में, और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, आज 20 मई है और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग गुस्से रूबरू होते हुए हमें कुछ लोगों की जीवन कहानी को सुनने और सुनाने का मौका मिलता है। और इसके साथ में अगर बात करें तो आज सुमित्रा नंदन पंत, पीरू सिंह, अजुम चोपड़ा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ में लीला दुबे, गया प्रसाद शुक्ला, स्नेही टी प्रकाश मम, बिपिन चंद्रपाल, मल्लार राव होलकर, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष रूप से कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत करते एक बहुत ही खूबसूरत गीत के जरिए। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ना कमाल का विचार। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए। आगे बढ़ते हुए आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुरा

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के बारे में स्तंभों में एक है और सुमित्रा नंदन पंत एक नए युग के परिवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उनका नाम आता है। सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों में जैसे वेशभूषा में रहकर प्राकृतिक केंद्रित साहित्य लिखते थे। जन्म के मजहब 6 घंटे के भीतर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। पंत लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ कुदरत और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंद के साथ उनकी जिंदगी के अच्छे दिन गुजरे। आधी सदी से भी अधिक लंबे समय तक रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग उनके अंदर समाया हुआ है। तो आइए ऐसे विशेष सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आज ही के दिन 1900 में कौसानी उत्तराखंड भारत में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही मां के क्रूर मृत्यु ने छीन लिया। इस तरह मुझे लगता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है अपनी मां को देखा ही नहीं और समझा ही नहीं, लेकिन शिशु को उनकी दादी ने पाला पोसा और शिशु का नाम रखा गया गुस्साई दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत की आरंभिक शिक्षा कौसनी गांव में हुई। फिर वो वाराणसी आ गए और जयनारायण हाई स्कूल में शिक्षा पाई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके 21 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो आइए आगे क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा के बाद फिर किस तरह से उनका जीवन में एक यू टर्न आया और फिर समाज के साथ, देश के साथ जुड़कर फिर समकालीन उस समय के जो कवि थे दिनकर जी और अन्य जो कवियों के साथ उनकी उठक बैठक होती रही और इस तरह से वो अपने जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाने में कामयाबी हासिल करते रहे साहित्य जगत में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, हाँ, ये बात कर रहे थे हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। कवि के बचपन का नाम गुसाई था और स्लेटी छात्रों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों का सुंदर आवाज और सरपिल, पगडंडियों, बांझ, बुरंश व चीड़ के पेड़ों के बयार व नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन से पसरी घाटी व उसके ऊपर हिमालय के उत्तम शिखरों पर दादी से सुनी कहानियां और शाम के समय सुनाई देने वाली आरती के स्वर लहरी ने गुसाई दत्त को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया। क्योंकि जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माँ का निधन हो गया था, इसलिए प्रकृति की यही रमणीय उनकी माँ बन गई और प्रकृति के साथ उनकी ममता में छवि हमेशा दिखाई देता है। धीरे धीरे यहाँ के सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से कागज पर उतारने का कार्य इनको आने लगा और कौसनी चाय बागान के बगीचे के मैनेजर थे वो। उनके भाई संस्कृत व अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी व कमाऊ में कविताएं भी लिखा करते थे। यदा कदा जब उनके भाई अपनी पत्नी को मधुर कंठ से कविता सुनाया करते थे, तो बालक गुसाई दत्त भी सुन ही लेते थे और उनके भी ओठ में चुपचाप सुनता और उसी तरह के शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने का प्रयास भी करता। तो इस तरह से उनकी जो है प्राइमरी स्कूल से ही कविता का हुनर उनके जीवन में जगह बनाने लगा और कविता फूटने लगी। तो इस तरह से साहित्य के साथ उनका जो है, अल्मोड़ा में जब साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती रही उसमें पंत अक्सर भाग लेते थे और स्वामी सत्यदेव जी के प्रयासों से नगर में शुद्ध साहित्य समिति नाम से एक पुस्तकालय चलता रहा और उसमें ये भागीदारी बन के रहे। फिर उसके बाद जब पुस्तकालय बन गया तो पुस्तकों का जो है एक बड़ा खजाना उनको मिल गया और वो रोज़ उनके साथ जुड़े रहते थे और साहित्यिक वातावरण का अंकुरित होने लगा इनके जीवन में और कविता का प्रयोग व सगे संबंधियों को पत्र लिखने का कार्य करने लगे। और धीरे धीरे जो है इनके जीवन में उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के दन लोलुप स्वभाव, तंबाकू का धुआं जैसे कुछ छुटपुटी कविताएं उन्होंने शुरू शुरू में लिखी। फिर उसके बाद तो कहानी आगे बढ़ी और ये लंबा रेस का घोड़ा बन गए। नभ की उसी नीली चुप्पी पर गठा है एक टंग सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज बज कर। फिर उसके बाद इनका काम 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़कर देश की आज़ादी के लिए गंभीरता से काम करने लगे और 1930 के नमक सत्याग्रह में शामिल होकर उन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कालांतर में ग्राम जीवन के अधिक निकट संपर्क में आने का अवसर मिला और फिर ग्राम जीवन के पुस्तकों में जो संवेदनाएं उनके हृदय में अंकित होने लगे, उन्हें वाणी देने का प्रयास युगवाणी और ग्राम्य में किया। यहाँ से उनका काव्य का एक नया युग शुरू हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ और ये गीत आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ सफर कार्यक्रम के स्टूडियो में मेहमान आए हुए हैं, परमार सर। परमार सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत मस्ती में हैं। अच्छा लग रहा है।
1: जी जी जी जी, अपने बारे में बताइए हमें थोड़ी बातें।
2: मैं साहब ऐसे तो बेसिकली बचपन से स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा शौक था फुटबॉल हॉकी खेलना, उसमें मैं फिर कस्टम एक्साइज में लग गया।
1: जी जी जी।
2: हाँ, उसके बाद वहाँ से मैं 2012 में रिटायर हो गया। अभी मैं रिटायर लाइफ जीता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, बहुत
2: आज आपके यहाँ आए हैं।
1: अच्छा, आपने माउंट आबू थोड़ा सा आपने झलक देखा तो कैसे लगा?
2: माउंट आबू तो बचपन से देखते आए हुए हैं।
1: जी जी।
2: लेकिन अभी ये बार मुझे कुछ आर्टिफिशियल ज्यादा लगा।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, जो पहले नेचर में रहता था मैं, वहाँ पे जाके लेक व्यू होटल में आजू बाजू रहते, मॉर्निंग में उठ के 8 बजे पूरा लक्की लेक का वॉक करता था और वो करता था, लेकिन अभी ऐसा लगा कि बहुत मुझे कंजेस्टेड ऐसा वो लग रहा है अभी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: काफी अच्छा है,
1: काफी लोग आए हुए हैं।
2: और थोड़ा आर्टिफिशियल जैसा हो गया, नेचर उसका चला गया ऐसा लगा मुझे थोड़ा।
1: हाँ नहीं, लेकिन ऐसा है ना कि लोग आने शुरू कर देते हैं तो उनकी फिर व्यवस्था करने के लिए सारी चीजें
2: तो होता है।
1: तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और चलिए, मैं चाहूँगा कि अब जो मेडिटेशन का जो बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है यहाँ पर विद्यापीठ है, तो इसमें कभी जो है 3 दिन का जो मेडिटेशन शिविर होता है,
2: ओके,
1: उसमें आइए आप, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा जो है अपनी अंतर आत्मा को जानने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि सारी उम्र हमने जो चीज़ें देख कर जिंदगी जिया है
2: जी,
1: लेकिन उन सारी चीज़ें जो दिखाई दे रहा है, लेकिन उन सभी को जो नहीं दिखता है वो चीजें चला रही
2: ओके।
1: है ना, जैसे बिजली है, लेकिन बिजली को करंट के बिना तो नहीं चलेगा, तो करंट नहीं दिखता, बिजली का बल्ब जलते हुए दिखता है। वैसे ही गाड़ी चलाते हैं आप, तो गाड़ी चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसको कोई लाइट चला रही है, डीजल पानी पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी मिलके एक स्पार्क करता है, वो स्पार्क की वजह से गाड़ी म्यू कर रहा है, लेकिन स्पार्क को तो देख नहीं सकता ना कोई भी। तो वैसे अनसीन चीजों के बारे में जानना और फिर अपने जीवन का सही बुनियादी तौर पे आप उसको अपने जीवन को फ्रेम कर सकते हैं।
2: ओके।
1: तो उस पर जरूर काम कीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक संदेश, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
2: उन सभी के लिए संदेश तो ये है कि भाई आप भी आइए, अगर इतना अच्छा आप लोग चला रहे हो और जो अनुभूति दे रहे हो जिंदगी क्या है, कौन से पॉइंट पे होता है, जनरली ये सब लोगों को पता होता नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो अगर इस तरह है तो सबको निवेदन करूंगा कि उनको एक बार आना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और हो सके तो हम भी ट्राई करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आप 3-4 दिन के लिए आइए, है ना, बढ़िया से एकदम से यहीं रहे, हमारे साथ ही रहे, और पूरा प्रोग्राम जो है आप अटेंड करें, और जीवन का जो सच्चा सुख जिसको कहते हैं,
2: जी जी,
1: व्यक्ति जो है सुख के लिए करता है ना
2: जी।
1: अभी आप यहाँ आए इतनी दूर से, तो सुख पाने के लिए आए ना
2: जी।
1: तो एक्चुअली में जो सुख है हमारा मन और आत्मा की सुख,
2: आत्मा की शांति,
1: हाँ, वो जब मिल जाए ना फिर बाकी सब चीजें शांत हो जाती है, फिर कुछ नहीं रहता। तो चलिए परमार जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और बात करें सुमित्रा नंदन पंत के बारे में तो बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। और राजकीय संग्रहालय कासोने में स्थापित महाकवि की मूर्ति आपको उनकी याद दिलाती है और उनकी छवि को याद दिलाती है। कभी आप कासोनी जाएंगे तो ज़रूर सुमित्रानंदन पंत का जो मूर्ति है वो ज़रूर देखिएगा। और पंत जी ने परंपरागत नवीन दोनों ही प्रकार के अलंकारों का भव्यता से प्रयोग किया था और इसीलिए आज भी वो सभी के दिलों में उपस्थित हैं। उनके छंद और उनके पुरस्कार और उनका जो सुमित्रानंद पंत राजकीय संग्रहालय भी बनाया गया है कासोनी में, तो संग्रहालय भी आप देख सकते हैं। और कासोनी चाय बागान के व्यवस्थापक के परिवार में जन्मे महाकवि सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सफर कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो एक और शख्सियत के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम में, पीरू सिंह जी हाँ। और ये भी एक ख़ास ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन काल को लेकर ऐसा लगता है कि देश के प्रति अगर समर्पण भाव हो तो इनके जैसा हो, इनकी तरह हो। तो पीरू जी के बारे में बात करें तो पीरू जी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, भारतीय सेना के एक वीर अमर शहीदों में से एक, कश्मीर घाटी के युद्ध में सक्रिय रूप से जूझते हुए उन्होंने परिकांति और लेडी गानी ठिकानों पर अपनी फतेह हासिल की थी। तो आइए इनके बारे में जानेंगे। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। और 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव में इनका जन्म हुआ और पिता के 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। पीरू सिंह अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। 7 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूल भेजा गया लेकिन पीरू सिंह का मन स्कूल में नहीं लगा। स्कूल में एक साथी से उनका झगड़ा हो गया, तब स्कूल का अध्यापक ने उन्हें डांट लगाई। पीरू सिंह ने कभी फिर अपनी स्लेट वहीं पर पटक दी और भाग गए। इसके बाद वो कभी पलट कर स्कूल की तरफ नहीं गए। स्कूली शिक्षा में मन नहीं लगने पर पीरू सिंह के पिता ने उन्हें खेती बाड़ी में लगा दिया। वो एक संपन्न किसान थे और खेती में पीरू सिंह ने अपनी रुचि दिखाई। वो अपने पिता से भरपूर मदद ली और किया और किसान का कार्य अच्छी तरह से सीख गया। किसानी के अतिरिक्त कई प्रकार के साहसिक खेलों में भी वो मन बना रहता था। शिकार करने के तहत वो बचपन से ही शौकीन रहे। अपने इस शौक के कारण कई बार वो घायल भी हुए। शिकार के शौक ने ही पीरू सिंह को सेना में आने के लिए, फौजी बनने के लिए प्रेरित किया। और 1936 को पीरू सिंह ने फौज में कदम रखा और 10x1 पंजाब में ट्रेनिंग के लिए चले गए। फिर 1 मई 1937 को उन्हें 5x1 पंजाब में नियुक्त कर लिया गया। और फौज में आने के बाद वो पीरू सिंह के चरित्र में आश्चर्यजनक बदलाव आया। स्कूल में उन्हें पढ़ाई से चिढ़ थी लेकिन फौज में वह पढ़ाई की ओर से बेहद गंभीर सैनिक सिद्ध हुए। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इंडियन आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन सफलतापूर्वक पास कर लिया। और फिर इस तरह से उनकी पदोन्नति हुई और फिर जम्मू कश्मीर के मामला में उन्होंने अपना विशेष काम दिखाया और पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला, इसमें उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और बहादुरी दिखाते दिखाते वीर गति को पा लिया। और ऐसा हुआ कि अपनी टुकड़ी में अकेले ही बचे थे और एकमात्र योद्धा बन गए। उनके शेष साथी तो मौत की नींद में सो गए थे और बुरी तरह घायल भी थे। अचानक एक ग्रेनेड आकर सीधे उनके चेहरे पर लगा। उनका चेहरा और आंख खून से भीग गया। इसके बावजूद उन्होंने रेंग कर लुढ़कते हुए ग्रेनाइट की परवाह किए बगैर दुश्मन की दूसरी पोजीशन की ओर कूच कर दिया। और पीरू सिंह ने पूरे जोश से युद्ध घोष किया और दूसरी खाई में छिपे दुश्मनों पर संगीन से वार कर 2 सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। इस हमले का सारा नज़ारा उनकी सी कंपनी के कमांडर ने देखा जो पीरू सिंह की कंपनी की गोलीबारी में मदद कर रहा था। इसे घायल अवस्था में हवलदार पीरू सिंह दूसरी खाई में निकलकर दुश्मन के तीसरे बंकर की ओर बढ़े। उसी वक्त एक गोली आकर सीधे सिर में लगी और उन्हें दुश्मन की खाई से टकराकर गिरते हुए देखा गया। यकायक दुश्मन को धमके की आवाज आई धमाके से, जिससे पता चला कि पीरू सिंह का ग्रेनेड अपना काम कर गया। ठीक इसी समय पीरू सिंह ने भी गोली को झेलकर प्राण त्याग दिए। पीरू सिंह ने अपनी बहादुरी भरे कारनामा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वो अपने साथियों के आगे एक जिंदा मिसाल छोड़ गए कि अकेले दम पर भी लड़ी गई लड़ाई हिम्मत के बल पर क्या नतीजा दिखाती है। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जिस हिम्मत बहादुरी और सूझबूझ से हवलदार मेजर पीरू सिंह ने मोर्चा संभाला, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ऐसे परमवीर चक्र सम्मानित पीरू सिंह को सलाम। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो, मस्कराते रहो।
2: वो थी हम।

हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन्य अन्य अन्य प्यार हो

खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।

0: याने प्यार हो गया।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। और हमारे साथ गुजरात अहमदाबाद से कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे रूबरू हो रहा है। तो अभी जीएस परमार जी हमारे साथ हैं, जिनको आप हमेशा सुनते रहते हैं और बातें मुलाकातें कार्यक्रम के रेगुलर श्रोता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जीएस परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
4: थैंक यू वेरी मच। ओम शांति,
3: ओम शांति, ओम शांति,
4: ओम शांति। और यहाँ आके हमको बहुत ही अच्छा शांति का अनुभव होता है।
3: जी जी जी।
4: और मैं तो कितनी बार मधुबनी से जुड़ता रहता हूँ, और काफी अच्छे प्रोग्राम रमेश भाई लाइनअप करते हैं और सबको बढ़िया सा नॉलेज देता है। मैं आशा करता हूँ कि आगे ऐसे ही नॉलेज वो बांटते रहे और लोगों के जीवन में सुखी खुशियाँ बांटते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ।
3: जी, जी,
4: मैं तो
3: जी,
4: पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ, मेरा लाइफ स्केच के बारे में भी दे चुका। मैं बहुत स्ट्रगल करके दूरदर्शन में काफी मैंने काम किया है, दूरदर्शन से मैं रिटायर हुआ, आज 13 साल करीबन हो गए रिटायर होते हुए।
3: अरे वाह।
4: फिर भी अभी मैं रेडियो मधुबनी से

0: इधर उधर पूरा दुनिया देख लिया। ये येलो जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं, पहले तो कुछ पता नहीं था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: सब किताब सब मतलब नजदीक से भी देख लिया, दूर से भी देख लिया। जैन धर्म भी नजदीक से देख लिया, दूर से देख लिया। स्वामीनारायण धर्म भी नजदीक से देख लिया, दूर से देख लिया। सब धर्म एक ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सब वही मतलब क्या इसमें आगे क्या बोल सकता मालूम नहीं, मगर सब धर्म वाले सब एक ही होता है। लास्ट में जाओ तो जीरो होता है वहाँ पे।
1: हाँ,
0: तो कुछ नहीं, भगवान भगवान होता है ना इसमें।
1: सही बात है, सही बात। पारिक जी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में युवा साथियों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
0: युवा साथी तो अभी कहाँ किसी का सुनता है। हमारे बेटा हमारा नहीं सुनता है ना।
1: सही बात है, सही बात।
0: तो उसको थोड़ा बुजुर्ग लोग का सुनना
1: चाहिए। सही बात है,
0: समझे। वो सुनते हैं कब, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाता है, रातों रात रोड पे आ जाते हैं,
1: तब जाके
0: सुनते हैं। बराबर नहीं तो युवा पीढ़ी इतनी फास्ट चल रही है ना। अरे न्यू जनरेशन चाह रहा, 2-3 साल वाला वो ऐसा लगता है कि वो बच्चा भी अभी ग्रेजुएट हो गया है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के लिए। न्यू जनरेशन है, कुछ नहीं, खत्म हो गया अपने। अभी आगे जाके अच्छा है, हम टाइम सर बूढ़ा हो गया, टाइम सर ऊपर चले जाएंगे कि इन लोगों को देखना नहीं पड़ने वाले, ऐसा है।
1: चलिए पारिक जी, बात ही अच्छी है, अपनी भावनाएं आपने व्यक्त की, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि पारिक जी को सुनकर वो आपकी दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश में है।
0: थैंक यू।
1: क्योंकि जब हम लोग युवाओं को बात करते हैं या युवाओं की बात करते हैं तो बेटा ही जो है बाप की नहीं सुनता, तो आगे फिर हम लोग किसको क्या बता सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है आज। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आगे जो समय आएगा, जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो ये टेम्प्ररी और क्या कहते हैं कि एक मैजिकल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर चकाचौंध बहुत है, टेक्नोलॉजी का युग बहुत है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास एम्पल हो गया, इस वजह से हमको लगता है कि हम सब में आगे हैं, हमको सब मालूम है। लेकिन जब जीवन के अनुभव की बात आती है, वहाँ पर बुजुर्गों का अनुभव काम में आता है, इसलिए उनका सम्मान करें, उनको याद करें और उनसे कुछ सीखते जाएं, उनसे अनुभव लेकर अपने जीवन को अनुभवी बनाएं, ऐसे शुभ आशा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी से कहना चाहूँगा आज के इस सफर कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: comes to you as a child today in the next costume, you spend so much money on him or her, grow them up, they're 20, 21 years old, love, attachment, money spent, everything done, and suddenly the child leaves the body in an accident. Now, that soul leaves, leaving you behind with pain, hurt, because
1: loneliness,
0: that is what,
1: and
0: because that is what we had given them in our previous interaction.
1: So he comes to your own house and gives you and leaves.
0: He has to come very, very close, na, in order to be able to give it to you. If something happens to someone in the neighborhood, I won't feel that bad. I won't feel that much of pain. So people will come back to me in different ways. But the interaction, the energy exchange is a carry forward. The relationship will not be the same. Business partners in this birth doesn't mean business partners in the next birth. But if betrayal here, cheating here, pain here, hurt here, carry forward. Because when I leave the body, the only thing that carry forwards is the imprint here. Relationships left behind, body left behind, even memories forgotten. Only the interaction, the karmic account, the impression carry forward. And now I need to understand that now if I don't finish it, it will again carry forward. And most important, it's damaging for me even now. Any two people, let's say we meet now, suppose it's right now, first time, today we're meeting. Now we have a meeting, we talk. This meeting could be a pleasant one. It could
1: or
0: be
1: unpleasant.
0: An unpleasant one. If we meet again tomorrow or next week, whatever was the quality of this meeting today, it will carry forward. If this was a pleasant meeting, the next meeting will begin on a pleasant note.
1: That's a nice one. The first time you meet somebody in a party and you like each other, you exchange cards and you say we'll meet again, then you call him home, then they call you each other and friendship goes on.
0: Carry forward.
1: Same way you meet with different lives.
0: Yes. Every meeting will carry forward into the next meeting. Now in the next meeting, I have a choice how I would like to continue the meeting. Let's say today was unpleasant and we meet again tomorrow and one of us can consciously decide, no, today I will make things nice. This meeting will be beautiful. So then in the next meeting, the carry forward is unpleasant, but one of us consciously chooses what you said, alternate. Look for a new way of thinking.
1: You know what happened? I want to tell you something here. The other day, I was having breakfast before golf in my club. And I just waved out to a friend of mine, and he was wearing glasses. Probably he didn't see me or saw me, I don't know. He didn't wish me. I don't know what was his problem. Now, I had two choices about your visible perspective.
0: Yeah.
1: Either say, okay. Let him say first, hello to me first. And if he comes close, only if we meet each other, then I'm going to say hello to him.
0: Right.
1: What does he think is? I finished and by chance he came out of the dressing room. I went to him. I said, bhai sahab, anything wrong I've done to you? He said, what happened? I said, I wished you. I said, no, sir, not at all. How are you? Let's have a cup of tea together. Whatever he did, whatever problem he had, it took how much time? 10 seconds.
0: Mm.
1: 10 seconds.
0: Absolutely.
1: And it is definitely so beautiful, this all delete, because it's just a button.
0: One button. And that's why in awakening, we've always said, it's only one thought away. One thought for a new perspective.
1: Earlier, I never used to believe you. When you say one thought away, I said, no, it doesn't happen.
0: But now you've tried it out. To create a thought, how much time does it take?
1: Less than a second.
0: A lot of time spent in, should I create that thought? What will they say if I create this thought? Will they again cheat me if I create this thought? When should I create this thought?
1: What if he doesn't speak to me?
0: What if he doesn't speak to me when I speak? So this can take.
1: What do people think about?
0: This can take years.
1: Am I a beggar? Am I weaker? What does he think? He is richer than me?
0: Exactly.
1: So many things your mind creates.
0: Yes. But to press the button and to create that thought,
1: one
0: second. So click. It's only one thought away, because otherwise, like you said about this friend at golf, if one meeting is unpleasant and we don't correct it immediately, then the next meeting will be a carry forward
1: of this. Next meeting, I will ignore him.
0: Exactly. And the next time, if you ignore him and he doesn't plan to change and correct that, then he will ignore you, and very soon we'll say...
1: And the third meeting, sitting all of us sitting together, having a cup of tea, I will not speak to him, he will not speak to... We'll speak to others, but not to each other.
0: Now, beautifully.
1: So much of...
0: But just look at what happened. It only gets complicated and complicated and it doesn't remain the same. The magnitude increases, it doesn't remain the same. So now this can be a simple thing like this, or this can be meeting in different costumes every time. The magnitude will be like this more and more. This is supposed to be seen on a bigger picture. That today, if there is a conflict, today if there is something which is not resolved, it takes me only one thought to change it. If I don't change it today, we will meet again, because it's unfinished account.
1: And do you know something? The best thing, the result of this, I felt happy.
0: Always.
1: No.
0: Always.
1: But I felt so happy and relieved, and whatever happens to the world, I mean, I'm not being
0: Absolutely,
1: selfish,
0: yeah.
1: But whatever I did, I was proud of myself.
0: Yeah, but this we are looking at in smaller incidents. Simple incidents, one waving out, the other not, one smiling, the other not. Even in these, it seems like we're making an effort sometimes to, okay, they didn't talk to me, but still I will. Some are able to make the effort.
1: Some are not.
0: Some don't make the effort. Not that they're not able to make, they choose not to make the effort. And when they choose not to make the effort, they're choosing to carry forward that heaviness.
1: But they find it very difficult.
0: They choose.
1: I used to find it very, very difficult to say sorry. I would just put down my face, but never ever say a sorry
0: okay,
1: when I was a child.
0: But you're the same person. And today you're saying it. So it's a choice, na? Should I say sorry?
1: It was difficult. I don't know whether you call it choice or not.
0: No,
1: I'll
0: let's
1: say
0: pause.
1: It was difficult.
0: Let's pause now and see. At every step, I have a choice. Should I say sorry? Should I not? Similarly, the other person has a choice. Should I forgive or should I not? Because if I don't forgive, I'm just choosing to carry forward the hatred. There can be times when people around us have done something big. Something which has a deep impact on our life. Now I have a choice. Hate them and then say, I'm going to hate them for the rest of my life. So I'm choosing to create hatred and carry that hatred for the rest of my life. And the other thing is forgive. Now I need to sit with myself and ask myself, which option should I use? Do the control, alt, delete. When I look at the alternative option, I need an understanding. Why should I forgive them? They've done something very, very wrong. Why should I forgive somebody who's betrayed me, who's ruined everything that I had, who's probably ruined me externally?
1: I'd love to see him ruined.
0: Yeah,
1: I'd love to see him in pain. I'd love to make God give. I would love to curse that person.
0: The other C which you said. Curse. These are the options that we have, which keys to press. When I am looking for my option, which option should I choose? I shouldn't be focusing on what they have done. My focus should be, what is the option which is good for me and my family? If I choose hatred and of course revenge, then is that good for me? It's going to be damaging for them. Understandable. I will take revenge. I will do something which is probably worse than what they did for me. So I'll take revenge. It will harm them. Let me ask myself, is it good for me? Is it comfortable for me? And most important, I'm going to carry forward this account. And like you shared with us those options in the three meetings that happened, the next time we meet, we start again on the flavor of the same previous meeting, but the magnitude would have increased. I have a choice today. I have the knowledge today. Let me make the right choice with the knowledge. Maybe tomorrow in another costume, when the same karmic account comes back to me, I may not even have the knowledge that I have a choice to change. Today I have the knowledge, let me use that choice. In spite of knowing it, if I still don't make the right choice, then it's only harm to me, not to anyone else. So when we think, should I forgive or should I continue to hate? Should I take revenge? I need to just tell myself, this is not our first meeting. We've met before. And what they're doing to me today is only because something I have also done. So most important, they're not wrong. They're just being fair. Every scene of this drama is accurate. They've come back with the same account which I had started. So let me look at them with a new perspective. When we say alternative perspective.
1: Sister, here, some fussy guy might say, have I started or he might have started? He might have started or I might have started. Why should I be the first?
0: Excuses to choose a slightly tougher option.
1: I would rather call it weakness now after listening to your program.
0: Good. Yes.
1: Honestly, I mean it.
0: Yes, it
1: is. This is weakness, not excuses.
0: Yes. This is weakness. But we thought it's tough, it's difficult, we can't forgive. No, we don't want to. It's our weakness because it's our ego.
1: When something is tough, you're weak.
0: You're weak. Because we're finding the task tough, so we are weak. Absolutely. So when I understand the alternative perspective, they're not bad. They are not wrong. They've just done something which is a return of what I had done. My hatred for them will automatically start reducing because I will start understanding that the soul has just come back with that same account. So my hatred will start reducing. Now another alternative perspective. Can I forgive and change this totally? Is it possible to create an account, a new account, of an absolutely different quality?
1: But whom are you forgiving?
0: Yeah.
1: You're forgiving yourself. And whom are you doing a favor by forgiving?
0: To yourself.
1: You had no other choice.
0: No. You were forgiving yourself. Very
1: and
0: beautiful.
1: For your good health. Physical, mental, emotional, all
0: relationships.
1: Health. Yes.
0: See? Because when I
1: and,
0: hold...
1: And feeling lighter.
0: Yeah. When I hold hatred in one particular relationship, it's not going to remain only in that relationship.
1: See, I've started talking like you now.
0: Yes. Because see, this is understanding. This is knowledge. It has started going deep in the subconscious. And once it started going deep in the subconscious, way of thinking has changed.
1: Yeah.
0: This happens naturally. People feel it's a lot of effort to be able to do this. No, just keep on taking the knowledge. And very soon, we will be creating new things. Because we've taken the raw materials. It's like take the raw materials, but cook your own recipe with it. Everybody with the same ingredients will cook a different recipe.
1: And it will taste differently.
0: Absolutely. But just remember that whatever you're cooking, it's you who's going to be eating it first. So cook well. Whatever we cook here, whatever other people must have done, whatever I create here, I have to consume. Can I create the option of forgiveness today? Forgiveness with love and compassion. And for that, I only practice one thing. Let go of that thing now.
1: Shall we call delete as forgiveness?
0: Delete
1: because
0: is,
1: I have not come to delete.
0: Delete is the what had happened, the negativity. You know, suppose somebody
1: but
0: cheated
1: me. But once you
0: me.
1: Forgive
0: yeah.
1: and go ahead, isn't that also delete?
0: Sometimes what happens is you forgive, but you don't forget. So forgive and delete means... it's out of your system. Forget.
1: So, if you don't forget, means you've not completely forgiven.
0: Exactly. But no, temporarily, at that time, we might not be aware. We think we forgive. But if we don't forget and it's there in the subconscious, the slightest stimulus again, and it will trigger again. Maybe today I'll say, no, I really mean it. I forgive. I'm not going to carry any more pain. But 2 days later, or slightly later, if the person again does something slightly... everything will come back because it was not deleted.
1: I think, sister, we need one more episode on... because I want to ask you about alternative thinking, about changing your perspective.
0: Actually, in every episode, we have been looking at alternative thinking. Everything and everybody just now needs to work with themselves. And like you said, alternative for every habit that I want to change. So it could be some habit we've covered in the series. It could be some habit which everyone, you know, each one is going to have a different ingredient, which is creating a problem.
1: Then these three things can apply to all the episodes.
0: Everything.
1: CTRL, Alt and Delete.
0: Delete. Control, Alt, Delete. Control yourself. Look for an alternative perspective and delete the negative. And I would say not only just delete, go to the recycle bin and delete it from there also. You have to, and that's why meditation helps, because it will go deeper. It's not delete from here. Go to the subconscious mind with understanding it was a past karmic account. You know, till today, we were all trying forgive and forget. We were trying on this level. Okay, fine, they did this, but hatred is not good for me, so forgive. But spirituality teaches us to go in the deeper layer. This is a past karmic account. And if I don't finish it today, it is going to affect my present, and my future is insured that I will carry this hatred and pain in my future birth.
1: My experience is that I don't have to do anything. Things are happening. I'm being very honest. Things are happening. You say that, okay, you forgive him. I don't even have that feeling now. What do I forgive? I mean, there is no hatred in. I don't hate anybody.
0: Yeah, why? Because, like you said, these are signs of a weak soul. Hatred, not being able to forgive. Like you said earlier, I would not be able to say sorry. But today I can say sorry. So what happened?
1: And that time I was not even an actor. I mean.
0: Yeah. So I still couldn't say sorry. And today, even in spite of having acquired so much, for which we can say ego, because we've
1: acquired ego, of course,
0: we can say sorry. So what is the shift? The person is still the same. It was a sign of a weak soul. But now the same soul, you, have started taking care of yourself by giving yourself good diet and exercise. Spiritual knowledge is food for the soul, and meditation is the exercise. So like you said, I don't think I'm doing anything. It's happening on its own. It's like when you eat well and exercise, you don't have to do anything else. The body is healthy on its own. Similarly, the soul has become healthy. Weakness is over. Strength has come. And when there is a strength in the soul, it doesn't have to think that I have to forgive. It doesn't have to think that I don't have to hate someone. It's a strengthened soul, which means disease will automatically not be there.
1: So this control or delete is automatically
0: happening
1: inside. It's become inbuilt.
0: I only have to take care that
1: of
0: I get the
1: food.
0: Right.
1: And my exercise.
0: Exercise for the soul.
1: Yes, the food of the thought.
0: Yes.
1: And
0: food of the knowledge. Food is of the knowledge. Thought is the energy that gets created because of that food. Yeah, so right diet will give you right thinking.
1: And right diet, right thinking, right exercises, bringing it into
0: practice.
1: Yeah.
0: Today, anything and anyone that we've been holding on for very long, someone, like you said, we haven't talked to for a long time.
1: Delete.
0: Today, we'd create that one thought to delete the past, look for an alternative perspective towards a healing relationship, and bring it out into action.
1: Thank you very much, sister.
0: Om Shanti.
1: Let's delete all the negativities. Om Shanti.
0: In any situation, control your state of mind, then look for an alternate way of thinking and delete the emotional baggage held against people. If we hate someone, when we leave the body, we carry the imprint of hatred, and when the two souls meet again, they experience hatred. Every time we carry forward the unpleasantness, the magnitude and complexity increases. To change the quality of interaction right now is only one thought away. If someone has cheated or betrayed us, we have an option to either create hatred and carry it forward. The other option is to create forgiveness and change the quality of interaction. Whatever they are doing to us is a return of our past karma. They are not wrong. The response we choose now will create our present and decide our future. Let me make the choice that is good for me. If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithpks@gmail.com or call us on 0999974555.
2: Namaskar, mera naam hai Aman Verma aur is samay aap sun rahe hain Radio Madhuban. Sunte rahiye, muskurate rahiye. Aur main itna kehna chahunga ki aapka apne ghar par koi intezar kar raha hai. इसलिए कृपया आप हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
3: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के जिसका नाम है हमराही। और हमराही प्रोग्राम के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि आप लोग एक तो इतना पसंद करते हैं और जो इसका मेन उद्देश्य है वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये आप सब जानती हैं कि हम इसमें कपल्स के साथ बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनमें से कोई एक या फिर दोनों किसी न किसी शारीरिक समस्या को झेल रहे हों, लेकिन बावजूद इसके वो अपना जीवन बहुत ही जज्बे के साथ, जुनून के साथ और हौसले के साथ जी रहे हों। तो आज ऐसे ही मेहमान मुझे मिल गए तो फिर हम हाजिर हो गए प्रोग्राम लेकर के। अच्छा, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि देखिए कभी कभी दोस्तों कई लोगों में हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ढूंढना पड़ता है, कई लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है, लेकिन महज एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारे आज के जो मेहमान है वो मुझे कुछ इस तरह ही मिले। मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा जिसमें जो महिला है वो लिख रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं और हम लोग हमारे दोस्तों को इंश्योरेंस में मदद करते हैं, इसके अलावा हम पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में काम भी करते हैं और अपनी एक कंपनी भी रन करते हैं। तो ये चीज पढ़ करके मुझे अपने आप में, मतलब आप लोगों को हो सकता है प्रोग्राम सुन करके मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन इतना मैसेज, ये चार लाइनें पढ़ करके मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। तो मुझे लगा भाई इनको तो फिर जरूर इन्वाइट करना चाहिए अगर ये तैयार होंगे तो। तो हमारे आज के मेहमान तैयार हुए और फिर प्रोग्राम हाजिर है। चलिए, तो भूमिका हो गई बहुत सारी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संभवतः पहली बार उस राज्य से जहां पर आने वाले कुछ समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, कई बार वहां की राजनीति बड़ी चर्चाओं में भी रहती है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की और वहां का एक बहुत ही सिटी ऑफ जॉय जिसको कहते हैं कोलकाता, वहां से ही आज के हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करिए मेघा जी और पीयूष जी का, पीयूष रखेजा और मेघा रखेजा, वेलकम आप दोनों का।
4: हाय संदीप, थैंक यू सो मच। आपके इतने सारे शब्दों सुन के हम लोग तो बस एकदम खुशी इतनी मिल रही थी कि आपने इतना हमारी तारीफ करी, एंड थैंक यू सो मच हमें शो पे इनवाइट करने के लिए।
5: थैंक यू सो मच संदीप जी, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड है इस शो को करने के लिए, बिकॉज ये हमारा साथ में पहला ऐसा चीज़ है। ऐसे अलग अलग हम काफ़ी सारे सेशंस में बोलते हैं और कई लोग हमें इनवाइट करते हैं बोलने के लिए, बट साथ में हम ये पहली बार ही कर रहे हैं।
3: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये हम लोगों के लिए भी एक तरह से अचीवमेंट है कि आप दोनों को हम साथ लेकर के आए। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये क्रेडिट जाता है उस मैसेज को जिसका मैंने जिक्र किया। अब वो मुझे नहीं पता पीयूष जी ने लिखा मेघा जी ने लिखा, लेकिन उसमें नाम और नंबर तो मेघा जी का ही था।
4: नहीं तो फिर मैं ये बोलूंगी कि मैसेज का क्रेडिट भी मैं ही ले लेती हूँ, मैंने लिखा था।
3: पता नहीं, अभी तो बाद में आप दोनों को डिसाइड करना, लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मेघा जी। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आप लोग जो सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हुई। लेकिन चलिए इस पर तो हम आएंगे, पहले शुरू करते हैं कि आप लोगों की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मेघा जी बताएं जरा अपने बारे में, क्या यादें हैं जुड़ी हुई हैं अपनी लाइफ के साथ।
4: सो ओरिजिनली मैं दिल्ली से हूँ एंड शादी के बाद ही मैं कोलकाता शिफ्ट हुई। तो मेरी काफी मेमोरीज है दिल्ली से लेके, लाइफ से लेके, इस विजुअल इम्पेयरमेंट से लेके, जो आई थिंक सबके साथ होती है। कुछ अच्छी मेमोरीज हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, एंड आई थिंक हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। वी ऑल फॉट कि हम लोग को सारी सुविधाएं मिले, तो वही मेरा भी जर्नी रहा है पूरा। एंड एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दिल्ली से हूँ और हम दोनों भी दिल्ली में ही मिले,
3: अच्छा क्या
4: हाँ
3: बात है,
4: बिल्कुल, दिल वालों की दिल्ली बन गई। यस
3: दिल्ली दिल्ली में ही दिल मिले दोनों के।
4: टोटली।
3: तो थोड़ा सा बताइए मतलब अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपकी ब्लाइंडनेस के बारे में, कैसे क्या हुआ और एजुकेशन क्या क्या रही आपकी और अभी क्या कर रहे हैं आजकल आप?
4: श्योर। सो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, एंड मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है, और आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो वो अभी उनकी शादी हो गई और वो US में सेटल्ड है। तो बाकी उनसे मैं बहुत बहुत क्लोज हूँ, एंड जब ऑब्वियसली वो शिफ्ट हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल था, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड। बाकी अगर मैं अपनी आई कंडीशन की बात करूँ, सो आई हैव मैक्यूलर डिजेनरेशन एंड रेटिना पिगमेंटेशन, एंड ये सिंस बर्थ है, बट मेरे को ऑफिशियली डायग्नोज हुआ जब मैं 9 ईयर्स की थी। एंड
3: अच्छा
4: या एंड ये एक्चुअली हुआ भी ऐसे कि जब मैं 3 साल की थी ना, उस टाइम पे मेरी मम्मी को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें मेरे को चेक भी कराया था और एक डॉक्टर ने बोला भी था कि इनको शायद MD है, लेकिन जब सेकेंड थर्ड ओपिनियन लिया तो सबने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ गलत लगा होगा। तो मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया, कोई भी बुरी न्यूज तो सुनना नहीं चाहता, राइट? आपको अच्छी न्यूज ही ज्यादा समझ आती है, राइट? तो फिर उस टाइम कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड आई वॉज इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल। फिर हर साल ना हमारे एनुअल चेकअप्स होते थे, तो उसमें आई चेकअप भी होता था, और वो मुझे सबसे डरावना लगता था क्योंकि हमारी वो टीचर इतनी स्केरी थी और मेडिकल रूम की होती, आई गेस। एंड मैं जब पढ़ नहीं पाती थी ना, तो बड़ी खतरनाक वे से दिखती भी थी कि अरे ऐसे
3: उनको पता
4: कैसे।
3: भी नहीं होता ना कि अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या मतलब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड देख पा रहा है नहीं दे पा रहा है,
4: राइट
3: तो उसके साथ ट्रीट कैसे करें उनको, कई बार ये भी मुझे लगता है कि
4: हाँ,
3: नॉलेज नहीं होता।
4: ये भी लगता है ना, आई थिंक उनको कभी कभी ये भी लगता है कि बच्चा ऐसे मस्ती तो नहीं कर रहा, जानबूझ के तंग करने के लिए। बट तो यही सिलसिला चला, और हर साल मेरा नंबर बस बढ़ जाता था, चश्मे मोटे होते रहते थे। तो जब मैं 9 ईयर्स की थी, तब मम्मी ने कहा नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है ही। तो जिनसे पहले जिनने डिटेक्ट किया था ना जब मैं 3 साल की थी, उनको ही वापस दिखाया, तो उनने फाइनली ऑफिशियली बोला कि नहीं इनको है। फिर हम शंकर नेत्रालय और ये सब गए और कंफर्मेशन मिल गई कि मुझे आई कंडीशन है, तो तब हम लोग का वहां से शुरू हुआ। बट मैंने फिर भी अपनी पूरी एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल से ही की, सेम स्कूल से। एंड तकलीफें बहुत रही क्योंकि एज आप जैसे आपने कहा, रही टीचर्स को समझ में नहीं आता एक्चुअली कैसे संभाले, क्योंकि पूरे स्कूल में मैं ही एक विजुअली इम्पेयर्ड किड थी। तो उनको भी थोड़ा सा जानने को मिला, कुछ टीचर्स बहुत सपोर्टिव भी मिली, कुछ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी।
3: नहीं थी।
4: बट धीरे धीरे करके वही एक्स्ट्रा टाइम, बड़ा फॉन्ट, बट ये सब मेरा मेनली विद टाइम डिटोरिएट हुआ। तो बोर्ड्स में जाते जाते मेरे को ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, पहले इतना दिक्कत था नहीं। एंड लकीली मेरे फ्रेंड्स हमेशा स्कूल में बहुत अच्छे रहे, तो मुझे उन लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। उनकी नोट्स मिले, उनकी नोटबुक से ही मैं कॉपी करती थी क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो बहुत पहले ही दिखना बंद हो गया था। एंड ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं हमेशा बहुत सोशल और बहुत आउटगोइंग थी, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत ईजी था। एंड मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड थी, बट वही धीरे धीरे करके वो सब चीजें थोड़ी छूट गई।
3: टूट गई।
4: राइट। एंड देन बस फिर 12th में था कि जब मेरी काफी विजन चली गई, तो बोर्ड्स के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के मेरी बुक्स पढ़ती थी, और मैं वैसे लर्न करके मैंने किया, क्योंकि इतना अवेयरनेस था नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि ऑडियो सॉफ्टवेयर्स और ये सब अवेलेबल है। और उस टाइम उसके बाद कॉलेज वगैरह जैसे गई, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया।
3: अच्छा
4: हाँ, मेरी सिस्टर ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई, वो मेरी मतलब वो मेरी ज्यादा मदर जैसी थी, क्योंकि मम्मा तो वर्किंग थी, तो
3: वर्किंग थी
4: उसने
3: राइट।
4: मेरा राइट तो उसने मेरा बहुत ध्यान रखा, एंड बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया जब कुछ चीज़। ऑडियो बुक, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था हमेशा से, तो जैसे वो ढूंढी कि ऑडियो बुक्स भी होती हैं, मेरे को डाउनलोड करके दी, क्लासेस पे लेके जाती थी। तो दिस इज हाउ मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं LSR साइकोलॉजी ऑनर्स में गई, अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे 1 ईयर में ड्रॉप आउट करना पड़ा।
3: अच्छा
4: राइट इसी वजह से, क्योंकि टीचर सपोर्ट थे, काफी नेगेटिविटी थी, और फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं था, उसके बाद में मुझे पता चला कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं।
3: ये जब आपने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, ये कब की बात रही होगी?
4: 2010 की।
3: 2010 की, बताइए। मतलब स्कूल में आपको फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, लेकिन जहां हायर लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं पे प्रॉब्लम हो गई।
4: बिल्कुल। एंड बल्कि जहाँ बच्चे ज्यादा मच्योर भी हों, क्योंकि देखो स्कूल में कितने छोटे छोटे होते हैं, फिर भी सबने इतना सपोर्ट किया, और बड़ी एज में जाके आई थिंक लोग अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों का सपोर्ट भूल जाते हैं आई थिंक कहीं ना कहीं जाके। तो वहां पे रहा, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसा फेज आया कि मतलब मैं कोप अप भी कर रही थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ। तो वो कुछ 5-6 साल मेरे ऐसे गए, बट उसमें मैंने क्रिएटिव चीजें बहुत की क्योंकि मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट था। मैंने बेकिंग सीखी, बेकिंग मैंने प्रोफेशनली घर से करी भी,
3: अरे
4: राइट।
3: वाह,
4: मैं काफी सेल किया, ब्राउनीज एंड एवरीथिंग वाज माय फोर्टे, बहुत मजे आते थे मुझे।
3: उस समय आप लो विजन थे या टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी एकदम आपको?
4: ऑलमोस्ट टोटल ब्लाइंडनेस, मतलब आई थिंक मुश्किल से 5% विजन बची होगी उस टाइम पे। तो उधर उस टाइम मेरे कजन ने मेरे को बड़ा अच्छा एक चीज लेके दिया था, तब वो आजकल वो आती है ना इंग्रेडिएंट स्केल टॉकिंग वाली डिजिटल, तो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल नहीं थी बट वो बाहर रहते थे, तो उनको कहीं मिली तो वो मेरे लिए इंडिया लेकर आए थे। तो तब वहां से मेरा शुरू, और मेरे को इतना आसान हो गया ना सब कुछ करना।
3: क्या बात है।
4: तो दैट वेज मैं लकी रही हूँ कि मेरा फैमिली सपोर्ट, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो इमिजिएट, सब लोग बहुत ही मतलब कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा पुश किया टू डू मोर।
3: बेसिकली वो 5 से 5-6 साल आप एजुकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन
4: नहीं, क्रिएटिव
3: आपका
4: फील्ड से
3: क्रिएटिविटी
4: मैं,
3: आपकी पूरी तरह से चालू थी।
4: राइट। मैं डांस भी सीखा, पियानो सीखा, मैंने और काफी कुछ किया होगा, तो मुझे ऐसे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि उस टाइम मेरा काफी एफ, मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था
3: हाँ, तो पता
4: कुछ।
3: नहीं था ना कि ऐसे किसी दिन इंटरव्यू में भी बताना पड़ेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट हाँ, लकीली बस इसके आगे छोटा ही है कि लकीली बस 2019 में जाके सोचा नहीं करना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती, आगे कुछ हासिल करना जरूरी है। तो मैंने बस सोचा, वापस ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, खत्म किया, फिर एक विजन एड करके एक वो है एनजीओ, वहां से मैंने अपना डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स कंप्लीट किया, एंड देन आई वाज वर्किंग एज एन एक्सेसिबिलिटी टेस्टर विद अ प्राइवेट कंपनी इन बैंगलोर फॉर 3 इयर्स, और उसके साथ साथ मैं काफी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी किए। और एज आई सेड, राइट, क्रिएटिव हमेशा मेरे अंदर में ही रहता है, तो और कुछ ऑडियो स्टोरीज के लिए अपनी वॉइस और वॉइस ओवर लैंड किया, कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मैराथन किया, और काफी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज का काफी शौक है। लकीली हम दोनों को, सो पीयूष और मैं जब मिले तो हमारा आई थिंक बॉन्डिंग फैक्टर यही था। सबसे पहले हमारी बात ही एडवेंचर एक्टिविटीज के ऊपर शुरू
3: क्या बात है।
4: हुई थी।
3: नहीं खैर, आपके मिलने पर तो हम आएंगे, और
4: राइट।
3: मेन वही काम करना है हमको, प्रोग्राम में भी आप दोनों को मिलाना है। लेकिन पहले पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको आप दोनों से अलग अलग मिलवाना है, फिर आप दोनों को साथ साथ मिलवाना है।
4: राइट। यस। तो आई थिंक
3: तो
4: लास्ट, आई थिंक आपने एक बस ये चीज पूछी थी कि अभी करंटली क्या कर रही हो, राइट।
3: हाँ जी,
4: तो एज आपने जैसे मैसेज पढ़ के बोला कि अब मैं इंश्योरेंस संभाल रही हूँ, सो ये तो आप पीयूष से वैसे पूछेंगे एंड वो बताएगा, बट उसका खुद का फाइनेंशियल
3: ठीक से कर रहे हो कि
4: सपोर्ट
3: नहीं कर रहे हो।
4: ये तो हाँ पूछना बनता है।
3: आगे ऐसे ही मैसेज भेज दिया सोशल मीडिया पे, पता चला।
4: नहीं, एक्चुअली फाइनेंस फील्ड से ऐसे ही जुड़ी मैं इन्हीं के वजह से। सो ही हैज हिज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, तो व्हेन जब हमारी शादी हुई तो ये इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, बट ही आल्सो हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस क्लाइंट्स, एंड
3: अच्छा।
4: हमारे काफी सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे एंड सबको बहुत दिक्कत आती है, हमें खुद को बहुत दिक्कत आई टू गेट इंश्योरेंस। तब
3: वो
4: हम
3: काम
4: दोनों ने सोचा कि हमें इस पे काम करना चाहिए,
3: करना चाहिए। बहुत सही।
4: तो वहीं से मेरा शुरू हुआ, एंड मैं फुली डेडिकेटेड हूँ टू द इंश्योरेंस वर्टिकल, एंड मेन स्ट्रीम की तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, बट विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम ब्रेक थ्रूज करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस में, कि उनको जितने लोगों को दिला सके विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो वो हम कर सके, तो उसी से रिलेटेड वो मैसेज था.
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस. और उस मैसेज की वजह से मैं आप दोनों को बुला पाया.
4: यस.
3: क्या बात है. और अभी कुछ आपको है आईसाइट या नहीं? अभी टोटल लॉस
4: ऑलमोस्ट टोटल लॉस है, मे बी 1% होगी, बट वो भी जैसे एकदम सब्जेक्टिव है, सनलाइट वगैरह या अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता.
3: ओके,
4: थोड़ी
3: ओके,
4: बहुत
3: ओके.
4: लाइट हो तो थोड़ा बहुत ऐसे सब पता है कहाँ है तो थोड़ा बहुत दिख जाता है ऐसे बस.
3: चलिए, अब मुझे लगता है काफी बातें हो गई आपके साथ, लेकिन
4: yes.
3: पीयूष जी कहेंगे भाई हम भी तो हैं यहाँ पर. पीयूष जी,
5: हाँ जी,
3: अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को जरा आप अपने बारे में बताएं बॉस.
5: हाँ संदीप जी, तो मैं मेरा डायग्नोसिस हुआ था जब मैं 4 साल का था. सिमिलर स्टोरी है घर में, जैसे मैं घड़ी जब जब हम देखते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं, मतलब वो पेरेंट्स का वो रहता है कि एज अ एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको टाइम देखना सिखाए, तो पेरेंट्स बार बार मम्मी पूछती थी कि टाइम देख कर बताओ, तो बहुत पास से तो मैं देख के बता देता था, थोड़ा सा भी अगर मेरे को मेरा वॉल हैंगिंग जो क्लॉक था उससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता था तो मैं नहीं बता पाता था टाइम. तो
3: जी.
5: उनको थोड़ा डाउट होने लगा, फिर डॉक्टर कई डॉक्टर्स से हम मिले, टेस्टिंग वगैरह कराया, तो 4 साल में मेरी डायग्नोसिस हुई. मैक्यूलर डिजेनरेशन पहली डायग्नोसिस थी उस समय. और उसके बाद मतलब लो विजन था, मैं ब्लाइंड तो नहीं था उस समय, लो विजन था, तो मैं फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड भी मुझे दिखता था. तो इनिशियली तो मैंने फर्स्ट रो से ब्लैक बोर्ड दे के वैसे मैनेज किया, फिर ग्रेजुअली वो ट्रांजिशन फेज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि ग्रेजुअली
3: अच्छा.
5: क्या होता है ना, जब आपका साइट आपको नहीं पता, एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स में आपका साइट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो उसमें क्या होता है आपको भी नहीं समझ आ रहा आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास जितने सारे बच्चे हैं आप भी उस समय इमेच्योर, जितने बच्चे हैं वो आराम से काम कर पा रहे, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड. कहीं ना कहीं आईसाइट, वो तो पता है कि नेचुरली आईसाइट वीक के कारण अब हमें पता है कि चलो ठीक है उसके कारण हो रहा था, बट कहीं ना कहीं अपने अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मेरा बहुत खराब हो गया, बहुत कम हो गया कि मुझे मुझे नहीं दिख रहा, आई थिंक मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है.
3: प्रॉब्लम है, राइट.
5: तो और टीचर्स ने भी कभी मतलब आई थिंक काउंसिलिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी जरूरत होनी चाहिए, और मैंने
3: exactly.
5: उस समय, हाँ उस समय रियलाइज किया. पर और जैसे मेघा का है, मेघा को स्कूल में स्पेशली इनिशियली मुझे इसको बहुत सपोर्ट मिला. मेरा इनिशियल फेज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, टिल सिक्स स्टैंडर्ड मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि बच्चे भी इमेच्योर होते हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि अगर आप ये नहीं देख पा रहे हो, तो उनको भी नहीं पता क्यों हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है वो, मतलब तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट था सिक्स स्टैंडर्ड तक. फिर इनफैक्ट एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है, स्कूल का नाम तो मैं नहीं लूंगा बट स्कूल का एक इंसिडेंट मैं बता सकता हूँ. तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरी पेरेंट को बुलाया गया, मेरी मम्मी को बुलाया गया कि एक बार आप आओ और देखो आपका बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्लास में, तो आप एक बार आओ. तो मेरी मम्मी गई और उन्होंने कोशिश किया टीचर को समझाने का कि देखिए ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता, इसके आँखों में आँखों की रोशनी कम है, ये नहीं कोप अप कर पा रहा मे बी, तो इसको दूसरी तरीके से थोड़ा कराना पड़ेगा. तो वो बोले दूसरी तरीके का कुछ होता ही नहीं है, सेम एक ही तरह होता है काम करने का, दूसरा तरह नहीं होता है. तो
3: अच्छा.
5: फिर टीचर ऐसा था कि होता है ना, मतलब पेरेंट और टीचर आमने सामने बैठे हैं टेबल के अक्रॉस, ठीक है, वो बोलते बोलते मम्मी समझाने की कोशिश करे, टीचर उठ के चली गई पेरेंट के सामने. मतलब कितनी इंसल्टिंग बात है ये, मतलब पेरेंट के लिए,
3: मतलब कोई, हाँ मदर बैठी हुई है और आपको एटलीस्ट कम से कम चलो कुछ कर नहीं पाओ तो उनकी बात तो सुन लो.
5: बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम उस समय फिर मम्मी को भी समझ में आ गया कि शायद ये स्कूल मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने 7th स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल चेंज कराया. और वो बोलते हैं कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट, मम्मी ने बहुत लड़ के कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में, जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थी फाइनेंशियली, बट कैलकटा के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में सुन के लोगों से कि नहीं ये स्कूल अलग तरीके से काम करता है, हर बच्चों को समझाना. और वहाँ पे एक और चीज मदर ने नोटिस किया कि यहाँ टीचर्स को भी काउंसलिंग होती है, एक इन हाउस काउंसलर है स्कूल में जो टीचर्स
3: अच्छा.
5: की काउंसलिंग करती है बच्चों से पहले.
3: क्या बात है.
5: तो वहाँ पे फिर मेरा एडमिशन हुआ 7th स्टैंडर्ड में. और डे वन से ही ऑब्वियसली इतना ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही चीजें बदल गई, वहां भी मैं मेघा की तरह मैं भी एक ही विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट था पूरे स्कूल में, तो पहले 2-3 साल थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट टीचर्स ने कभी उस तरह बिहेव नहीं किया, हमेशा समझने का कोशिश किया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल को भी मम्मी ने, मतलब मम्मी को प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में कि एक बार आप आओ, हम अच्छे से समझना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कैसे हम इसको सपोर्ट करें और इसको बच्चे को आगे बढ़ाएं।
3: आगे
5: तो
3: बढ़ाएं जी।
5: और वो फिर रेगुलरली मिलना चालू कर दी मम्मी से। मतलब ऐसा होता है ना कि चलो आप, मतलब 3 महीने 6 महीने हर साल होते टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो नॉर्मली टीचर्स पेरेंट्स से मिलती है, प्रिंसिपल नहीं मिलती है इंडिविजुअली पेरेंट्स से। वो हर बार मिलती थी पेरेंट्स से, मतलब मम्मी से। तो मिसेस सीमा सप्रू जो हमारी प्रिंसिपल थी द हेरिटेज स्कूल में,
3: जी
5: उनकी उनकी बदौलत आई थिंक शी वॉज द इंस्पिरेशन। मतलब वो और मेरे साथ भी लेती थी सेशंस, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट की। फिर टीचर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे कि कैसे इसको हम, ज़रूरत पड़े तो अलग से इसको पढ़ाएं समझाएं और चीज़ों को करवाएं कि ये परफॉर्म कर पाएं। फिर परफॉर्मेंस में भी इमीडिएटली रिजल्ट्स आने लगे। 9th स्टैंडर्ड से मेरा मतलब एकदम ही टर्न अराउंड हो गया, आप मानिए बिल्कुल, जो मेरा 7th 8th स्टैंडर्ड में मैं सब्जेक्ट्स में फेल होता था, बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। फिर
3: वाह क्या
5: 9th से 12th मेरा इस तरह गया, अच्छे से मैंने परफॉर्म करके अच्छी मार्क्स के साथ मैंने अपने 10th और 12th बोर्ड को फिनिश किया। फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मैं मोस्टली इस टाइप का कॉलेज में था जहाँ पे कॉलेज जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, आप दो अटेंडेंस थी बट आप मैनेज कर सकते थे, उस तरह का कॉलेज था। तो क्योंकि मेरे को एक्चुअली साथ में सीए की पढ़ाई करनी थी, तो उसमें भी प्रिंसिपल ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने, उन्होंने गाइड किया कि कैसे आप स्क्राइब करवा सकते हो। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि मेरी छोटी सिस्टर जो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके टीचर प्रिंसिपल जो मैंने जैसे पहला स्कूल में फेस किया वो भी फेस कर रही थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने
3: अच्छा
5: एफर्ट लेके, मेरी प्रिंसिपल ने उसके स्कूल की प्रिंसिपल से बात की, उसको पूरा समझाया, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल का एक्चुअली सिटी में और मतलब बाकी स्कूल में नाम भी बहुत था, तो उनको उनकी उनका कॉल या उनकी बात को कोई टाल नहीं, या मतलब एटलीस्ट सुनेंगे वो, तो पता ही था हमें। तो उन्होंने मेरी मेरी मदर के रिक्वेस्ट में उन्होंने बात करके पूरा उसके लिए भी एकदम रास्ता क्लियर करवा दिया, मेरी छोटी बहन के लिए भी। तो अब फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सीए की पढ़ाई की, जो मेरे को बीच में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं इंटर करके छोड़ दिया सीए को और मैं फिर कैट की तैयारी करने लगा। फिर कैट करके मेरी IIM रायपुर में एडमिशन हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, जो एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया में। तो वहाँ तो डेफिनेटली, और वो बोलते हैं ना कि मेघा के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिफिकल्ट था, मेरे लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज लाइक द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट मिला मुझे स्टूडेंट से, टीचर से मिला जो मिला चलो ठीक है, मतलब मैं बोलता हूँ अगर टीचर से सपोर्ट नहीं भी मिला होता तो स्टूडेंट्स और फेलो लोगों का इतना सपोर्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है।
3: कौन से ईयर में आपने IIM किया पीयूजी?
5: 2013 से 15, 15 में मैंने फिनिश किया, 2 साल।
3: जबकि जबकि उस समय भी मतलब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी,
5: हाँ, पर आप ये
3: तो
5: नहीं, मतलब
3: वहां का
5: ऐसा
3: एक्सपीरियंस तो कैसा थोड़ा बताएं, वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा
5: बिल्कुल
3: IIM का?
5: बिल्कुल
3: क्योंकि हर कोई जा नहीं पाता IIM, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए
5: हाँ
3: तो मतलब सोचना ही बड़ा मुश्किल है।
5: बिल्कुल, वो सोचना मुश्किल मेरे लिए था। पता नहीं इसको डेस्टिनी बोले या क्या बोले, हमेशा से मेरे मन में, मतलब जब से मैं स्कूलिंग में 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड इस टाइम से मेरे मन में हमेशा था कि मुझे MBA करना है। पता मुझे भी नहीं पता था क्यों करना है, बट हमेशा मन में था कि MBA करना है। और फिर ग्रेजुएशन करते हुए मेरे को ये था कि इनिशियली बहुत चैलेंजेस आया, क्योंकि कैट की, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, कैट की कोचिंग के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, सबने मना कर दिया था। तो मेरे जो ग्रेजुएशन में मुझे जो टीचर ने घर में पढ़ाते थे, वो उन्होंने कैट का कभी ट्यूशन नहीं करवाया था वैसे, पर बोले कि चलो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पढ़ लूंगा। वो मेरे साथ साथ बैठ के उन्होंने कैट की पढ़ाई में मेरी बहुत सपोर्ट की, क्योंकि जो करियर लॉन्चर और ये सब जो कोर्सेज करवाते हैं जो इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने कभी ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को लिया नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपको मटेरियल दे सकते हैं पर आप घर में पढ़ो अपने आप, हम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर उन्होंने पूरा पढ़ा के मुझे कैट की तैयारी करवाई, फिर मैंने कैट क्लियर किया। और अब कमिंग टू IIM रायपुर, कैसे मैंने वहाँ मैनेज किया, Day 1 से ही आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट मिला फेलो स्टूडेंट से कि मेरे को लगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ सारे लोगों को, और ऐसा नहीं कि एक दो, ऑलमोस्ट अब मैं आपको बोलूंगा हमारा बैच था 120 लोगों का, 50-60% बैच, मतलब आप समझ लो 50 से 60 लोग, एटलीस्ट 60 लोग मान लो, उनसे मेरा ऐसा रिलेशन था कि मैं उनको कभी भी फोन कर सकता हूँ। आज भी इस
3: क्या
5: यहाँ तक मैं इनफैक्ट आज भी ऐसा हाल है, मैं उनको फोन करके बोलूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल से मुझे एक पेमेंट करना है, वो सोचेंगे भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल भी मुझे दे देंगे।
3: क्या बात है।
5: मतलब वो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट के लिए नहीं वो कार्ड यूज करता, मैं यूज करता क्योंकि कोई डिस्काउंट होता है ना कार्ड में, आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है कोई डिस्काउंट है तो वो सोचेंगे भी नहीं कि यार ये क्या क्यों मांग रहा है, एक सेकंड वो सोचेंगे, पॉज लेंगे, ऐसा होता है ना कि भाई ये पैसा
3: ट्रस्ट
5: वापस दे तो
3: मतलब
5: दे देगा ना।
3: वो उनका इतना ट्रस्ट और इतना अच्छा आपका रिलेशन उनके साथ।
5: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो 2 साल मेरी इतनी अच्छी गई और मैंने उनको बहुत मैं दो क्योंकि क्या होते हैं 80% ऑफ द बैच इंजीनियर्स थे, तो वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए थे, उनको फाइनेंस अकाउंट्स का नॉलेज बिल्कुल नहीं था और मेरा बैकग्राउंड था अकाउंट्स का, तो मैंने भी उनकी बहुत हेल्प की, बहुत कई लोगों को पढ़ाया, तो आज भी वो याद करते हैं कि मैं उनको काफ़ी एग्जाम के पहले काफ़ी उनको तैयारी मैं भी कराता था, और जहाँ उनका सपोर्ट मैं भी मैं तो अपने लेवल पे जो कर पाया किया, पर उनका जो सपोर्ट था ऑल थ्रू आउट, जब मेरे को चाहिए चाहे रात हो दिन हो, जब मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द मटेरियल, कुछ समझना है, किसी से बात करना है, कुछ करना है, हमेशा वो अवेलेबल थे।
3: तो उस समय 100% विजन लॉस हो गया था आपका या कुछ था आई साइड
5: मतलब
3: आपको?
5: आप समझ लो 5% 4-5% कुछ
3: और
5: साइट बची
3: अभी
5: होगी, अभी आप मेघा के बराबर ही है लगभग, 1-2% साइट
3: अच्छा,
5: मेरा है।
3: मतलब आप लोग काफी चीजों में बराबर हैं। अच्छा, फिर ये वहां से आईआईएम से निकलने के बाद ये अपनी कंपनी
5: हाँ
3: रन करने के बारे में कब सोचा और कैसे ये शुरुआत हुई?
5: ये मैंने एक्चुअली सोचा आईएम करते हुए, जब मैं
3: अच्छा
5: आईएम में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे जो लोग आए हैं वो जनरली वर्क एक्सपीरियंस के साथ आए थे, वो पहले जॉब करके आए थे, तो पहले उन्होंने पैसा कमाया हुआ था, तो अब जब पैसा कमाते हो तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हो और कहीं ना कहीं कुछ सोचते समझते हो भी इन चीज़ों के बारे में, तो कई लोगों ने बैंक के कहने पे, कहीं और किसी के एडवाइस पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे, मैं उनको एनालाइज करना चालू किया, और कई लोग मेरे से पूछते भी थे वहाँ पे, मेरे फ्रेंड्स बैचमेट्स मेरे से पूछते थे कि भाई ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं, पहले तो उनको पता आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, कुछ आइडिया नहीं था, मैंने उनको उसमें गाइडेंस देना स्टार्ट किया, और मेरा मेरा रुचि इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पहले से था, स्कूल से है, स्टॉक्स इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट इनके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि पापा को मैंने इन्वेस्ट करते हुए उस समय देखा समझा, तो इंटरेस्ट मेरा था, और फाइनेंशियल एडवाइस पापा के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उनसे भी मैं डील करता था, समझता था चीज़ों को, तो अब उनको मैं समझाने लगा कि हाँ आपको इस तरह से करना चाहिए था, ये आपने गलती की है, तो वही मेरा एक्चुअली मेरे को बताया कि ये जब मैं अपने बैचमेट्स फ्रेंड्स को जब समझा रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसी को अपना करियर बनाऊँ, मुझे जॉब करने की
3: वाह,
5: ज़रूरत ही क्या है, मैं अपना ही बिजनेस बनाऊंगा और लोगों को फिर एम्प्लॉय करूंगा और जॉब्स भी क्रिएट करूंगा।
3: बिल्कुल सही।
5: तो अब उसके बाद 2015 में मैंने एमबीए फिनिश की, एमबीए के दौरान मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर जो 3 महीने का ट्राइमेस्टर था वो मैंने फ्रांस में किया था, ग्रेनोबल फ्रांस गया था मैं 3 महीने, वो भी ऑब्वियसली अपने फ्रेंड के भरोसे गया, क्योंकि हम मेरा रूममेट ही जो मेरा रूममेट था इधर आई एम रायपुर में, वो भी मेरे साथ फ्रांस गया था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो 3 महीना हमने
3: वाह,
5: वहाँ रह के पढ़ाई की, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिला उन लोगों, मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे अमेरिका से लोग थे, अफ्रीका से थे, चाइना से थे, रशिया से थे, तो हर यूरोप से तो ऑब्वियसली थे ही, तो हर जगह के लोगों से इंटरेक्ट करके काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर और चीज़ें सीखने को मिली, तो फिर मैं जब वापस आया 6 महीने मुझे लगे चीज़ों को समझने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इट्स नॉट जस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ करना है, अभी आपको पता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑपरेशंस कैसे सेटअप करना है, किस तरह के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, किस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, पूरा सब सेटअप करने में मुझे 6 महीना लगा, एंड ऑफ 2015 या अर्ली 2016 में मैंने अपना बिजनेस चालू किया, अभी लगभग मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, मेरे अभी 350 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं इंडिया में, और कुछ एनआरआई क्लाइंट्स भी हैं मेरे जिनको मैं सर्विस देता हूँ, मेरे कैलकटा में से ज़्यादा एक्चुअली बाहर क्लाइंट्स हैं, और लगभग 25 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को भी हम सर्विस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को मैनेज कर रहे हैं, और
3: और आपने जॉब जॉब कितने लोगों को दी हुई है पीयूष जी?
5: जॉब अभी हमने अभी तो हम 5 लोगों को हमने रखा है अपने टीम में, अब टीम अब इनिशियली ऑब्वियसली सैलरी देना हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि डे वन से ऐसा है कि एक मारवाड़ी बिजनेस बैकग्राउंड से होता तो आप लॉस में तो काम नहीं कर सकते, तो डे वन से, पर यह है कि अब धीरे धीरे हमारा भी बिजनेस बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया कि हम हर साल कुछ डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे।
3: वेरी गुड, चलो करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि भाई अब ऑप्शंस हैं लोगों के पास। चलिए, वो तो श्रोताओं सुन रहे हैं आप प्रोग्राम हमराही, और आज पीयूष राखेजा जी और मेघा राखेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। तो काफी बात हो गई अब आप लोगों की पर्सनल जो जर्नी रही है अब तक की उस पर, तो लेकिन अब असली कहानी पर आते हैं जिसके लिए ये प्रोग्राम है। तो मेघा जी बताइए, ये दिल्ली में रहते हुए दिल कैसे मिला पीयूष जी से?
4: ये हम आज दोनों को साथ में बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा।
3: थोड़ा थोड़ा, हाँ तो बताओ ना, बिल्कुल दोनों बताइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरुआत
4: सो
3: कहाँ से हुई मिलने की?
4: शुरुआत ऐसे हुई कि दिल्ली में तो मेरे इतने कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे नहीं, और ज्यादा किसी कम्युनिटी में किसी को इतना जानती नहीं थी, कनेक्टेड नहीं थी। इवन इन 2024 तक यही सच था। व्हाट्सएप
3: अच्छा,
4: ग्रुप्स, हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी पार्ट, बट ऐसे किसी को नहीं जानती थी इतना। फिर एक दिन मैं अपनी मम्मी के साथ धर्मशाला गई थी, एंड हम उनके फ्रेंड के ही रुके हुए थे। सो आंटी की एक नेबर थी जो दिल्ली से थी, एंड वो जब मुझसे मिली तो एकदम से ऐसे पूछी कि तुम्हारे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं दिल्ली में? तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है। तो कहती है तुम यू नो यू शुड नो योर कम्युनिटी, बहुत सीखने को
3: सही
4: मिलता है ना।
3: है।
4: तो वो मुझे एक जने का नंबर दी, उनने कहा इनका अपना एनजीओ है, दिल्ली में रहते हैं और इनके काफी फ्रेंड्स और काफी गेट टुगेदर्स और फंक्शंस होते हैं, तो आपको मिलने को बहुत लोगों से मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो वो एक किसी का नंबर दिए, एंड मैं वापस आई, उनसे बात हुई, एंड उनका एक गेट टुगेदर हो रहा था सितंबर में। तो उन्हें बोला कि यू नो आप व्हाई डोंट यू कम, हम लोग फ्रेंड्स ही हैं, 13-14 लोग हैं, एंड उसमें ना काफी सारे मैरिड कपल्स भी हैं जो दोनों
3: अच्छा,
4: ही विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, और बहुत अच्छा, वेरी एजुकेटेड ग्रुप, सब वर्किंग है, अच्छे से इंडिपेंडेंट हैं, तो और सब मेरी एज के ही थे। तो उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, यू विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई, 2 दिन का प्लान था।
3: सिस्टर के साथ गए अकेले? अरे
4: नहीं, अकेले, क्योंकि ये सिर्फ सारे विजुअली
3: अच्छा,
4: इम्पेयर्ड ही थे।
3: ओ
4: और वो मेरे, नहीं अब मेरी सिस्टर तो है नहीं ना यहाँ, वैसे भी यूएस में है, तो अब सोच लिया था कि और लोगों से मिलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे
3: जरूरी
4: अकेले
3: है,
4: अकेले तो नहीं इतना टाइम निकलता।
3: निकलता बिल्कुल सही
4: हाँ,
3: है।
4: और अब जॉब भी कर रहे हो तो आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, तो बहुत मतलब यू नीड दैट सोशलाइजिंग।
3: कहाँ का ट्रिप था वो मेघा जी?
4: दिल्ली का ही था, गुड़गांव में हम लोगों ने एक, हाँ जी,
3: ओके
4: गुड़गांव में एक
3: ओके।
4: होटल बुक करके, तो ये लोग सब मिलते हैं तो पूरा अपना दिन पार्टी करते हैं, बातें बातें करते हैं, मिलते हैं, खाना पीना होता है, तो इट वाज गुड फन। तो मैं वैसे तो बड़ा डर डर के गई थी मम्मी
3: हाँ
4: को
3: वही,
4: बोल
3: मैं भी मन में वही सोच
4: के
3: रहा था कि ऐसे मतलब आप तो फिर भी चले गए, नहीं तो हर कोई सोचेगा यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी और बाकी सब इश्यूज का क्या होगा।
4: देखो चांस कभी कभी लाइफ में लेना पड़ता है, और प्लस मैं वैसे पर्सनली किसी को जानती तो नहीं थी, बट इससे पहले हम लोग डिनर पे मिले थे एक बारी, तब मैं एक लड़की से मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये भी होगी तो यू नो ठीक ही रहेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड वही जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब देखो
3: आपकी
4: अच्छी
3: तो कहानी
4: फैमिलीज।
3: सिमरन से बहुत मिलती जुलती है।
4: हाँ तो शायद मेरा राज आ ही गया वहां पे, मिल ही गया था।
3: राज पता नहीं, राखे जा जरूर आ गया।
4: वही है, मैंने चांस लिया, पर मैं मम्मी को बोल के गई थी कि देखो अगर मैं बोर होंगी, ज्यादा दूर तो है नहीं, आप मुझे लेने आ जाना। बट लकीली हम वहां पहुंचे, तो पहले तो हम लोग ने किया, पीयूष था नहीं वहां पे उस टाइम, और मुझे पता नहीं था कि पीयूष के बारे में उस टाइम कुछ, तो ये बाय चांस उस टाइम कैलकटा से दिल्ली आया हुआ था, इसकी कोई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस थी,
3: अच्छा
4: तो हाँ, और ये भी वहां सबको जानता था तो ये भी इनवाइटेड था। तो शाम को ये हम लोग सब स्विमिंग विमिंग करके आए, अपना तैयार व्यार हो रहे थे, तो एकदम से ये आया वहां पे, एकदम एंट्री मारी, एंड
3: ओहो
4: हाँ बिल्कुल आया, एंड देन बस एकदम से एक होता है ना कनेक्शन, आपको फील होता है हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को हाय बोला, बट उतने में ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ कनेक्शन है।
3: मतलब कुछ तो है।
4: हाँ ये पीयूष को
3: कुछ है
4: ज्यादा
3: कुछ
4: लगा था
3: कुछ
4: वैसे, आप इससे पूछना जब इसकी बारी आएगी। एंड देन बस पूरा रात बाय चांस ऐसा होता रहा कि हम एक
3: आपको तो
4: दूसरे
3: कुछ पता थोड़ी था कि ये सिंगल है, कि मतलब कहाँ से है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता थोड़ी था आपको? लेकिन
4: सिंगल था ये पता था, क्योंकि ग्रुप में जो मैरिड थे उनके बारे में तो पता ही था, और बाकी सब हम सिंगल ही थे। एंड
3: अच्छा, मतलब
4: हाँ
3: बेसिकली आपके नाम वगैरह और वो क्या बैकग्राउंड है, क्या बायो क्या है, वो सब छोटा मोटा आपको मालूम था कुल मिला के?
4: नहीं, सिर्फ इनका नाम पता था और थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि क्या हुआ था उसी के 2 हफ्ते पहले ना, इनका एक यूट्यूब पे वीडियो आई, ये चंद्रशिला ट्रेक के लिए गए थे,
3: अच्छा,
4: तो वो वीडियो मैंने देखा था, क्योंकि एज आई सेड ना मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज का बहुत शौक है।
3: बहुत शौक है, राइट।
4: तो आई वॉज लाइक एक वी आई कम्प्लीटली ब्लाइंड ये ट्रिक्स कैसे कर रहा है, तो मैंने इसका वो वीडियो देखा था तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो एक्चुअली यही हुआ कि जब हम मिले तो इनका नाम पता था, बेसिक पता था, बिल्कुल 2 3 4 चीजें।

0: एंड
1: ये आपका ऐसे मिलना हुआ आपका। और पीयूष
0: यस
1: जी,
0: हाँ
1: आपको
0: जी
1: भी कुछ कुछ हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था?
0: मेरे को तो बहुत कुछ हुआ था, जो झूठ क्यों बोलूं, पर ये पहला मीटिंग में इतनी देर हमने बात की, आप समझो कि ऑलमोस्ट पार्टी चल रही थी, मैं आया उधर शाम को 6-7 बजे, 8-9 बजे से पार्टी हुई और सुबह 4 बजे तक चली, ऑलमोस्ट हम आधे से ज़्यादा टाइम हम दोनों ही बात कर रहे थे साइड
1: अरे भाई
0: बाय
1: साहब,
0: साइड बैठ के
1: लोगों को तो वही समझ में आ गया होगा
0: हाँ वो तो उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा
1: कि गेट टुगेदर जो है सफल हो गया।
0: बिल्कुल नहीं, मेरा भी स्टोरी मेघा जैसे ही है, मैं विजुअली इम्पेयर्ड जो कम्युनिटी है हार्डली लोगों को जानता था, सिर्फ 2-3 लोगों को ही जानता था, फिर आई थिंक बिजनेस के वजह से ही, काम के वजह से ही, पहले किसी ने बोला कि जॉर्ज के पास आपको रेकमेंड किए हैं, जॉर्ज सर एक सेशन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि फिनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेसिबल वे में कैसे पर्सन विद डिजेबिलिटीज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेशन किया और वहाँ काफ़ी चीज़ों को समझा, तो उसके बाद मेरा धीरे धीरे कम्युनिटी में, हाँ
1: उसी ट्रिप में?
0: नहीं
1: नहीं
0: उस ट्रिप में
1: नहीं
0: नहीं, ये
1: उससे
0: थोड़ी
1: पहले
0: थोड़ी
1: कॉकरेल
0: पुरानी, उसके आई थिंक
1: फेस्ट
0: उससे
1: के
0: दो
1: पहले के,
0: साल
1: उससे पहले के बाद।
0: मतलब हम मिले 2024, ये 2022 की बात है,
1: की
0: टू
1: बात है।
0: थाउजेंड
1: ओके।
0: ट्वेंटी टू में मेरा पहला सेशन हुआ था जॉर्ज के साथ, फिर जॉर्ज के साथ तो मैंने जॉर्ज सर के साथ करीब करीब 3-4 सेशन किया है, फिर उन्होंने मुझे एक बार ये जो पर्पल फेस्ट होता है गोवा में
1: जी
0: 2024 में, उन्होंने जनवरी के महीने में
1: हाँ,
0: हुआ
1: सेम
0: था,
1: योर। हाँ
0: हाँ, तो उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था वहाँ पे कि हम एक लाइव सेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो आप गोवा आओ और अपने अपनी जो जर्नी है, कैसे आपने चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किए और कैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आज लोगों के साथ आप शेयर करो वहाँ आकर। तो ऐसे ऐसे कई सारे, जैसे दानिश जी के साथ भी मैंने किया है सेशंस, तो इसके कारण क्या है कि लोग जानने लगे कम्युनिटी में, तो ऐसे कनेक्शन बढ़ता रहा, और गोवा में ही आई थिंक गोवा में जब मैं गया था तभी मैं सबसे ज़्यादा लोगों से मिला, और एक होता ना कि आपको कम्युनिटी में भी लाइक माइंडेड लोग चाहिए जिसके साथ आप समय बिता सको, चीज़ें डिस्कस कर सको, तो वहाँ पे मुझे गोवा में कई लोग ऐसे मिले, और वहाँ से फिर मेरा काफ़ी इस कम्युनिटी में भी काफ़ी जान पहचान लोगों से हुआ, और अभी मैं एक थोड़ा बहुत कनेक्टेड हूँ कम्युनिटी में लोगों से, और यही होता है ना कि आपकी एक, मैं वही बोलता हूँ ना, बिजनेस के वजह से ही मैं आज कम्युनिटी में भी कनेक्टेड हूँ, और मेरी शादी भी, मैं कॉन्फ्रेंस में गया म्यूचुअल फंड का, वहाँ मुझे मेगा भी मिल गई
1: अच्छा
0: ये वो भी थोड़ा डिग्रेस हो गया, आई थिंक ये वही है कि पर्पल फेस्ट में जब ये गया तो उसी टाइम ये भी उन्हीं लोगों से वही मिला था, सो द सेम ईयर जब मैं उस पूरे
1: ओहो,
0: ग्रुप से मिली, वो भी सेम ईयर स्टार्टिंग में उस ग्रुप से वहां पर्पल
1: बताइए
0: फेस्ट पे मिला
1: कहाँ दिल्ली, कहाँ कोलकाता, कहाँ धर्मशाला, कहाँ गोवा और कहाँ
0: सही में
1: गुड़गांव
0: सच्ची में तो वही है ना, जब मिलना होता है, लिखा होता है, तो हो ही जाता
1: हाँ, तो हम थे गुड़गांव के ट्रिप पर, वहां पर बहुत बातें की आप दोनों ने मिलकर के। और बातें करने के बाद फिर ये कब तय हुआ कि भाई अब तो बातों से काम नहीं चलेगा?
0: बहुत जल्दी, क्योंकि मैं देखिए हमारे दोनों का ही माइंडसेट हमेशा ऐसा था कि ऐसे ऐसे तो कोई शादी की बात भी नहीं हो सकती, पहले आप एक जन को जानोगे, समझोगे, एटलीस्ट 1-2 साल निकलते हैं, उसके बाद आप सोचोगे कि क्या हम दोनों लाइक माइंडेड हैं, हम दोनों कंपैटिबल हैं, और शादी की सोचें। हम तो लगभग सितंबर एंड में मिले थे, और आप समझ लो नवंबर मिड में तो हमने डिसाइड ही कर लिया था कि हम शादी कर रहे हैं,
1: अरे
0: आप
1: भाई
0: समझ लो
1: साहब,
0: ऐसे,
1: जैसे
0: या आप समझ लो
1: इसने डिसाइड
0: नवंबर
1: किया था, इसने डिसाइड किया
0: चलो
1: था।
0: इसने नवंबर एंड में डिसाइड कर लिया, ठीक है, 15 दिन बाद इसने
1: अच्छा।
0: डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो
1: हाँ,
0: मतलब
1: नहीं,
0: आप
1: मैं
0: समझ
1: वही
0: लो
1: पूछ
0: दो
1: रहा हूँ,
0: महीने
1: मैं उस पर आने वाला भी था कि भाई प्रपोज किसने किया पहले?
0: इसने प्रपोज मैंने किया था, बट मैं ये बोलूंगा कि 2 महीने में, आप पॉइंट हुई है कि 2 महीने में ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में मेरे को इतना मैं श्योर हो जाऊंगा कि 2 महीने में मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे शादी करनी है,
1: नहीं कि
0: एंड आई
1: मुझे
0: थिंक
1: परफेक्ट, मुझे मेरी सेनोरिटा मिल गई है।
0: नहीं सही बात है, आई थिंक यहाँ पे मैं भी यही बोलना चाहूंगी, बिकॉज यू नो एक होता है, आप एक सर्टेन टाइम से जब आप नहीं किसी के साथ होते हो एंड ऐसा कुछ हो भी नहीं रहता है, तो आई थिंक आपके माइंड में वो चीज़ आ भी जाती है कि चलो अब तो शादी नहीं करेंगे, बट ठीक है फ्रेंड्स हैं, जॉब है, आप सक्सेसफुल हो, तो वो शादी का पॉइंट भी नहीं होता, एंड अब ऐसा नहीं है, हम मिले भी काफ़ी, ये लोगों से मिला होगा इससे पहले, मैं भी मिली, लेकिन किसी के साथ ना कभी

0: कनेक्शन फील नहीं हुआ कि चलो इसको यू नो किसी चीज में कन्वर्ट करा जा सकता है. बट आई थिंक
1: मेघवा जी, मैं पूछने वाला ये था कि लाइफ पार्टनर के बारे में, मतलब चलो आप अकेले थे, सब कुछ था, ब्लाइंड कम्युनिटी को नहीं जानते थे, उस दौरान मतलब कुछ तो सोचा होगा कि यार पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी करूंगी तो इससे करूंगी उससे करूंगी, तो वो कैसा था दौर?
0: आई थिंक जैसे पहले तो 20s में तो ऐसा लगता है हाँ चलो कोई तो मिल ही जाएगा. काफी कुछ हम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग. और मेरा क्या था कि और ये आई थिंक काफी लोगों का होता है. हम आई थिंक पहले भी इसके बारे में आप और हम शो से पहले बात कर रहे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड खुद हो के आपको ये लगता है यार कोई साइटेड मिल जाए. और ऐसा ही था मतलब पहले. और मेरे एज आई सेड राइट मेरे कोई विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स या कम्युनिटी में कोई कनेक्शन था नहीं. मैं हमेशा मेनस्ट्रीम
1: आपके सर्कल में मेन स्ट्रीम के लोग ही थे?
0: राइट तो हमेशा वही रहे हैं और वही मेरे लाइफ का पार्ट भी रहे हैं. उसी ग्रुप में मतलब फ्रेंड्स के साथ साइड फ्रेंड्स के साथ अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं. बट कभी कुछ पैन आउट हुआ नहीं. फिर एक सर्टेन एज के बाद आके तो यही लगा कि देखो शादी जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए तो नहीं करनी थी. करती तो इसलिए करती कि हाँ कोई सच्चा मिला तो. एंड जैसे सबके साथ होता है मेरे पेरेंट्स ने भी अरेंज मैरिज में भी किया जैसे पोर्टल्स वगैरह पे. दो तीन लोगों से मिली कुछ साइटेड कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से. पहले तो पेरेंट्स का यही था कि नहीं साइटेड से ही करो तुम दो विजुअली इम्पेयर्ड कैसे मैनेज करोगे जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होगी. और वही मेरा भी माइंड फ्रेम था. बट और फिर काफी लोगों से मिली बट किसी से कभी कनेक्शन फील नहीं हुआ. फिर धीरे धीरे करके यही सोच लिया कि ठीक है नहीं होएगी तो नहीं होएगी. यू नो अब ठीक है कभी कोई मिल गया तो देखा जाएगा. अरेंज मैरिज तो नहीं करूंगी और बाकी कुछ होगा तो वील सी इन द फ्यूचर. तो वही माइंडसेट हो भी गया था. एंड पेरेंट्स भी आई थिंक यही सोच रहे थे कि ठीक है हमारे साथ खुश है तो हमारे साथ ही रह ले कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसी माइंडसेट में ही आई थिंक चलते चलते बट सडनली पीयूष के साथ इट जस्ट हैपेंड कि वो एकदम क्लिक हुआ. ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लिक हुआ कि बस 2 महीने में ही सब कुछ हो गया. सोचा ही नहीं कि अरे 2 साल की जरूरत भी है. अब
1: डिसीजन लेने में टाइम क्यों लगा मेगा जी? नहीं,
0: इतना टाइम तो चाहिए. दो महीने से कम
1: पीयूष
0: तो बहुत कम है.
1: ने कहा ना 15 डेज बाद आपने भी डिसाइड कर लिया था।
0: अब थोड़ा टाइम तो लगता है. अब एक्चुअली जैसे
1: अच्छा, तो मन में आ गया था आपके कि यार मतलब यही कर दे प्रपोज पहले तो ठीक रहे।
0: हाँ वो तो था ही ऑफ कोर्स. एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि पीयूष मतलब कि किसी को डेट कर या किसी को लाइक करता है या नहीं करता. जब हम मीटिंग हमारी हुई हमने काफी बात की तब ऐसा लगा तो कि सिंगल है. जैसे आपने पूछा भी था ना इस सेट की तब वहां सब सिंगल ही थे. बट फिर भी किसी के लाइफ में कोई हो तो पता तो ऐसे रहता नहीं है. और किसी से ऐसे डायरेक्टली पूछो तो अजीब लगता है. तो अक्टूबर हम पूरा महीना ऐसे बात करते रहे एंड ऑन एंड ऑफ बात होती रही. फिर तब लगता था जैसे आप कह रहे हो ना यार खुद ही बोल दे तो सही रहेगा.
1: काम आसान हो जाए, अपन को नहीं बोलना
0: हाँ
1: पड़े,
0: तो देखो लाइक
1: अपना काम,
0: लाइक हाँ जी
1: अपना काम खाली सोचने का ही रहे।
0: हाँ सही में कि हाँ ना बोलो खत्म. तो लाइकिंग तो थी ऑब्वियसली. एंड जब इनने प्रपोज किया ही ऑब्वियसली प्रपोज्ड फॉर अ रिलेशनशिप. पहले शादी का था माइंड में बट पहले देखा था कि ठीक है अभी तक मिले एक ही बारी है मिलके थोड़ा पता चलेगा. तो ही प्रपोज्ड एंड देन नवंबर के एंड में ये दिल्ली आए थे. उस टाइम इनको एनएबी से एक अवार्ड मिल रहा था तो ही केम अ फ्यू डेज अर्ली सो दैट हम लोग थोड़ा मिल पाए टाइम स्पेंड कर पाए. तो उस टाइम बस मिलके ही लगा फर्स्ट टाइम में कि नहीं यार जो डिसीजन लेने का सोच रहे हैं वो अच्छा है. इट वुड बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी. तो ही मेट माई फैमिली मम्मी पापा से मिला. इसके कुछ कजिन्स दिल्ली में रहते हैं इसके भैया तो उनसे मैं मिली. एंड हमें काफी पॉजिटिव फीलिंग आई. तो हाँ तो इसलिए वो तब उस टाइम मेरे लिए डिसीजन लेना ईजी था कि हाँ ठीक है शादी कर सकते हो इससे.
1: ओके, वेरी गुड। और नवंबर से मई 2025 में तो आपकी शादी हो गई।
0: यस लिटरली वो बोले चट मंगनी पट बिया.
1: तो नवंबर से अप्रैल तक, मई तक का जो दौर था वो कैसा था?
2: ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें अपने पेरेंट्स को भी बताना था. तो नवंबर मिड में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसे मैं किसी से मिला था दिल्ली में और मैं उसको लाइक करता हूँ. तो इनिशियली पेरेंट्स पहले मेरे हम दोनों के पेरेंट्स ऐसे ही थे कि देखो दो वीआई की शादी तो बहुत मुश्किल है. ऐसा करना आगे लाइफ में दोनों के लिए डिफिकल्टी होगा। इससे बेटर है कि कोई साइटेड को ढूंढ ले, भले और चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज कर ले, बट ऐसे फिर और वीआई कपल, जो एक और वीआई कपल से, विजुअली इम्पेयर्ड कपल से, मेरे पेरेंट्स कैलकटा में मिल के इतने इम्प्रेस हुए कि ये देखो ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने खुश हैं, और इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और इतना मतलब ऐसा लगता नहीं इनसे मिल के कि ये बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ अपना साइट को लेके या ब्लाइंडनेस को लेके बिल्कुल भी चिंता करते हैं। तब उनसे मिलके और उनसे बात करके उन्हें उन्हें ये समझ में आ गया कि विजुअली इम्पेयर्ड सामने वाला, अगर लड़की विजुअली इम्पेयर्ड मिलती है तो भी इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब मैंने मतलब पेरेंट पहले तो पेरेंट्स ने एकदम मना कर दिया था, फिर पेरेंट्स सामने से बोले कि नहीं ये ऐसा कुछ आता है रिश्ता तो हमें बिल्कुल देखना चाहिए। तो फिर जब मैंने बताया तो बहुत ईजी हो गया, जब नवंबर में मैंने पापा मम्मी दोनों को बताया तो बहुत ईजी था, उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा उस बारे में, बट लड़की के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर ये था कि उनको कि एक बार मिल लें और एक बार लड़की को देख लें, उसके बाद फिर देख लें आगे क्या क्या करना है। तो दिसंबर में फिर दोनों के पेरेंट्स मिले, हम ये क्या इसके पेरेंट्स और मेघा दोनों कैलकटा आए थे, सब मिले, और फिर वहीं ट्रिप में ही डिसाइड कर लिया। आगे हमने फिर जनवरी में रोका कर लिया और फिर मई में शादी।
1: तो पीयूष जी, मेघा से मिलने से पहले, क्योंकि आप भी थ्रू आउट पूरा मतलब मेन स्ट्रीम में ही रहे, कभी ये था मन में कि यार ब्लाइंड से शादी करनी है या साइटेड से करनी है, या फिर मतलब जो मिल जाए उससे करनी है, क्या सोचा था आपने?
2: देखिए पहले 20s में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे इसका था ना, मेघा ने बताया कि कुछ न किसी ना किसी से शादी हो ही जाएगी, इतना मैंने सोचा नहीं कभी। लेट 20s में ही मैं रियलाइज करने लगा कि पता नहीं कोई मिलेगा भी कि नहीं, और पेरेंट्स भी रिश्ता देख रहे थे, साइटेड ही देख रहे थे वो, विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख रहे थे, बट कोई रिश्ता वैसा आ नहीं रहा था, और कोई रिश्ता आता भी नहीं तो आपके मन में डाउट होता है, भले ये अगर सामने से ऐसा रिश्ता आ रहा है तो क्यों ऐसा आ रहा है ना, मतलब अगर मैं साइटेड होता तो मैं क्यों ही विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों सोचूंगा, जबकि लव मैरिज अगर नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो क्यों कोई ऐसा देखेगा रिश्ता। तो वो एक फेज था जिसमें ये था, बट फिर मतलब ये मेरे को था कि विजुअली इम्पेयर्ड कोई अगर मिलना होगा तो मिल जाए, मैं ओपन हूँ, मेरे को कोई ऐसा कुछ इशू
1: कोई
2: या
1: दिक्कत
2: प्रॉब्लम
1: नहीं,
2: नहीं है, और क्योंकि मैंने लास्ट 2-3 सालों में कई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिला, समझा कि काफ़ी अच्छे से सब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, खुश है, और काफ़ी चीज़ों में एक्सेल भी कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ एप्रिहेंशन नहीं था कि विजुअली इम्पेयर्ड से नहीं करना है या करना है, मैं दोनों तरह से ओपन था।
1: आप दोनों की स्टोरी सुन के ना एक बात मेरे मन में आ रही है,
0: हाँ जी
1: और मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं। जो लोग ब्लाइंड फील्ड में रहते हैं शुरू से, उनको जब ये शादी की बात आती है तो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी फॉर ब्लाइंड सेम डिसेबिलिटी, उनको डिसीजन लेने में कई बार मैंने देखा है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप दोनों थ्रू आउट मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन आप दोनों को, आप दोनों वीआई हैं, तो आप दोनों को ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्या रीजन है इसके पीछे?
2: आई फील दोनों का कॉन्फिडेंस, मेघा का कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि ये चीज़ों को कितने अच्छे से करती है, शी इज सो कॉन्फिडेंट, अगर इसको देखोगे आप हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, शी इज कॉन्फिडेंट, और मिलके बात करने का तरीके से लगा कि कोई फील ही नहीं होता इसको कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको कई बार लो लगता है कि ये मोटिवेटेड नहीं है, डिमोरलाइज्ड है खुद, कई बार ऐसा लगता है, बट मेघा से मिलके मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आई थिंक मेघा ने भी मेरा जब ट्रैकिंग वाला स्टोरी सुना और ये समझा कि मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो आई थिंक उसको भी ये चीज़ अच्छी लगी।
0: आई थिंक वही बात है कि लाइक माइंडेड लोग मिलना ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि ब्लाइंड लोग जो स्टार्टिंग से इस कम्युनिटी में है उनको डिसीजन लेने में मुश्किल रहता है, आई फील कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढते, आप ना ये सोचते हो कि ठीक है हमको कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है हम लोग ही साथ में हो लेते हैं, एटलीस्ट कोई रहेगा साथ में जिंदगी भर, बट वो मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज है, और वो ठीक है आपको कंपेनियनशिप मिल जाएगी, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना कि हाँ आपके साथ सच्ची में कोई है। तो जब मैं पीयूष से मिली तो मुझे यही ऑनेस्टली लगा कि कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो या साइटेड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप क्लिक करते हो, आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंट हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
1: मेरे क्वेश्चन का ये तो एक पार्ट रहा है ना,
0: हाँ जी
1: और लेकिन हो सकता है 1,000 में से एक दो लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आप लोगों ने जो बात अभी कही अपने आंसर में बिल्कुल ठीक कही अपने अपने हिसाब से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को यानी जो शुरू से ब्लाइंड फील्ड में रहे उन्हें एक दूसरे के चैलेंजेस का पता होता है, और चूंकि आप दोनों नहीं रहे ब्लाइंड फील्ड में तो आप लोगों के लिए चैलेंजेस मैटर नहीं करते थे एक दूसरे के?
0: आई डोंट थिंक, मे बी आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं दैट पीयूष या मुझे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस नहीं रहे. एंड स्पेशली जब आप पहले देख सकते हो और फिर आप अपनी साइट खो देते हो, तो थोड़ा डिप्रेसिंग ज़्यादा लगता है फील, क्योंकि एक चीज़ करते करते एकदम से उस चीज़ को नहीं कर पाना और उस वजह से काफ़ी चीज़ों को छोड़ देना, और फिर उसके बावजूद आप इतनी सारी चीजें लाइफ में अचीव कर लेते हो क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस पीयूष का मुझे अट्रैक्ट करता है देन चैलेंजेस. बट आई से हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम एक दूसरे के चैलेंजेस को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं बिकॉज हम दोनों लेट ब्लाइंड हैं, तो हमें वो ही जो मैं आपको बोल रही हूँ वो डिप्रेसिंग फेज और हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए ऑफ रीलर्निंग, जैसे एक छोटी सी बात कहूँ कि
1: आइसोलेशन में भी एक तरह से आप मेन स्ट्रीम में होते हुए भी आइसोलेशन में रहे.
0: बिल्कुल बिल्कुल वो चैलेंजेस राइट, ये जब आप देख सकते हो कि आपके आसपास सब लोग सब कुछ कर रहे हो और आप नहीं कर पा रहे, वो भी एक अपने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड एक छोटा सा एग्जांपल लूँ तो आप सिंपली एक मोबिलिटी की बात कर लीजिए व्हेन इट कम्स टू व्हाइट केन. जो लोग स्टार्टिंग से ब्लाइंड होते हैं, मैंने देखा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं केन यूज करने के लिए, क्योंकि हमेशा से उनका माध्यम मोबिलिटी का वही रहा है. बट ये लेट ब्लाइंड में हमने देखा और हमारे साथ भी हुआ है कि हमें इनिशियली बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना टू वॉक विद अ व्हाइट केन.
1: व्हाइट कैन.
0: हाँ जी, तो हम इसलिए बहुत बारी खुद से चल के ये नहीं, हम तो चल ही लेंगे, हम बहुत गिरे हैं, हमें बहुत लगी है, और हमें सब बोलते हैं अरे तुम कितने पागल हो, व्हाइट केन यूज करो कितना आसान हो जाएगा. बट वो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो इमोशनली एक बहुत मुश्किल चीज है टू एक्सेप्ट. तो पीयूष और मैं एक दूसरे के बारे में वो चीज समझ पाते हैं कि हमें कितना डिफिकल्ट हुआ वो चीज को एक्सेप्ट करना. एंड अब बल्कि हम दोनों ऑनेस्टली बताऊँ तो हम दोनों को जरूरत है, हमें यूज करना चाहिए, बट हम शादी से पहले दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहा था. बट अब शादी के बाद आई थिंक हमने एक दूसरे का उस चीज में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अब हम दोनों अकेले बहुत घूमते हैं, हम डिनर्स लंचेस शो सब जाते हैं अकेले, और हम व्हाइट केन लेके जाते हैं एंड हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं कि हाँ व्हाइट केन तो यूज करना ही, और हमें वो नॉर्मल लगता है. तो
1: जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं दोस्तों, समझिए आपको कि ये लोग आज मतलब अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट रख सकते हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इनको व्हाइट केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है. जी
0: हाँ जी, तो हाँ मैं तो बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि जैसे हम बिल्कुल जैसे पीयूष भी, आई थिंक पीयूष अपना ओपिनियन तो हम लोग को ना एक्चुअली इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक है, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों बहुत फूडी हैं, एक तो ये कैलकटा से हमें दिल्ली से हो तो दोनों को खाने का शौक बहुत है
1: शौक है ही बिल्कुल.
0: एंड हम लोग को काफी
1: अच्छा, आप
0: ऐसे
1: दोनों के
0: मिले.
1: बीच में कहीं वेज नॉन वेज वाला इश्यू तो नहीं आया?
0: नहीं, हम दोनों
1: क्योंकि
0: वेजिटेरियन
1: अच्छा फिर
0: है.
1: ठीक है, वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है ना कि नॉन वेज थोड़ा ज्यादा चलता है.
2: ऐसे एक्चुअली मैं जैन हूँ, राजस्थान से हूँ, बट फैमिली हम पहले से ही, मेरे बर्थ के पहले ही यहाँ सेटल हो गई थी कैलकटा में. तो शुरू से ही हम वेजिटेरियन रहे हैं.
1: वेरी
2: और
1: नाइस.
2: कमिंग कमिंग टू योर टॉपिक, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दो विजुअली इम्पेयर्ड लोग रहते हैं या उनकी उनकी शादी होती है या कंपेनियनशिप होती है, तो आई थिंक थोड़ा मेरे हिसाब से बेटर इसलिए रहता है क्योंकि चीज़ें जो आपको पसंद है बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिमिलर हो. और जैसे आप मान लो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, एक्साइटेड है और एक विजुअली इम्पेयर्ड है एक शादी में या मतलब एक रिलेशनशिप में, तो कई बार होता है कि जो साइटेड इंसान है उसे साइट सीइंग की शौक है और ऐसे कई चीज़ें शौक है जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, उनको उसके उसके मतलब का चीज़ नहीं है. पर जब दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हो तब उनके वो लाइक माइंडेड भी होते हैं और उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें कई बार सिमिलर मैच हो जाती है.
0: मतलब ये मैं इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कपल्स हैं जहाँ हम लोग जानते हैं पर्सनली, जो एक विजुअली इम्पेयर्ड और एक्साइटेड है, वो लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं. बट वही एक दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है, बिकॉज आई फील एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को मोटिवेट करना कि और ग्रो हो इंसान, बेटर चीजें करे, वो इम्पोर्टेंट है. आई फील एज एस एक लाइक माइंडेडनेस, कंपैटिबिलिटी, वो इम्पोर्टेंट है. अब चाहे विजुअली
1: बहुत
0: इम्पेयर्ड हो
1: बढ़िया,
0: साइटेड हो, डजेंट मैटर.
1: काफी सीरियस बातें हो गई. जरा ये बताओ, हनीमून प्लान किया कि नहीं दोनों ने?
0: बिल्कुल किया। एंड हम लोग अकेले गए भी, हमारे लिए फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप अलोन था। एंड
1: ओ
0: यस, एंड हम लोग ने पहले एक्चुअली बहुत डिबेट किया। हमने सोचा इंडिया में पहले कहीं सोचा चले जाए, क्योंकि इजी रहेगा, राइट? इंडिया में अपने ही लोग हैं, असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाता है। बट फिर पीयूष ने एक्चुअली पुश किया कि नहीं यार, बाहर जाने का मन है तो चलते हैं, वर्स कम वर्स क्या होगा, हम होटल में बैठे रह जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे। बट
1: सही
0: ट्राई
1: है।
0: नहीं, है ना, तो ट्राई नहीं किया तो वो बनता नहीं। तो हम लोग ने फिर सोचा ठीक है, बाली चलते हैं, क्लोज है, अगर कुछ हुआ भी
1: इंडोनेशिया।
0: तो। हाँ जी, यही सोचा, क्लोज है, कुछ हुआ भी तो फैमिली पहुंच सकती है, हम वापस आ सकते हैं। एंड यू नो, वहाँ पे भी लोग अच्छे हैं काफी, हमने लोगों से सुना, रिव्यूज लिए, खुद से इसने अपनी आइटिनरी सेट की।
1: क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा ही प्रोग्राम पीयूष राखेजा और मेगा राखेजा के साथ, लेकिन हम इनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो जो इंश्योरेंस और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और वो सारा जो काम है उसके ऊपर इनके साथ एक पूरा सेपरेट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक सेशन करेंगे, जहां आप खुल करके इनके साथ सवाल, क्यों भाई, कर सकते हैं ना आप दोनों के साथ?
0: ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तुरंत हाँ भी भर दी। तो उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का, 9414151415 पर। और रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा और पीयूष,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू।
1: यू।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 21 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे ये दुनिया है सुख और दुख की, उसमें आधा कल्प संपूर्ण सुख है, बाकी आधा कल्प दुख है। और कलयुग में हर आत्मा को दुख है, भले सुख सुविधा के साधन होंगे, सब कुछ होगा, परंतु शारीरिक बीमारी से कोई छूट नहीं सकते हैं। तो जब वो बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो दुख ही हुआ, उस समय भी भगवान को याद करते हैं कि आकर के हमें इस दुख से मुक्त करो। कोई भी सुख सुविधा के साधन मनुष्य को दुख से मुक्ति नहीं दे सकता है, दुख से मुक्ति देने वाला एक परमात्मा ही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बाबा ने सुनाई कि मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। कोई ना कोई प्रकार के 5 विकारों के वशीभूत मत पर चलते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। बाकी जितना श्रीमत पर चलते चलेंगे उतना सुखी रहेंगे, और इसीलिए श्रीमत पर चलने के कारण ही सतयुग में उस प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं जहां दुख का नाम निशान नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। सुख देना है, सुख लेना है। प्रश्न है आज की मुरली से, बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। जैसे एक प्रॉमिस का कसम खाते हैं इस गीत के अंदर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा, यहां कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं है, वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, तीर्थ यात्राओं पर धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं, इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है, मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, क्या याद करते हैं? हे दुखहर्ता सुखकर्ता, सदगति दाता, देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है, एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है।
बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए, किसने कहा? आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं, वे अभिमान है ना, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, वे अभिमान में है तो कहते हमको शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। साधु संत आदि सब दुखी है, सब शांति चाहते हैं। हाँ, साधु संत आदि दुखी कैसे हैं? बाबा कहते बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। एकदम बाबा कहे सबकी बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का

पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। सारी मुरली ही है, सुख और दुख का ये खेल कैसे बना है। तो ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। भावना न भी हो, किसी की भावना हो किसी को सुख देने की, लेकिन कार्मिक हिसाब बीच में आ जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दुख ले लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते दुख ही देते हैं, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है, बाबा कहे तुम बच्चों को सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल, बच्चे जानते हैं। अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहां तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं, गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, गर्भ में है तो माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। बाबा कहते गर्भ में माता को दुख क्यों मिलता है, वो भी कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक हिसाब किताब है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं, हम कहां से आए, इतने जन्म लिए, फिर कहां जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम व निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। दुख में ही तो याद किया जाता है, भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, यह भी अभी तुम समझते हो। यहां जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी है कलयुग। मनुष्य तो बिचारे घोर अंधेरे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। अपने शाहूकारी का ही नशा है, बाबा कहते अपनी शाहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, इसको पता ही नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी है। इतने महल, इतना पैसा, इतना धन, सब क्या होगा, मिट्टी में मिल जाना है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। या जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। मनुष्य के नसीब में जितना भोगने का होगा उतना ही भोग सकेगा, बाकी सब मिट्टी में मिल जाना है, उससे अधिक वो भोग नहीं सकता है। जितना जिसको देने का हिसाब होगा उतना ही दे पाएगा, बाकी वो बच्चे उसको भी नहीं मिलेगा
जितना उसके

भाग्य में है उतना ही उसको दे पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, बच्चे लोभ की वृत्ति छोड़ दो, जितना तुम्हारे नसीब में है इतना तो मिलना ही है, कहां से भी मिलना ही है। लोभ करके इकट्ठा भी किया लेकिन भोगना तो उतना ही है जितना नसीब में होगा, बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्यों इतना लालच लोभ में आकर के किसी को दुख देते हुए इकट्ठा करे, किसी की बद्दुआएं लेवे। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा, विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। ये वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, बड़े से बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना कि बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हमारे सब बच्चे हैं परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है। कई बच्चे बाबा को कहते बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया है, फिर हम यह क्यों करते हैं। मनुष्य अपने दिल की बात बाबा से करते हैं कि बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, अंदर में डर लगता है कि हमने शिव बाबा को ये 5 विकार दान में दे दिए, फिर हम ये क्यों करते हैं। तो बाबा क्या उत्तर देता, बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, देह अभिमान का भूत आने से तो सब भूत लग जाते हैं, एक के पिछाड़ी एक लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है, सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे, समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई है, इसलिए ये शरीर छोड़ अब नया लेना है। बाबा कहते सर्प का मिसाल है ना, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए, सहजता से एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो दुख की कोई बात ही नहीं रहती, यहाँ कितना दुख होता है, रोना पिटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, ये अंतिम पुरानी जुत्ती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो, यहाँ कितने नए आते हैं समझते थोड़ी है, 2-4 रोज यहां से समझ कर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे, प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर, यह है ईश्वर का दर अथवा घर। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो, पहले दर पर थे अब घर में बैठे हो, घर से भी गोद में बैठे, बाबा की गोद के बच्चे हो गए। परम पिता अपना परम धाम छोड़कर यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है, वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने, उनको शिव निराकार ही कहते हैं।
मेरा कर बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बिगर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इनको ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? ये नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे। जो श्री कृष्ण की महिमा है वो शिव के मंदिर में जाकर नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वो भांग पीने वाला है, दतुरा खाने वाला है। अरे वहां भांग दतुरा कहां से आई, कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए यह चाहिए, दीप माला पर भी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वह है कौन ये किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं, मनुष्य को ये पता ही नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए, कुछ भी समझते नहीं है। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए। बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी है हे पति पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? ये समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था, बाबा कहते इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते थे, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस श्री कृष्ण को कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था, मम्मा बाबा को भी पता नहीं था। भल कोई को दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूं। यह तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं, बाबा कहते हैं भक्तों की जो मनोकामना है उसको मैं पूरी करता हूं, साक्षात्कार आदि करा देता हूं। यहां तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेंगी तो तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है, आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं, बाबा कहते समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण, ये एम ऑब्जेक्ट है, ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए।
भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, हमारे एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है, इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो, सिर्फ कर्म करने वाले नहीं लेकिन कर्म योगी है। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करण हार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावन हार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करण करावन हार बाबा है, मैं करण हार हूं, ये बाबा कहे कभी भूले नहीं, तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। आज का अभ्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एकर स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एकर स्थिति का तख्त चाहिए। एकर स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा, अर्थात जब आत्म अभिमानी बनेंगे तब एकर स्थिति होगी, और एकर स्थिति होगी तो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सकेंगे। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो तब सिंहासन मिलेगा, तब सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम।